वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा, भविष्य नई दुनिया में सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, ये आपको 21 जन्म की गारंटी है। अच्छा है, अच्छा। आजकल के जमाने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती है। गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्य की वृत्ति भी बदलनी है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। ये भी कंफर्म है कि हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बाबा कहे इतने स्वयं में समर्थ संकल्प चाहिए। वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली, वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो कहां से आएंगे ये बेस्ट संकल्प, उसकी विधि बाबा बताते हैं। तो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है, समर्थ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। जब व्यर्थ आए तो मन का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प। तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ न कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। ये वरदान स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, जब सवेरे आंख खुलती है, दूसरी विधि बाबा बताते हैं, बहुत सुंदर विधि बताई। जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो कहावत है, क्या कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कहते ना, सुबह सुबह किसी का मुंह देख लिया तो, अच्छे का मुंह देख लिया तो सारा दिन अच्छे से अच्छा बीतता है। कोई खराब को देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे से अच्छा कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे अंत होगी वैसे ही सुबह आदि होगी। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपका अच्छा होगा क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो यह करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते ये करने से और आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है? और सहज योगी बनो। मंजूर है? तो बाबा कहे सहज योगी बनो। कितनी सहज विधि बाबा ने वेस्ट को बेस्ट बनाने की बता दी। बस मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, बस ये सहज योगी। चलते फिरते ये याद करो, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। यह तो याद कर सकते हो ना, बहुत अच्छा। सहज से सहज कर रहे हैं बाबा।
आप सभी जो वारिस भी है और वारिस बनने वाले भी है, अभी भी वारिस है, आगे भी वारिस बनने वाले हैं, जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वो हाथ उठाओ। वारिस है, वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, कॉल ऑफ टाइम के रिट्रीट में आए हुए वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे, बाप दादा को ये संकल्प देंगे। क्या संकल्प देंगे? कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है? है मंजूर? है तो हाथ उठाओ। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ये दो काम बाबा ने दिया, व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना, यानी समाप्ति के समय को समीप लाना। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। बाप के पास पुकार और दुख की आह आत्माओं की बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। वर्षा दिलाने वाले को क्या करना चाहिए? दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य। बाबा कहते बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, क्यों क्या की क्यों में टाइम नहीं देना है। छोटी छोटी बातों में, क्यों क्या में टाइम नहीं देना है। अभी हे बाप दादा के सिकिलधे, पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदाकाल होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। बाबा के अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। कि हम कौन है? विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? देखो, इतने सालों पहले बाबा ने बच्चों से कहा कि बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक। इसीलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, होना है नहीं, करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया। तो क्या देखा बाबा ने? सभी के कर्मों की गति और पुरुषार्थ की गति दोनों को बाबा ने चेक किया। खजाने जमा का खाता चेक किया,
तीसरी बात, खजाने कितने जमा किए वो भी खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से कोई कोई ने कंट्रोल अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं इसमें मेरे को ही नुकसान है, इसीलिए चेंज कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, समझा। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं, और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा कोई भी आपका चेहरा देखे, वह चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नमा देख के खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है, कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं, बाबा ये वरदान दे रहे हैं सम्मुख बैठे हुए को और चारों ओर देख रहे हैं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा, आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना और रहना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। अपने असली पोजीशन में ठहरना यही याद की यात्रा है। जो हूं जिसका हूं उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते। इसी पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। आज का स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो।
सत्यवादी।

वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। आज का व्यक्ति इशारा सदा अचल अड़बोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब आप बच्चे अपने इस भ्रुकुटि के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एकरस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्ति में एकरस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। अच्छा,

ओम शांति। हम सभी इस सृष्टि की महान आत्माएं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावत्स और निराकार शिव की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान, हमें अपने अंदर बाप समान सबको खुश करने के और संतुष्ट करने के संस्कार भरने हैं। स्वयं भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। स्वयं बहुत खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी बांटनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में बहुत खुश रहे, उनके चेहरे पर उनकी आंतरिक खुशी सदा ही झलकती रहती थी। क्यों न हो खुश जिन्हें भगवान मिला, जिनका श्रृंगार स्वयं भगवान करते हैं, जिसको रोज सवेरे सवेरे शक्तियों की माजून खिलाकर सर्वशक्तिवान स्वयं शक्तियां भरते हैं, वो भला क्यों न खुश हो। जिनको सामने स्वर्ग दिखाई दे रहा है, सामने खड़ी हुई बादशाही दिखाई दे रही है, सोने हीरो के अथाह भंडार सामने पड़े हैं, वो भला खुश नहीं होंगे तो और कौन खुश होगा। अपनी प्राप्तियों को याद रखें और सदा खुशी के झूले में झूलते रहें। लेकिन सबको खुश करना ये भी एक बहुत सुंदर कला है। हम दूसरों को अच्छे बोल बोलें, दूसरों को एप्रिशिएट करें, दूसरों को एनकरेज करें। आज से हम ये सीखेंगे, हमें दूसरों को प्रेरक बोल बोलने हैं और एप्रिशिएट करना है। दूसरों की कमी निकालने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन उसके हर कार्य को एप्रिशिएट करके उसे उमंग उत्साह दिलाने वालों की काफी कमी है। हमें वो कमी पूरी करनी है। जिसको हम एप्रिशिएट करेंगे, उसके मन में हमारे लिए सदा सदा के लिए प्यार भर जाएगा, और जिसकी हम ग्लानी करेंगे, जिसके अवगुण देखेंगे, वो हमसे प्रतिपल दूर जाता जाएगा। तो खुश करने की कला जैसे बाबा में थी, खुश करने के साथ सबको आगे बढ़ाने की कला भी थी। किसी में बाबा जरा सा गुण देखते थे, उस गुण को यूज कर लेते थे। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्हें देखकर शायद संसार कहे इनमें तो कोई गुण नहीं, ये किसी के काम के नहीं है, जिनको बुद्धि भी बहुत डल थी और कोई योग्यता भी नहीं थी, कोई एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन बाबा ने उन्हें भी यूज कर लिया, उनका भी भाग्य बना दिया। दूसरों का भाग्य बनाना ये बहुत बड़ी कला है। जो अपना भाग्य बनाना जानते हैं, वो दूसरों का भी भाग्य बनाना जानते हैं। जिसमें थोड़ी भी कोई कला हो, उसको विकसित करना, उसको एप्रिशिएट करना, उस कला के बारे में उसको जागृति दिलाना, इससे उसकी वो कला बढ़ जाएगी और वो कला कहीं ना कहीं हमारे काम आएगी या यज्ञ के काम आएगी। प्रभु के इस दिव्य कार्य में उसका उपयोग होगा। तो

और बहुत गहराई से अनुभव करेंगे मैं आत्मा पीसफुल हूँ। अपनी शांति से स्वयं मिलेंगे, अंदर जांच करेंगे हमारे अंदर कितनी गहन शांति है, हमारे पास कितनी साइलेंस पावर है। यदि हम अपने चित्त को शांत कर दें तो डीप साइलेंस का गहन अनुभव होगा। आज सारा दिन इस गुड फीलिंग में रहेंगे, मैं आत्मा इस देह से न्यारी पीसफुल हूँ, और फिर ऊपर से बाबा की शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। सारा दिन हर घंटे में दो बार ये अभ्यास चलता रहे। थैंक यू। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। सब दोस्तों का इस अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहा जाता है छोटी छोटी बातें दिल में रखने से, छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इसलिए बड़ी सोच बड़ा दिल जिंदगी की हर सुबह खुशहाल बनाते हैं। तो ऐसी ही जिंदगी की हर सुबह खुशहाल बनाने के लिए अमृत धारा के द्वारा हम सब ऐसा मंथन करते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं जो पूरे दिन के लिए एक टॉनिक हो जाता है, या कहो जिंदगी के लिए एक हसीन सपना बन जाता है जो सच जरूर होता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, जिनके साथ हम ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो चर्चा के द्वारा अलग अलग पहलू हमें जीवन के सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेडियो मधुबन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति जी, आपको और रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ज्ञानेश्वर जी, हम जब रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, उसकी ओर अलग अलग पहलुओं से देखते हैं, उसका एंगल अलग अलग रीति से हम टटोलते हैं, तब आपने जैसे हमें कुछ विचार दिए, कुछ चिंतन दिया, ऐसे वादा तो नहीं किया, परंतु ये भी हो सकता है ये हमारे जीवन का आईना है, दर्पण है, और उस दर्पण में हम अगर देखेंगे तो लॉजिकली हमें वो चिंतन बहुत भाता है, अच्छा लगता है। तो जब लक्ष्मण जी सीता मैया को ये सावधानी देकर जाते हैं, शायद मैं समझती हूँ कि उन्हें पता है कि कोई ना कोई संकट, बड़ा धोखा आ सकता है सीता मैया के

0: सामने, तो वो लक्ष्मण रेखा को, अर्थात वो एक रेखा देते हैं जो मर्यादाओं की लकीर है, वो लकीर न लांघे, ताकि हो सकता है इस लकीर को लांघने के बाद माया रूपी रावण उसको धोखे में डाल सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, आपने जैसे कहा कि अलग नजरिया से हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रामायण की कथाएं जो है, बहुत सारे लोगों ने, महर्षि वाल्मीकि के बाद भी बहुत सारे लोगों ने उनका गायन किया है। रामायण ऐसी कथा है, इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, कि जितनी कथाएं गाओ उतनी कम है
0: जी।
1: लेकिन कभी कभी बहुत सारे आजकल की पीढ़ी जो है, उनके जो बच्चे हैं या युवक है, वो एक दो बार मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसे पूछा था कि ये रामायण की कथा तो है, बहुत अच्छी है, हम भी मानते हैं, लेकिन राम की सीता रावण लेके गया, उनका युद्ध हो गया, उससे हमें क्या फायदा। और फिर जब उसके ऊपर हम, मैंने अलग ढंग से चिंतन करना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि हर कथा में, पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, नाटक देखने जाते हैं, वहाँ एंटरटेनमेंट तो रहती है, लेकिन ऐसी कई फिल्में होती है, ऐसे कई नाटक होते हैं जो अपने नाटक द्वारा, फिल्म द्वारा कुछ ना कुछ मानव जाति के लिए संदेश देने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसे लगता है, एक तो रामचरितमानस कहो, रामायण की कथा कहो, या कुछ भी कहो, वो मीठी है, उसको देवताओं की कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र जी की कहानी कहा जाता है, उसमें दुख भी है और सुख भी है। एक्चुअली मैं तो कहता हूँ सुख से ज़्यादा दुख है, तो भी वो मीठी है, उसमें भक्ति ज़्यादा है, ज्ञान भी है, लेकिन शिक्षा जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है उसमें। ये कथाओं में जो जो कथाएँ हैं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने हमारे सामने रखी है, या तुलसीदास जी ने उसका गायन किया है, उसके हिसाब से वो कथा सुनने के बाद उसमें मुझे क्या लेना है, मुझे क्या सीख लेनी है, अगर उसके हिसाब से मैं उसका चिंतन करूँ, गायन करूँ, तो कम से कम आज नहीं तो कल उसकी सीख जो है वो मुझे फायदेमंद होगी।
0: इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने बोलते बोलते कहा कि सुख से ज़्यादा दुख है, मतलब ये कलयुग की कथा हो सकती है, या मनुष्य की जब देवत्व का ह्रास हो जाता है, या प्रायः देवत्व लोप हो जाता है, तो किस प्रकार से उसको दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, या दुख में भी दुख को सिर्फ देखना नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं?
1: बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा कि कलयुग की भेंट में अगर हमारी जिंदगी का हम अवलोकन करें, तब ऐसे लगता है, बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि सुख जो है वो तो छोटा अनार का दाना है, उतना छोटा सुख है, और पूरा अनार में एक ही समझो दाना है, तो एक दाना सुख है और पूरा अनार दुख है, ऐसे कहते हैं। मीन्स दुख ज़्यादा है और सुख जो है, परसेंटेज के हिसाब से कहा जाए तो 10% सुख है, 90% दुख है कलयुग में। अभी 90% दुख है, और फिर क्या होगा? अगर वही दुखी जिंदगी करके हम रोते रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, और इसलिए उसको अगर 100% सुख में बदलना है तो राम राज्य लाना है। ये राम राज्य की संकल्पना जो है, हम हमेशा, पिछले बार भी हमने चर्चा की है, बार बार चर्चा करते हैं कि राम राज्य की संकल्पना है, ये आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेज है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है, 100% सुख है। और वही हम हमेशा कहते हैं, राम राज्य हमारे घर में चाहिए, हमारे देश में चाहिए, इस संसार में राम राज्य चाहिए।
0: इसीलिए पहले मन में चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसा पिछले बार भी हमने कहा था कि ये राम राज्य में रावण को स्थान नहीं है, अगर रावण भी है उसमें तो राम राज्य हो नहीं सकता। फिर ये रामायण की कथा जो है, उसका गायन क्यों करना है, ऐसा मन में प्रश्न उठता है। तो जैसे आपने कहा था कि राम चिंतन, राम का गायन, रामचरित्र का आचरण अगर हम हमारे निजी जिंदगी में करेंगे, तो वो आदर्श जो है स्थिति, राम राज्य की स्थिति, वो हम अपना सकते हैं। तो हम सीता मैया की बात कर रहे थे, आपने जैसे लक्ष्मण रेखा की बात की लक्ष्मण रेखा वो उसने खींच ली और उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप उसका उल्लंघन न करें। कई ये ऐसे जैसे मैंने कहा है कथाएं ऐसी है अलग अलग रामायण है तो एक जगह मैंने तुलसीदास की जी की जो कथा सुन रहा था और पढ़ रहा था उसमें ऐसे भी कहा गया है कि सीता को अग्नि रूप में प्रभु रामचंद्र जी ने कहा अभी मेरी लीला देखो मैं कैसी लीला करता हूं वो देखो और इसलिए सीता मैया को कहा आप सूक्ष्म रूप में अग्नि रूप में आप बंदिस्त हो जाओ और जो कुटी में रहती थी वो उनकी छाया थी।
0: अच्छा
1: ये छाया है ये लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं था।
0: इस ये बात क्या सिद्ध करती है
1: ये जब मैंने पढ़ा लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं है ये छाया है और फिर सब वार्तालाप हो गया तब मुझे ये आश्चर्य लगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है।
0: बहुत सुंदर और इतनी हमारी उत्सुकता अभी आगे सुनने के लिए बन गई है क्योंकि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। शायद मेरे साथ कई श्रोताओं की भी यही भूमिका रही होगी कि उन्होंने ये पहली बार सुना होगा कि सीता जी की छाया जो है वो रहती थी कुटी में और लक्ष्मण जी इस बात को नहीं जानते थे। दोस्तों इस उत्सुकता को और भी थोड़ा सा आपको बनाए रखना है लेकिन अभी सुनने का समय है एक गीत। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे कि ये सच्चाई क्या है, किस प्रकार से इस बात का सिग्निफिकेंस हमारे जिंदगी में मायने रखता है। रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, आपने ब्रेक में कुछ चिंतन किया? अभी आपकी उत्सुकता को और ज्यादा न देते हुए हम ज्ञानेश्वर जी से पूछेंगे कि आप जो अभी एक विधान किए हैं, आपने जो अभी एक स्टेटमेंट हमारे सामने रखा है, जो आज तक बहुत कम लोगों ने सुना होगा, उसका सच्चाई से अर्थ क्या है?
2: बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मैंने भी वो रामायण की कथा वो रेफरेंस जो पढ़ा, तब मुझे भी आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने भी ज़्यादा उसमें पढ़ा नहीं था। इसे जो मैंने बचपन से कथा सुनी थी, बचपन से कुछ पढ़ा था, उसमें ये एस्पेक्ट नहीं था कि उनकी छाया उसमें रहती थी और असली सीता जो है वो अग्नि रूप में बंदिस्त थी। ये जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सचमुच रामचरितमानस उसका अंत नहीं लग सकता। उतना मीठा गायन है उसमें, अलग अलग इतने एक एक एक एक उसके लेयर्स हैं, एक एक पहलू है, तो उसको अगर हम निखारते जाए, देखते जाए, तो उसकी सुंदरता और बढ़ती जाएगी। तो जब ये छाया की बात हो गई, तब मेरे मन में एक प्रश्न आया या विचार आया कि हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, प्रोजेक्टर रहता है, वहाँ फिल्म की रील चलती है। अभी डिजिटल हो गया, पहले जमाने में ऐसे रील रहता था और वहाँ से जब प्रकाश पड़ जाता था तो उसकी छाया जो है
1: झरोखा,
2: उसकी छाया पर्दे पे आती थी और फिर वो फास्ट आता, इसलिए पर्दे पे हमें दिखता था कि पिक्चर शुरू है। अभी देखिए, हम थिएटर में बैठे हैं, हम अंधेरे में बैठने के बाद पिक्चर चलती है तब उजाला नहीं होता, पिक्चर चलती है तो अंधेरा हो जाता है और फिर पर्दे पे विलन आता है, हीरो आता है, हीरोइन आती है, कॉमेडी आती है, दुख आता है, सुख आता है और सब प्रेक्षक जो है वो अंधेरे में बैठ के उसको देखते रहते हैं। अभी वो छाया है, अभी समझो वहां कोई हीरो है, वो मार खा रहा है या उसका कोई हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, तो असली हीरो जो है, जिसने उसमें काम किया है, वो दूसरी जगह कहीं बैठा है, वो सेफ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। कितने बार उसका हाथ कटता होगा, कितने बार वो हीरोइन रोती होगी, कितने बार वो हंसते होंगे, कितने बार उनका मिलन होता होगा, बहुत सारी कथाएं जो है उसमें, पिक्चर का प्लॉट जो है वो कितने बार चलता होगा, लेकिन जितने बार भी चले, वो फिल्म का हीरो हो या हीरोइन हो या कोई भी पात्र हो, वो पात्र अपने घर में बैठा है आराम,
1: उनके ऊपर कुछ असर नहीं होता,
2: ना सुख का होता है ना दुख का होता है। तो ये आध्यात्मिकता मुझे लगी जब मैंने ये वाक्य सुना कि सीता की छाया कुटी में रहती थी और असली सीता तो बंदिश तो हो गए थे अग्नि के रूप में। तब मुझे लगा आध्यात्मिकता उसमें यह है कि बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूं, हमने सुना भी है, हर कोई पढ़ता है और हर कोई जानता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा सेफ है। अगर मैं आत्मा हूं ये स्थिति है तो ये अग्नि रूप है मेरा,
1: एक ऊर्जा का,
2: ऊर्जा कहो, ये अग्नि रूप है और वो सुरक्षित है
1: और वो तेजोमय है,
2: लेकिन बाकी जो चल रहा है वो माया है।
1: वंडरफुल।
2: बहुत संत कहते हैं ये जो खेल चलता है वो माया का है, वो है ही नहीं,
1: क्योंकि माया शब्द का जो अर्थ है संस्कृत में वो यही है, मां मतलब ये ऐसा और या मतलब नहीं, अर्थात माया का पूरा अर्थ अगर शब्द का ले लो तो जो दिखता है वैसा नहीं है।
2: बिल्कुल, और यही जो है, इसलिए मैंने कहा कि प्रेक्षक जो है वो अंधेरे में है, पर्दे पे सीन है, पर्दे पे चल रहा है, जब उजाला हो जाता है तो पर्दा है लेकिन सीन गायब हो जाते हैं, सीन कहाँ चले गए, सीन है ही नहीं, ये जो बोलते हैं आत्मा आत्मा आत्मा जो बोलते हैं आत्मप्राश जो हम कहते हैं आत्मा का प्रकाश फैल गया तब ये अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है और फिर पर्दे पे जो चित्र है वो गायब हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं समाधि अवस्था या सुख की अत्युच्च स्टेज। बहुत सारे संत भले तुलसीदास जी कहो और कबीर जी कहो या और बहुत सारे संत जो है मुझे लगता है उनकी अवस्था एक समय ऐसी हो जाती है कि जो अत्युच्च अवस्था है सुखमय अवस्था है और फिर यह संसार जो है उनको पर्दे के ऊपर जैसे चित्रपट चलो चित्रपट चलता है वैसे उनको लगता है वो अलग होके उसको देखते हैं।
1: बिल्कुल सुंदर कहा क्योंकि भगवत गीता में भी श्री कृष्ण के सामने जब अर्जुन जो उनका बहुत प्रिय सखा था वो जब सामने आता है और वो कहता है कि मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है और युद्ध करने के लिए वह राजी नहीं होता है तब श्री कृष्ण जी भी उन्हें कहते हैं कि आप साक्षी भाव को धारण करो।
2: बिल्कुल
1: आप शायद साक्षी भाव की बात कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता
2: बिल्कुल।
1: है
2: बिल्कुल साक्षी भाव की बात इसलिए कर रहे हैं आप जो बिल्कुल सही कहा साक्षी भाव क्या होता है मैं अलग हूँ और जो कुछ चल रहा है वो मैं साक्षी होकर आई एम जस्ट विटनेसिंग। जैसे प्रेक्षागृह में अगर प्रेक्षक बैठता है और फिल्म देखता है फिल्म में हीरो रोता है उसे दुख होगा लेकिन जितना खुद के जिंदगी में दुख है उसके भुगतने के बाद जो दुख होगा वो दुख उसको नहीं होगा उसे साक्षी भाव कहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी भाव शब्द वैसे भी बहुत सुंदर है और गीता में शब्द जो है भगवत गीता में जो एग्जैक्ट शब्द है वो है साक्षी दृष्टा अर्थात साक्षी भाव धारण करते हुए अलग खुद को समझते हुए आप अगर इस संसार को देखेंगे तो वो दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ लेकिन आ जाता है ज्ञानेश्वर जी क्योंकि मैं ये सब बातें जो है समझती हूँ हमारे कई श्रोताओं ने भी पढ़ी होगी सुनी होगी लेकिन ये जो शब्द है ना यहाँ हमारा घोड़ा जो है वो अड़ता है अटक जाता है कि आपने जो बात कही

0: भले हम अंधेरे में है उस पिक्चर को देख रहे हैं, लेकिन ये भी देखा गया है, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, जब बहुत खुशी की बात पिक्चर पर आती है, फिल्म में आती है, तो वो उतने उसमें मगन हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं कि अगर हीरो रो रहा है तो वो रोएंगे, हीरोइन हंस रही है तो वो खुशियां मनाएंगे, और ऐसे ही टेंस में बैठते हैं जैसे उस फिल्म का चित्रण शुरू है। मुझे लगता है इसका मतलब आध्यात्मिक भाव से ये है कि हमें एक्चुअली आदर्श तौर पर जिंदगी को साक्षी दृष्टा के रूप में देखना चाहिए। ये एक अच्छा है, आइडियल है, लेकिन जैसे उस पिक्चर में हम खुद को इतने मगन कर लेते हैं कि वहाँ जैसा दृश्य चलता है उसका टोटल असर हमारे मन पर होता है और हमारे मन की स्थिति भी वैसे ही दोलायमान होती है। वैसे शायद तुलसीदास जी को या ये जो भगवद गीता के सब वचन हैं उसमें भगवान को यही कहना होगा आज के मानव के लिए कि आप उसको एक खेल समझ कर देखो, एक पिक्चर के रूप में देखो। लेकिन हम देखते देखते मालूम है कि ये पिक्चर है पर उसमें बिल्कुल मगन हो जाते हैं, और फिर मगन होने के बाद हमारी अवस्था फ्लक्चुएटिंग रहती है, हमारा जो रिमोट अस्थिर हो जाती है, हमारे मन का जो कंट्रोल है वो पूरा चला जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो मन का कंट्रोल चला जाता है, और इसलिए फिर भी इसका आनंद कैसे उठाना है इसके ऊपर भी हमें चिंतन।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आनंद उठाना है, क्योंकि हमें मालूम है कभी कभी तो पिक्चर जो है वो ट्रेजेडी है, फिर भी तो लोग देखने को जाते हैं, मालूम है पहले से उसकी एडवर्टाइज हुई है। तो इस प्रकार से किस पहलू से हम देखेंगे, कौन सा विचार मन में लाएंगे, यह देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और यही हमारे जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ी सीख हो सकती है। लेकिन इसकी चर्चा हम ब्रेक के बाद करेंगे। अब समय है एक ब्रेक का, फिर से मिलते हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक सपना भी है। इन सब बातों को सुनना बड़ा आसान है, बोलना भी बड़ा आसान है। या अगर हमें कभी उसके ऊपर चर्चा करनी है तो हम चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन वह सब जब निजी जिंदगी में आता है तो ज्ञानेश्वर जी ये बड़ा मुश्किल होता है इसको समझना। और समझते हुए भी जैसे आपने कहा, खुशी में रहना है, आनंद ही देखना है, कैसे ये पॉसिबल है?
1: बहुत बहुत सही सवाल कहा आपने, क्योंकि हम जो चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद, चर्चा जब करना है, क्या होता है कि किसी को तैरना सीखना है या तैरना सिखाते हैं, और अगर हम स्विमिंग पूल के बाहर हैं और उसको पानी में डाल दिया और फिर अगर उसको बोलते हैं हाथ पैर मारो, तो ये नहीं हो सकता। और वैसे आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि ये जिंदगी जो है हमारी निजी जिंदगी है। भले संतों ने कहा है, हमने किताबों में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है कि ये सब माया का खेल है, लेकिन जब खेल शुरू करते हैं तब सुख की भावना होती है, दुख की भावना भी होती है, और वो सब स्वाभाविक है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इस सीख से कुछ हद तक, जैसे आपने कहा कि अगर हीरो हंसता है तो लोग हंसते हैं, जो प्रेक्षक है वो हंसते हैं, हीरोइन रोती है तो वो प्रेक्षक जो है वो रोते हैं, अगर भय है भयभीत हो जाते हैं, हर भावना जो है, हर भाव जो है वो फिल्म देखते समय अपने ऊपर आ जाता है, मन के ऊपर आ जाता है। मुझे ऐसे कहना है कि जितना अपने ऊपर आता है, कुछ हद तक आता है, 100% नहीं आता। अगर हीरो की जगह हम होते निजी जिंदगी में तो कितना दुख होता। अगर हमारे पड़ोसी दुखी है कि समझो मेरा सरदर्द कर रहा है, मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है, मैं वेदना से परेशान हूं, लेकिन आपका सरदर्द नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? मुझे आप सद्भावना देंगे, मुझे आप कुछ मदद चाहिए तो मदद कर देंगे, हमदर्दी दिखाएंगे कि आपका सरदर्द हो रहा है, आपको वेदना हो रही है, आपको दुख होगा। मुझे सरदर्द है तो आपको सुख नहीं होगा, दुख होगा, लेकिन कुछ हद तक होगा। पूर्व जो मैं सह रहा हूं वो आप तो सह नहीं सकते
0: जी।
1: मुझे लगता है साक्षी भाव जो है वो ऐसा है कि अगर दूसरे के दर्द को हम जो समझ सकते हैं तो हम वो दृश्य से बाहर है। वो अगर हम प्रैक्टिस करें तो वो साक्षी भाव है। जैसे आपने खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीत जाते हैं। अभी भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट मैच जब हो जाती है तब हर एक को जैसे बोलता है जिंदगी और मौत का सवाल है, और उसमें बड़े भावनात्मक हो जाते हैं, देखते हैं, चिल्लाते हैं, खुशी होती है या दुख होता है, कभी क्रोध आ जाता है जब हारते हैं, लेकिन कितने?
0: कुछ हद तक
1: आता है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई हारता है तो कोई सुसाइड कर लेता है, ठीक है, वो खेल है, समझते हैं, उस समय तक वो भावना रहती है,
0: टेम्पररी रहती है,
1: और उसके बाद वो पकड़ के नहीं बैठते,
0: लेकिन जिंदगी में बिल्कुल उल्टा होता है।
1: बिल्कुल सही। और मुझे इसलिए लगता है कि ये जो रामायण की कथा हम पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, शास्त्रों की किताब पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, या संतों का जो गायन है वो भी करते हैं, या पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं हमारी जिंदगी में सुख लाने के लिए, और दुख का जो घाव है या दुख की
0: गहराई
1: जो है वो हमारी कम हो। उसका एक उदाहरण देता हूं मैं कि देखिए, अगर किसी को हमने लकड़ी से, डंडे से मारा पीठ के ऊपर, उसको लगेगा
0: जरूर।

0: वनवास में चले जाते हैं या कुछ भी हो जाता था तो आंखों में आंसू आ जाते थे और ये जो रावण है या कोई राक्षस जो है उनके प्रति नफरत पैदा हो जाती थी।
1: बिल्कुल, इतना ही नहीं ज्ञानेश्वर जी, हमने तो यह भी सुना है कि राम का पात्र, राम की भूमिका निभाने वाले जो एक्टर्स है, या सीता जी की भूमिका या रावण जी की भूमिका निभाने वाले एक्टर्स जब कहीं दुनियावी लोगों से मिलते थे, कहाँ जाते थे, तो राम का एक्टर गया तो वो श्रद्धा भाव से उनको नमन करते थे
0: और करते थे।
1: पूजा करते थे, मतलब वो इतना उस पर प्यार करते थे कहो, या इतना उन्होंने उसकी एक इमेज बना के रखी थी। और अगर कोई रावण का पात्र गया तो उनको उस समय भी जैसे कि उसमें से रावण दिखाई देता था। ये मैं समझती हूँ उन एक्टर्स की भी एक बहुत बड़ी अदा है, आर्ट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्टर्स की तो अदा है और वो सच लगता है। ऐसे ही संत कहते हैं कि मेरे भाइयों और बहनों, ये जिंदगी जो है वो खेल है, जिंदगी जो है वो नाटक है। बर्नार्ड शॉ ने भी कहा है कि ये जिंदगी जो है वो इट्स ए बिग ड्रामा
1: And we are all actors.
0: और स्टेज जो है वो पृथ्वी का बड़ा स्टेज है। तो ये एक्टर्स जो है इसमें हर कोई सीख जो है, इसलिए मुझे लगती है टेम्पररी। जब उन्हें मालूम है हम ये जिंदगी जी रहे हैं, हमें दुख होगा, सुख होगा, वेदना होगी, भय होगा, बहुत सारे भावनाएं मन में उत्पन्न होगी, वो नेचुरल है, वो उसमें कोई अननेचुरल नहीं है। लेकिन वो भावनाएं कम करने के लिए औषधि तो देनी चाहिए। रोग है, अगर रोग है और उसको मैं सिर्फ कहता जाऊं कि आपको रोगी हो, ठीक है, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा ना। उसके लिए कुछ उपाय बताने पड़ेंगे, औषधि देनी पड़ेगी। तो ये जो साक्षी भाव, साक्षी दृष्टा, जीवन एक नाटक है, जीवन एक खेल है, ये सब ग्रंथों में संतों ने कहा है, या हम रामायण पढ़ते हैं उसमें जो सीख लेने की कोशिश करते हैं, ये सब औषधि है।
1: एक्चुअली मुझे लगता है ज्ञानेश्वर जी, ये जो महाकाव्य है वही एक सबसे बड़ी औषधि है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यहाँ फिर से एक बार लेकिन आया, लेकिन वो औषधि है यही हमें पता नहीं। और औषध जो होता है, दवाइयाँ जो होती है वो कड़वी होती है, और कोई भी पेशेंट ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि जो बहुत प्यार से दवाई लेता है, उसको दवाई लेने के लिए थोड़ा सा तो एक तो उसको मतलब बताना पड़ता है उसका सीरियसनेस क्या है बीमारी का, और फिर उसको राजी करना पड़ता है। वैसे ही बिल्कुल हमारे निजी जिंदगी में भी ये सारे जो महाकाव्य कहो या ये शास्त्रों का जो वचन है कहो, ऐसे होता होगा।
0: बिल्कुल, और ये कड़वी दवा जब देते हैं, आजकल की जो कड़वी दवा रहती है उसको शुगर कोटिंग करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यो कड़वी ना लगे इसलिए शुगर कोटिंग करते हैं। तो ये कथाएं ऐसी बनी है कि संदेश तो है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है ऐसे बोलते हैं। तो संदेश है सच का, जिंदगी की सच्चाई जो है वो देने की कोशिश की है, लेकिन इसके ऊपर काव्यात्मक ढंग से शुगर कोटिंग किया है।
1: बिल्कुल,
0: अभी उसका परिणाम तो होगा। मैं ये नहीं कहता, अगर कोई श्रद्धा से रामायण पढ़े, कोई भक्तिभाव से रामायण पढ़े, तो उसका परिणाम तो होगा, खुशी होगी। लेकिन अगर मैं क्या ले रहा हूँ, कौन से रोग के लिए ले रहा हूँ, वो अगर मैं सोच समझ के लूँगा तो उसका असर मुझे लगता है ज़्यादा होगा। और हमारा उद्देश्य जो है ये नहीं है कि उसका शुगर कोटिंग निकालना है और अंदर की कड़वी क्या दवा है वो लेना है, लेकिन कौन से उपाय करने हैं, कौन सा रोग है तो उसमें कौन सी दवा लेनी है, इसके ऊपर खाली शुगर नहीं खानी है, अंदर की कड़वाई जो है उसको समझना है, सच को समझना,
1: उसको
0: है
1: भी निगलना,
0: उसको
1: है।
0: निगलना है, वो क्या है। वो कड़वा लगता है लेकिन है बहुत मीठा, ऊपर से कड़वा लगता है अंदर से मीठा है, यहां उल्टा है। तो ये जो सच है, सीख जो है, वो अगर मैं समझ लूं तो मुझे मेरी निजी जिंदगी में उसका फायदा ज्यादा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
1: बहुत सुंदर बात कही आपने ज्ञानेश्वर जी, कड़वाहट या मधुरता उसकी देखना, समझना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, इसके लिए चाहिए बहुत बहुत

बुद्धि की विशालता, मन जो है उसमें इतना स्थिर बन जाएगा जब बुद्धि विशाल होगी। और ये ऐसी बातें हैं जो सचमुच ही हमें आगे जाकर भी इस पर गहराई से चिंतन करने के बाद पता चलता है कि ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, आपने भी यही मन में अभी ख्याल किया होगा कि अरे, हमने इस प्रकार से सोचा ही नहीं था। तो ऐसी सोच को बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ाने के लिए हम अगले ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं रेडियो मधुबन।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है अमृतधारा प्रोग्राम में। हम बात कर रहे थे दवाई की, ऐसी दवाई जो दिखने में शुगर कोटेड है लेकिन अंदर से कड़वी है, फिर भी अगर वो हमारे बीमारी के लिए बहुत उपयोगी है तो उसको मीठी समझकर लेना पड़ता है। ज्ञानेश्वर जी, आपने बात कही एक सच की और झूठ की भी। इस पर मुझे एक बहुत छोटा और सुंदर किस्सा जो पढ़ने में आया है वो मैं अभी सुनाना चाहती हूँ।
1: बहुत अच्छा।
0: एक बार क्या हुआ कि सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने अपने अपने कपड़े उतारे और नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब सच स्नान करके बाहर निकला तो देखा उसके कपड़े गायब हो रहे।
1: ओहो।
0: झूठ के कपड़े पड़े हुए थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? इसीलिए कहा जाता है, तब से सच नंगा है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में बहुत प्रतिष्ठित हो गया है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: मुझे लगता है कि ऐसे ही कभी कभी होता है हमारे जिंदगी में भी। जो है परछाई, जैसे आपने बात कही, उसको हम सच्चाई समझकर चलते हैं और जो सच्चाई है उसको हम भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये जिंदगी की सच्चाई है। ये परछाई की जो बात है वही जिंदगी की सच्चाई है। और इसलिए देखिए, रामायण की कथा हम उसी समय समझते थे क्योंकि ये भी गुप्त है। प्रभु रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ये समझने नहीं दिया कि ये छाया जो है वो सेफ है, सुरक्षित है।
0: मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है वैसे कुछ इन शास्त्रों में होगा क्या?
1: बिल्कुल। और देखिए, उसमें और एक मुझे ये लगता है कि अगर वो लक्ष्मण जी को समझता था तो फिर वो क्रोध शोक नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, लड़ाई नहीं लड़ते थे, कुछ नहीं होता था क्योंकि उनको मालूम है वो तो छाया है, खेल है, करना कुछ नहीं, आराम से बैठ।
0: उसमें वो नजाकत नहीं आती थी।
1: लेकिन उसमें मुझे और एक संदेश है देना है कि भले ये सच है, ये ड्रामा है, ये सब है, खेल है, ये परछाई है, ये सब मालूम है, अगर ये हम मालूम हो के निष्क्रिय होके बैठते हैं तो जिंदगी का मजा लुप्त हो जाएगा। अगर जिंदगी जीनी है तो उसका लुप्त भी उठाना है लेकिन उससे परे होना है। यह बहुत बड़ा ऐसा खेल है,
0: अटपटा है,
1: अटपटा और लेकिन चटपटा भी है।
0: मतलब इन्वॉल्व होना भी है, इन्वॉल्व होकर उसको निभाना भी है लेकिन दुख नहीं करना है।
1: लेकिन उसमें क्या होता है, ये एंजॉय करना है। हम दुख के जो सैड पिक्चर्स है वो भी देखने जाते हैं। वहाँ भले जाते माताएं जो रहती है वो पूरा रुमाल उनका जो है वो गीला हो जाता है, रोते रोते बाहर आती है, लेकिन पिक्चर तो हाउसफुल हो जाता है। रोने में भी वो भले आनंद नहीं मिलता लेकिन रोना जो है वो भी एक अनुभव करते हैं। और इसलिए तो पिक्चर नहीं, तो अगर दुख का पिक्चर है, सैड पिक्चर है, दर्द भरे गीत है तो वो भले गीत सुनने के बाद, देखने के बाद रोना आता है लेकिन हिट तो हो जाते हैं। तो ये एक अनुभव है, ये भी अनुभव करना है, रोना करना है, रोने का अनुभव करना है, हंसने का अनुभव करना है, आनंद का अनुभव करना है, ये सब एक अनुभव है। तो जिंदगी में अगर मैं ये समझ के चलूं कि ये सब नकली है, हम जो सुन रहे वो सुन ही नहीं रहे, कुछ अलग ही सुन रहे, तो जिंदगी का लुप्त खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है संतों ने ये जो ब्रेक्स, देखिए गाड़ी है, कार चलाते हैं और गाड़ी जब तेज चलती है तो उसका मजा भी लेते हैं। ऐसे नहीं हम फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के कहीं एक्सीडेंट हो इसलिए धीरे धीरे धीरे धीरे चलाते, नहीं, सेकंड गियर में डालते हैं, थर्ड गियर में डालते हैं, टॉप गियर में डालते हैं, हाईवे पे तेज चलती है, लिमिट रहती है लेकिन फिर भी तेज तो चलते हैं। लेकिन वहां ब्रेक है, वहां गियर है, सब प्रोटेक्टिव सिस्टम्स है, और इसलिए जिंदगी का जो ड्राइविंग का मजा जो है, बहुत सारे लोग जो है ड्राइव एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि दुखी होके जाते हैं, रास्ते पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, इसका मतलब सब ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। उसमें प्रिकॉशन लेनी है, उसमें हमें केयर लेना है, उसमें हमें संभालना है खुद को, लेकिन चलाना तो है ही। वैसे मुझे लगता है ये जो सीख है, हम जो कोशिश करते हैं सीख देने की, ये गियर चेंज करना या ब्रेक लगाना, ऐसे है।
0: वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो मतलब जीवन को ये गाड़ी का जो उदाहरण दिया वो तो बिल्कुल लाजवाब है, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, लोग देखते हैं, कुछ लोग हैं उसमें से सीख लेते हैं, जो नहीं लेते वो फिर से अपना भी एक्सीडेंट कर बैठते हैं।
1: बिल्कुल, और फिर एक्सीडेंट करने के बाद जब हम एक्सीडेंट देखते हैं तब उससे भी सीख लेते हैं,
0: दुखी भी होते हैं
1: और सीख भी लेते हैं कि उसने जो गलती की तो मैं ना करूं।
0: लेकिन फिर से कभी कभी हमारे से गलतियां हो जाती है, छोटे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है ये भी हमारे जीवन रूपी गाड़ी में जो मन और बुद्धि के जो ब्रेक है वो हम अगर समय पर नहीं लगाते तो ऐसे हमारे उदासी के, दुख के, या कहो कि बिल्कुल मायूस होने के एक्सीडेंट हो जाते हैं।
1: और इसलिए मैं कहता हूँ कि जिंदगी का मजा जो है वो जिंदगी, गाड़ी की जो गति है, स्पीड जो है, वो है जिंदगी का मजा।
0: इससे मुझे एक बहुत सुंदर गीत याद आ गया, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: वाह, बहुत अच्छा। ये जिंदगी का एक सफर है, कल क्या है कोई जानता नहीं है, लेकिन वो जो जिंदगी का सफर अभी जो आपने गाना गाया वो खुशी से गाता है, वो ये नहीं सोचता कि कल क्या होने वाला है, जाना नहीं है, आज का जो पल है, वर्तमान जो है वो एंजॉय करो।
0: बिल्कुल सही। और कल क्या होने वाला है वो न जानने से ही उसका मजा है।
1: यस, लेकिन उसकी फिक्र मत करो, कल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में चिंतन करके आज का जो क्षण है, वो वर्तमान जो है, वो खराब ना करो।
0: और अच्छा ही होगा यह समझकर चलने से सदा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा।
1: वो इसलिए आगे के गीत है, अरे मौत आएगी आएगी एक दिन, अरे जान जाएगी एक दिन, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुस्कुराते हुए दिन बिताना है, तो हमारे श्रोतागण को हमारा नम्र निवेदन है, हम दोनों की तरफ से जिंदगी का सफर, उसका लुत्फ उठाओ।
0: बहुत सुंदर बात कही। और गीत के साथ जब हम ऐसे गीत तो कई गाते हैं, सुनते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन उस गीत का आनंद लेते हुए उस नजरिया से जब हम सचमुच देखते हैं तो फिर उसकी तो बात ही और है। दोस्तों, ऐसी बातें चलती रहेगी, जिंदगी का मजा लेते रहेंगे, उसके सुख दुख की परवाह न करते हुए एक सुहाना सफर खुद का भी बनाएंगे औरों का भी बनाएंगे। लेकिन

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी दिली चाहना है कि गम ना हो, जहां हो फसाना आपका, खुशियां ढूंढती रहें आशियाना आपका। वो वक्त ही ना आए जबकि आप उदास हों, ये दुनिया याद रखे मुस्कुराना आपका। आपके चेहरे की मुस्कान, आपके चेहरे की खुशी, यही समाधान का लक्ष्य है और ये खुशी हमेशा हमें प्रदान करते हैं आदरणीय भ्राता जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत
1: थैंक यू,
0: स्वागत है। हमारी ढेरों शुभकामनाएं अपने तमाम दर्शकों के लिए हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ भ्राता जी, और आप भी कहते हैं, कि हमारा एक परिवार बन चुका है। और परिवार में या शरीर के किसी अंग में जब कोई तकलीफ होती है, तो वो केवल उस अंग की तकलीफ नहीं होती, लेकिन पूरे शरीर की तकलीफ होती है। हमें लगता है कि यदि उन्हें कोई तकलीफ है, उन्हें कोई समस्या है, तो ये केवल उनकी तकलीफ नहीं है, बल्कि ये हमारी तकलीफ है, हमारी समस्या है। और जब वो इस समस्या से मुक्त जाते हैं, और जब ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हमने फलाना फलाना अभ्यास किया और हम समस्या से मुक्त हो गए, तो सचमुच दिल को एक सुकून मिलता है, राहत मिलती है, और हमारे चेहरे की प्रसन्नता, हमारी खुशी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, मैं भी जब बहुतों की समस्याओं की बातें सुनता हूँ, किसी किसी की बहुत ही

0: सीवियर प्रॉब्लम जब सामने आती है, दुखों के किसी पर पहाड़ टूट रहे होते हैं, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, सचमुच ऐसी दर्द भरी बातें सामने आती हैं, तो मुझे भी लगता है जो हमें ईश्वरीय आदेश है, जिसको हम बहुत कम कर पाते हैं एक्चुअली, कि हम अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर इन सभी लोगों को समस्याओं से मुक्त करें। लेकिन आड़े आते हैं उनके अपने विकर्मों के खाते, जो उन्होंने न जाने 500 साल पहले, 1000 साल पहले कर लिए थे। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी जन्म में राजा रहा हो, उसके गलत निर्णय से अनेकों को कष्ट पहुंच गया हो, अब उसका रिटर्न तो उसको प्राप्त होता ही है। तो हमारे वाइब्रेशंस उसको थोड़ी मदद तो कर देते हैं, लेकिन आखिर सेटल तो कर्मों को उसको ही करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि सदा जीवन मुस्कुराता रहे, खुशी बढ़ती रहे, समस्याएं ना हो। लेकिन मैं इसमें इसको रिवर्स कर देता हूं कि अगर हम सदा मुस्कुराते रहें, अगर हम अपने जीवन को खुशियों का भंडार बनाते चलें, तो वास्तव में समस्याएं हमसे दूर रहती हैं। समस्याएं भी बाहर खड़ी होकर जब देखती हैं, इनके घर में तो खुशियों के फव्वारे फूट रहे हैं, यहाँ तो गम का नाम निशान नहीं, तो वो भी सोचते हैं किसी और के द्वार पर चलें। तो हम सचमुच मुस्कुराते रहें, अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहें और समस्याओं से मुक्त होते रहें।
1: बिल्कुल दादाजी, जो प्रथम कॉल मैं ले रहा हूँ आज, जो हमारे पास आया था, रागिनी जी हैं और ये कहती हैं कि जब लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता मैं देखती हूं, या कोई पति अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, तो ये देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही आजकल जो लड़कियों के साथ हैवानियत की घटनाएं हम सुन रहे हैं, तो उसे सुन करके भी मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो गया है। तो दोनों चीजें हैं, मुझे गुस्सा भी आ रहा है इन सब चीजों को देख के, और मन में एक डर का एक जो माहौल है वो भी बना हुआ है, इनसे मैं कैसे मुक्त हूँ।
0: हाँ देखिए, बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, बहुत सारी जो हमारी शिव शक्तियां हैं, नारी भी शक्ति स्वरूप है, उनको ये सब देख कर बहुत बुरा लगता है और सोचती है अब कुछ कर डालें इन सब के लिए। न केवल नारियों पर अत्याचार होते देखते हुए नारियों को ये बात होती है, अनेक हमारे पुरुष कुमार और युवक भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारी बहनें और हमारे भाई, हमारी माताएं सुरक्षित रहें, बिल्कुल सिक्योर हों। जब ये गैंग रेप हुए तो मुझे कई अपने कुमार युवकों के फोन आए कि हमें तो नींद नहीं आ रही है, हमारी तो भावनाएं बहुत उमड़ रही हैं, हम कुछ कर दें, इन सबको मार डालें हम, क्या करें हम। मैंने कहा नहीं, अपने चित्त को शांत करो, एक ने गलती कर दी, दूसरे को गलती नहीं करनी चाहिए, हमें इनको अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं ताकि इनके चित्त शुद्ध हो जाएं, ताकि ये पाप के मार्ग का त्याग कर दें। क्योंकि हम देख रहे हैं सजाएं, कोर्ट, पुलिस, मिलिट्री, इन सब के द्वारा पाप कर्म रुक नहीं रहा है, गैंग रेप भी रुक नहीं रहे हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं।
1: हमें लग रहा था भ्राता जी की 16 दिसंबर की जो घटना हुई थी दामिनी के साथ, उसके बाद जो एक जन आक्रोश पैदा हुआ था, उसे लग रहा था कि शायद अब ये घटनाएं रुक जाएंगे, लेकिन देखा कि ये तो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है।
0: क्योंकि इससे थोड़ा कुछ युवकों में तो भय होता है, लेकिन उनकी जो वासनाएं हैं वो उन्हें फिर से बाध्य कर देती हैं ऐसे गलत काम करने के लिए। तो जहां तहां अखबारों में रोज, और ये बात तो कुछ तो आती ही नहीं है, लोग लज्जावश अपने समाज की भाई बदनामी हो जाएगी छुपा लेते हैं बेचारे। ऐसे गरीब बहुत लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जो चर्चाओं में ही नहीं आती है, लेकिन ये सब कुछ बहुत बढ़ता जा रहा है। तो रागिनी की बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं, इनको भय भी होता है निश्चित रूप से, मनुष्य लेडीज विशेष रूप से अपने को इनसिक्योर फील करने लगती हैं, और गुस्सा भी आता है कि सरकारें क्यों कुछ नहीं कर रही, पुलिस क्यों नहीं साथ दे रही, कहीं कहीं तो पुलिस के लोग ही रेप के केस में फंसते रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वासनाएं उतनी ही ज्यादा जागृत हो रही हैं। टोटली इन चीजों को नष्ट करने के लिए हमें प्योरिटी को फिर से बढ़ावा देना पड़ेगा। जो मनोवैज्ञानिकों ने काम वासना को बढ़ावा दे दिया, वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा हमारे देश में निरंतर होता आया है और लोगों ने इसको मान्यता दे दी, हमारे नेताओं ने, हमारे कोर्ट्स ने भी, सबको इसको मान्यता दे दी है। लेकिन अब इस मान्यता का दुष्परिणाम हमारे सामने तेजी से आता जा रहा है और अगले सालों में ये भयानक रूप से एक विस्फोटक स्थिति लेता जाएगा। हर नारी अपने को इनसिक्योर फील करेगी, उनके अंदर बहुत भय हो जाएगा और आज जो हमारी नारी शिव शक्तियां बनकर मनुष्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में साथ चल रही हैं, बल्कि आगे निकलती जा रही हैं, वो गति कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इस बात को जानते हुए हमें फिर से प्योरिटी को बढ़ावा देना होगा। बहुत लोग हमारे इस पवित्रता के संदेश का विरोध करते रहे संसार में, लेकिन अब शायद उन्हें महसूस हो रहा होगा कि पवित्रता की शक्ति ही इस बुरी चीज को रोक सकती है। ये जो पाप की गंदी सरिता बहने लगी है, जो हर एक का मन पाप से बिल्कुल ओतप्रोत हो गया है, इसको रोकने का तरीका प्योरिटी है। तो मैं रागिनी को कहूंगा वो राजयोग की शक्ति से चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैलाएं और सर्वशक्तिवान को अपना साथी बना लें। तो क्रोध से यहाँ काम नहीं चलेगा, वायलेंस से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ काम चलेगा शांति से, यहाँ काम चलेगा प्योरिटी से, यहाँ काम चलेगा अपने को शक्तिशाली बना लेने से। मान लो मैं एक उदाहरण दूं कि आज सभी लड़कियों को कराटे और ये सब अपनी सेफ्टी के बहुत सारे गुर सिखा दिए जाएं और वो तैयार हो जाएं पांच पांच युवकों को धराशायी करने के लिए, ऐसी कई लड़कियां हैं, लेकिन क्या इससे ये चीज रुक जाएंगी? नहीं, ऐसे बहुत लोग फिर निकल पड़ेंगे, ऐसी लड़कियां भी निकल पड़ेंगी जो इन वासनाओं में फंसी होंगी। तो टोटल लड़कियों को, लड़कों को, युवकों को, बड़ों को, बात युवकों की नहीं, बड़ों में भी वासनाएं बहुत हैं। बड़े बड़े केस, गंदे गंदे समाचार, दुष्कर्म के बूढ़े बूढ़े लोग दुष्कर्म में फंसे हुए, ऐसे समाचार अखबारों में आते रहते हैं। तो टोटल इस प्लेनेट पर हमें पवित्रता का प्रभाव उन्हें जागृत करना है। और रागिनी को मैं कहूंगा भगवान जो ये दिव्य कार्य कर रहा है इस संसार को प्योरीफाई करने का, ये जो काम वासना से भरी हुई कल्चर इस धरातल पर आ गई है, इसको समाप्त करने का परमात्म कार्य हो रहा है। रागिनी भी उसमें शामिल हो जाए, उसमें बहुत अच्छा योगदान करे, तो इस बहती धारा को कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा।
1: तो जो अंदर भय आ गया है, भय से भी मुक्त होने का एक सुंदर साधन यही है कि अपनी प्योरिटी को बहुत अच्छी तरह से हम बढ़ाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, राजयोग का सुंदर अभ्यास करें और साथ ही साथ ये जो एक प्रवाह चल पड़ा है गंदगी का, एक निश्चित रूप से पवित्रता के प्रवाह की जो आपने बात कही है, क्रांति की जो बात कही है कि हम प्योरिटी को अपनाएं, इससे भी एक सुंदर संदेश सभी को जाता है कि वास्तव में पवित्रता के आधार पे ही ये जो एक गिरती कला की स्थिति कह लें या एक पतन कह लें समाज का, उसको रोका जा सकता है।
0: देखिए, प्योरिटी इज अ रियल सिक्योरिटी, हम ये स्लोगन अपने पास रख लें। जहां प्योरिटी का बल है वहां मनुष्य स्वतः ही सिक्योर है, चाहे वो लड़कियां हों, बड़े हों, कोई भी हो। और इस संसार में प्योरिटी की क्रांति तो आ रही है और हमें लानी है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है अगले कुछ ही वर्षों में संसार में परमात्म शक्तियों के द्वारा एक प्योरिटी की ऐसी क्रांति हम लाएंगे जिससे हर व्यक्ति इन वासनाओं से वैराग्य धारण करेगा, जिसमें हर व्यक्ति को ये महसूस होगा कि ये गंदगी है, ये हमारी अंदर की शुद्धि के विपरीत चीज है, हम आत्मा के अपने यानी अपने मूल संस्कारों के विरुद्ध जा रहे हैं। और जहां मनुष्य महसूस करेगा कि काम वासना बहुत बड़ा पाप है, गीता में कही हुई वो बात कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, तीसरे अध्याय का वो पहले दूसरे श्लोक जब अर्जुन पूछता है कि न चाहते भी मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है, तो उसे भगवान बताते हैं कि काम ही इसका मूल है। तो हर मनुष्य महसूस करेगा कि काम वासना ही सबसे बड़ा पाप है, सभी पापों को जन्म देने वाली ये काम वासना है, हम ऐसी एक प्योरिटी क्रांति इस धरातल पर लाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये परमात्म प्लान है और परमात्म प्लान में बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अपने अन्ना हजारे का आंदोलन चला है ना, तो बहुत सारे युवक उसमें जुड़ते गए। अब भगवान के आंदोलन में युवक ही जुड़ रहे हैं, अनेक युवक हमारे पास आ रहे हैं जो चाहते हैं हम अपने जीवन को पवित्र बनकर भारत को महान देश बनाएं, संसार में फिर से इसको जगत गुरु के आसन पर स्थित कर दें। तो युवकों में एक प्योरिटी के लिए क्रांति भी आती जा रही है और हम देख रहे हैं ये गुड साइन है, जबकि इस धरा पर प्योरिटी की गंगा बहेगी और ये पाप का जो गंदा नाला है ये नष्ट हो जाएगा।
1: स्वामी विवेकानंद जी ने भी आह्वान किया ही था भ्राता जी कि 100 ऐसे पवित्र ब्रह्मचारी युवक मिल जाए तो मैं भी कुछ परिवर्तन करके दिखाऊंगा। और खुशी होती है इस बात को जान करके कि ब्रह्मा कुमारीज में लाखों ऐसे यूथ हैं जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, प्योरिटी का पालन कर रहे हैं और वो सबके लिए एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि सचमुच ऐसा किया जा सकता है, अपने जीवन को ऐसे आदर्श पे चलाया जा सकता है और यही वास्तव में परिवर्तन का आधार है।
0: बिल्कुल, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, मेरा संबंध लाखों युवकों से है और मैं देखता हूँ, मुझे गर्व होता है कि यही वो यूथ हैं जो सचमुच भगवान के काम आ रहे हैं, जिन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया है और जो भारत भूमि से सच्चा प्यार रखते हैं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बात तो सारे विश्व को बदलने की है, परंतु भारत के युवकों में भी तो ये जज्बा है ना। और जो क्रिश्चियंस और दूसरे लोग हैं उनके युवक तो काम वासना की इस गंदी धारा में बहते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत के युवक और युवतियां ही ऐसी हैं जिनमें पवित्र संस्कार हैं और जो भगवान के आह्वान का सम्मान करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं। तो पहले हमारे पास 1,000 थे, अब लाख हो गए हैं और कुछ ही समय में ये संख्या करोड़ों तक पहुंचेगी और संसार में एक बहुत अच्छी क्रांति आएगी।
1: बहुत सुंदर बात भ्राता जी, यद्यपि चर्चा प्रश्न तो कुछ और भी था, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं जो इस चीज को पालन करना चाहते हैं, आपने पवित्रता की बात कही, ब्रह्मचर्य की बात कही, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि हमारी चारों तरफ का जो वातावरण है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा अपवित्रता से भरा हुआ है, इम्प्योरिटी से भरा हुआ है। चाहे आप टेलीविजन देख लें, चाहे मूवीज देख लें, पत्र पत्रिकाएं देख लें, निसंदेह अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन इन सब बुरी चीजों का भी वहां पे उपस्थिति है। तो जब ये चीजें वो देखते हैं तो ये सारी जो कामुकता की भावना है पैदा होने लगती है और ये सारी जो गलत कृत्य, चाहे वो गैंग रेप की बात आप कर रहे हैं, वो सारी चीजें इससे होती हैं। इससे अपने आप को यूथ कैसे बचाएं?
0: बिल्कुल ठीक बात है, हमारे टीवी चैनल्स ने भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकारों को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है और चैनल वाले तो सोचते हैं जिन चीजों को ज्यादा लोग देखें वही हमें देनी है, चाहे वो जहर हो या अमृत हो या गंदगी हो, कुछ भी हो,
1: अपनी टीआरपी बढ़ानी है,
0: उन्हें तो करना है और वो तो सब कॉमर्शियल हो गए हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को जो अपने देश से सच्चा प्यार करता है उसे जानना चाहिए कि ये वासनाएं देश के पतन का कारण है। क्योंकि जो हमारे नेता लोग हैं, मंत्री, वो भी तो यहीं से गए हैं ना, वो कहीं आसमान से उतरे हुए देवता तो नहीं है, तो उनके अंदर भी यही वासनाएं हैं और यही कहीं ना कहीं पुनः रिवर्स होकर देशवासियों को प्रभावित करती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे बहुत सारे युवक हमें मिलते हैं जो पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, जिनके अंदर एक बहुत अच्छा दृढ़ विश्वास है, विचार है कि हमें पवित्रता के द्वारा अपने देश को बहुत महान बना देना है। लेकिन ये सब बातें चारों निगेटिविटी, गंदगी, टीवी खोलेंगे तो उस पर ये, नेट खोलेंगे तो उस पर ये उनको कहीं ना कहीं कमजोर अवश्य बनाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर पवित्रता का मार्ग चुना है तो ये जो गंदगी का मार्ग है इसकी ओर से आंखें बंद कर लें। एक चीज, अपने लक्ष्य को पावरफुल कर लें कि हमने पवित्रता का मार्ग चुना है तो चाहे हमें कुछ भी दिखाई देता हो चारों ओर, वो हमारा मार्ग है ही नहीं। मेरा तो मार्ग ही पवित्रता का है ना, हमने तो एक कांटों के जंगल में एक सुंदर मार्ग बनाना है, कांटे हैं लेकिन चलने की तैयारी हमने कर ली है तो हम कांटों को क्या देखेंगे, हमें तो एक मार्ग बनाना है और कांटों के उस मार्ग के बाद एक सुंदर बगीचा है, बहुत आनंदकारी बगीचा है, वहां तक हमें पहुंचना है। ये लक्ष्य की दृढ़ता युवक अपने अंदर लाएं। लेकिन मुख्य बात जो हम सब युवकों को कहना चाहेंगे, अगर वो पवित्रता का सहयोग भगवान को देना चाहते हैं जिसके रिटर्न में उन्हें जन्म जन्म भगवान का सहयोग मिलेगा, वो भगवान के आह्वान का मान करना चाहते हैं, जैसे कभी महात्मा गांधी ने आह्वान किया था ना युवकों का, और अनेक वकील, अनेक डॉक्टर्स और अनेक युवक, गांव के युवक कूद पड़े थे ना उसके साथ आंदोलन,
1: सब कुछ छोड़ दिया,
0: सब कुछ छोड़कर जेलों में गए, पढ़ाई छोड़ दी। अब भगवान आह्वान कर रहा है विशेष रूप से भारत के युवकों का कि मेरे भारतवासी युवकों आओ, पवित्रता का मार्ग अपनाओ, और उसके लिए शक्ति वो दे रहा है। इसलिए राजयोग का अभ्यास करें, राजयोग से परमात्म शक्तियां मिलेंगी। देखिए परमात्मा है पवित्रता का सागर, वो पतित पावन है। तो जब हम उससे योग लगाएंगे तो पवित्र वाइब्रेशंस हमारे अंदर आएंगे। उसके पवित्र वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली हैं जो वासनाओं के वाइब्रेशंस को नष्ट कर देते हैं। इसलिए जिसको पवित्रता का बल संसार को देना है, एक है ब्रह्मचर्य अपना लेना अपने लिए, दूसरा है ब्रह्मचर्य को बल बना देना, ब्रह्मचर्य को ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस के रूप में टर्न कर देना कि वो संसार के लिए वरदान बन जाए।
1: मुझे लगता है भ्राता जी, कई बार इस चीज को इसलिए युवा वर्ग नहीं अपना पाता कि इसका उद्देश्य क्या है अपनाना, या इससे फायदे क्या है। शायद इस चीज से वो अनभिज्ञ है और ये चीजें तो बाहर दी ही नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है इस पे सचमुच एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है कि कैसे ब्रह्मचर्य व्रत हमारे लिए एक शक्ति का कार्य करता है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट करता है और सारे संसार को भी सचमुच इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता
0: है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि जब परमात्मा से हम पवित्रता की शक्ति लेंगे, प्योर वाइब्रेशंस लेंगे, तो हमारी प्योरिटी बहुत नेचुरल हो जाएगी। इट विल बिकम एन एंजॉयमेंट फॉर अस। अब हमें अपनी ओर नहीं देखना है, हमें देखना है संसार की ओर, हमें देखना है भारत की ओर, जो ये हमारा महान भारत स्वर्ग था। आज तो नारा रह गया, मेरा भारत महान। महान है कहाँ? लोग मजाक उड़ाते हैं इस नारे की कि 99% लोग बेईमान और मेरा देश महान, ये कहाँ हो सकता है। लेकिन हमारा देश सचमुच महान था, विश्व गुरु था, ये देवभूमि थी, यहाँ देवताओं का वास था, यहाँ देवत्व था, यहाँ मनुष्य मनुष्य नहीं थे, वो देवता थे। तो फिर से पवित्रता अपना कर हमें इस भारत को महान बनाना है। देखिए, चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो, चाहे और कोई समस्याएं देश में बढ़ रही हो, जिनकी रोज चर्चा होती है, डॉलर के मुकाबले रुपया कितना डाउन होता जा रहा है, ये सब चर्चाएं, इन सब में सुधार आ जाएगा। एक झटके से सब ठीक हो जाएगा अगर हमारे देश के बहुत सारे युवक पवित्रता को अपना ले। तो जन कल्याण के लिए, भारत को महान बनाने के लिए, यहाँ सत्य धर्म की स्थापना के लिए, यहाँ सब कुछ श्रेष्ठ हो जाए, श्रेष्ठाचारी साम्राज्य की स्थापना हो जाए।
1: वास्तव में पवित्रता का यदि हम पालन करते हैं तो वो केवल व्यक्तिगत रूप से मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन यदि हम सच्चे देश प्रेमी हैं तो इसका पालन करें, क्योंकि हमारी पवित्रता पूरे देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मददगार बनेगी, फिर से इसे आध्यात्मिक गुरु के स्तर तक पहुंचाएगी। एक व्यक्तिगत बात भ्राता जी, कई बार युवा वर्ग ये सोचता है, या एक सामान्य व्यक्ति भी जिससे हम पवित्रता की या ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, वो ये सोचता है कि अकेला चना क्या भार फोड़ लेगा, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, वो सब इम्प्योरिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, अब मैं अकेला यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा हूं तो बहुत बड़ा अंतर तो नहीं आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, वो ये भी सोचता है कि मेरे मन में भी तो वो थोड़ी सी वासनाएं, थोड़ी सी इच्छाएं हैं, और जब वो उद्वेलित होती हैं तो उन्हें पूर्ण कर लेने की जो चाहना है उसे भी वो रोकना नहीं चाहता या रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में क्या?
0: देखिए, एक बड़े कार्य के लिए अपनी छोटी इच्छाओं का त्याग कर देना बहुत बड़ी समझदारी है। अपनी इच्छाएं तो हर व्यक्ति पूर्ण कर रहा है, जो रेप कर रहे हैं वो भी तो यही कहते हैं, हमारे मन में इच्छा थी, हमने कर लिया। तो सभी अपनी इच्छाएं अगर पूर्ण करने लगेंगे तो संसार कहाँ चला जाएगा, हम समझ सकते हैं। तो एक तो हमें इस बात को जरा विशाल रूप से देखना चाहिए कि जन कल्याण के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपनी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं। अगर हमें त्याग करना पड़ता है तो हमारे त्याग का बल अनेक आत्माओं को बल देगा। एक व्यक्ति पवित्र बनता है, ये बात कुछ लोग सोच सकते हैं, सोचते भी हैं। अब से 40 साल पहले भी हम ये बात सुना करते थे कि तब तो हमारी संख्या बहुत कम थी, हमारे पास शायद 1-2 हजार ही युवक थे जो पवित्रता को अपना रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों के प्रश्न उठते थे कि हम थोड़े से युवक क्या करेंगे। आज वो संख्या लाखों में पहुंच गई है, कई लाख। तो ये पवित्रता तो एक ऐसा प्रकाश है जो न केवल अपने अंधकार को दूर करता है, लेकिन इस सृष्टि के अंधकार को दूर करता है। पवित्र आत्माएं तो ऐसी हैं जैसे आकाश में चमकता हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा। चंद्रमा एक होता है लेकिन कैसे सारे संसार को जगमगा देता है। रात रात नहीं लगती, रात का लोग आनंद लेते हैं, चांदनी में बैठना चाहते हैं। तो अगर 1 करोड़ युवक पवित्र बन जाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा हम कहें, एक करोड़ चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में चमकेंगे और ये
1: प्रकाश
0: प्रकाश हो जाएगा। तो ये एक की बात नहीं, एक से एक, एक से दो, दो से चार, चार से लाख और करोड़ हो जाएंगे तो संसार जगमगा उठेगा।
1: बिल्कुल, लेकिन मन में जो चीज आ रही है, कई लोग इसे नेचुरल भी मानते हैं, भूख लगी है तो भोजन कर लिया जाए, प्यास लगी है तो पानी पी लिया जाए, तो कई लोग इसे नेचुरल मानते हैं कि चलो सेक्स की भावना पैदा हो रही है, इसकी भी पूर्ति कर ली जाए, तो इस विषय पे आप क्या कहें?
0: लेकिन इसकी पूर्ति इसकी इच्छाओं को बढ़ाती है। ये वासना ऐसी चीज है कि पूर्ण करने से तृप्त नहीं होती है, बल्कि ये अतृप्त रह जाती है, फिर ज्यादा ज्यादा करने की इच्छा होती है। इसलिए ये एक साधना है, पवित्रता ब्रह्मचर्य एक साधना है, इसको दबाने की बात नहीं, इसको चैनलाइज करना है, इसको ट्रांसफर करना है। और राजयोग इसमें यही तो काम करता है कि वो जो इच्छाएं हमारी हो रही थी वो इच्छाएं दबती नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण हो जाता है, वो एक आनंद में बदल जाती हैं जब हम योग अभ्यास करते हैं। तो योग अभ्यास इसका साधन है, इस साधना के द्वारा ये वासनाएं शांत हो जाएंगी, वो वासनाएं फिर उठेंगी नहीं, फिर हमारी वासनाएं शुभ कामनाओं में, श्रेष्ठ इच्छाओं में बदल जाएंगी, चाहे वो विश्व कल्याण की इच्छा हो या परमात्म अनुभूतियों की इच्छा हो, चाहे सबको जगाने की इच्छा हो, चाहे अनेक युवकों को प्रेरित करने की इच्छा हो, तो वासनात्मक इच्छाएं इन शुभ इच्छाओं में रूपांतरित हो
1: जाए। तो हम राजयोग का अभ्यास इसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है, ताकि मन के जो विकार हैं चैनलाइज हो सकें, रूपांतरित हो सकें अच्छाइयों में, जो ये बुराई है। क्योंकि कई बार हम अपनी इच्छा का, इसलिए ये जो काम की इच्छा पैदा होती है, इसे भी हम मजा के रूप में यूज करते हैं कि चलो हम थोड़ा आनंद लेते हैं, लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्षणिक होता है। यदि हम राज्यों का अभ्यास करें तो हम एक दीर्घकालीन आनंद की ओर बढ़ पाएंगे। ये बहुत सुंदर,
0: बिल्कुल ये ऐसी इच्छाएं हैं। देखिए दोनों बातें, इनको पूर्ण किया जाए तो ये बढ़ती जाती हैं, इनको दबाया जाए तो ये कहीं ना कहीं कष्ट पैदा करती हैं। इसलिए मैंने कहा इनको चैनलाइज कर देना, इनका रूपांतरण कर देना, और ये काम राजयोग के द्वारा बहुत सफलतापूर्वक हो जाता है। हमारे ऐसे अनेक राजयोगी हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जिनकी वासनाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, कर्मेंद्रियां शीतल हो चुकी हैं। हम बचपन में सुना करते थे, जब हमने ये ज्ञान लिया तो लोग कहा करते थे कलयुग में और संपूर्ण पवित्र हो जाना असंभव है, तुम लोगों की कल्पना है। लेकिन अब हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, अनुभव के साथ कह सकते हैं, मेरे सहित ऐसे कई युवक हैं जिनकी वासनाएं पूरी तरह शांत हो चुकी हैं, जिनके अंदर पवित्रता का प्रकाश आ चुका है, और जो काम की इच्छाएं थी वो पूर्णतया लोप हो चुकी हैं। अब काम की इच्छाएं नहीं, जग कल्याण की इच्छा है, अब भारत को महान बनाने की इच्छा है, भगवान के कार्य में संपूर्ण सहयोग देने की इच्छा है, तो उसमें लगे रहने से ये आनंद हो जाता है, तो पवित्रता एक आनंद बन चुकी है।
1: एक बहुत बड़ा चैलेंज आपने किया है भ्राता जी, कि आपके सहित लाखों लोग जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कुमार कुमारियां हैं, चाहे गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो भी अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सचमुच पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, और ये दिखाता है कि ऐसा करना सहज है, सरल है, और सचमुच उनके लिए भी एक प्रकार से प्रेरणा है कि वो भी इन चीजों को अपने जीवन में शामिल करें।
0: मैं थोड़ा सा कहूं तो मुझे ये पवित्रता की यात्रा पर चलते हुए पूरे 50 साल हो रहे हैं
1: जी।
0: मैंने इसके भिन्न भिन्न उतार चढ़ाव भी देखे हैं, मुझे एक लंबा चौड़ा अनुभव है पवित्रता का। ब्रह्मचर्य मेरा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था इस जीवन में, वही मुझे साधनाओं के मार्ग पर लाया, उसने ही मुझे ब्रह्मा कुमारी की ओर अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने पाया कि ब्रह्मचर्य की सहज साधना, उसको आनंद बना देना, केवल यही संभव होगा, राजयोग के माध्यम से ही संभव होगा। तो शुरू में वो सब इच्छाएं होती थी, धीरे धीरे समाप्त होती गई, उसमें राजयोग का बल भी काम करता रहा, लेकिन मैं जोड़ूंगा ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति ने भी उसमें अहम भूमिका निभाई। अगर मनुष्य को एक यथार्थ ज्ञान न हो तो भी वो अपने पथ से विचलित हो सकता है। तो हमें एक ऐसा संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान मिला, स्वयं भगवान ने हमें गाइड किया, तो पवित्रता हमारा एक नेचुरल संस्कार बन गया।
1: बहुत सुंदर भ्राता जी, पवित्रता का जो विषय है, ब्रह्मचर्य का जो विषय है, केवल व्यक्तिगत न हो करके पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। शायद इस व्यापक स्तर पर लोग लोग विचार नहीं कर पाते, लेकिन आज आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, आपका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इस विषय को थोड़ा सा और विस्तार दें अगली कड़ी में, लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, ये कहा गया है कि आहार, निद्रा और मैथुन तीन ऐसी चीजें हैं जिन्हें जितना ज्यादा भोगा जाए उतना ही ज्यादा इनकी आकांक्षा, इनकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है। इसीलिए संयम का पाठ हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है। और आज भ्राता जी ने बहुत सुंदर चर्चा की है कि पवित्रता और ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना है जिससे न केवल हम अपने जीवन की समस्याओं को निर्मूल कर सकते हैं, वरन समाज की तमाम समस्याओं को भी निर्मूल किया जा सकता है। तो एक सुंदर प्रेरणा, एक सुंदर संदेश आज के इस एपिसोड से हमें प्राप्त हुआ है कि हम भी पवित्रता के मार्ग पर चलकर देखें। ये ना सोचें कि मैं अकेला ही क्यों चलूं, लेकिन हर एक व्यक्ति एक बार अकेले ही यात्रा प्रारंभ करता है। कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आप एक श्रेष्ठ पथ पर चलेंगे तो लोग जुड़ते जाएंगे और समाज, संसार परिवर्तित हो जाएगा। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज रविवार है और रविवार के दिन बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ नज़दीक के स्थान पर जाते हैं। सबको लगता है आज जो नौकरी करते हैं उनको लगता है कि संडे के दिन छुट्टी है, तो छुट्टी का दिन बड़े प्यार से बड़े आराम से मनाएं। जी हाँ, हम भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आ जाए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी हो जाए। तो इसी के साथ हम गुड मॉर्निंग अबू का शुरुआत एक प्यार से गीत के साथ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हम आपको गीत सुनाना चाहेंगे जो सभी प्रभु की याद करते हैं और प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु तेरे रंग में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए ऐसे। जी हाँ, प्रभु के रंग में रंगना भी सभी को आता है और वो रंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो रंग इतना सुखदायी होता है कि उसका दिन भर जो सवेरे सवेरे अगर रंग चढ़ता है तो दिन भर वो खुशियाँ देता है। तो चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत हम करते हैं आज के पंचांग के। जी हाँ, आज का पंचांग हम सभी को क्या बताता है, जो शास्त्री जी क्या कहते हैं। तो आज के पंचांग में तिथि संवत है प्रथम ज्येष्ठ और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है। रविवार दोपहर 2:15 तक ये रहेंगे। साथ ही विक्रम संवत है 2083 शके 1948 और हिजरी है 1440। मुस्लिम माह जिलहिज तारीख 13 और सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु और 31 मई आज की तारीख भी है। जी हाँ, इसके साथ ही सूर्योदय कालीन नक्षत्र के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज अनुराधा नक्षत्र सायं 4:12 तक है। जी हाँ, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। सिद्ध योग संपूर्ण दिन रात रहेगा। बौ करण दोपहर 2:15 तक ही है। इसके बाद बालव करण रहेगा। जी हाँ, इसके बाद हम देखते हैं ग्रह विचार। ग्रह विचार के बारे में अगर शुरू बात बताना चाहेंगे तो प्रातः 5:30 इसकी शुरुआत होती है। सूर्य वृष, चंद्र वृश्चिक, मंगल मेष, बुध मिथुन, गुरु मिथुन और शुक्र मिथुन, शनि मीन, राहु कुंभ, केतु सिंह राशि में स्थित है। तो आज की ये ग्रह विचार के बारे में जानकारी है। अब दिशा भूल पश्चिम दिशा के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो यदि जरूरी हो तो छुआरा खाकर यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, आप छुआरा खाकर भी आप यात्रा कर सकते हैं, वो भी पश्चिमी दिशा में। और राहु काल के बारे में सायं 4:30 से 6 तक राहु काल रहेगा। शुभाशुभ ज्ञानम शुक्र पुनर्वसु में प्रातः 5:47 तक है। सत्यव्रत विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है आज। तो विश्व में 4 अक्टूबर ये विश्व तंबाकू दिवस भी मनाया जाएगा और हम भी आज के दिन प्रतिज्ञा करें कि अगर जिन्हें भी ये तंबाकू की लत है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू, तो वो भी आज छोड़ने का प्रयास करें। मंदावी है गंडमूल प्रारंभ सायंकाल 4:12 से शुरू होता ही है। और चौगड़िया मुहूर्त के बारे में हम बताना चाहेंगे कि प्रातः 7:19 से ये शुरुआत होती है और 9:01 तक इसका चर बताया गया है। प्रातः 9 से 1 से दोपहर 12:24 तक लाभ व अमृत का है। दोपहर 2:06 से 3:48 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। तो ये चौगड़िया मुहूर्त है। और आज के विशेष के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आज रविवार को प्रातः स्नानादि के बाद जलपूर्ण कलेश में लाल पुष्प, लाल चंदन डालकर सूर्य भगवान को चढ़ाए। इसके प्रभाव से ऐश्वर्य एवं आत्मबल बढ़ता है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करें तो सूर्यजनित दोष दूर होते हैं। आज सिद्ध योग में कुमकुम का दान करना शुभ और फलदायी होता है। तो इसी प्रकार से आज के बच्चे जो जन्मे बच्चे हैं तो उनकी राशि और नामाक्षर भी हम आपको बताना चाहेंगे। अगर जो बच्चे समय प्रातः 5:37 यानी 5:30 के आगे अगर जन्मते हैं तो उनका नक्षत्र है अनुराधा और चरण है 3, पावा है ताम्र, राशि है उनकी वृश्चिक और नामाक्षर अगर देखा जाए तो 9 से शुरू हो जाएगा उनका। दूसरा समय है 9:28, उनका नक्षत्र है अनुराधा, चरण है 4, पावा है ताम्र और राशि है वृश्चिक, नामाक्षर उनका शुरू होता है 9 से। तो इसी प्रकार से समय अगर 16:12 का है तो उनका नक्षत्र है ज्येष्ठा, चरण है 1,
पावा है ताम्र और राशि उनकी वृश्चिक बताई है और नामाक्षर है नो। तो इस प्रकार से 22:56 से समय शुरू होता है और उनका जो जन्म होता है उसके आगे का तो नक्षत्र है ज्येष्ठा, चरण है 2, पावा है ताम्र और राशि है वृश्चिक और नामाक्षर है या। तो ये थी आज के जन्मों बच्चों के नामाक्षर और उनकी राशि। तो चलिए दोस्तों, आज को आप सभी को हमने पंचांग बताया, आज रविवार है और पंचांग की बातें आपको सभी को बताई कि आज पंचांग आप सभी को क्या क्या कहता है। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम आज आपको फिर से लेके जा रहे हैं कि राशि के बारे में। जी हाँ, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि राशि हमारी क्या है, आज की राशि क्या है और राशि क्या बताती है। तो राशि के बारे में हम बताना चाहेंगे कि तारे सितारे के हिसाब से गुरु उच्च होने जा रहे हैं, जो पूरे विश्व के लिए उत्तम रहेगा। व्यापार वृद्धि के साथ युद्ध की विभीषिका का भी अंत होगा। सेंसेक्स में उठाव होगा। कीमती धातुओं के दाम में वृद्धि होगी। मौसम अनुकूल रहेगा। रोगों में आराम मिलेगा। कुछ जगह पर लोकतंत्र बाधित हो सकता है। मंगल की स्वराशि का गुरु पर दृष्टि होने से जनता के लिए कल्याणकारी कार्य होंगे। जी हाँ, अभी हम मेष राशि के बारे में बताना चाहेंगे। मेष के बारे में ये बताता है कि अष्टम चंद्र रहेगा। आरंभ में कठिनाई आ सकती है। सोमवार से स्थितियों में सुधार होगा। मंगलवार को दिन अच्छा रहेगा। बुध एवं गुरुवार को काम अत्यधिक रहेंगे। शुक्र एवं शनिवार को सहयोग की प्राप्ति होगी और जरूर धन लाभ भी होगा। तो इसी प्रकार से तुला क्या बताती, तुला राशि किस प्रकार से बताती है। तो तुला के लिए बताया गया कि आवेश एवं कार्य की अधिकता रहेगी। सोमवार एवं मंगलवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। बुध एवं गुरुवार को समस्याएं रह सकती है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, आप परमात्मा को भी याद करें। शुक्रवार एवं शनिवार को संतान से सहयोग एवं सुख मिलेगा। समस्याओं का निदान होगा। जी हाँ, समस्याओं का निदान जरूर होगा। समस्याएं स्थायी रह नहीं सकती। तो इसी के साथ वृषभ राशि क्या कहती है। तो वृषभ राशि बता रही है कि चंद्र की दृष्टि से राहत प्राप्त होगी। सोमवार की दोपहर से बाद समय प्रतिकूल होगा। मंगलवार को योजनाएं विफल होगी। बुधवार को मन उदास रहेगा। मन उदास रहेगा तो क्या करना है, आप सभी को पता है। जी हाँ, जब वह मन उदास हो उसको याद करो, आपका मन उदास भी दूर करेगा। गुरुवार अच्छा दिन रहेगा। अगर बुधवार मन उदास रहेगा तो गुरुवार बता रहा है वृषभ राशि वाले को, गुरुवार को दिन बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र एवं शनिवार को आय में सुधार होगा। जी हाँ, शुक्र और शनिवार के दिन आपके आय में भी सुधार हो सकता है। तो वृश्चिक राशि के बारे में भी यही बताया कि चंद्र राशि में है, आय के साथ खर्चे भी बने रहेंगे। आवश्यक सभी काम समय पर पूर्ण होंगे एवं भाग्य का साथ भी बड़ा मिलेगा। बुधवार एवं गुरुवार को बड़े काम बनने से आसार है। शुक्रवार एवं शनिवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। जी हाँ, देखो शुक्र और शनिवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। ये थे वृश्चिक राशि के बारे में। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों मिथुन राशि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। षष्ठ चंद से समय सामान्य रहेगा। मन में उदासी रहेगी। सोमवार से शानदार समय का आरंभ होगा। मंगलवार को योजनाएं सफल होगी। बुध एवं गुरुवार को कुछ समस्याएं आ सकती है। शुक्र एवं शनिवार से पुनः सुधार हो जाएगा। जी हाँ, अगर समस्याएं दिख रही है तो समस्याएं जाएगी भी। शुक्र एवं शनिवार से पुनः सुधार

तो कर्क राशि के लिए बताया है कि आरंभ अच्छा होगा, संतान से सुख प्राप्त होगा, सोम एवं मंगल को अज्ञात चिंता रहेगी, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे, बुध एवं गुरुवार को सहयोग प्राप्त होगा, शुक्र भी अच्छा दिन रहेगा और शनिवार को व्यय की अधिकता होगी। तो इसी प्रकार से मकर के बारे में राशि क्या कहती है। जी हाँ, एकादश चंद्रमा से आरंभ अच्छा होगा, सोम एवं मंगलवार को कुछ तकलीफ आ सकती है, बुध एवं गुरुवार से स्थितियों में पुनः सुधार होगा एवं योजनाएं सफल होगी, शुक्र एवं शनिवार को किसी आयोजन में आप शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी मकर राशि के बारे में। अब हम जानेंगे सिंह राशि के बारे में। जी हाँ, तो सिंह राशि ये बताती है चतुर्थ चंद्र से शुरुआत में आय की कमी रहेगी, सोमवार को सब कुछ ठीक होने लगेगा, मंगल बुधवार से आय में सुधार होगा, गुरुवार का दिन अच्छा बीतेगा, शुक्रवार एवं शनिवार को भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा का योग भी है। तो दोस्तों, ये थी सिंह राशि के बारे में। अब बताते हैं अगली राशि जो कुंभ है। कुंभ राशि में ये बताया गया है कि चंद्र की अनुकूलता रहेगी, आर्थिक आधार बढ़ेगा, सोम एवं मंगलवार को आनंद रहेगा, बुध एवं गुरुवार को विचलित करने वाले दिन हो सकते हैं, कार्य की रूपरेखा बदलनी पड़ती है, शुक्रवार एवं शनिवार को अच्छे दिन रहेंगे। जी हाँ, शुक्रवार और शनिवार को आपके अच्छे दिन रहेंगे। यही बात कन्या राशि के लिए क्या गई है बताएंगे। तो कन्या के लिए बताया जा रहा है कि आरंभ अच्छा होगा, किंतु सोम एवं मंगलवार को कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, बुधवार को संतान से सहयोग प्राप्त होगा, गुरु एवं शुक्रवार को योजनाएं सफल होगी, शनिवार को परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। ये थी कन्या राशि के बारे में। अब हम बताने जा रहे हैं कि मीन राशि क्या कहती है। तो मीन राशि यही बताती कि आरंभ में योजनाएं सफल होगी, सोमवार एवं मंगलवार को भाई सहयोग प्रदान करेंगे, बुध एवं गुरुवार को व्यस्तता रहेगी, यात्रा पर जाने का योग दिखाई दे रहा है, शुक्र एवं शनिवार को सप्ताह में कोई चिंताजनक समाचार मिल सकता है। तो ये थी मीन राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये राशि तो जो जो बताते हैं, जहाँ जहाँ कष्ट पीड़ादायक बताया गया है वहाँ परमात्मा का ध्यान करें, वो कष्टदायक पीड़ा भी आपकी जल्द से जल्द दूर हो सकती है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तो चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हम उम्मीद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम बताने जाएंगे कि आज संडे का दिन है, बहुत सारे लोग छुट्टी के दिन खरीदारी करते हैं और सभी को लगता है कि हम देखें आज सोने चांदी का रेट क्या है। जी हाँ, तो हम लोकल सोना चांदी का रेट भी आपको बताएंगे। जी हाँ, 24 कैरेट सोना अगर आप लेना चाहोगे तो 1,60,500, ये रेट 10 ग्राम का है और साथ में जीएसटी के साथ है। जी हाँ, अगर आज किसी को सोना खरीदना है तो उसका रेट है 1,60,500। साथ ही अगर आप 22 कैरेट सोना खरीदना चाहते हैं तो 1,47,130, मतलब 1,47,130, ये 22 कैरेट का रेट है और ये भी रेट 10 ग्राम का जीएसटी के साथ है। अगर आपको चांदी खरीदनी है तो चांदी का भी बताने जा रहा है कि चांदी 2,71,000, तो चांदी का रेट 2,71,000 बताया जा रहा है, वो भी किलो का। हाँ जी नमस्कार।
3: अरे जी नमस्कार, बाबू जी नमस्कार। जब आपका कार्यक्रम हम सुनेंगे तो आनंद लेते हैं। मैं मानपुर से गुरीलाल बोल रहा हूँ।
2: यस यस गुरीलाल जी, बोलो बोलो बोलो, कैसे है?
3: तो मेरा बहुत बढ़िया है, आपका कार्यक्रम सुनकर के आनंद आनंद के साथ में मेरा एक गाना है सर।
2: जी जी जी जरूर।
3: नील गगन के उड़ने वाले बादल, आ आ आ, राम राम करे रखवाली, हरी भरी खेतियों की राम करे रखवाली। ये गाना सर, ये गाना हो जाएगा तो मुझे भी आनंद आ जाएगा और मेरे सुनने वाले साथी को भी आनंद आएगा।
2: नील गगन के
3: उड़ने वाले बादल, आ आ आ।
2: अच्छा, जरूर हम कोशिश करते हैं, नील गगन के उड़ने वाले बादल।
3: ये गाना सर, ये हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
2: जी जी जरूर। आप कैसे हैं?
3: मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया हूँ, आनंद ले रहा हूँ। शाम को तो सर बरसात भी आएगी, बादल भी आएगा, तूफान भी आया था हल्का फल्का।
2: तो आप सारी जानकारी रखते हैं पहले से? जी हाँ,
3: जरूरी है, दुनिया में रहना है तो जानकारी नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा।
2: जी जी जी जी जी,
3: दुनियादारी के अंदर रहना है तो सबकी जानकारी रखनी जरूरी है।
2: जी जी जी जी,
3: ठीक है सर, नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ विशेष खबरें भी आपको सुनाना चाहेंगे, जो आबू की खबरें हैं। तो 32 सूत्रीय मांगों को लेकर एवीबीपी ने प्रदर्शन किया है, तो उनकी क्या क्या मांगे हैं, आधारभूत सुविधाओं के सुधार की मांग उन्होंने उठाई है। तो 32 सूत्रों की मांग के लिए उन्होंने प्रदर्शन भी किया। एवीपी जो आबू रोड की जो विद्यार्थी है, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आबू रोड इकाई ने विद्यार्थियों की समस्या और महाविद्यालय के विकास से जुड़ी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। मांगों का जल्द समाधान करने की मांग भी रखी है। जी हाँ, आज छात्रा को जो प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो उसके लिए वो आवाज़ भी उठाते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे समय से महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं, विद्यालय से और विद्यार्थियों को जुड़े जो मुद्दे हैं को अनदेखी कहा जा रहा है। कई बार ज्ञापन देते हुए वार्ता भी छपी है, फिर भी समाधान नहीं मिल रहा है। इसी वजह से परिषद को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रदर्शन के दौरान परिषद पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि 32 सूत्रीय मांगों पर जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर धरना उन्होंने जारी रखा है और एवीवीपी ने महाविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग से विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखते हुए मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। परिषद ने कहा कि आंदोलन विद्यार्थियों के अधिकारों का बेहतर शैक्षणिक माहौल में है। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों की ये मांग थी। और दूसरी हम खबर आपको बताने जा रहे हैं जो आबू की है। हनीमून पॉइंट मार्ग पर गश्त के दौरान मादा मालू है, जो भालू की मादा है, वो मृत अवस्था में पाई गई है, जिसे अनादरा पॉइंट से हनुमान पॉइंट जाने वाला मार्ग कहा जाता है। वहां पर मादा भालू का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। गश्त के दौरान वनपाल राजकुमार यादव ने राजेश बिश्नोई को देर शाम तक सड़क किनारे भालू मृत मिला ये खबर पहुंचाई। दोनों ने तुरंत उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी। सूचना पर एसीएफ सुमेश बालन गजेंद्र सिंह के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिर उन्होंने उस मादा भालू का शव एक कब्जे में लिया। शनिवार सुबह पशु चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम भी किया। फिर जांच में मेडिकल टीम में डॉक्टर वाब, डॉक्टर संजय और डॉक्टर जगदेव भी शामिल हुए थे। शुरुआती जांच में भालू मादा निकली है और उम्र उसकी 8 से 10 की बताई जा रही है। वन विभाग के अनुसार शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा था। जांच में बाल, खाल, दांत, नाखून समेत सभी अंग सुरक्षित मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि इसमें कोई शिकार की आशंका नहीं है, क्योंकि सभी अंग साबुत थे। प्रथम दृष्टया मौत बीमारी से होना जाना संभवता बता गई है, या उस जानवर को निमोनिया भी हो सकता है, ये डॉक्टर की जांच में बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण पुष्टि होगी। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग के ट्रेवर्स ट्रैक के क्षेत्र में जंगल में अंतिम संस्कार किया। मौके पर पशुधन निरीक्षक हसबी रेहाना, वन प्रवी रवि सिंदल और पुलिस के अधिकारी भी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम आपको कुछ एक प्यारा सा गीत सुनाना चाहते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर।

है जो करता है मुश्किल हमारी दूर, हर तरफ हर जगह।

कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर रोशनी का कोई

तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको फिर से अब की कुछ खबरें आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, शिक्षा के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो योग काउंटडाउन कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। अबरोड़ के माधव विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के तहत 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम भी उन्होंने आयोजित किया गया है। कार्यक्रम योग दिवस से 22 दिन पहले हुआ है। कितना? 22 दिन पहले। इससे विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों, एनसीसी और एनएसएस स्वयं सेवकों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय चेयरमैन डॉक्टर राज कुमार, चांसलर हिम्मत सिंह और देवल ललित मदान और श्योम योग चरम के संस्थापक अर्चना त्यागी भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजकुमार ने युवाओं से योग को रोजाना अपनाने की अपील की और कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने योग का जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प किया। जी हाँ, अभी अगला मास जून आ रहा है और जून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को ज्ञात है योग अंतर्राष्ट्रीय 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और अभी से उसकी शुरुआत की जा रही है अपनी अबूरोड़ से, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी खबर है, कन्याकुमारी जल बावड़ी क्षेत्र में स्वच्छता का अभियान भी चला है। उपखंड प्रशासन, नगर पालिका अबू पर्वत के निर्देशन में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत शुक्रवार को देलवाड़ा के ऐतिहासिक कन्याकुमारी मंदिर की जल बावड़ी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान हुआ है। टीम ने क्षेत्र में फैला प्लास्टिक कचरा, गंदे कपड़े, कांच की बोतलें, पूजा सामग्री, अन्य अपरिष्ट पदार्थ एकत्र किए। जहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं तो घूमने के यहाँ आने के बाद क्या करते हैं, कचरा यहाँ वहाँ फैलाते हैं, कहाँ प्लास्टिक डालेंगे, कहाँ कुछ डालेंगे, यहाँ वहाँ कचरा फेंक के और चले जाते हैं। लेकिन एक याद रखना, हम जहाँ पर भी घूमने के लिए जाए, हम कचरा ना करें, कचरा ना फैलाएं। तो ये मुहिम स्टूडेंट को या अन्य सामाजिक संस्थाओं को निभानी पड़ती है। तो उन्होंने उस मंदिर की सफाई कराई गई, पर्यावरण संरक्षण, जल स्त्रोत्र की स्वच्छता का संदेश भी उन्होंने दिया। अभियान में नगर पालिका के अधिकारी, सफाई कर्मचारी, जमादार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए, नरेगा कर्मी, पर्यावरण प्रेमी भी शामिल हुए। जी हाँ, जिनको पर्यावरण के प्रति प्यार है, अपने शहर के प्रति प्यार है, और जो हमारे पालिका के अधिकारी कर्मचारी, वो सभी इसमें शामिल हुए थे। सभी ने क्षेत्र को स्वच्छ सुंदर रखने का संकल्प किया है, तो हम भी संकल्प रखें कि हमारे आसपास का एरिया सदा ही स्वच्छ रखें, यहाँ वहाँ कचरा न करें। मौके पर नगर पालिका के एन ललित भारद्वाज, एन नवोदित सिंह, जे ई एन लक्ष्मण सिंह ऐसे अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम दूसरी खबर आपको बताना चाहेंगे जल संरक्षण के बारे में। जी हाँ, जल संकट भारत में बढ़ता जा रहा है, तो उसके बारे में भी कहाँ कहाँ शपथ ली गई है। वंदे जो सिरोही में कही है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शनिवार को जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग ने जिले की सभी पंचायत समितियों की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में चयनित ग्राम पंचायतों में जल चौपाल कराई। यहाँ श्रमदान हुआ है, जल शपथ दिलाई गई है, फिर वंदे गंगा संकल्प भी कराया गया है, चल रहे कार्यों का अवलोकन भी हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आए प्रतिनिधियों को पीसीडी, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, एमपीटी रिचार्ज शाफ्ट, सीटीसी जैसे कार्य दिखाए गए। मौके पर मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रतिनिधि अंजलि सोनी, गायत्री मीना भी थी और विभागीय अधिकारी भी इस समय मौजूद थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्यारा सा गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति सोमनाथ भाई जी, कैसे हो?
0: बस बढ़िया, बस बढ़िया। आप बोलिए, आप बोलिए, कैसे हैं?
1: बस आप आ गए, अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग एल्बम में आपकी एंट्री हो गई।
0: जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा सर।
0: जी जी,
1: हम तो आपकी राह देख रहे थे, मैंने सोचा चलो हम आपसे बात कर ले तो
0: जी जी जी
1: हमको भी सुकून हो जाए और आपको भी कि चलो भाई हमने बात कर ली।
0: जी जी जी जी जी,
1: बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चला, अच्छा रहा आज का दिन।
0: जी जी जी,
1: और संडे है, सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं, आपको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं सर। जी सर, क्योंकि शबद की समय थोड़ा कम है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा।
0: जी जी जी जी जी,
1: आपके पास भी समय कम है तो सभी मित्रों को आपको नमस्ते सर।
0: जी जी, ओके, नमस्ते, ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हुए कुछ खबरें आबू की आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, राजयोग से तनाव कम होता है, ऐसा बताया गया कि नायक जो है आज ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर में न्यायविद सेवा प्रभाग की तरफ से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो पिछले 3 दिनों से ऊपर ज्ञान सरोवर में ये सत्र चल रहा है और 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दूसरे दिन भी बहुतों ने अपने अपने राय बताई। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी के नायक ने कहा कि न्याय व्यवस्था में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व है। अध्यात्म निर्णय क्षमता विकसित करता है, न्यायिक कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि राज्यों का नियमित अभ्यास आंतरिक व्यक्तित्व विकास निखारता है, सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। जी हाँ, हमने भी कई जगहों को पूछा है तो यही कहते हैं कि आध्यात्मिकता हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की मदद करता है। न्यायविद सेवा प्रभाग की अध्यक्षा राजवाणी पुष्पा दीदी ने कहा कि अध्यात्म मन को शांति देता है, स्थिरता देता है। उन्होंने कहा कि मुकदमे जीतने आसान हो सकता है, मन पर विजय के लिए आत्मिक शक्ति जरूरी है। अगर मन हमारा शक्तिशाली है, मन निरसंकल्प है, मन तंदुरुस्त है, तो मन क्या करता है, कोई भी मुकदमा हो वो आसानी से जीता जा सकता है। हेलो जी, नमस्कार।
2: हाँ, पूरा नाम बोल रहा सर।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं?
2: अभी वो मेरा तो ऑपरेशन हो गया था, बैठा था आपके प्रोग्राम सुन रहा मैं।
0: जी जी जी जी,
2: भाई तो राम राम तो कर दो सुबह
0: राम राम। और हम यही चाहते कि आप जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, आपको लंबी आयु मिले।
2: आपकी दुआ और भगवान की दुआ साथ में काम करेगी।
0: जी जी जी जी जी,
2: फिर भी आपके पास तो हमेशा फोन सुनता रहता, कभी लगता ही नहीं फोन आपका।
0: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी जी, धन्यवाद।
2: मस्त तो एक मेरे को मेरा एक गाना सुनाएंगे तो अच्छा करेंगे। हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया, थोड़ा बोले तो ऐसा मेरा दिमाग से निकल जावे बात सब।
0: जी जी जी जी, अभी वक्त हो गया कार्यक्रम को यहाँ पूरा करने का, तो हम आपको गाना नहीं सुना सकेंगे क्योंकि आगे का कार्यक्रम यहाँ शुरू हो रहा है नया, तो इसके लिए हम, हाँ जी, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जी जी जी जी,
2: कोई बात नहीं, मतलब आपको दिया है ना।
0: जी जी जी, अभी न्यूज लगेगा, न्यूज के बाद और दूसरा प्रोग्राम लगेगा। जी जी जी जी,
2: कोई बात नहीं, धन्यवाद। जी बात हो गई, वो काफी
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। हम यही चाहते कि ईश्वर से ही प्रार्थना करते कि आपको स्वस्थ रहे, सदा ही मस्त रहे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यही बता रहे थे कि आबू में जो ज्ञान सरोवर में सम्मेलन चल रहा है, तो प्रभाग के उपाध्यक्ष न्यायाधीश बीडी राठी ने भी कहा कि आध्यात्मिकता मन बुद्धि संस्कार को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कर देती है। और राष्ट्रीय संयोजिका बी के ललिता दीदी ने भी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक जीवन संतुलन के बारे में भी जोर दिया। तो इसी प्रकार से माउंट आबू की दूसरी खबर हम बताना चाहेंगे कि जो माउंट आबू का नाम अभी अभिराज करने की मांग उठाई, जिन्होंने भी उठाई, उनका भी जो महंत प्रतापपुरी महाराज है नीलकंठ महादेव मंदिर में उनका भी सम्मान किया गया है। जी हाँ, तो उनका भी सम्मान किया गया। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अभी वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग अबू को या ही पूरा करने के। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको सुनाना चाहेंगे ताज़ा खबरें जो समाचार प्रभात हैं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रूपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रूपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रूपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
6: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा इनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
3: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
7: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
3: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
8: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमरीका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की

0: भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमा के राष्ट्रपति उमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर के झा कृष्णकांत झा हमारे साथ उपस्थित हैं। आप होम्योपैथ हैं और योगा कोच है और वेलनेस ट्रेनर भी हैं। आप जगह जगह लोगों को जो है अवेयर करते रहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहकर स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और आपका सपना है कि सभी लोग जो हैं अब बिल्कुल स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ आप सबके साथ जुड़ते हैं। और आपने कुछ नए टेक्निक्स भी यूज किए हैं अपने लाइफ में, जैसे सिटिंग भुजंगासन, ये सारी चीजें जो है बहुत ही सिंपल और आसानी से आप 5 या 15 मिनट के बीच में कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सरसाइज, कुछ लाइफस्टाइल के सुंदर एक्टिविटीज आप लोगों से करवाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके ये छोटे छोटे टिप्स जो है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर जो है अवसर प्रदान करता है हेल्दी रहने का। और योगा से या जो आपके नएतम टेक्निक्स आपने बताए हैं उससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए आज हम लोग उनसे जुड़ने वाले हैं डॉक्टर के झा जी से। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
1: नमस्ते। ओम शांति
0: जी। डॉक्टर के झा

0: अब जो है कल एक बहुत ही सुंदर जो है खास इस बात पे काम करने वाले हैं, जैसे कि नो टोबैको डे 31 मई को हम लोग मनाते हैं, तो तंबाकू मुक्त भारत का विजन लेकर वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पश्चिम विहार में आयोजित किया है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप पहले। जी
1: बेसिकली कल 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो मेनली मेरा मेन एम है कि बीमारी मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मोटिव लेके मैं चल रहा हूँ, और कल इसका एक स्टार्ट कह सकते हैं, जिसको कि फुल फ्लेज रूप में लोगों में अवेयरनेस बढ़े तंबाकू निषेध के प्रति, भी बच्चों में जागरूकता। स्कूल्स में मैं कैंप्स करते रहता हूँ, उस पार्क, बहुत बड़ा पार्क है पश्चिम बिहार का, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, और उसमें अपने काफी सारे लोगों ने उसमें आने का रखा हुआ है। मुझे लगता है 100 से 150 से ज्यादा ही लोग आएंगे। तो मेन मेरा एजिंग पे रिसर्च है, मैं 10 से 20 से 30 साल रिवर्स की बात कहता हूँ, और रूट कॉज को मैं कहता हूँ कि अगर आप समझ लेंगे बीमारी के कारण को, अगर आप समझ लेंगे तो बीमारियों से मुक्त हो सकते। इसी धारणा को लेकर मैं चल रहा हूँ कि भारत बीमारी मुक्त बने। मेरा जो एनजीओ है जिसका नाम है विप, मैं कहता हूँ कि अपना देश बीमारी मुक्त बने, ये हमारे एनजीओ का नारा है। और इसके लिए प्रति मंथ हम लोग कहीं ना कहीं कैंप करते ही रहते हैं। अब ये इवेंट अभी कर रहे हैं, इसके बाद अगले मंथ में कहीं और इवेंट करेंगे। तो मेरा कहना है कि रूट कॉज जो है अपना पोस्चर, अगर पीठ की स्टिफनेस का केयर कर लिया जाए, पोस्चर
0: जी
1: का ध्यान रखें और फूड का ध्यान रखें, तो हम लोग लाइफ टाइम यंग रह सकते हैं, फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। और वही
0: बिल्कुल
1: आसान, मन करता है ये खा लो ये पी लें और वर्कआउट नहीं होता, उसके लिए मेरा वही आग्रह है। और जहां तक मुझे याद है कि पिछले साल, कितना, 2 साल पहले या 3 साल पहले आपके चैनल पे ही आपने मुझे मौका दिया था, जिसमें सिटिंग भुजंगासन मैंने बताया था और कुछ सिंपल चीजें मैंने बताई थी।
0: जी।
1: तो
0: डॉक्टर के जहाँ बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे आप जो है इस अभियान को लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो है जागरूक भी है और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आप इवेंट करते रहते हैं। तो कल का इवेंट खास हेल्दी रहे, सबके सबका हेल्थ अच्छा रहे, इस भाव से आप कर रहे हैं। तो नो टोबैको डे को लेकर आप जो है तंबाकू निषेध को लेकर इस तरह से काम करना चाहते हैं, क्या तंबाकू के सेवन या नशे की जो चीजें सेवन करते हैं उन लोगों को आप क्या सजेशन देते हैं, क्या बात बताते हैं? जी
1: इसमें मुख्य रूप से तो जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें, उनको मेरा कहना है कि अगर आप चाह लेंगे कि मुझे ये छोड़ना है, ये संकल्प अगर बनाएंगे, तो योग में ये दम है, ध्यान और प्राणायाम में ये दम है कि वो धीरे धीरे आपका स्ट्रांग हो जाएगा विल पावर और हो जाएगा। साथ में वही, उसी के लिए कल का वो जो इवेंट है उसमें वही सारी चीजें मैं रखूंगा। लेकिन ऐसे समाज के ऐसे वर्ग, खास करके युवा पीढ़ी, बच्चे, जो कि अभी इन चीजों के उसमें आए नहीं हैं, आगे संभावना उनकी बन सकती है, उसके लिए मेरा अवेयरनेस का है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि तंबाकू से जो कैंसर या बाकी और दूसरी कठिन बीमारियां हो रही हैं, उसको अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो, तो वो अभी से आप मन को स्ट्रांग रखें कि ऐसी चीजों से, ऐसे सत्संग से, मतलब ऐसे लोगों से जो आपका मिलना जुलना है, उससे दूर रहें। और योग एंड प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके साथ उन चीजों से बचाव होगा। तो स्कूल्स में, कॉलेज में, डिफरेंट लोकेशंस में मैं ये कैंपेनिंग ऐसे भी करते रहता हूँ कि योग का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपका मन का स्ट्रांगनेस बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत ऐसी चीजें आपसे दूर रहेंगी। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जिस संगत में आप रहेंगे वो धीरे धीरे वो संगत आपके बिहेवियर में असर आएगा, फिर आपको लगेगा भाई चलो ठीक है एक आध बार से क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आता जाएगा।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारे जीवन में जो है नशा आता है इसके बारे में आपने बताया। निश्चित तौर पे हमें संकल्प करना होगा कि कैसे हम इससे दूर रहें और इससे मुक्त हो जाएं। तो आइए इस पर, जैसे कोई बंदा है जिसको नशे की लत लगी है, हम उसको कैसे छुड़ाएं, क्या बताएं हम उसको?
1: मुख्य रूप से मैं इसमें कहता हूं कि ध्यान और प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क को स्ट्रांग कर देगा। बेसिकली श्वास का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है अपने लाइफ में, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने मन के लिए। कहा जाता है कि मन और श्वास का, विचारों मतलब आपके मन और श्वास का आपस में कोरिलेशन है। जब आप श्वास पे ध्यान देने लगते हैं, श्वास गहरा होता है तो ऑटोमेटिकली मन शांत होता है, और मन शांत होगा तो चीज़ें, जो विचार आपकी कई सारी चीज़ें आ रही हैं, रुक जाएंगी, और उसकी वजह से जो भी ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू तो एक गंभीर चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है कि आहार में ही, खाने पीने में ही कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में नुकसान करती हैं, जो लोग योग का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे उनके वो प्रैक्टिस में हट जाता है। मैंने जैसे थायराइड की बीमारियाँ के लिए जो दवाई स्टार्ट होना था फिर मैंने कराया, तो मेन मेडिटेशन करने से, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जब आप करेंगे तो आपका मन का स्ट्रांगनेस, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन मजबूत होगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इसमें सिंपल प्राणायाम, अपना मैं एक सरल श्वसन की बात कहता हूँ कि अपना श्वास को फील कीजिए उतरता हुआ, आप देख रहे हैं 10 सेकंड में श्वास आपका भीतर आया, और एकदम निकालेंगे धीरे धीरे 20 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में श्वास खींचना और 20 सेकंड में श्वास निकालना। अगर आप ये अभ्यास करने का प्रयास करने लग जाएंगे 5 मिनट के लिए सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके विचारों में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको इस अभ्यास को नियमित करना है कि अपने सामान्य श्वास को देखें, फिर उसी के साथ अनुलोम विलोम, धीरे धीरे गहरा श्वास, धीरे मतलब श्वास की आवाज खुद को भी ना सुनाई दे, लेकिन बहुत कठिन है। जनरली ज्यादातर लोगों को जो मैं कराता हूं तो लोग एक तो 3 से 4 सेकंड में श्वास भरते हैं और ये आवाज के साथ करते हैं। मेरा कहना है नहीं, इसको आप कोशिश कीजिए 10 से 15 सेकंड में श्वास खींचना और 10 से 12 सेकंड सही, और 15 से 20 सेकंड में निकालिए, फिर बाद में 30 सेकंड में निकालिए। तो धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जब क्रम में आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्लीन होने लगेगा, आपका मन स्ट्रांग होने लगेगा, तो चीजें बदलने लगेगी। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, नॉर्मल मैं फिर से नॉर्मल लोग करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा जब उसको लोग देख के करेंगे। ये ज्यादातर लोग करते हैं, इसको इम्प्रूव कर लिया ये तरीका को, इससे फायदा मिलेगा। अब जो मैं कहता हूँ वो तरीका देखा जाए।
2: सुबह इनकम से।
1: ये बहुत कठिन है, मन इतनी देर के लिए श्वास गहरा खींचने का अभ्यास बन ही नहीं पाता। मतलब लोगों को होता है कि हड़बड़ी में कर लो, मतलब एक खाना पूर्ति के रूप में लोग मामली करते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप ये 5 मिनट के लिए से 10 मिनट के लिए अगर करने लग जाएंगे तो आपके हार्मोन्स का, आपके मनोमस्तिष्क का, आपके विचारों में शक्ति आएगी, आप जो चाहेंगे होगा। आप चाह लेंगे कि मुझे मेरा थायराइड ठीक हो, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाए, जो भी चाहेंगे धीरे धीरे चीज स्थिति वो बन जाएगी। लेकिन वो संकल्प जब आप ये बनाएंगे कि मुझे आजीवन स्वस्थ रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार में लोगों को स्वास्थ्य के लिए जगाना है और हम जिसको जानते हैं उसको भी अवेयर करें, तो ये इस अभियान में मैं चाहता हूं कि समाज के सभी लोग मेरे साथ जुड़े, एज एम्बेसडर बने बीमारी मुक्त भारत अभियान पे, जो मैं आगे इस स्लोगन को बढ़ा रहा हूं, इसमें मैं चाहूंगा कि सभी भारत के देश के लोग, सभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप को पहला संकल्प अपना कि मुझे अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रखना है। उसके लिए आप आहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकें, अपने मन को स्ट्रांग करके जब आप करेंगे तो आहार में रात का खाना हल्का कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठा आप खाते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा कम कर देने
0: की,
1: मिलावट है तो और मिलावटी चीजें कहीं ना कहीं लीवर किडनी पे इफेक्ट करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आहार को परिवर्तन कर लेंगे, योग एंड प्राणायाम का अभ्यास एंड उसके साथ थोड़ा सा वॉक में, ब्रिस्क वॉक या रनिंग, तो कल जो मेरा प्रोग्राम है उसमें 1.5-2 किलोमीटर, मतलब 1-3 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, उसके बाद जुम्बा डांस होगा, उसके बाद मेरे सेशन होंगे जिसमें कि मैं ये सब चीजें जो प्रैक्टिस कराता हूँ वो कराऊंगा। उसमें कई सारी चीजें, वार्म अप एक्सरसाइज से लेकर सूक्ष्म क्रियाएं होंगी जिसमें मेरा जोर रहेगा, प्लस प्राणायाम ध्यान का। तो मेरा ये आग्रह है कि जो लोग जहां भी हैं, अगर जो दिल्ली NCR में है, उस कल का इस कार्यक्रम में आकर के सुबह बढ़ाएं, मेरे साथ संकल्प लें, प्लस जो जहां है कल कम से कम इस आपके चैनल पे भी लाइव रहेगा, मेरे चैनल पे भी लाइव रहेगा, तो उस जगह पे अपने आप को इससे जोड़े, इससे जुड़ करके इस सब संकल्प को आगे बढ़ाएं।
0: जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे हम जो है नशे से मुक्त रह सकते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में आपने कुछ बातें और कुछ टेक्निकल टिप्स भी बताया, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, कैसे श्वास लेना है, कैसे श्वास छोड़ना है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो अनुलोम विलोम की तरह आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और विधिवत अगर आप अभियान में जुड़ते हैं तो तब आप म्यूजिक के साथ लोगों के साथ मिल के करते हैं तो एक एनर्जी मिल जाती है और आप लंबा समय तक उसे कर सकते हैं। तो शुरू में ये योग जो है, ये प्राणायाम जो भी है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो इंडिविजुअल ना करके ग्रुप में शुरू करें, रेगुलर करें, और कुछ समय के बाद फिर आप इंडिविजुअल करेंगे तो शायद वो चीज़ें अच्छी रहेगी, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये रेगुलरिटी जो है इसमें ज़्यादा देखी गई है, रेगुलर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर KK झा जी बता रहे थे, खाना पीना उसके पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रात का खाना आपको ठीक से समझ के खाना है, और थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन भी अति आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, नशे से मुक्त होने के लिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के नशा केंद्र होते हैं जहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है और उनको फिर ट्रीट किया जाता है, वहाँ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं फिर से वो वापस उसी संघ में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नशा केंद्र होते हुए भी नशा मुक्ति का ये अभियान फेलियर लगता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी,
1: मैंने ही देखा है कि चूंकि मैंने नशा उन्मूलन केंद्र पे आज से तकरीबन मुझे लगता है कि लगभग 30 साल पहले मैंने काम किया है, वाराणसी में एक नशा उन्मूलन केंद्र है जहाँ की मैंने अपने शुरुआती मतलब समय में मैं कुछ समय तक वहां पे मैं जुड़ा था, वहां पे मैं अभ्यास करा रहा था, कुछ स्कूल्स में बनारस में कुछ स्कूल्स में मैं कराता रहा, एक आध मेडिकल सेंटर पे मैं रहा, तो वो अनुभव मेरे साथ है, मेरे पास वो अनुभव है कैसे लोग ठीक होकर के चले जाते थे, बाद में कुछ लोग वापस आते, तो उसमें मैंने वही देखा कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसके कारण फिर से उन्होंने शुरू किया। लेकिन ज्यादातर लोगों का उनके संगति के कारण कि पुराने लोगों के साथ फिर से उठना बैठना हुआ, तो वो फिर उसके कहने पे या फिर मन, चूंकि मन का मेन मैंने कहना मेरा देखा हुआ है कि मन स्ट्रांग होगा तो चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसने ऐसे भी बाद में आके मेरे से मिले कि नहीं गुरु जी मैं बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बाद से एकदम नहीं हाथ लगाया। हाँ वो लोग कभी कभी मिलते हैं तो कोशिश करता हूँ उनसे दूरी बना के रखूं और अपना ध्यान परिवार पे या कुछ जो अपने काम पे मैं दे रहा हूं, तो मेरा मतलब 50% या 60-70% ऐसे भी लोग मुझे मिलते रहे। लेकिन कुछ लोग वापस फिर उसी चक्र में, तो वो संगति का, लेकिन मेरा भाई कहना है कि संगति के साथ, संगति को उस छोड़ा जाए साथ में, मतलब सत्संग बनाया जाए, मतलब अब कुछ ना कुछ इसमें अध्यात्म लोगों से मिलना, आप किसी मंदिर से जुड़ जाएं, मंदिर में भजन कीर्तन में आप शामिल हों, और जब आप किसी एक चीज से कनेक्ट होंगे, किसी भी एक अच्छी वातावरण या माहौल में होंगे, ऑटोमेटिकली आपके मन में आपके विचारों में शांति आएगी, आपका मन स्ट्रांग होगा और कुछ ब्लेसिंग परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है, उसका लाभ अलग से मिलता है। तो ये जरूरी है कि संगति प्लस मन में विचारों में थॉट, तो जहां भी नशामूलन केंद्र है वहां पे जनरली कराया तो जाता ही, लेकिन फोकस उस समय किया जाए कि नहीं हमें इसको बिल्कुल मतलब संकल्पित कि अगला जीवन हमें इस नशा से मुक्त रहना, तब वो पॉसिबल।
0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर के झा जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को, दर्शकों को इस बात पे थोड़ा सा जोर देना है कि अगर आपके घर में आप नहीं करते हैं, आपके परिवार में कोई है जो इस तरह का नशा करता है, तो उन्हें नशा उन्मूलन केंद्र के बाद नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ना जरूर चाहिए। जोड़ने के बाद फिर उन्हें अपने ही संघ में रखना जरूरी है। जैसे ही संघ हम दूसरा कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं तो वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर जा ने बताया कि आपको अध्यात्म से भी जुड़ जाना चाहिए, जिससे जो है हमारा मन को शक्ति मिलेगा, और मन शक्तिशाली है तो फिर आप नशे के अधीन नहीं होंगे। यहाँ पर एक सवाल आया, सिगरेट पीना हानिकारक है ये मालूम होते हुए भी लोग क्यों पीते हैं, क्या कारण?
1: कारण वही तनाव है, टेंशन। कोई किसी प्रकार का जब दिमाग में टेंशन आता है तो नशा तो छोड़िए तंबाकू या सिगरेट, लेकिन कुछ लोगों को आप देखिएगा जो टेंशन में आते हैं नाखून खाते रहते हैं, या कुछ लोग हैं पेंसिल ही लेकर के, जनरली लोगों को आप देखिएगा, और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, काफी सीनियर पोजिशन में बैठे लोगों को मैंने देखा है कि पेंसिल या मेरे साथ एक संपर्क में एक बड़ी कंपनी में मैं कंसल्टेंट जाता रहा, वहां पे सीनियर मोस्ट अधिकारी, उनका मतलब उनकी आदत थी कि वो हमेशा ऐसे, तो बोले कि बचपन में थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो मैं अपने नाखूनों को उंगलियों को मैं, और वो उंगली खा लेते, मतलब स्किन को काट के खाने लगे। और मुश्किल से 2 साल के बाद, मतलब मेरे ख्याल से 53-54 के एज में उनका किडनी का या कुछ इशू हुआ, नहीं रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये टेंशन के कारण, तनाव के कारण इस तरह की चीजें आती हैं, तो उस तनाव के लिए योग से बढ़ के कुछ नहीं है। और प्रभु पे जब आपकी श्रद्धा होगी, आप जिसको मानते हो उस पे जब आपका भरोसा होगा, ऑटोमेटिकली मन शांत होने लगेगा। टेंशन लाइफ में, मनुष्य जीवन तनाव से भरा हुआ ही है, लेकिन उस तनाव को बैलेंस करने के लिए अगर आप किसी भी एक उसका सहारा लेंगे, प्रभु का सहारा लिया जाए, मेडिटेशन योग ध्यान का सहारा लिया जाए, तो उस चीज से आपका बचाव रहेगा।
0: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि तनाव के कारण लोग सिगरेट पीते हैं, ये आपने बताया। और किसी भी तरह का तनाव आता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाना या पीना शुरू कर देता है, ये भी अब देखा गया है। और जैसे उंगलियों के नाखून खाना या फिर स्किन को ये करना,
1: अभी मैं एक अभियान पे और काम कर रहा हूँ कि जो बच्चे छोटी उम्र, मतलब जो 2 महीने, मतलब 6 महीने तक के बच्चों को मैं कहता हूँ छोड़ दिया जाए, 6 महीने से ऊपर के बच्चे जो नाखून या मुंगल, मतलब छोटे बच्चों का आप देखिएगा जनरली के मुंह में अंगूठा लेके, या कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि पैर के अंगूठे को लेके चूसते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ कभी ऐसा कहीं देखा हो आपने? मुझे तो याद है, मैं देखते रहता हूँ पैर के नाखून, पैर का अंगूठा हाथ से पकड़ के वो चूसते रहते हैं। तो ये 6 महीने तक को उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन 6 महीने के बाद के बच्चे जो नाखून या उंगली मुंह में लेके चूसते हैं, मेरा सिंपल कहना है सभी अभिभावकों से, सभी गार्जियन से मेरा आग्रह है।

0: जो भी ये वीडियो देखें वो लोग इस चीज को जरूर प्रमोट करें कि नीम के पत्ते, नीम का पत्ता या आंवला, आंवले को कस करके या नीम के पत्ते को पूरा घस पेस्ट बना के उसका रस निकाल के उस बच्चा जो जो उंगली चूस रहा है या जो अंगूठा चूस रहा है उस पे लगा दिया जाए। और आंवला भी कर सकते हैं, आंवले से भी होगा, नींबू से भी हो सकता है, नींबू का रस हो जाए, आंवले का रस हो जाए, नीम का पत्ता, तो उसको लगेगा कसेला, वो अपने आप छोड़ देगा। तो दो चार दिन, दो चार बार, 10 बार के बाद वो बच्चा आगे जीवन में कभी मुंह में उंगली नहीं डालेगा, कुछ खाने की आदत उसकी नहीं होगी। बचपन की ये आदत, नाखून खाना, ये मैंने देखा है। आप स्कूल में, मैं चूंकि कैंप्स करते रहता हूँ, आपके साथ भी कुछ एक स्कूल्स में गया हूँ जहां तक आप भी याद करें, कि कुछ बच्चे जनरली नाखून या उंगली चबाते रहते हैं। बड़े बड़े गार्जियंस को मैं कई बार जब बड़े लोगों के साथ होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, उनको भी देखता हूँ, कुछ लोगों की का नाखून या फिंगर मुंह में ही होता है। ये बहुत अनहाइजीन है, बहुत खतरनाक है, आपका इम्यूनिटी को लो करने में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा ये अभियान भी, मतलब मैं बीमारी मुक्त भारत अभियान के साथ ये 2-3 पॉइंट्स पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ कि लोग छोटे बच्चों को उस तरीके से टैकल करें, नींबू का रस लगा दें, नीम का पत्ते का रस लगा दें, आंवले का रस निकाल के लगा दें, तो वो आदत ही छूट जाएगी। और जब ये चीजें हुई, और बचपन से ही मेरा आग्रह है कि बचपन से ही बच्चों को आप योग के अभ्यास से जोड़ें, खुद भी मेडिटेशन करें, कहीं मंदिरों में जाके थोड़ा सा, जनरली मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो कहीं भी जाकर के अध्यात्म से जुड़ते हैं वो नशा के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। 1-2% की बात होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है शायद वो नहीं के बराबर, मोर देन 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो इन चीजों से दूर रहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, उनमें ये प्रवृत्ति बनती है। तो इसके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं किसी जगह से, केंद्र से संपर्क में रहें, किसी मंदिर से आप जुड़ें, आप जाकर के वहां पे सप्ताह में 1-2 बार जाकर के आप समय दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोई मंत्र का जाप करें, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, और उन मंत्रों में वो शक्ति है, उस जगह पे वो ऊर्जा होती है जो कि आपको सपोर्ट करती है, उसका लाभ मिलता है, अपने पूरे जीवन में उसका लाभ मिलता है, समस्याएं थोड़ी कम महसूस होती है, मन स्ट्रांग है, तो समय अच्छा भी आता है, खराब भी आता है। और ये मैं इसको एक रूप से जो मैं समझता हूं, जीवन परीक्षा की घड़ी है, लाइफ टाइम हम एग्जामिनेशन में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो भी और खराब होता है, दोनों परीक्षा है।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: हुआ पता चला कि बहुत आपके पास सुख है, बहुत ज्यादा फंड है, बहुत पैसा है, आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव चीजों में आपका दिमाग जाएगा, ये कर लो, ये कर लो, और समस्या बढ़ती है, वो भी परीक्षा है। तो कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, ये योग का अभ्यास या ये प्रभु में ये भक्ति से ये चीजें संभव है, तो वो जब ये चीज लोगों को जानकारी मिलेगी तभी वो अपने आप को उन चीजों से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा आपने सोचा है, और लोगों के लिए आप जो है हमेशा कुछ अच्छी बातें सोच कर ही उनके लिए काम करते हैं, और हेल्थ को लेकर आप काफी अवेयर हैं, और अध्यात्म से कैसे जुड़े हैं थोड़ा सा आपका अध्यात्म के बारे में भी बताइए, और अध्यात्म से कैसे जुड़े लोग इसके बारे में भी बताइए। जी
0: मैं अपना उदाहरण देता हूँ, बचपन से मैं पिताजी का, माता जी का कह सकते हैं कि वो देख करके, या घर परिवार में हम लोग यहाँ थे, वो मंदिर है उस जगह पे, तो बचपन से मेरा इन चीजों पे ध्यान विशेष रहा। बचपन से ही कुछ मंत्र हैं, दुर्गा सप्तशती के और महामृत्युंजय मंत्र, वो बचपन से ही मुझे याद हो गए थे। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, मैं बचपन में ही ये मंत्र याद, वो पढ़ते पढ़ते याद हो गया था। 32 दुर्गा सती सप्तशती में 32 मंत्रों का एक है जो कहते हैं कि रक्षा करता है, तो टाइम लगेगा लेकिन मैं फिर भी, आप कहेंगे तो मैं बोल के सुना सकता हूँ।
1: जी जी सुनाइए।
0: हाँ, अथ दुर्गा द्वात्रसन माला, तो दुर्गा, दुर्गा समनी, दुर्गा पधिनिवारनी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तोद्धारनी, दुर्ग निहंत्रणी, दुर्ग मापहा, दुर्ग ज्ञानदा, दुर्ग दैत लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिनी, दुर्गमा सुरसहंत्रिनी, दुर्गमायुधारनी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा, दुर्गदारनी, नाम मिमलाम स्तो दुर्गा मनमान पठित सर्वमुक्तो भविष्यति न संशय। मतलब कि हे माँ दुर्गा, आप सारे संकटों से, सारे भयों से हमें बचाइए। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जाप किया है मैंने। लेकिन एक दूसरा मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये एक नवारण मंत्र है। ये बचपन से ही मैं जाप करता था और मुझे लगता है जो भी मैं कुछ अभी कर रहा हूँ ये सब उन परमात्मा का ब्लेसिंग है जिसके बिहाफ ये सब चीजों में मैं आगे बढ़ा। बचपन में मैंने वो समय भी देखा जब 9th और 8th 9th क्लास में कैसे नशा शुरू होता है, कैसे लोग नशा के प्रति जाते हैं, वो भी चीज देखा। तभी मैं कहता हूँ ये संगत के कारण है। उस संगति से बच्चों को अगर आप बचाएंगे, बच्चों को अध्यात्म से, बच्चों को किसी चीज से कनेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उन चीजों से बचा रहेगा।
1: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे मंत्रों से जुड़कर भी आप अध्यात्म शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और कितना टाइम करना चाहिए ये थोड़ा सा बताइए, समय को कैसे हम लोग दें?
0: प्राणायाम अभ्यास के लिए तो मैं कहता हूँ कि 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम भी अगर आप सुबह शाम दो बार देने लग जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपका आत्मबल बढ़ने लग जाएगा। बेसिकली होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट चक्राज हैं, 7 चक्र हैं शरीर में, उनकी हीलिंग होती है। तो वो एक दो दिन में, एक आध दो साल में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका प्राणायाम का अभ्यास होगा। नॉर्मल अभी क्या है कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है हम उसका 30% से ज्यादा इनहेल नहीं करते। ऑन एवरेज देखा गया है, ऑन एवरेज हमारा जो ब्रीदिंग होता है 16 काउंटिंग है एक मिनट में। लेकिन मैंने जो वॉच किया है, मैं लोगों से जब कनेक्ट करता हूं तो एक मिनट में 20 एंड 22 एंड 25 भी लोगों का मैंने एक मिनट में सांस की गिनती देखी है। ये कोशिश होनी चाहिए 10 से नीचे। आप जैसे ही अभ्यास आप करने लग जाएंगे, श्वास की गहराई ज्यादा होगी, काउंटिंग कम होने लगी। और श्वास की काउंटिंग कम हुई, इसका मतलब श्वास गहरा आया, टॉक्सिन्स जो है भीतर ज्यादा निकलेगा, तो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटॉक्स होगा, सिस्टम ऑक्सीजन का इंटेक आपके सिस्टम को एनहांस करेगा। लेकिन श्वास और मन का आपस में कोरिलेशन है जो मैंने शुरू में बताया। तो जब आपका श्वास गहरा होगा तो मन अपने आप शांत होने लग जाएगा, मन मजबूत होने लग जाएगा, मन आपका स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों से आप बचाव हो जाएगा, आपकी चीजें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो 10 से 15 मिनट का टाइम आप इसमें तीन चीजें, मतलब सिंपल सरल श्वसन किया जाए, आराम से अपने श्वास को पेट तक आता हुआ श्वास को फील करें, पेट पूरा फूलेगा। लोग नॉर्मली श्वास लेके चेस्ट को फुलाते हैं, श्वास आप नेचुरल आप देखिए, समझिए छोटे बच्चे को आप देखिए सोते हुए, वो श्वास लेता है पेट फूलता है, श्वास निकालता है पेट पचकता है। मोर देन 50-70% लोगों का ऐसा है, लेकिन 20-30% लोगों का ब्लड बदल जाता है, मतलब श्वास लेते हैं छाती फूलती है, चेस्ट फूलता है, तो वो स्टमक डायफ्राम तक ब्रीदिंग जानी चाहिए नीचे लो एब्डोमेन तक, तो वहां का सिस्टम फिर एडवांस कह सकते हैं कि मजबूत होता है। ऑक्सीजन इज अ प्योर एनर्जी, ऑक्सीजन पेट तक आकर के पूरे सिस्टम को और जो टॉक्सिन से पूरा सिस्टम जो से बाहर निकलेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम की ताकत, सिस्टम की क्षमता आपकी बढ़ेगी।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम और थोड़ा मंत्रों का उच्चार करने से हमारा जो है हेल्थ अच्छा रह सकता है। और मन को कैसे हम लोग शांत रखें, मन में ज्यादा जो है हलचल ना हो, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे?
0: इसमें मेन प्राणायाम, कोई मंत्र का जाप, लेकिन साथ में अभी गर्मियां जैसे हैं तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते हैं।
1: जी
0: गहरा श्वास मुंह से खींचना है, पेट तक आपको कूलिंग फील होगा, पेट तक आपको महसूस होगा ठंडक। ये मन को शांत करने में भी हेल्प करता है, ये पेट की गर्मी आपकी कम करेगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से आपको मदद मिलेगी, बीपी के लिए हेल्प करेगा।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि होम्योपैथी का आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा मेडिसिन है जिसको लेकर लोग नशे से मुक्त हो सकते हैं?
0: है, कुछ दवाइयां हैं जो कि हेल्प करती हैं, बट वो मैं चाहूंगा कि ऐसे बताने से अच्छा है कि लोग आकर के मिलें तो वो, या किसी हमें अच्छे होम्योपैथी कंसल्टेंट से जाकर के मिल के दवाई लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने एरिया में कहीं ना कहीं अच्छे होम्योपैथी कंसल्टेंट हैं, वहां जाके आप दवाई लें। लेकिन एक या दो सिंपल मेडिसिन मैं बता देता हूँ, वो अगर लेंगे तो आपका पूरा मन शांत होना, स्ट्रेस रिलीविंग करता है। एक नक्स वोमिका 200 पोटेंशियल मेडिसिन है, में अगर ले लिया जाए तो आपका स्ट्रेस रिलीविंग होगा और एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है, मदद करता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नशा उन्मूलन के लिए मैं चाहूंगा कि लोग मेरे से आकर के यहाँ मिल सकते हैं। मेरा क्लिनिक है रमेश नगर में, E353 नियर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास का एरिया है। अदरवाइज अपने जो जहां है अपने एरिया में अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं और वहां जाकर के आप बात करके मेडिसिन लेंगे तो वो ज्यादा अनुकूल रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन साथ में जो मैं ये कहता हूँ, चूंकि एजिंग पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये सिटिंग गोइंग आसन जो मैं कहता हूँ जादू है, ये अगर हैबिट में रहा तो पूरा जीवन आजीवन आप स्वस्थ रह सकते हैं। आराम से बहुत ही गहरा श्वास लंबा भरते हुए, बॉडी का आर्च होना चाहिए बैकबोन का ऐसे। नॉर्मल में हम लोग मतलब एजिंग में कहता हूँ, एजिंग पे ही मैंने रिसर्च किया है, एजिंग को ही मैं कहता हूं कि अगर आप समझ लेंगे कैसे बढ़ रहा है बीमारी मुक्त अभियान में, मैं सिंपल दो चीज कहता हूं, पीठ का पोस्चर को ठीक रखिए और आहार को ठीक करने का प्रयास कीजिए, आप अगला जो भी जीवन है स्वस्थ बीतेगा। मन को शांत रखेंगे, बाहर की चीजें खाने पीने का अवॉइड करेंगे, मन आपका शांत होगा, क्योंकि बाहर के फूड के कारण, बाहर से जो रसोई बन के आती है उस वो जिस भाव से बनाया जाता है वो भाव उस में आता है, जिसके कारण मन आपका और अशांत होता है, बीमारियां और बढ़ती हैं, तो उसको त्यागा जाए। मन शांत रखने के लिए योग प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन इस अभ्यास को भी जब आप करते हैं धीरे धीरे, सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग मैंने इसका नाम रखा है, या इसको स्टैंडिंग भुजंगासन भी कर सकते हैं, ये थायराइड लंग्स एंड हार्ट एंड बैकबोन, ये रिवर्स एजिंग की बात मैं कहता हूं, 10 से 20 से 30 साल रिवर्स की बात मैं कहता हूं। तो पीठ की जकड़न अगर आपने बढ़ने से रोक लिया और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत इंक्रीज कर लेंगे, नर्व्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यंग रहेंगे और किसी भी उम्र में है आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वो जब आपका मन में भीतर से संकल्प होगा तब आप उसको अचीव कर पाएंगे।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया, एजिंग को लेकर आप काम कर रहे हैं और सिटिंग भुजंग आसन ये आपका अपना जो है क्रिएटिव आसन है जिसको आप प्रयोग करते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें और खुशी हुई। और होम्योपैथी कितना दिन लेना चाहिए या कंसल्टेशन बहुत जरूरी है उसमें, तो थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल बताइए ताकि वो
0: बेसिकली वो बिना अपने मन से, तो कोई भी मेडिसिन कोई भी दवा अपने मन से बहुत लोग लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी या आयुर्वेद, उसकी आपकी प्रॉपर जो उसके एक्सपर्ट हैं उससे बात करके लेने पे आपको लाभ अधिक मिल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सालों तक कोई दवा लेते रहते हैं, बाद में उसका असर ही खत्म हो जाता है, फिर समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो अपने मन से कोई दवा शुरू नहीं करें, अपने मन से कोई दवा बंद भी नहीं करें। हाँ, होम्योपैथी की कोई दवा है तो उसका जैसे कि 1 महीने 2 महीने का उसका कोर्स है किया, उसके बाद फिर उसमें पोटेंसी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है या उसको दवा को चेंज करने का,
1: काम करने का।
0: हाँ, बेसिकली उसमें नहीं, उसमें पोटेंसी शुरू में बढ़ाने पड़ता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें वो व्यवस्थित होती हैं, फिर ठीक हो जाती। लेकिन एलोपैथी का है कि वो दवाई फिर रेगुलर चलते हैं, होम्योपैथी कुछ दिन चलने का चीजें काबू में आके आप दवाई बंद कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी यही है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रूटीन को ठीक नहीं करेंगे, आपके फूड हैबिट, अपने मन को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे तो दवाइयां आपको लगातार खानी पड़ेगी, समस्याएं ठीक नहीं होंगी। हाँ, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जो फास्ट बढ़ रहा थोड़ा स्लो होगा, लेकिन मैं रिवर्स की बात कहता हूँ, तो मेरी जो टेक्निक्स हैं उसको समझ लेंगे लोग, उसको फॉलो करेंगे तो मैं रिवर्सल एजिंग की बात कहता हूँ, बीमारी मुक्त भारत का अभियान जो मेरा ये संकल्प है इस पे लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसमें सभी लोग मेरे इस संकल्प में जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं।
1: क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि आप पिछले काफी लंबे समय से लोगों को नशा मुक्त भी करा रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट बताइए जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सट्रीम हो और उन लोगों ने आपकी कंसल्टेंसी में कुछ मेडिसिन और कुछ योग किया तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है और अब वो नशे से मुक्त हैं, ऐसे कुछ एक हाथ एक्सट्रीम वाला एग्जांपल सुनाइए।
0: कई सारे ऐसे लोग जैसे कि गुटखा खाने के और कुछ स्मोक वाले लोग धीरे धीरे करके, एक दिन में ऐसा हुआ नहीं हुआ मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ संपर्क में रहे हैं, उनको मैं मोटिवेट करते रहा, कोई मंत्र का दिया, ये मंत्र आप करेंगे धीरे धीरे, और 2 महीने 3 महीने में उनमें जो चेंज आया, कुछ एक ऐसे मित्र रहे मेरे। कुछ लोगों का एक चीज में मैंने और देखा, ये जब आपका समय विपरीत होता है कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो फिर अपने कुछ ऐसी चीजों के अपने हैबिट के कारण भी होता है, तो अगर आपकी आदत है कुछ ऐसी चीजें खान पान में जो कि प्रभु पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव आपका विचार में फिर वो चीजें आएंगी, आपका वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और दूसरा, अगर आपके मुंह से अपशब्द निकलता है, आप बार बार हरेक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते रहते हैं जो एक दो तीन सेंटेंस में उनकी कोई ना कोई गाली होती है, कुछ ना कुछ वो अपशब्द बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे नुकसान करता है। वो नेगेटिव एनर्जी कुछ ना कुछ आपके पहले तो आपके और आपका आभा मंडल जो उस पर आकर के इफेक्ट करता है, फिर वो आपके कहीं ना कहीं अदर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो मेरा मन मतलब मेरा कहना है कि मन को जब स्ट्रांग कर लेंगे ऑटोमेटिकली किसी के प्रति मन में आपके गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो आपका उसके प्रति कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। तो जब और ये तब पॉसिबल है जब कि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप गीता जी का श्रवण गीता जी का पाठन करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके विचारों में आपके और वो योग ध्यान और ये तमाम चीजों के साथ कनेक्शन के साथ ही संभव है, ऐसे किसी एक चीज से नहीं हो सकता।
1: जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपके संपर्क में आने से उनको थोड़ा टाइम लगता है। आपने कहा कि इसमें पेशेंस की बात होती है और धीरे धीरे पेशेंट में बदलाव आ जाता है, और जैसे बदलाव आ जाता है और उसको एक नई चीज मिल जाती, जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाता है, तो व्यक्ति फिर से वापस उस जगह पे नहीं जाता, नशा से मुक्त हमेशा के लिए हो जाता है। तो केके जा सर, मैं चाहूँगा कि कुछ आपके अनुभव में आज जैसे कि हम लोग अभियान वगैरह करते हैं तो इसका कितना असर होता है, कितने लोग इसमें जुड़ते हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है?
0: है तो कठिन काम, क्योंकि यही अगर किसी दूसरी चीज की पार्टी हो जाए तो वहां पे आप देखिए ऐसे चीजें जहां दुकानें हैं उस तरह की चीजों का, वहां पे भीड़ ऐसा लगता है सड़क पूरा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे अध्यात्म की चर्चा होती है, वहां पे मुश्किल से आपको 10-20 लोग 50-100 लोग दिखेंगे, और जहां पे अगर पार्टी हो कुछ ऐसी चीजों का तो वहां देखिए हजारों लोग ऐसे, वहां लगता है कि तो क्या। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसमें सोशल मीडिया का भी काफी योगदान है, आप भी इसमें काफी कुछ हेल्प करते ही हैं, आपके साथ भी कई सारे कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ तो
1: जी, जी।
0: मुझे अच्छा भी लगा आपके साथ, कई स्कूल्स में कई जगह पे आपके साथ प्रोग्राम जो किया है मैंने, तो आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे, इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि लोग धीरे धीरे इस अभियान को जब जोड़ेंगे और वो अपना नहीं सोचे, अगली पीढ़ी का सोचे, अपना भी अगर आपका है तो धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाह लेंगे तो वो हो जाएगा, जहां चाह वहां राह। तो आपके भीतर से चाहने से, कि जैसे बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं कि ये सर मैं स्मोक नहीं बंद कर पा रहा हूं, तो उसका कुछ सिंपल रेमेडीज मैं देता हूं उनको, और लेकिन मैं वही कहता हूं कि जब आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो धीरे, और चूंकि बहुत ऐसे लोग मुझे बताते हैं कि हाँ जब मैंने ये आपके बात करने से फिर जब ये अभ्यास किया तो मेरा ये चीज आदत धीरे धीरे अब बंद हो गया और एकदम अब मन भी नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन ये संगत गड़बड़ हुआ तो फिर से वो चांस बनता है। तो वही संगति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को जरूर कुछ न कुछ अध्यात्म धर्म के मार्ग से जोड़ें, प्लस योग एंड प्राणायाम के ध्यान से उनको कनेक्ट करें, उससे उनको पक्का इसमें लाभ दिखेगा।
1: जी जी जी, चलिए डॉक्टर के जा सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक और श्रोता बंधु जो आप एपिसोड को देखेंगे और देख रहे होंगे तो उन सभी के लिए तो एक मैसेज मिल ही गया कि कैसे हम जो है नशे से मुक्त रह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक तो आप जैसे सवाल बड़ा अच्छा आया था कि सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है हानिकारक है फिर भी लोग पीते हैं, तो उसका कारण यही है कि आपके पास बहुत ज्यादा तनाव है, इसलिए आपको मैसेज समझ में नहीं आता, जो पढ़ रहे हैं जिस पे लिखा है उस चीज को आप समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपके पास तनाव इतना ज्यादा है, फिर आप उसका उपयोग करते हैं और वो आपके मन और मस्तिष्क और शरीर में काम करना शुरू कर देता है और आपको थोड़ी देर के लिए अपने तनाव से दूर फील कराता है, तो आपको लगता है कि इससे मैं नशे से मुक्त हो, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है या फील गुड हो रहा है, इसके वजह से आपने पिया और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और फिर वो आदत आपके शरीर और चीजों को नुकसान कर देता है जिससे आपको समाज से आप थोड़ा सा अट भी जाते हैं, तो वो चीजें हैबिचुअल नहीं हो ये चीजें, एक बार किया और छोड़ दिया अनुभव करके, तो अलग बात है, लेकिन आप उसके अधीन हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब अधीनता को मुक्ति दिलाने के लिए फिर आपको बहुत सारे चीजों को करना पड़ता है। एक सबसे पहला कंसल्टेशन है कि आप कंसल्ट करो। कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप नशा करते हो तो कोई ना कोई पीछे का दुख वाला कारण छुटा होगा, तो वो कारण को आपको समझाने या उसको समझने में आपको हेल्प करेगा जो ट्रेनर है, कोच है, जो डॉक्टर है। उसके बाद आपने उसको परख लिया, समझ लिया, तो फिर वो काउंसलर आपको समझा देगा कि भाई जीवन इस तरह से जिया जा सकता है, और भी अल्टरनेटिव्स हैं, अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, तो आपको वो अल्टरनेटिव्स दे देगा और आपको हेल्थ बेनिफिट बता देगा। तो फिर आपका मन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो आप जीवन की ओर जाएंगे। इसलिए हमने आज का जो थीम रखा था वो ये है कि दुवे से दूर रहें, जीवन के नजदीक। जीवन को ठीक से हमने समझा नहीं है इसलिए दुवे के पास चले जाते हैं, खुद जल जाते हैं, जीवन को पूरी तरह से खाक कर देते हैं। तो अब हमें दुवे से दूर जीवन के बिल्कुल नजदीक जाना है, जीवन को सही ढंग से समझना है। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी लोग बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप बिल्कुल उनके साथ जाए, उनको उनसे मिले और उनसे अपने जीवन की नई राह को चुने। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ मैं फिर से डॉक्टर के झा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपके साथ और भी लोग जुड़े और आप इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहें, लोगों को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने के तरीके बताते रहें। ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी नशे से मुक्त रहें और अपने भाई बहनों को भी नशे से मुक्त रहने के लिए उन्हें हेल्प कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। कहीं किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकें नशे से मुक्त रहने के लिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ पूरा भारत हमारा नशा मुक्त रहे, हेल्दी भारत रहे, वेल्दी भारत रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बना।

0: वर्षों का ये कारवां।
1: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है, शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है, और घर बार तो सभी संभालते हैं, और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
2: नमस्ते दीदी,
1: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू दीदी।
1: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
1: सोनीपत हरियाणा?
2: जी हरियाणा।
1: अच्छा जी।
2: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन हैं।
1: जी।
2: 3 भाई हैं, 4 बहनें।
1: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
2: मैं सबसे लास्ट हूँ।
1: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
2: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
1: अच्छा।
2: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
1: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
2: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं,
1: भाइयों ने की।
2: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
1: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
2: जी।
1: तो आप कहते ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
2: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
1: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
2: जी।
1: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ेगी?
2: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
1: अच्छा, खेती बाड़ी संभाल देते हैं।
2: जी।
1: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
2: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक

0: के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुप ही रहती थी।
1: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
0: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी इनके साथ ही हो चुकी थी।
1: अच्छा जी जी, तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी जो आपसे बड़े थे?
0: हाँ।
1: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
0: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
1: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
0: होती थी।
1: और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा हाँ, भी आए होंगे, तो हाँ। भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
0: मैं जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
1: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभियों को भी माँ के समान देखा जाता था।
0: जी,
1: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
0: नहीं।
1: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माता जी को या भाइयों को?
0: मम्मी को बोलती थी।
1: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
0: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
1: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
0: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
1: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभिया देते, तो आप किचन में मदद करते थे?
0: जी।
1: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
0: जी।
1: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
0: हाँ
1: जी,
0: सभी का बहुत प्यार मिला है।
1: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था? आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
0: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधों पे चढ़ जाना।
1: अच्छा।
0: ऐसे खेल कूद में
1: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
0: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
1: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
0: वही वही,
1: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
0: डांटते थे लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
1: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते हैं। हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
0: वो अलग।
1: और आप क्या क्या काम करते हैं?
0: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
1: अच्छा, सिलाई आती थी?
0: हाँ,
1: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
0: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी, और सिलाई वैसे तो कम ही आती थी, लेकिन फिर जैसे ससुराल में चले गए थे उस टाइम के बाद थोड़ी सी कुछ परिस्थिति आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सिलाई का।
1: अच्छा, बाद में सीखा, पहले नहीं सीखा था?
0: पहले सीखी थी लेकिन कम ही करते थे।
1: जी, आप सबसे छोटे थे, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। आपकी भाभियां थी, माताजी थे, बहनें थी बड़ी, तो वो करते होंगे। लेकिन आपने वो ध्यान नहीं दिया होगा।
0: हाँ
1: जी जी। और किचन में आप क्या बनाते थे, किस तरह की मदद करते थे अपने मम्मी और भाभी?
0: ऐसे जैसे बर्तन वगैरह धुलाई कर दिए, थोड़ी साफ सफाई में, खाना तो बाकी वही बनाते थे।
1: अच्छा, कभी खाना नहीं बनाया आपने शादी के पहले?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
0: तो बनाते थे?
1: अच्छा, ऐसे ज्ञान था?
0: हाँ, ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
1: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
0: हाँ, वो एक ही है।
1: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
0: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादा कर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
1: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
0: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहां से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो 1-2 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
1: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला, वो सांप पकड़ में आया?
0: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाल लेती, शायद फिर वहीं पे इसको कुछ
1: काट दिया।
0: काट दिया।
1: ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
0: उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
1: अच्छी बड़ी होकर गई।
0: काफी जी, बड़ी जी।
1: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना।
0: बिल्कुल।
1: सखियों के साथ जो इतना हम खुल करके बात कर सकते हैं उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
0: किसी के सामने नहीं कर सकते
1: जी।
0: बिल्कुल।
1: थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप तीन सखियां थी जी, फिर आप दो ही रह गए।
0: फिर हम दो
1: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
0: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम। कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं
1: जी,
0: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे चाचा हमारे
1: जी,
0: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
1: अच्छा, क्यों, कारण?
0: बस कुछ ऐसा होता था जैसे मैं तो जब जन्म लिया था मैंने 1-2 साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
1: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
0: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की
1: जी।
0: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे
1: जी।
0: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
1: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
0: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
1: रे रे रे। तो भैंसे भी मर गई?
0: सब मर गई थी।
1: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
0: सब कुछ हुआ था लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी
1: जी,
0: तो सब कुछ किया था। मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
1: अच्छा,
0: उनकी लड़की। हाँ, काफी कुछ हुआ था।
1: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: The Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
6: जी।
5: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
6: जी।
5: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
6: गांव था।
5: गांव था, तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं
6: नहीं, सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
5: जी।
6: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
5: जी।
6: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
5: आपके साथ ही करते थे
6: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
5: अच्छा।
6: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
5: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
6: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
5: अच्छा,
6: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे पानी तो यहीं से ही जाएगा
5: जी।
6: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
5: जी।
6: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
5: जी।
6: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
5: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
6: नहीं नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
5: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
6: हाँ।
5: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
6: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
5: जी।
6: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
5: जी,
6: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
5: जी। तो आपके तो, एक ही चाचा जी है?
6: हाँ, एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
5: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने,
6: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
5: जी
6: किया,
5: तो
6: हाँ।
5: उनके बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे? हाँ। या वो थोड़े अक्कल वाले थे?
6: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया।
5: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
6: उनको भी खत्म करवा दिया था।
5: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
6: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
5: खुद ले गए, लड़के को ले गए?
6: लड़के को भी उन्होंने खोस लिया।
5: क्यों, लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
6: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया। लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे ही, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
5: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता है
6: उस टाइम तो? पे दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया।
5: फिर वो बहू को ले आए?
6: नहीं वो नहीं लेके आए, जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपने अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
5: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
6: हाँ
5: रखा, तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना।
6: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
5: तो ये कितने साल आपके चला था?
6: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
5: 15-20 साल बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
6: डेथ के बाद ही।
5: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था?
6: हाँ, बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं कहते थे।
5: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
6: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी।
5: पैसा कहाँ से आता उनका?
6: वो जो खेत में जाते थे ना
5: जी,
6: तो खेत से उनके पैसा आता था।
5: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
6: अलग अलग था।
5: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे?
6: बर्बाद कर देते थे।
5: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
6: बेटे भी उनके साथ में थे।
5: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसा ही करते थे।
6: हाँ।
5: तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे, जैसे आप बता रहे कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
6: हाँ, अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है, फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं।
5: जी जी जी हाँ,
6: तो केस तो काफी साल चला भी था
5: जी,
6: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
5: जी जी जी, अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं आपके, उनके लड़के हैं, तो वो सब आते जाते परिवार में?
6: नहीं, आते जाते नहीं है।
5: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
6: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
5: वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे? हाँ। जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाँ। कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
6: पांच।
5: पांच भैंस? अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
6: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अब ये कहीं कहीं से पैसा इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा।
5: जी जी जी, और झूठ भी बोल दिया होगा क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
6: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
5: अच्छा, ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो साल डेढ़ साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं। जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माता जी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी
6: जी,
5: तो उस समय आपके माता जी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
6: हाँ, सभी अच्छे रहते थे
5: जी। तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना। पिताजी ने होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माता जी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
6: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर क्या हालात कैसे हैं
5: जी।
6: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
5: अच्छा, मम्मी दिलाते?
6: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे
5: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी?
6: हाँ, बड़ी बहनें।
5: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा?
6: बस बहनें तकरीबन ससुराल में ही चली गई थी
5: जी,
6: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे
5: जी,
6: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुकी आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
5: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
6: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
5: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
6: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना ये
5: करना। हाँ, वो कुछ नहीं था।
6: हाँ, ऐसा नहीं था।
5: जी जी जी,
6: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
5: जी जी,
6: बस इतना ही।
5: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
6: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
5: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर भी अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
6: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
5: अच्छा।
6: भाई पढ़े लिखे थे।
5: जी जी,
6: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
5: जी जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
6: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
5: टीचर इतना मारते थे?
6: इतना मारते थे, तो इसीलिए वो कहता था, देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
5: तो इतना क्यों मारते?
6: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा। अभी तो
5: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेके ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए।
6: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
5: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना। तो फिर कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
6: बस ऐसे कंप्लेन वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
5: अच्छा,
6: इतना कुछ नहीं था, बस काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
5: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दोस्तों, ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान, माता पिता
2: जिस घर में बेटियां मुस्कुरा दे, जिस घर में बेटियां मुस्कुरा दे वो घर मंदिर हो जाता है। उसके आंचल की ठंडी छाया में हर दुख छोटा हो जाता है। उसके आंचल की ठंडी छाया में हर दुख छोटा हो जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं। अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
3: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
2: जी।
3: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
2: जी,
3: ससुर नहीं थे, सास थी
2: जी।
3: सभी परिवार अच्छा था, और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे, सभी के साथ में अच्छे से रहे।
2: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
3: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है।
2: अच्छा अच्छा। गांव से कितना दूर था?
3: गांव से काफी दूर था, गांव से।
2: अच्छा, काफी दूर।
3: हाँ।
2: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
3: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल।
2: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई। तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
3: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है।
2: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
3: शहर में लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है
2: जी। जी, तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
3: साथ में रहते थे। दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे।
2: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
3: वो बाहर रहते थे।
2: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
3: हम गांव में रहते थे।
2: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
3: इनका अपना काम था, बस थोड़े ही दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था, हम दिल्ली आ गए थे। इनका फ्रूट का काम था, हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे।
2: होलसेल का?
3: होलसेल का
2: जी। तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
3: मैं दो साल के करीब रहे होंगे।
2: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
3: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
2: जी। और ससुराल वाले भी, सास ससुर
3: सभी
2: अच्छे थे?
3: सभी अच्छे थे,
2: जेठ जेठानी देवर देवरानी
3: सभी अच्छे थे
2: जी। जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
3: जी।
2: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले।
3: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: फिर दिल्ली। तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
3: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते। हाँ, हस्बैंड के साथ में।
2: हाँ, वही आप। हाँ, और आपके हस्बैंड। हाँ, तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस हुआ होगा।
3: ये तो है।
2: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते हैं? फिर
3: वो करीब 10 बजे से बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे। और उसी टाइम पे था
2: बेटे का जन्म भी हुआ।
3: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी।
2: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया
3: जी?
2: तो आप सत्संग में जाते थे
3: जी,
2: दिल्ली में
3: जी।
2: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई। एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है,
3: बिल्कुल।
2: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं।
3: हाँ,
2: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
3: जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
2: जी,
3: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से।
2: अच्छा।
3: खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे, और अच्छे मिलजुल के रहते थे बहुत अच्छी तरह से
2: जी। जी,
3: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया।
2: अच्छा।
3: हाँ, अच्छे से रहते थे।
2: तो आप कितने साल
3: वहाँ? मैं 4 साल के करीब
2: दिल्ली में।
3: दिल्ली,
2: फिर 4 साल बाद?
3: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार,
2: आबू
3: भी
2: जी।
3: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
2: जी।
3: तो उस टाइम पे ये इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से
2: जी। जी,
3: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि भाई, कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
2: अच्छा हाँ। फिर आबू आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
3: नहीं, ससुराल नहीं गए। हाँ, फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
2: हाँ, तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके?
3: हाँ,
2: ससुराल।
3: हाँ,
2: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
3: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह और उनकी उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
2: तो इलाज नहीं करवाया?
3: हाँ, हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे डेथ हुई तो इलाज ही चल रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
2: अच्छा, बेटा कितना बड़ा था उस समय?
3: 4 साल का।
2: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
3: नहीं, ये हादसा हुआ करनाल में।
2: करनाल आ गए थे रहने?
3: जो हॉस्पिटल में?
2: नहीं, वो तो है, लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में, ससुराल में ही रहते थे?
3: नहीं, करनाल में ही रहते थे।
2: अच्छा, करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
3: नहीं, फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
2: अच्छा, करनाल आ गए रहने, और फिर यहीं पर ये तकलीफ शुरू हो गई?
3: जी,
2: और यहीं पर डेथ हो गई। तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
3: नहीं, ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
2: जी,
3: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा, ये हो जाएगा
2: जी,
3: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
2: जी,
3: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
2: रेवाड़ी क्या है?
3: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
2: 4 साल के बच्चे को लेके? उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
3: नहीं, ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
2: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
3: नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
2: तो फिर रेवाड़ी में आकर
3: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
2: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
3: देखो, पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
2: अच्छा जी जी जी। हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
3: हाँ, फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
2: जी। बहुत अच्छा किया। हाँ, फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
3: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
2: अच्छा, तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
3: नहीं, सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे ताड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
2: अच्छा,
3: और बच्चे को पढ़ाती थी।
2: तो गुजारा चल जाता था?
3: बस चल जाता था
2: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर करने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े, और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
2: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
1: अच्छा।
2: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करते ही मैं करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
1: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
2: जी।
1: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
2: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
1: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो, उससे आपके बच्चे का भी गुजारा और आपका मतलब घर भी खरीद सके। तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा। फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
2: जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू आती रहती थी,
1: तो ये अच्छा लग गया आपको?
2: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
1: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
2: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
1: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
2: 5-6 साल हो गए।
1: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
2: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
1: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
2: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे
1: जी,
2: तो इसी कारण से फिर समझा के ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
1: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
2: जी,
1: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
2: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम, हर काम कर लेता, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
1: अच्छा।
2: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
1: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
2: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना माई के जाती ना ससुराल जाती।
1: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
2: मैं जाती ही नहीं हूँ।
1: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
2: हाँ खुश है
1: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
2: नहीं अभी नहीं करती।
1: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
2: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
1: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
2: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
1: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप जुड़े हैं?
2: जी।
1: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
2: जी अच्छा चल रहा है।
1: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
2: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
1: अच्छा, इधर खरीद लिया?
2: हाँ।
1: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखो यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
1: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
2: जी,
1: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे, और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ, इसके लिए
2: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं, कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर

0: जिन दो एथलीट्स ने ये कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे।

0: कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
1: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया, फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था भाई अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजिब बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: फिर से ले
1: स्वीटी का नया अकाउंट, मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है।
2: मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ
0: और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है।
2: कैसे?
0: अगर केवाईसी

0: पानी पूरी। आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पानी पूरी खाओ।
1: क्या बात है भाई, तुमने तो तरक्की कर ली, बढ़िया ठेला ले लिया।
0: जी जी, उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
1: लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, चटपटी तो ठीक है, ये गर्मा गर्म पानी पूरी क्या होता है? गर्मा गर्म पानी पूरी मैंने तो पहले कभी नहीं सुना।
0: भाई साहब, पहले मैं सिर्फ पानी पूरी बेचता था, लेकिन लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करके देखूं।
1: और वैसे भी पानी पूरी के अंदर का रगड़ा जो भरते हो वह तो गर्म ही होता है ना। बढ़िया बिजनेस स्ट्रेटेजी है।
0: जी जी, वो तो है।
1: भाई तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं?
0: जी पूछिए ना।
1: कुछ दिन पहले तुम्हारा जोर जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तब मैं कुछ काम कर रहा था।
0: कुछ दिन? हाँ हाँ हाँ, याद आया। उस दिन दो लड़के मेरे से पानी पूरी लिए और बिना पैसे देकर भाग गए, और मैं गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा।
1: लेकिन मैं जब खिड़की से झांक करके देखा तो कोई एक सफेद साड़ी वाली बहन थी और तुम्हारी उनके साथ कुछ बहस हो रही थी।
0: भाई साहब, बात कुछ और थी। उस दिन जो मैं उन लड़कों पर चिल्ला रहा था, उसी वक्त वो ओम शांति वाली दीदी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने रुक कर मुझे समझाया कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। पहले तो मुझे उनकी बातें अटपटी लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही कि मेरा पूरा नजरिया बदल गया।
1: ओम शांति वाली दीदी, अब ये कौन है भाई? मैंने सोचा कोई हॉस्पिटल की नर्स होंगी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने?
0: भाई वो पास में ही ओम शांति सेंटर है ना, वहीं से आई थी। मैं उनके वहाँ एक दो बार कुछ कार्यक्रम में गया था।
1: भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लोग उधार लेके चले जाते हैं और पैसे ही वापस नहीं लौटाते। इससे बहुत परेशानी होती है, समझ नहीं आता क्या करें।
0: भाई एक बात पूछें?
1: हाँ हाँ बोलो ना।
0: आपके पास अगर समय है तो कल वो दीदी के सेंटर पर चलें, पास में ही है, बस एक दो गली छोड़कर। क्या पता आपके समस्या का भी कुछ हल मिल जाए।
1: ठीक है, देखते हैं।
0: ओम शांति दीदी।
2: अरे आप, ओम शांति, आइए ना आइए।
0: ये भाई साहब, मैं जहाँ ठेला लगाता हूँ ना, उसी के सामने ही रहते हैं। उस दिन आपसे बात करते हुए उन्होंने देखा तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं इन्हें भी यहाँ पर ले आया।
2: अच्छा, आइए आइए बैठिए। वैसे क्या करते हैं आप?
1: मेरा बिजनेस है छोटा सा।
2: अच्छा।
1: लेकिन मैं सच बताऊं तो कुछ अच्छा नहीं।
2: क्या बात है, बोलिए ना।
1: उसमें कई लोग उधार में कई चीज मेरे से ले जाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आती है तो फिर समय पर पैसे ही नहीं लौटाते।
2: वैसे उधार देते हैं तो पैसे लौटाने की याद दिलाना गलत नहीं है,
1: लेकिन मुझे लगता है उन्होंने खुद से बिना पूछे पैसे लौटा देना चाहिए ना। बार बार मांगने में भी शर्म आती है, कभी कभी तो लगता है भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तंग आ गया हूँ।
2: ये आपकी अच्छाई है कि आप मदद करते हैं, लेकिन बिजनेस में भावना से ज्यादा बुद्धि से काम लेना चाहिए।
1: हाँ दीदी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। लगता है किसी के जरूरत पर मदद की तो अपना भी अच्छा कर्म बनेगा।
2: आपकी भावना तो बहुत ऊंची थी, मदद करो लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि आज के समय में कई लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में परखने की शक्ति बहुत जरूरी है।
1: परखने की शक्ति?
2: जी, परखने की शक्ति, किसे उधार देना है या किसे नहीं। पहले उन्हें देखो, समझ लो और आगे से एक नियम बनाओ। उधार देने से पहले तय कर लो कि कब तक पैसा वापस आना चाहिए, और प्रेम से याद दिलाओ।
1: लेकिन हम कैसे किसी को जाने, हमें पहले से थोड़ी पता होता है कि ये धोखा देगा।
2: कई बार आपने देखा होगा किसी को उधार देते वक्त आपके मन में अंदर से आवाज आती होगी, ये शायद समय पर पैसे नहीं देगा, और वो सच में वैसे ही होता।
0: जी जी दीदी, बिल्कुल, मुझे भी उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि वो लड़के भाग जाएंगे और वैसे ही हुआ।
2: जी बिल्कुल, ये आपके अंदर की आवाज आपको बता रही होती है, ये हमारी परख शक्ति है।
1: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, हमें अपने अंतरात्मा कुछ चीज करने से रोक रही होती है,
2: लेकिन हम अपनी उस आवाज को दबा देते हैं।
1: हाँ जी जी बिल्कुल दीदी, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ तो है,
2: लेकिन फिर भी हम निर्णय गलत लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर निर्णय शक्ति की भी कमी है, और आने वाले परिणाम देख दुखी हो जाते हैं क्योंकि सहन शक्ति की भी कमी है।
1: लेकिन दीदी, अब तक के अनुभव के हिसाब से अब ना परखने की शक्ति की जरूरत है ना निर्णय शक्ति की। मैंने तो ठान लिया अब किसी को उधार देना ही नहीं जो बाद में सहन करना पड़े।
2: इसका मतलब अगर कोई सच में मजबूर है और हम उसे सहयोग करें, ये भावना भी अब कमजोर हो गई, अर्थात सहयोग की शक्ति की भी कमी हो गई।
1: आपकी बातों में गहराई तो है, लेकिन दीदी करें तो करें क्या, रातों में भी नींद नहीं आती, वही बातें दिमाग में चलती रहती हैं।
2: क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की भी कमी है, ये भी एक शक्ति है जो हम बातों को लगाम नहीं लगा पाते।
1: आपसे बातों में जीतना मुश्किल है दीदी, लेकिन उसका क्या जिनको पहले से उधार दे रखा है, और वह है भी अपने ही मित्र संबंधी, उनसे ना तो झगड़ सकते हैं ना उनके ऊपर कोई कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं।
2: जिन्हें पहले से उधार दे रखा है, हो सकता है उनके जीवन में सच में ऐसी कोई समस्या है जो पैसे लौटा नहीं रहे, और वो उनके पास आने पर दे भी देंगे, बस उनके प्रति शुभ भावना रखे।
1: हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन मेरी उधारी चुकाने के लिए बोला तो बोलते हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे।
2: ऐसे समय पर सामना करने की शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि हम गलत को सहन नहीं कर सकते, उन्हें गुस्से से नहीं लेकिन धैर्यवत गंभीरता पूर्वक कड़े शब्दों में याद भी दिलाना चाहिए।
1: और अगर फिर भी ना दे तो?
2: हमारा उनके साथ कोई पिछले जन्मों का हिसाब था जो हमने इस जन्म में चुका दिया, ऐसे सोचकर आगे बढ़ो। अच्छे बुरे को समंदर जैसा बड़ा दिल रख सब कुछ अंदर संभालो, समाने की शक्ति धारण करो।
1: ये बहुत बड़ी बातें हैं, समा तो लेते लेकिन दिल में और बातें फिर भी रह जाती हैं।
2: हाँ, क्योंकि समेटने की शक्ति की कमी है, व्यर्थ बातों को छोड़कर सिर्फ अच्छी बातों को समेट करके आगे बढ़ो तो मन पर बोझ नहीं रहेगा।
1: दीदी, आखिर ये कितनी शक्तियां हैं, इन मन की शक्तियों को तो अच्छे से समझना होगा।
2: जी जरूर, सिर्फ इसे जानना ही नहीं, इसे बढ़ाना भी होगा। ये हमारी 8 शक्तियां हैं जो रोज राजयोग मेडिटेशन करने से बढ़ती है, और जीवन की हर समस्या में ये 8 शक्तियां हमें मदद करती हैं।
1: दीदी, ये मन की शक्तियों को कैसे जाने और ये मेडिटेशन करते कैसे हैं? क्या आप हमें सिखा सकते हैं? मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है।
2: आपको इन मन की शक्तियों को जानने के लिए सेंटर पर रोज आना होगा। यहाँ पर 7 का कोर्स होता है जिसमें आपको इन शक्तियों के बारे में बताया जाएगा।
1: ओ, दीदी, इसकी कोई फीस?
2: नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती है।
0: जी दीदी, हम जरूर आएंगे, पूरा 7 का कोर्स करेंगे।
2: ये भगवान का घर है, माना आपका अपना घर है।
1: जी दीदी, सच में यहाँ का वातावरण बहुत शांति देने वाला है, हम जरूर आएंगे।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति।

0: भाई पानी पूरी खाओ गर्मा गरम। आओ भाई पानी पूरी खाओ गर्मा गरम।
1: ओ भाई दो प्लेट पानी पूरी।
2: जी जी जरूर।
0: अरे रुक रुक रुक, अरे पैसे तो देता ना। ये क्या बदतमीजी है?
2: ये लोग समझते क्या है अपने आप को? मेहनत की कमाई है मेरी, ऐसे कैसे भाग सकता है?
3: भाई क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों?
2: दीदी एक लड़का पानी पूरी खाकर बिना पैसे दिए भाग गया, मेरी मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे भाग सकता है?
3: भाई वो तो भाग गया, अब गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा, शांत हो जाओ। आप चिल्ला चिल्ला कर और ही अपने आप को थका रहे हो।
2: कैसे न चिल्लाऊं, मेरी मेहनत की कमाई है, कोई ऐसे कैसे भाग सकता है?
3: हरेक का कर्मा बनता है, आप चिंता नहीं करो, ऊपर वाला हरेक का हिसाब रखता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
2: दीदी ये सब बातें ठीक हैं, पर उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं?
3: भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन सोचो अगर आपने उसे माफ कर दिया और अपनी सोच को सकारात्मक बना लिया तो आपके जीवन में शांति और खुशहाली आ सकती है।
2: लेकिन दीदी इससे मेरा नुकसान नहीं होगा?
3: नहीं भाई, नुकसान और फायदा जीवन के हिस्से है। अगर आपने अपनी सोच को सकारात्मक रखा तो आपके कर्म भी सकारात्मक होंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विश्वास करो, जीवन में शांति और संतोष सबसे बड़ा धन है।
2: दीदी आप ठीक कह रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्से की जगह सकारात्मक सोचूं। ठीक है आज उसने धोखा दिया, लेकिन मैं अपना दिल साफ रखूंगा, अच्छा सोचूंगा, अच्छा होगा।
3: यही सही तरीका है। और हाँ सदा याद रखो, भगवान को साथी बनाकर दिन भर के काम करो, सदा सफल रहोगे।
2: दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: शुक्रिया बाबा।
2: जी जी उसके नाम से ही जीवन धन्य है।
3: चलो खुश रहो भाई और सेंटर पर आया करो। ओम शांति।
2: जी जी जरूर, ओम शांति।
0: आओ भाई पानी पूरी खाओ गर्मा गरम। आओ भाई पानी पूरी खाओ गर्मा गरम। आओ भाई आओ पानी पूरी खाओ गर्मा गरम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। भारतीय संगीत के मुख्य रूप से तीन भेद किए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। आज तक हमने संगीत के बारे में बहुत कुछ सुना भी, मगर आज संगीत में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए उत्सव के आधार पर भजन। भजन ये सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत हो सकता है, लेकिन मूल रूप में ये किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। भजन मंदिरों में भी गाए जाते हैं। कुछ विख्यात भजन रचनाकारों की नामावली में मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे अनेक रचनाकार होकर गए हैं। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम आगे श्यामली जी से भजन के बारे में सुनते हैं। श्यामली जी, रेडियो मधुबन में संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको प्रणाम करती हूँ।
0: गीत संगीत में भजन का ज्यादा प्रयोग होता है। हाँ, या कहो देवी माँ की आरती गाई जाती है।
1: हाँ जी,
0: तो आज हम भजन के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे।
1: भजन की जो मेन पॉइंट है यह है भक्ति।
0: अच्छा।
1: हाँ, भक्ति जैसे उसके ऊपर आधारित होता है। तो जैसे भजन आम जनता में हिंदी भाषा में ज्यादा होता है
0: जी,
1: जो सब जनता समझ सकते हैं
0: जी।
1: और ये जो भक्ति रस की जो गीत है ऑडियंस के सामने अगर प्रेजेंट करेंगे वो ज्यादा अपनाएंगे। इसमें मधुरता, उसका जो सौंदर्यता होता है, सुर की जो लय कड़ी होता है बहुत सुंदर, उसका ताल के ऊपर ये आधारित ज्यादा होता है। इसमें इसका अलग महत्व आ जाते हैं।
0: मतलब ज्यादातर भजन में तो देवी देवताओं की महिमा, उनकी उपासना ही
1: होती है। ऐसे कोई बात नहीं, भजन में ज्यादा होता है कृष्ण के जो गीत होता है, ज्यादा से ज्यादा गिरिधारी लाल या कृष्ण की हरी या भजन श्याम घनश्याम इसके ऊपर ज्यादा आधारित होता है।
0: okay.
1: जैसे सूरदास की भजन में हम देखते हैं उसको आँख तो नहीं थे, सूरदास जी के आँख नहीं थे, लेकिन वो हरि बिना नहीं चलते थे। उसके हर जगह में हरि का नाम ज्यादा प्रयोग होता है। ब्रह्मानंद जी का भी घनश्याम ज्यादा होता है। मीरा भजन में गिरिधारी लाल ज्यादा होता है, मीरा के प्रभु गिरिधारी नागर ऐसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो भजन की एक स्पेशल मैं कह सकती हूँ कि हर भजन के लास्ट में या प्रथम जो भजन रचता होता है, रचयिता होता है, उसका नाम प्रयोग होता है।
0: अच्छा।
1: तब जाके पता चलता है ये भजन किसका है,
0: पूरे भजन में उनका नाम आ जाते
1: हैं। अच्छा। आ जाते हैं, तब हम जान सकते हैं कि मीरा की है या ब्रह्मानंद की है, कवर जी का है या सूरदास जी का है।
0: अच्छा।
1: ये हम जान सकते हैं।
0: हर भजन उनकी पहचान देता है।
1: पहचान देता है। तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवता की ज्यादा नहीं है, ज्यादा कृष्ण जी का ज्यादा महत्व है सबके पास। ज्यादा प्यारा है ना, किशन जी तो सबको प्यारा है,
0: बाल गोपाल।
1: बाल गोपाल
0: जी। तो आज आप हमें भजन में और आगे क्या बताना चाहेंगे?
1: आज पहले हम एक मीरा की भजन, क्योंकि मीरा भजन में सबसे फेमस है मीरा बाई का जो भजन है, मीरा भजन जो है
0: जी।
1: तो मीरा भजन हम सुनाते हैं।
0: वो तो श्याम की दीवानी।
1: हाँ, श्याम की दीवानी। जैसे देखो उसको जो पहचान है ज्यादा,

0: एक ही लाइन में मैं बता सकती हूँ कि ये गिरिधारी जो लाल है उसको तो दीवानी थे
1: जी,
0: लास्ट तक वो गिरिधारी का ऊपर ही प्रेम ये किया
1: हमारा
0: है।
1: पूरा जीवन ही भले गृहस्थ में रही मगर फिर भी श्याम के नाम कर दिया।
0: हाँ, वही बात है। तो हर जगह में मीरा की नाम है, भजन लाए हैं मीरा की भजन। थोड़ा मैंने प्रेजेंट किया कैसे मीरा की भजन होते हैं
1: जी।
0: ठीक है, तो हम शुरू करते हैं।

0: सच में आपने जैसे बताया कि मीरा जी के भजन की तो बात ही निराली है।
1: आपने देखा इतना भक्ति प्रेम, निष्काम प्रेम, जैसे एकदम दीवानी हो गए उसकी प्रेम से, एकदम पागल जैसी
0: जी।
1: इसलिए तो मीरा की भजन इतना फेमस है, सबको मुंह में फिरते हैं।
0: भावना के आधार पर उस भजन की भाषा भी हो गई है ना। श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में भी हम सुनाएंगे अपने श्रोता मित्रों को ऐसा ही प्यारा सा भजन। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम भजन के बारे में और जानकारी देने के लिए जल्द पधारेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक मीठा से भजन का आनंद लिया होगा। आज हम आगे भी आपको भजन के बारे में ही जानकारी देना चाहेंगे और उस जानकारी को लेकर आए हैं श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
1: हाँ जी, अभी एक भजन सुनाते हैं। अच्छा, ब्रह्मानंद जी की।
0: मगर उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
1: बताइए।
0: कि मैंने कहीं सुना है कि ये जो भजन, ये जो रचना है संगीत में, खास मैंने बताया सुगम संगीत की, तो वो सुना है राग ताल नियमों से स्वतंत्र एक आकर्षित रचना जो भावानुकूल शब्दों द्वारा ये गाई जाती है।
1: हाँ जी, ये तो सही है कि ये एकदम अलग से ढंग से होता है ना, ज्यादा इंसान के मन छू लेते हैं
0: जी।
1: भजन है
0: उनकी भावनाओं को प्रदर्शित,
1: जादूगरी की काम करते हैं एकदम। तुरंत कोई भजन करते हैं तो सब आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम सुनाते हैं ब्रह्मानंद की जो भजन है
0: जी।
1: आप सुनोगे तब पता चलेगा। ठीक है,
0: ओके।

0: श्यामली जी, ये भी बहुत सुंदर भजन, मगर उसके साथ मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, हमारे श्रोता मित्रों के मन में भी ये शायद प्रश्न उठता होगा कि ये जो भजन है उसमें कोई स्पेशल राग का ही भजन होता है या सभी रागों में भजन बन सकते हैं?
1: नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन तब भी कुछ कुछ राग होता है, जैसे भैरवी भैरव के ऊपर ज्यादा होता है, या आहिर भैरव, या शाम के जी इवन की राग के ऊपर भी बहुत सारे भजन है, या जैसे हमने पहले ही हमने किया है रामदासी मल्लार
0: जी,
1: ज्यादा से ज्यादा ऐसे राग के ऊपर बेस करके ये होता है, राग की
0: स्पेसिफिक उसके ऊपर कोई नहीं, सभी राग में ये भजन हो सकते हैं।
1: अच्छा। अगर कोई भी गा सकते हैं, अच्छा से सुर से गा सकते हैं तो।
0: और ताल कौन सा?
1: और ज्यादा से ज्यादा दादरा और कहरवा भी ऊपर।
0: अच्छा, दादरा और कहरवा ताल में ही ये ज्यादातर होते हैं। अच्छा, और आगे आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: आगे अभी सूरदास की भजन जो है बहुत सुंदर है, सब जानते हैं
0: जी,
1: वो भी एक सुनाती हूँ, कैसे होता है।

0: सही कहा गया है कि भजन ये ईश्वर का गुणगान करने या प्रार्थना के लिए ही भजन की रचना की जाती है।
1: हाँ जी,
0: है ना।
1: हाँ, एकदम सही बोला है आपने।
0: तो श्यामली जी, आज हमारे श्रोता मित्रों को तो आपने भजन भजन और भजन करके भगवान को याद करने पर मजबूर कर दिया।
1: हाँ जी,
0: और जाते जाते भी मुझे लगता है आप फिर से कोई अच्छा सा भजन ही सुना देंगे।
1: हाँ, हम क्या करेंगे, तुलसीदास की भजन, इसमें रामचंद्र जी का भी उल्लेख है ना, रामनवमी मतलब रामचंद्र जी, इसलिए लता जी का एक फेमस भजन है, ठुमक के चले थे रामचंद्र।
0: वाह, बहुत बढ़िया,
1: मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है।

0: बहुत बढ़िया,
1: थैंक यू.
0: आज के तो सारे एपिसोड में ऐसे लगता है भजन संध्या हो गई.
1: क्योंकि देखिए हर भजन में शेष भाग में जो जो लास्ट में जो लिरिक्स बताया गीत किया है तो उसमें सबका जितना भजनकार जो रचयिता जो है उसका नाम है.
0: जी,
1: इसलिए
0: जी.
1: है कि हम जान सकते हैं कि इसका क्या भजन है, कौन सा भजन है.
0: जी जी. श्यामली जी, अब समय देता है हमको इजाजत, लेकिन जाते जाते आप और हम रेडियो मधुबन की ओर से सभी संगीत प्रेमी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे. सभी को नवरात्रि की एवं आने वाले त्योहार दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. और आप अगर हमसे संगीत के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए. हमारा नंबर है 9414151415. फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415. इसी के साथ फिर मिलेंगे. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: का। अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: ए राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
8: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
9: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
10: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
11: इनको मैं बताती हूँ।
10: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
11: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
12: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
13: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं।
12: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
14: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर हैं।
12: हैं? क्या जी?
14: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
11: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
15: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
15: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
14: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
13: ला रही हूँ मासा।
14: अरे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे।
11: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
16: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
9: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है, लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा, लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
9: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
13: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बाप रे, सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
16: कुछ कहा राजकुमारी?
13: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
14: ओ ओ ओ ओ ओ
16: प, अरे ये कह रहा है ऊपर।
17: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
13: लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है? अरे कोई और फल चाहिए क्या?
17: पैर में दर्द है क्या?
13: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
18: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
13: अरे पिताजी कहाँ गए?
14: पापा।
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
13: पापा गाली, वो लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
13: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है, बताओ।
11: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
12: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी, नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे, ये तो अब भगवान ही जाने। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौर, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौर, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौर, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौर, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौर, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौर, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौर, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौर, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी, अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी में। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह हम आपके पास लेकर आए हैं यह कार्यक्रम, जहां पर हम बात करते हैं हमारे ही समाज के वरिष्ठ जनों से। और आज ऐसे ही एक वरिष्ठ जनों का जोड़ा हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर पधारा है, जो आकरा भट्टा आबू रोड में रहते हैं और जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जब हम इन्हें बुलाते हैं रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर, तो कुछ प्रेरणाएं इनके जीवन से जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार की इनकी जीवन यात्रा रही है, कौन सा संघर्ष इन्होंने किया है और कौन सी उपलब्धियाँ पाई हैं, कौन सी खुशियों को साथ में जिया है और कौन से प्रयासों को साथ में किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इनके बचपन की ओर। दिलीप जी, कैसे महसूस कर रहे हैं रेडियो मधुबन पे आकर आज?
2: रेडियो मधुबन पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत पुराने समय से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी।
2: और मुझे बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ आकर।
0: बहुत खुशी हुई जानकर। रेखा जी, आप कैसे हैं?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और एक अलग तरह से मतलब शांति महसूस होती है।
0: जी।
3: और जब एक बार आते तो फिर इच्छा होती है कि अपन इसमें बार बार आते रहे।
0: बहुत अच्छा लगा जानकर। वैसे रेडियो मधुबन का लक्ष्य भी है कि मूल्यों को बढ़ावा देना, तो जैसे आपने शांति की अनुभूति की है, ऐसे आपके जीवन में से कुछ ऐसे मूल्य हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आपकी और आपका जन्म।

0: कोरोना के अंदर ऑफ हो गए।
1: जी, तो आप जैसे आपका जन्म हुआ तो फिर सबसे पहले हम माता पिता की ओर देखते हैं और कुछ ना कुछ उनके जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी कौन सी एक बात आप बताना चाहेंगे अपनी मम्मी के बारे में जो आपको बहुत पसंद आती है?
0: हमारे मम्मी ने हमको संघर्ष करना सिखाया है और खुशियाँ दो और खुशियाँ लो।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी शिक्षा है कि परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं,
0: परिस्थितियों के साथ में हिम्मत रख के उसका सामना करो।
1: जी, और पिताजी से क्या सीखा आपने?
0: पिताजी से तो वही है कि बस वही है बेटा, अपने रिश्ते निभाते रहो
1: जी
0: और सबको अपना बनाने की कोशिश करो।
1: सबको अपना बनाने की कोशिश करो। देखिए, कितनी दो खूबसूरत बातें आपने बताई कि ये जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके जीवन के लिए एक महामंत्र का काम कर सकते हैं कि संघर्ष भी करो, सबको अपना बनाओ और साथ में खुशियाँ दो और खुशियाँ लेते रहो। दिलीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में?
2: मेरे पेरेंट्स ने हमारे को बहुत ही अच्छी तरह रखा है।
1: जन्म कहाँ पर हुआ आपका?
2: जन्म मेरा माउंट आबू में हुआ है
1: जी।
2: और बाबा से भी हमारा, मतलब मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे दादाजी उनका बहुत अच्छा जुड़ाव था।
1: अरे वाह।
2: और हम लोग एक तरह से उस समय संपन्न परिवार से थे, तो हमारे पिताजी ने और हमारे दादाजी ने हमारा बहुत ख्याल रखा है और हमारे को हर खुशियाँ दी है।
1: गुणों की बातें बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे माताजी या पिताजी की ओर देखते हैं तो कौन सी बातें वो आप उनसे सीखते हैं?
2: हमारे पिताजी, सभी के साथ उनका व्यवहार बहुत ही नॉर्मल और बढ़िया व्यवहार था,
1: सम्मानजनक
2: था। हाँ, सम्मानजनक व्यवहार था और वो किसी को भी कम नहीं समझते थे, सभी
1: समान भाव से,
2: सभी समान भाव से थे
1: जी।
2: वो हर किसी को के साथ घुल मिल जाते थे और यही हमारे को शिक्षा दी है कि आप किसी का भी बुरा मत सोचो और बुरा मत करो।
1: अरे,
2: सामने वाला चाहे कुछ भी कर रहा हो लेकिन आप अपना मन साफ रखो और अपने मन से सबका अच्छा करो।
1: बहुत अच्छी बात है कि ये जो आजकल जब कहते हैं, मैं कुछ बीच में कुछ एक वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर एक माता पिता जिनकी चार बच्चियाँ हैं और चारों बच्चियाँ बहुत नाम कमा रही हैं पूरे देश में, भारत में, तो उनके माँ बाप से एंकर पूछता है कि ये जो चार बच्चियाँ हैं आपने इनको क्या ऐसा सिखाया कि ये दुनिया में इतना नाम कर रही हैं? सिर्फ बच्चियाँ ही हैं उनके घरों में। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बच्चों को अगर हम पैसा देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा उनका, या कुछ और संपत्ति दे देंगे तो वो भी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन आप अगर बच्चों के अंदर मूल्यों की शिक्षा देते हैं, उनको वैल्यूज सिखाते हैं, तो अगर संस्कार देते हैं तो फिर संस्कार जो है उनको अपने आप अपने जीवन में खड़े रहने का आधार बन जाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत बात उन्होंने इतने एक दो लाइन पर कह दी कि हमें बच्चों को क्या देना चाहिए। तो आपकी जब यात्रा आगे बढ़ी, आपने अपने संस्कार सीखते गए आप माता पिता से, फिर पहली बार स्कूल कब गए और वहाँ पर कौन से दोस्त आपके बने, आपको याद है कोई?
2: ऐसा तो ध्यान नहीं है, लेकिन स्कूल समय में भी बहुत ही अच्छी तरह, मेरे को एक चीज़ ध्यान है अभी भी
1: जी,
2: मैं बाल मंदिर में जब जाता था तो मेरे को मेरे दादाजी छोड़ने जाते थे,
1: ओके,
2: ग्रैंडफादर वो छोड़ने जाते थे। और उस समय माउंट आबू में नीरा की बोतल आती थी, नीरा उस समय खजूर का जो होता है ना,
1: okay,
2: नीरा बोलते थे हम, हाँ, उसकी बोतल वहाँ बिकती थी और वो हमेशा मेरे को वो दिला के और फिर छोड़ने जाते थे और लेने भी वो खुद आते थे मेरे दादाजी, मतलब इतना उनका वो था।
1: दादाजी का क्या नाम था आपके?
2: दादाजी मेरे राम प्रताप जी।
1: राम प्रताप जी, तो हमारे जो श्रोता माउंट आबू से सुन रहे होंगे जरूर उनको उनका चेहरा याद आ रहा होगा। हाँ। जो उनको जानते होंगे। दादाजी को भी हम सलाम करते हैं कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी से। और मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे स्कूल आज भैया आपके भी नाती पोते होंगे, वो भी स्कूल जाते होंगे और आप कभी एक समय पर स्कूल जाते थे, तो क्या बदलाव देखते हैं आप शिक्षा व्यवस्था में, उस समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था में?
2: उस समय किसी पे कोई दबाव नहीं था, ना तो कोई कैरियर का ना कोई पढ़ाई का, मस्त रह के पढ़ाई भी करते थे, खेलते कूदते भी थे और बहुत एंजॉय के साथ में जिंदगी गुजारते थे, शिक्षा लेते थे।
1: अभी आप दबाव देखते हैं बच्चों में?
2: अभी बच्चों पे बहुत दबाव है।
1: तो ये दबाव कौन डालता है, स्कूल डालता है या माता पिता डालते हैं या बच्चा खुद ही लेता है?
2: सामाजिक रूप से ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि बच्चा और माता पिता दोनों ही अपने आप पे दबाव लेते हैं।
1: क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उन्हें, कि अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हैं तो शिक्षा

0: कैसे दिलवाए उनको?
1: बच्चों को बिल्कुल फ्री माइंड से आप ना तो उनके ऊपर ट्यूशन का दबाव डालिए, ना उनके ऊपर पढ़ाई का, नेचुरल रूप से जो खेलकूद के साथ में जो पढ़ाई करते हैं उनका नेचुरल रूप से विकास होने दीजिए,
0: नहीं तो फिर बचपन से ही उनको स्ट्रेस लेने की आदत पड़ जाएगी।
1: हाँ
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कैसे थे पढ़ाई में, जब शैतानी करते थे, घूमने जाते थे, या फिर बहुत पढ़ाकू थे?
1: मैं शैतानी के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था।
0: अरे वाह,
1: शैतानी भी करता था, खेलकूद में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था।
0: क्योंकि ऐसी घटना जो आपको याद आती है, बहुत अच्छी लगती है आपको बचपन से, स्कूल से?
1: बहुत सारी घटनाएं हैं, वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन मैं निर्मला स्कूल में पढ़ता था, उस समय मतलब खेलकूद और इतना हम लोग करते थे। वहाँ की कोई सिड्डियाँ थी, 10-12 सिड्डियाँ, तो सेकंड या थर्ड में पढ़ते थे, जब भी वो 10-12 सिड्डियों से छलांग एक साथ लगा लेते थे। मतलब
0: जी।
1: वो आज जब हम सोचते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा एथलीट भी उस
0: कल्पना से बाहर हो जाता।
1: हाँ, उस छलांग को नहीं लगा सकता।
0: बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ बचपन में जो हमने ऐसे किया है उछल कूद, उस कारण से हमारी शरीर भी और मन भी दोनों अभी भी स्ट्रांग रहते हैं।
1: बहुत स्ट्रांग है,
0: स्ट्रांग रहते हैं।
1: अभी भी मैं माउंट आबू में था, जब मैं ट्रैकिंग, सुबह 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था।
0: जी जी।
1: और जो अपने प्रताप भाई जो पांडव भवन में गार्डन देख रहे करते हैं,
0: जी
1: वो भी मिलते थे, और हमारा मतलब 15-20 मिनट उनके साथ वार्तालाप होता था, बाकी 1.5 घंटे हम ट्रैकिंग करते थे।
0: बहुत बढ़िया। तो ये एक भी एक आपके जीवन से एक पिक करने की बात है जो हमारे श्रोता नोट कर सकते हैं, कि जो ट्रैकिंग करना, सुबह सुबह 2 घंटे वॉकिंग करना, तो इससे फिर हमारा जो युवापन है वो बना रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, और फिर बीमारियों से भी हम दूर ही रहते हैं। तो हम तो बचपन के बारे में आपके बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो फिर एक बार हाई स्कूल में पहुँचते हैं, फिर कॉलेज में पहुँचते हैं, फिर एक सोच चलनी आरंभ होती है कि अब जीवन को आगे कैसे बढ़ाना है, कोई बिजनेस में जाता है, कोई नौकरी ढूंढने लगता है। तो आपका जीवन कैसा रहा आगे का?
1: मेरा बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था
0: जी,
1: जवानी भी अच्छी रही। जवानी में थोड़ा सा जब बिजनेस वाली जो उम्र होती है
0: जी जी,
1: उसमें कोई दबाव नहीं था, लेकिन बिजनेस थोड़ा सा मंदा हो गया था हमारा, तो थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा।
0: कौन से साल में आपने आरंभ किया था बिजनेस?
1: बिजनेस वैसे तो हमारा मतलब फादर बिजनेस था,
0: पुश्तैनी था,
1: तो 84 से ही लगभग मैं,
0: अरे वाह,
1: इसमें जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: 83-84 से ही
0: जी,
1: लेकिन 91 में मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन होने के बाद मैं पूरी तरह से इसमें जुड़ा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे
0: उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं,
1: मतलब 4-5 साल तो बेस्ट रहा, उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ, तो उसमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो पिताजी के और दादाजी के थे कि अपना किसी का बुरा नहीं करना, चाहे कोई अपना कितना भी बुरा करे,
0: जी जी,
1: अपना अपने किसी का बुरा नहीं करना, तो उसी थीम पे चल रहे थे और हमारी नीयत साफ थी, तो हम उस संघर्ष में से निकल के और वापस आज उससे ज्यादा ऊंचाई पे हम पहुंच गए
0: जी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करते हुए। ऐसे कहा भी जाता है कि जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, है ना? तो ऐसे ही इस गीत को सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे रेडियो मधुबन पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी, और हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खूबसूरत युगल कहेंगे, आबू रोड आकरा भट्टा से आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। उनसे फिर बातचीत करेंगे, तब तक सुनिए यह प्यारा सा गीत, फिर लौट कर आते हैं कुछ।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening to FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: तो दोस्तों फिर लौट कर आ गए हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी। हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी में उनसे उनके जीवन के बारे में। तो रेखा जी आपकी ओर चलते हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अपने माता पिता के बारे में बताया, भारत में तो नारियों को बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है, तो आपको माता पिता ने कैसे बड़ा किया, किस प्रकार के संस्कार दिए और क्या सिखाते थे वो?
2: मारे को मम्मी और पापा ने दोनों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत मतलब कभी लड़की और लड़कों के अंदर कभी भेद नहीं रखा।
1: अरे वाह।
2: और उस टाइम जब कोई लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, उस टाइम मेरे को ग्रेजुएशन करवाई।
1: ग्रेजुएशन पढ़ाई की आपने? कहाँ पर पढ़ाई हुई आपकी?
2: मेरी पढ़ाई सिरोही कॉलेज में हुई है।
1: अरे वाह। तो घर से सिरोही तो मेरे ख्याल से दूर रहता
2: होगा, 15 किलोमीटर है।
1: तो कौन कैसे जाते थे आप?
2: बाय ट्रैवलिंग और बाय कार अपनी।
1: अच्छा, ड्रॉप करते थे या तो फिर?
2: उस टाइम लड़कियों को स्कूल भेजना भी मतलब इतना नहीं समझते थे, लेकिन उस टाइम भी मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कॉलेज की पढ़ाई करवाई, जो जिसका आज मेरे को उसको लगता है कि
1: खुशी मतलब होती है,
2: खुशी होती है
1: जी,
2: कि
1: जी।
2: क्योंकि टाइम निकल जाता है लेकिन आप फिर वो चीजें हासिल नहीं कर सकते।
1: हाँ, उस समय अगर छूट गया होता, जो बहुत सारे लोग आज भी पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनको देख करके लगता है कि ये क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई से जो प्राप्ति होती है वो एक व्यक्ति जो जिसने शिक्षा प्राप्त की वही बता सकता है,
2: वही बता सकता है वो सब चीजें। तो कभी लड़की और लड़के वाला तो मैटर था ही नहीं, हमेशा अच्छे से अच्छा पढ़ाई और अच्छे से अच्छे संस्कार दिए।
1: भी जैसे जो आपने सीखा है, मैं समझता हूँ अपने बच्चों के अंदर भी उन चीजों को बीज बोने का प्रयास आपने जरूर किया होगा।
2: बच्चे को भी हमेशा उसको पढ़ाई में आगे रखा है। बच्चे ने भी IIT को करा, फिर MBA करा कैट के थ्रू। तो आज मैं खुद पढ़ी लिखी थी इसलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकी,
1: इतनी प्रेरणा दे सके उनको,
2: क्योंकि पढ़ाई की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत है
1: जी। तो जैसे आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, फिर आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो कब आरम्भ हुआ, कौन सा सन था वो?
2: 94
1: में आपका विवाह हुआ। तो माँ के पिताजी के छांव में रहना और फिर एक नए परिवार के अंदर जाना, ये जैसे भारतीय जो जीवन पद्धति है इसमें बहनों माताओं के जीवन में ये एक बदलाव देखा जाता
2: है, होता है
1: बहुत बड़ा बदलाव होता है। तो एक नए परिवार में, नए माहौल में जाना, वहाँ की चुनौतियों को समझना और लोगों से मेल जोल करना, उसमें कितना समय लगा आपको और क्या क्या आपको लगा कि एक बच्ची को इसमें परिवर्तन लाना पड़ता है अपने अंदर?
2: उसमें उसको बहुत सी परेशानियां भी आती है और बहुत कुछ मतलब सहन शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है,
1: सहन शक्ति
2: सबसे बड़ी चीज
1: जी,
2: और कुछ अपनी खुशियां भी खोनी पड़ती है।
1: हाँ, आपने एक तो परिवार को आप छोड़ के आने पड़ते हैं, फिर जिस माहौल में आप बड़े हो रहे हैं वो भी होता है,
2: बहुत सी बातें होती है इसके लिए। तो लेकिन खैर अभी तो जैसे आजकल तो क्या सब चीजें फ्रेंडली हो गई है तो बहुत फर्क पड़ता है अभी तो फिर, लेकिन पहले के टाइम में तो बहुत लड़कियों को बहुत त्याग करना पड़ता है,
1: त्याग करना पड़ता था। आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता में बहनें सुन रही हैं, बच्चियां सुन रही हैं, कई ऐसी बच्चियां भी होंगी जो जिनकी शादी होने वाली होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई होगी और उनको वहाँ पर मैच करने में, वहाँ पर जुड़ जाने में चुनौती आ रही होगी, क्या कहना चाहेंगे उन्हें?
2: देखिए चुनौतियाँ तो मेरे हिसाब से कहूँगी तो पहले ज़्यादा होती थी, आजकल चुनौतियाँ कम होती है क्योंकि आजकल मतलब मोबाइल जैसी एक सुविधा हो गई तो उससे क्या हर चीज पहले ही अपन समझ सकते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है,
1: फिर समझ जाते हैं पहले से,
2: पहले से अपन बहुत सी बातें सीख जाते हैं, समझ सकते हैं वहाँ के माहौल को, और फिर एजुकेशन के मामले होता है तो फिर लड़कियाँ पहले वाली बातें अब नहीं रहती, पहले तो क्या एक फोन करना भी मतलब गलत समझा जाता था।
1: अच्छा, अपने मायके में बात करना भी मुश्किल होता था।
2: तो आजकल तो अभी इतनी चुनौतियाँ नहीं रहती लाइफ के अंदर।
1: अच्छा, पर कहना क्या चाहेंगे हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे?
2: सबसे बड़ी होती है कि आपसे अंडरस्टैंडिंग, जो जैसा है उसको मतलब उसको समझने की कोशिश कीजिए आप।
1: इससे क्या फायदा होता है?
2: इससे ये होता है कि आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, परिवार नहीं टूटता। एक दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, सबकी भावनाओं की इज्जत कीजिए, बस
1: उनकी भावनाओं की हम सम्मान करना उनको बहुत जरूरी है। तो आप जब यहाँ पर आए तो पहली बार आप माउंट आबू पहुंचे या आबू रोड?
2: नहीं, पहले इधर ही आई थी शादी करके, फिर उसके बाद हम लोग माउंट आबू गए थे।
1: आबू रोड में पहले आए?
2: हाँ, इधर।
1: तो जैसे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, फिर एक संतान का फिर जन्म होता है, परिवार में आता है, फिर एक और नया बदलाव जीवन में महसूस होता है। एक जिम्मेदारी तो है ही है, और ऐसी जिम्मेदारी होती है जैसे पहला बच्चा होता है तो अनुभव ही नहीं होता है अपने पास। तो बच्चों को बड़े करने के बारे में क्या अनुभव?
2: देखिए, बच्चों को बड़े करने में तो क्या, जॉइंट फैमिली होती है तो इतना अपने ऊपर नहीं रहता। जैसे मम्मी होते हैं तो वो संभाल लेते, दीदी
1: सासू
2: माँ जी वो संभाल लेते, तो जॉइंट फैमिली में तो ये सब चीजें कोई अपने को इतनी महसूस नहीं होती है। अकेले होते तब फिर ज्यादा रहता है अपने।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, किस प्रकार से एक नारी जीवन की प्रेरणाएं आपने रखी कि इसमें भी मूल्यों का कैसे समावेश हो सकता है, और मूल्यों के आधार पर एक दूसरे को समझने के आधार पर हमारे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि एक वैवाहिक जीवन के सफल होने के पीछे किस प्रकार की धारणाओं का रोल रहता है?
3: वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को, दोनों को आपस में एक दूसरे को तो समझना ही होता है, और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र तो करनी ही पड़ती है। उसके अलावा भी पूरा परिवार साथ में होता है,
1: परिवार भी होता है, सही बात है,
3: तो परिवार को भी देखना पड़ता है।
1: एक पति की क्या चुनौतियां होती हैं, क्योंकि उसको अपने जीवन साथी जिसके साथ पूरे जीवन आगे बढ़ना है वो भी साथ में होते हैं, साथ साथ में वो परिवार होता है जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया है, तो इस दोनों में बैलेंस करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े आपको?
3: पति के लिए, पत्नी अपना घर बार अपने माता पिता को छोड़ के आती है
1: जी,
3: और नए माहौल में ढलने के लिए
1: प्रयास
3: कर रही होती है, तो उसको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है
1: जी। और परिवार?
3: परिवार तो है ही साथ में, परिवार को भी उसको एडजस्टमेंट करके और
1: आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं आपको? उन्हें
3: मेन रूप से यही है कि आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करो, उनको समझो और
1: आगे
3: फिर आगे बढ़ो।
1: बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी, और हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी, जो आकरा भट्टा आबू रोड से रेडियो मधुबन के स्टूडियो पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं सर, और जैसे बिजनेस के बारे में आपसे बातचीत हो रही थी, तो ये एक दूसरे का परिपूरक है कि एक जीवन हम घर के अंदर जी रहे होते हैं और एक और जीवन होता है जो हमें समाज के साथ जुड़ाव में आगे बढ़ना पड़ता है, और इसी बीच बच्चे का आगमन होता है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो बच्चे को बड़ा करने के कोई ऐसे बात आप बताना चाहेंगे जो आपको अच्छी लगती है कि हम आपके बच्चे को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, इसकी परवरिश ये वाला पक्ष बहुत अच्छा रहा?
3: बच्चे को खुले वातावरण में ही उसकी परवरिश करनी चाहिए
1: जी,
3: उस पर किसी तरह का दबाव, आज के माहौल में किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहिए आपको।
1: आपके बच्चे ने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, आपने बताया IIT किया, फिर मैनेजमेंट भी किया उन्होंने, और एक बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा?
3: उसमें तो सबसे ज़्यादा उसकी माताजी का योगदान रहा।
1: अरे वाह जी,
3: और उसके बाद फिर परिवार का।
1: आप खुद एक बिजनेस फैमिली से हैं, और बच्चे को आपने, ज़्यादातर बिजनेस फैमिली के माता पिता जो होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे साथ हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाए, पुश्तैनी कारोबार को अपना ले, हमारे साथ ही रहे, तो आपने बड़ी हिम्मत करके उनको और भी आगे जाने का प्रेरणा दी है
3: जी। इसमें दो कारण है, एक तो हम लोग शुरू से बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में अपने स्वयं के लिए समय थोड़ा सा कम होता है।
1: ओके।
3: और प्रशासनिक परेशानियां पर्टिकुलर राजस्थान में बहुत ज्यादा आती रहती हैं
1: जी,
3: हर तरह की प्रशासनिक परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं
1: जी,
3: तो ये दो कारणों की वजह से
1: हमको लगा कि
3: अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में जाता है या और कुछ काम करता है तो उसको उसके लिए भी समय मिलेगा, हमारे लिए भी समय मिलेगा।
1: बधाई हो आपको कि आपने जो आपका संकल्प था उसको पूरा किया और उसी मार्ग पे वो आगे बढ़ रहे हैं। परिवार के अंदर जब हम एक युगल के रूप में भी चल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिनको हमारे अंदर धारणा होनी चाहिए, और कुछ समय पहले जैसे जिक्र किया था रंजीने की, संयुक्त परिवार के फ़ायदे होते हैं, तो ये संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट क्या है और इसमें सफल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे परिवार अभी एकल परिवार एक शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि छोटे छोटे छोटे छोटे परिवार है, दो लोग रह रहे हैं, तीन लोग रह रहे हैं, एक फैमिली उधर रह रही है, तो वो फैमिली भी अलग अलग, शायद सहन शक्ति की बात पड़ी थी तो सहन शक्ति की कभी कमी हो जाती है, कभी एक दूसरे को भावनाओं को समझना या सम्मान देने में कमी हो जाती होगी। तो संयुक्त परिवार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
3: संयुक्त परिवार तो जब भी चल सकता है और बहुत ही अच्छा है अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं
1: जी।
3: तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संयुक्त परिवार जब भी चल सकता है जब आप एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, थोड़ा सा त्याग भी करना होता है आपको, और भावनाओं की कद्र भी करनी पड़ेगी और त्याग दोनों चीज है।
1: त्याग एक नई वैल्यूज अभी आपसे बातचीत में निकल के आए कि त्याग करना भी आवश्यक है, कि त्याग नहीं करेंगे फिर सिर्फ प्राप्ति की आस रखेंगे तो फिर संयुक्त परिवार
3: में
1: परेशानी आ सकती है
3: जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सलामी जिंदगी और हम बातचीत कर रहे थे कि पारिवारिक जीवन के बारे में, जो दिलीप जी और रेखा जी ने हम सबको कुछ ना कुछ अपने जीवन के अनुभवों को संदेश के रूप में सुनाया, और जरूर आप भी इसको नोट कर रहे होंगे। तो अभी एक जो नई वैल्यू आई वो हो गई त्याग। तो और भी बातें करेंगे, फिर लौट कर आएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी जिंदगी। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM सलामी जिंदगी का कार्यक्रम, और हमारे साथ मौजूद हैं एक युगल जिनका नाम है दिलीप अग्रवाल और रेखा अग्रवाल जी। आइए उनसे आगे की बातचीत करते हैं। तो सर, हमने आपके बचपन के बारे में बात किया, युवा काल, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, संयुक्त परिवार, काफ़ी सारे विषय आपने रेखांकित किए हैं। अभी चलना चाहेंगे, जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये जीवन की सत्यता है कि धीरे धीरे वार्धक्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनकी उम्र किसी के 80-90 साल भी हो गई है और एकदम युवा प्रतीत होते हैं, शरीर से ही नहीं बल्कि विचारों से और उनके कर्मों से भी वो दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाया है। कई बार कुछ साथी हमारे यहाँ आते हैं तो वो बताते हैं कि ये चीज़ अगर मैंने उस समय ये ठीक की होती तो अभी ये तकलीफ़ नहीं होती है। जो वरिष्ठ जन हैं उनकी भी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। तो आपको क्या लगता है, जो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो वो भी कभी ना कभी एक दिन अगर अभी युवा हैं तो वो भी वरिष्ठ जन में बदलाव का सामना करेंगे, तो बुजुर्ग होने से पहले किस प्रकार की तैयारियां होनी चाहिए?
3: भारतीय परिवेश में जो खान पान है वो बहुत अच्छा है।
2: अरे भाई,
3: लेकिन अपन लोग ज़्यादातर वो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान खाने लग गए हैं। अभी
2: कुछ लोग खाने लग गए,
3: कुछ लोग ज्यादातर लोग कह सकते होगा। तो वो एक तो पश्चिमी संस्कृति वाला खान पान छोड़ के जो अपना नेचुरल खान पान है वही अपने को अपनाना चाहिए। पूर्ण रूप से वो खान पान अगर अपन खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो आधा स्वास्थ्य तो उससे अपना बेटर हो जाता है,
2: बेहतर रहता है।
3: और उसके अलावा अपनी भारतीय संस्कृति में योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है।
2: जी जी,
3: तो ये सब चीज़ें भी उसके साथ साथ होती हैं, तो आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।
2: आप अपनी दिनचर्या कैसे मेंटेन करते हैं, जो सुबह उठने से सोने तक का समय कैसा रहता है?
3: मैं सुबह उठ के 2 घंटे ट्रैकिंग जाता था, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है।
2: कितने बजे उठते हैं?
3: अभी तो मैं लेट उठ रहा हूँ, 7 बजे।
2: ओके।
3: पहले मैं 5:30 बजे उठता था,
2: उठ करके ट्रैकिंग पे।
3: हाँ, और 2 घंटे ट्रैकिंग जाते थे।
2: उससे फर्क पड़ता है कुछ?
3: उससे तो बहुत फर्क पड़ता है, पूरा दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर के अंदर आती है।
2: अच्छा, और फिर आगे का दिन?
3: आगे का दिन तो फिर वही जो रूटीन दिनचर्या है, मतलब नाश्ता करना, फिर दुकान।
2: नाश्ते में क्या लेते हैं ज्यादा?
3: नाश्ते में सब अपना भारतीय फूड, जो भी रोटी, चपाती, परांठा, सब्जी
2: जी,
3: ग्रीन सब्जी, यही ज्यादातर होता है।
2: फिर दुकान पे जाते हैं?
3: फिर दुकान पे जाते हैं, दुकान पे भी नॉर्मल रूप से अपना जो काम होता है वो सब करते हैं। फिर वही है, शाम को दुकान।
2: रेस्ट करते हैं दोपहर को?
3: नहीं, दोपहर में रेस्ट नहीं होता है।
2: नहीं करते हैं। वेरी गुड, बहुत मतलब कार्य को पसंद करने वाले व्यक्तित्व लग रहा है आपका।
3: हाँ, क्योंकि जो नाइट की नींद है 10 से 7 बजे तक या 5:30 बजे तक, 7 घंटे की नींद हो जाती
2: अच्छी
3: है,
2: लेते हैं नींद,
3: अच्छी नींद हो जाती है।
2: बहुत बढ़िया,
3: तो इसलिए दिन में जरूरत नहीं रहती है और दिन में पूरा एनर्जिक।
2: सामाजिक ताने बाने में अभी कई सारे लोगों के अंदर व्यसनों का प्रभाव देखने में आता है। कुछ लोग चबाने वाले व्यसन करते हैं, कुछ लोग पीने वाले या फिर फूंकने वाले, इस प्रकार का जो है कई लोगों में देखने को मिलता है। आप अपने आसपास में देखते हैं ये सब चीज़?
3: हाँ, आसपास तो है, लेकिन हम लोग उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड से मतलब उनको भी हम समझाते हैं और उनको भी
2: प्रेरणा देते हैं,
3: व्यसन, हाँ, व्यसन छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको
2: इससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान आपने देखा किसी के अंदर व्यसनों के कारण?
3: व्यसन से तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ भी फायदा तो 1% भी नहीं है।
2: रेखा जी, जैसे एक महिला के रूप में हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के कारण यहाँ पर गली गली में भी जाते हैं, आदिवासियों के मध्य भी काम करते हैं, तो दो चीज़ों का जो अभाव हमें दिखता है, एक होता है कि व्यसनों का जो राक्षस है उनको पकड़ रखा है, और उसी कारण से उनकी पढ़ाई भी नहीं होती है, और ये उनके बच्चों में आता जाता है और बार बार रिपीट होता जाता है। तो एक महिला के रूप में आप क्या देखते हैं कि व्यसन क्या नुकसान पहुँचाते हैं परिवार को?
4: व्यसन से तो सब तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। जैसे ये लोग आजकल गुटखा वगैरह खाते हैं तो कैंसर का सबसे पहले खुद ही बुलावा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, चाहे आप कितना भी समझाओ इनको, बहुत कोशिश करते हैं इनको सब। एक तो पैसों का भी नुकसान होता है,
2: बहुत ज्यादा नुकसान होता है,
4: बहुत पैसों की इनकी आधी कमाई तो इस सब चीजों में खत्म हो जाती है, घर की सुख शांति खत्म हो जाती है घर की, जब आपकी इनकम की आधा इनकम ही आपका इस गलत चीज में चली जाती है,
2: गुटखा सिगरेट शराब। और आजकल तो बहुत एडवांस चीजें भी आ गई हैं, कुछ इंजेक्शन लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या
4: कर लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों का तो नुकसान तो खैर बहुत ही है।
2: महिलाओं के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा?
4: महिलाओं को ये सब चीजें झेलनी पड़ती है ना, जब उनके जेंट्स अगर ये सब चीजें करने लगते हैं तो महिला को भी तो झेलनी पड़ती है ना, घर की सुख शांति खत्म होती है, वो घर के प्रति फिर वो होते ही नहीं है
2: जिम्मेदार
4: होते नहीं है घर के प्रति,
2: फिर उनके प्रति,
4: और बच्चे भी उस सब चीजों का असर बच्चों पर भी आता है, फिर बच्चे भी उसी में जुकाम में चले जाते हैं। आप आदिवासी इलाके में देखोगे तो छोटे से छोटा बच्चा होगा वो भी गुटखे खाता हुआ आपको नजर आएगा, कहीं भी जाके देख लो। और फिर वो सब पूरा करने के लिए वो फिर और आपराधिक मामले भी कर लेते हैं, गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, एजुकेशन पे उनका दिमाग चलता ही नहीं है,
2: चलता ही नहीं है।
4: गवर्नमेंट कितना भी कर रहे हैं लेकिन आखिर में तो सबसे पहले घर में तो
2: खुद का प्रयास तो चाहिए,
4: खुद का प्रयास सबसे पहला चाहिए।
2: सामाजिक रूप से क्या किया जा सकता है कि व्यसन को कैसे कम किया जा सकता है समाज के अंदर?
4: देखो व्यसन के लिए तो सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को ये सब चीजें बंद करनी चाहिए, इजी वे में इनको मतलब मिलना ही नहीं चाहिए।
2: हाँ, एक तरफ वो लाइसेंस दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिर कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए,
4: कि ये कैंसर को बुलावा है, जब आपको लग रहा है कि ये चीज नुकसान दे रही है
2: कैंसर
4: दे ही क्यों रहे हो, आई क्यों रही है मार्केट में।
2: मेरे मामा जी जो है इसी बहुत ज्यादा गुटखा खाने के कारण बहुत सालों तक उनके जो पूरा जबड़ा है वो सड़ गया, उसको काट के निकालना पड़ा और अब आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। और इसका हमने बचपन में देखा था उनको कि वो ऐसे लड़ियों के लड़ियां उनके
4: जेब में
2: होती थी,
4: सुबह उठते कोई तो कहता भगवान का नाम, ये सबसे पहले अपना बंदोबस्त देखते है कि अपना है ना आज का पूरे दिन का।
2: तो इतने पैसे का अनाप शनाप नुकसान,
4: पैसों का इसमें तो सबसे पहला तो कदम सरकार को भी इसमें साथ देना चाहिए कि आप ये सब इतना लाइसेंस क्यों दे रहे हो, क्यों इसका बढ़ावा दे रहे हो, क्यों इनकी ऐड कर रहे हो।
2: जी बिल्कुल, तो हमारे जो साथी जो सरकार में हैं और अभी रेडियो में दोनों सुन रहे हैं तो भी उनको भी अपील करना चाहेंगे, चाहे वो जिस भी विभाग में है जिस स्तर पर है, अपने स्तर पर कुछ ना कुछ लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करें और इन चीज़ों को जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं कम से कम वो पालन हो रहे हैं।
4: गवर्नमेंट को अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करके इनकम करना तो सही नहीं लगता ना
2: जी।
4: और उनके पास तो और भी रास्ते होंगे इनकम के लिए, गुजरात में बंद कर रखा है
2: शराब बंदी है और कई जगह पे गुटकों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है कि कितने,
4: तो कम से कम इसका असर तो दिखेगा ही ना, आप अगर कड़ाई से पालन करोगे इजी वे में नहीं होगा, धीरे धीरे उसका असर तो मिलता ही
2: होता ही जाएगा,
4: होता ही है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने कि परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर व्यसनी हो जाता है तो सारा परिवार उसका भुक्तभोगी होता है। खाली परिवार की बात नहीं है, वो पड़ोस और वो परिवेश समाज सब प्रभावित होता
3: है, पूरा परिवेश।
2: जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई व्यसनी है तो उसको पैसे कमी पड़ रही है तो फिर वो अपराध में भी चला जाता है, समाज के ऊपर, गाँव के ऊपर, देश के ऊपर, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कितनी अच्छी बातें आपसे बातचीत करते हुए निकल के आ रही हैं, समाज के बारे में आपका जो अच्छा नज़रिया है वो भी आपने व्यक्त किया, ये पक्ष जैसे आपने अपने विचार रखे। तो और एक बात पूछना चाहूँगा कि जब हम बचपन से लेकर अभी तक बड़े होते हैं तो प्रकृति माता से हमको सहयोग मिलता है, समाज से सहयोग मिलता है, शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारे आसपास के लोग कभी ना कभी एक दूसरे को सहायता करते हुए मददगार बन जाते हैं, आप किस प्रकार से समाज को रिटर्न करने का प्रयास करते हैं, समाज सेवा ऐसी चीज़ों में कभी आप समय देते हैं?
3: समाज सेवा में समय देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे गरीब कोई भी नहीं है, कम से कम भारत में ऐसे गरीब कोई नहीं है, लेकिन आप उनको काम करने की प्रेरणा या काम करने का वातावरण दीजिए।
2: जी जी,
3: डायरेक्ट सहायता की जगह उनको काम करने के लिए प्रेरित कीजिए या कुछ भी अर्निंग करने के लिए प्रेरित कीजिए, वो ज्यादा बेटर है।
2: ऐसे प्रयास आपके आसपास होते हुए कुछ आपको नजर आते हैं तो जरूर बताइए, हमारे श्रोता सुनेंगे भी और सीखेंगे भी।
3: हाँ, जैसे अब यहाँ का ही उदाहरण ले लीजिए आप, शांतिवन का ही, शांतिवन में आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं
2: जी,
3: तो वो एक तरह से उनके जीवन का उत्थान ही है। तो इस तरह से सब जगह उनको काम के लिए प्रेरित करके और
2: रोजगार पैदा
3: करके उनको सहायता करिए,
2: जीवन उनका अच्छा बनाइए।
3: हाँ, उनका अच्छा बनाइए।
2: एक बात पूछना चाहूंगा, जो आपके व्यक्तिगत जीवन से हॉबी आपकी क्या है, क्या करते हैं आप जब आप फ्री होते हैं? तो
3: मेरी हॉबी वैसे ट्रैकिंग प्लस ट्रैवलिंग ज्यादा है और बुक्स पढ़ना,
2: किताबें पढ़ना।
3: किताबें पढ़ना?
2: किसे पढ़ते हैं?
3: किताबें कोई भी,
2: कोई भी किताब।
3: हाँ, मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन
2: बुक रीडिंग को एक बहुत अच्छी हॉबी माना जाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि बुक रीडिंग करते हैं, तो उससे आप व्यक्तिगत से आपको क्या फायदा महसूस होता है?
3: बुक रीडिंग से कुछ बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आप सोच नहीं सकते, अपने जो पुराने भारतीय जो वेद पुराण वगैरह ये है, ये अगर आप पढ़ेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें है इसके अंदर, जो आज अभी तक तो जहाँ नासा और इसरो भी नहीं पहुंचे हैं, उससे भी बहुत आगे तक अपने वेद पुराण पहुंचे हुए हैं। तो इतना ज्ञान भरा हुआ है, और अपने ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान उन पुस्तकों में संकलित करा हुआ है, उनको आप पढ़ो और उनको मनन करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा,
2: जीवन श्रेष्ठ,
3: जीवन से, हाँ, जीवन भी श्रेष्ठ बनाने का, और बहुत कुछ मिलेगा।
2: मेडिटेशन करते हैं?
3: मेडिटेशन वैसे नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह आधा घंटा पूजा
2: आराधना करते हैं।
3: हाँ, पूजा करता हूँ, वो मेडिटेशन की तरह से ही है।
2: जी जी जी, साइलेंस में समय व्यतीत करना और अपने जो आराध्य हैं उनको अंतर्मन में याद करना, उनकी उपासना करना, इससे क्या प्राप्ति होती है आपको?
3: उससे पूरा दिन बहुत एनर्जिक रहता है,
2: एनर्जेटिक रहता है।
3: हाँ, पूरा दिन आपका बहुत का मन प्रफुल्ल होता है ना, तो आपकी पूरी गतिविधियाँ उससे और पूरा एनवायरनमेंट आपका आसपास का बहुत ही आपको अच्छा लगता है,
2: ऊर्जावान रहता है। जैसे मन की बात आपने कही, शरीर की बात भी हमने कहीं ना कहीं बात की कि भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पे, जीवन पे, आयु पे पड़ता है। रेखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, मन को अच्छा रखने के लिए हर इंसान को क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे मन अच्छा रहेगा?
3: पॉजिटिव सोचो,
4: अच्छा सोचो, आप अच्छे विचार रखो और अच्छे काम करो, और किसी की भी, हर किसी की, मतलब अच्छे हेल्प करो, तो आपको उनकी सबकी जो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी,
2: दुआएं मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, दुआएं कमाने के लिए आपको अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा बोलना भी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी से हम आप दोनों की ज़िंदगी को सलाम करते हैं और फिर निमंत्रण देना चाहेंगे, और भी आइए रेडियो मधुबन से जुड़िए, और रेडियो मधुबन के द्वारा अपने अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहिए, और जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं और आगे बढ़ते जाएँ और उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त हो आपको, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी। दिलीप अग्रवाल जी और रेखा अग्रवाल जी आकरा भट्टा से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार
3: जी।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और आप सभी को हमारा आदाब। हमें शरद त्रिपाठी, आपका आरजे, आपके फेवरेट प्रोग्राम जुनून में। और जुनून में हमारे साथ हैं आज फिर से एक जुनूनी है और आप आते हैं अहमदाबाद गुजरात से। हमारे साथ हैं मिलन बुचीवाल जी। और मिलन बुचीवाल जी एक टाउन हीलर हैं, यूथ अवार्डी हैं। उनके बारे में हम जानेंगे और उनकी जीवन यात्रा के बारे में समझेंगे और उनके जुनून के बारे में जानेंगे। तो आप हमें सुन सकते हैं 107.8 FM में माउंट आबू की वादियों से और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन से लाइव। और हर शनिवार 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। तो मिलन बुचीवाल जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम।
1: धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद।
0: आपकी जो जुनून की यात्रा है उसके शुरुआती दिनों में जब आप जुनूनी हुए होंगे या कहें कि आपके ऊपर ही टैग लग गया होगा कि ये तो जुनूनी है, ये किसी की नहीं मानेगा, तो वो क्या समय था और ये कहाँ हो रहा था?
1: तो शुरुआत तो अहमदाबाद से हुई थी और मेरी पैदाइशी हुई भी है बंगाल में। तो बंगाल में बोलते ना कि जो अगर आप पैदा ही होते हो तो आपके ख्याल थोड़े क्रांतिकारी तो होते हैं। सो ऐसा है। और जैसे आपने जो शब्द चुना जुनून, तो मैं इतना सही कहना चाहूंगा, अगर जीवन में जुनून है तो सुकून है। अगर आपके जीवन में जुनून नहीं है ना तो आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। तो यही चीज है। तो मुझे वो सुकून चाहिए था, तो हर बार कुछ ना कुछ जुनून जीवन में आता गया। और हर चीज को अगर आप जुनून बना लेते हो तो फिर वो आशीर्वाद स्वरूप उसका फल इतना अद्भुत मिलता है कि आप बताए नहीं। तो मुझे क्लाउनिंग का बहुत शानदार अद्भुत एक्सपीरियंस मजा आता था कि जब हम लोग शुरुआती दौर से मेरी सोशल एक्टिविटीज में आने की क्लाउनिंग से हुई थी कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जो कैंसर अफेक्टेड बच्चे होते थे वो उनको हॉस्पिटल में, अभी कोरोना आया तो हमको पता चला कि घर में कैद रहना कितना टफ होता है। तो ये तो मैं आज से 15-17 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब छोटे बच्चे हॉस्पिटल में 15-15, 20 दिन, 25-25 दिन, महीने, 2 महीने, तो हम लोग

0: दोस्त मिल गए थे, हम लोग एक दूसरे के जुनून को फुलफिल करने में लग गए थे। किसी को क्लाउनिंग पसंद है तो बोलता है अरे यार मैं क्लाउनिंग करूंगा, तो ठीक है हम तेरे लिए आ जाएंगे। किसी ने बोला अरे यार मुझे वो गंदगी साफ करनी है, अच्छा ठीक है हम फावड़ा लेकर के आ जाएंगे, दीवारें रंगनी पोतनी है तो आर्टिस्ट बुला लेना। तो हम लोग ने शनिवार और रविवार हमारा डेडिकेटेड ही कर लिया था इस चीज के लिए ही। इसी टाइम के अंदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे हाथ लगा था। बैंगलोर के अंदर में था मैं, और मैं तो गया था घूमने के लिए, और वहां मैंने देखा कि एक बच्चा हथौड़ी लेकर के पेड़ों में से खील निकाल रहा है। वो नेल्स होते हैं ना, अचंभित हुआ। मैंने बोला यार ये क्या कर रहा है? तो बोला नहीं मैं कुछ नहीं, मैं पेड़ नहीं लगा सकता, पर मैंने सोचा कि यार पेड़ों के अंदर में लोगों ने नेल्स बहुत लगा दिए हुए हैं, तो इनको
1: अच्छा
0: भी दर्द होता होगा, या फिर ये है तो आयरन रस्ट, तो अगर रस्ट के कारण उसको जख्मी हो जाता है तो मैं ये निकालने का काम करता हूँ।
1: जी
0: बोले अद्भुत बात है। और उसके साथ में अचंभा ये हुआ कि इतना अच्छा कार्य करने के टाइम पे भी कोई उसके साथ में नहीं था। बोले ठीक है चलो मैं जुड़े जाता हूँ।
1: जी
0: और हमने ऐसे करते करते लगभग उस दिन 12-13 पेड़ में से पूरी खील निकाल करके उसको हील करके ठीक किया। तो
1: जी
0: मैं बोले अब कब आना है? तो बोले भैया अगले शनिवार को। तो फिर
1: जी
0: हम चले गए। अगली बार मैंने 5-6 दोस्तों को उठा लिया, क्योंकि वही जुनून वाला हौसला था।
1: जी
0: तो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत, एक हथौड़ी चाहिए होती है, तो वो हर शनिवार की मेरी आदत बन गई थी, क्योंकि बैंगलोर में शनिवार रविवार छुट्टी होती थी।
1: जी
0: अब आप मानेंगे नहीं, वो 3-4 वीक तो मेरे साथ में आया, 3 या 4 वीक तक हम रेगुलर आया। 5वें 6वें वीक मैंने सोचा अगर वो नहीं है तो मैं तो काफी टाइम के लिए था, तो मैं खुद चला गया। फिर मैंने फोन किया, मैं बोला भाई, अरुण नाम था उसका, बोला अरुण भाई आप क्यों नहीं आए हो? बोले भैया मेरी जॉब लग गई है, और तब मैं फ्री था तो मैं ये काम करता था, पर अब मेरी जॉब लग गई है तो अब मैं तो नहीं आ
1: क्या
0: पाऊंगा।
1: बात जी
0: मैंने बोला यार ये गजब बात है। बोले तो फिर, बोले नहीं मैं तो फ्री था, तो मुझे लगा मैं फ्री बैठे बैठे क्या करूं, मैं ये पेड़ों को हील कर देता हूँ, मैं रेगुलर तो अब तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आपको करना है तो आप चालू रखो। तो सोचो
1: जी
0: कि जो अब आपको कुदरत आपको निमित्त बनाने वाली होती है, इनको कहीं से भी कुछ ना कुछ तो वो संयोग स्थापित कर ही देती है। तो
1: जी
0: बस वो संयोग इसी तरीके से स्थापित हुआ, और मेरे को लगा कि नहीं यार इस प्रोजेक्ट को थोड़े और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। और उसके बाद में फिर अहमदाबाद से शुरुआत करी, बैंगलोर के अंदर में अलग अलग जगह लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ों को इस तरीके से हमने मुहिम छेड़ करके, और पेड़ों में से कील और जो भी एक्स्ट्रा ट्री गार्ड होते हैं तो वो सब अंदर चला जाता है, तो उसको गैस कटिंग से निकाल करके पेड़ों को एक अभियान से कीलों से और रेलिंग से मुक्त करने का काम किया। तो
1: जी
0: बस के बाद में संस्था ने मुझे नवाजा।
1: क्या बात क्या बात। तो आपकी बातचीत में एक बात निकल कर आई कि मैं उस समय प्रीत के लिए कर रहा था।
0: हाँ
1: हाँ जी। तो यहीं पर जुनून की बात आ जाती है कि वो क्या जुनून है, ऐसे कैसे ये आदमी को अपने पर हावी हो जाता है, कैसे हमारे मस्तिष्क में जुनून आ जाता है। आपको ये जुनून कहाँ से मिला, किसी
0: मुझे तो
1: को देखकर या अपने आप ही आया? क्या
0: अपने आप ही,
1: प्रॉब्लम,
0: मुझे
1: तो मैं वो प्रोसेस समझना चाहता हूँ आप जैसे एक समझदार व्यक्ति से जिसने जुनून खुद देखा है, और अब तो आप एक नहीं दो जुनूनों पे काम कर रहे हैं।
0: मैं लगभग 20 से ज्यादा जुनूनों पे काम कर रहा हूं।
1: क्या बात है, फिर तो आप जुनून मैन हो गए।
0: यही चीज मैं बोलता हूँ ना कि आप सोच लो ना तो माता रानी सब कुछ निमित्त तो कर ही देती है। और
1: जी
0: मेरे सारे, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा चोर हूं,
1: जी
0: मेरे से अच्छा चोरी कोई नहीं करता है।
1: जी
0: और मैं क्या चोरी करता हूँ, मैं आइडियाज चुरा लेता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है कि यार आप ही अच्छा काम कर रहे हो ना, चलो ना मैं भी करूंगा।
1: जी
0: यही चीज, अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे होंगे ना, मैं बोलूंगा कि हाँ मैं आपसे इंस्पायर हो गया हूँ, अब ये काम मेरे को भी आप या तो साथ में जोड़ लो, या फिर यही चीज आइडिया मैं कहीं ना कहीं रेप्लीकेट कर लूंगा। और एक बहुत अच्छी पिक्चर है, वैसे मैं बहुत सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब
1: जी
0: सलमान खान का नहीं, सलमान खान की पिक्चरों का। तो जो रियल लाइफ
1: हाँ
0: वाला सलमान खान है वो थोड़ा मेरे को कम पसंद है, पर वो रियल लाइफ के अंदर में है ना,
1: हाँ
0: उसकी बहुत अच्छी पिक्चर है किक। जैसे आप वर्ड यूज करते हो ना जुनून, वैसे वो पिक्चर है किक। तो मैं लोगों को ये

0: को किक नहीं मिलती है।
1: हाँ,
0: दो तीन काम तो आप आसान से कर लोगे, एक जीवन मिला है आपको, उसमें अगर आप एक ही चीज करते रहे, चलो आप उसमें निपुण बनते हो, निष्ठावान बनते हो, वो अच्छी बात है
1: जी।
0: पर अगर आप अपना भाव थोड़ा और उजागर करोगे ना, तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। और कोई भी सारी चीजें गुण कैसे सीखने चाहिए ना, उसके लिए कृष्ण भगवान को आपको आदर्श मानना चाहिए, 64 गुण से वो निपुण थे। तो आपको एक अच्छा नृत्यकार भी होना जरूरी है, आपको अच्छा संगीतकार भी, अच्छा आपको खाना भी अच्छा बनाना आना चाहिए, आपको बातें भी अच्छी करनी आनी चाहिए, सब चीज का जीवन के जो नवरस है ना, उस सब चीज में आपको एफर्ट डालने चाहिए। और आप माता का आशीर्वाद रहेगा, आप दिल से करोगे ना तो बहुत सारी चीजें अच्छी होगी। तो वही सोशल वर्क के वो एंगल तो था ही कि हाँ, एक जीवन मिला है तो समाज को थोड़ा सा, ज्यादा आप बदलाव नहीं कर सकते हो, पर थोड़ा भी अगर आप किसी एक की भी जिंदगी बदलोगे ना, तो आपको अपनी जिंदगी बना लेगा। तो मेरे को दुनिया की जिंदगी नहीं बदलनी है, पर किसी एक की पूरी दुनिया बदल देनी है। तो जिससे भी अगर जुड़ते हैं, बस आप कोशिश करते रहिए, रिजल्ट पे आप फोकस मत करो कि यार आज मैंने क्या बड़ा कर दिया या कुछ। आप एक के लिए भी मदद कर रहे हो ना, जैसे हम लोग सेंचुरियन डोनर हूं मैं, मतलब 180 बार ब्लड और एसजीपी डोनेट किया हुआ है। तो मुझे लोग बोलते हैं यार क्या मिलता है तुमको, मैंने बोला यार मेरे को कुछ नहीं मिलता, मेरे को मजा आता है। पर वो जो बंदा, उसको समय पर खून मिल गया या एसजीपी मिल गया, उसकी पूरी जिंदगी उसने वो जी ली होगी। तो छोटा छोटा से आप काम करते हो ना, आप रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, आप छोटा छोटा काम करो, बहुत बहुत आनंद आएगा। और वही एक किक मिलेगी आपको, वही जो जुनून होगा तो सुकून होगा।
1: जी, तो जुनून से सुकून तक की यात्रा हम देख रहे हैं, और सुकून के ही पलों में आप साउंड हीलिंग के की सेवा से भी जुड़े हुए हैं।
0: जी,
1: अभी हम आपसे बात करेंगे तफसील से। तो जो श्रोता अभी हमसे देरी से जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथ मिलन बुचीवाल जी हैं, जो अहमदाबाद से आते हैं, आप राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं, और इसके साथ साथ आप एक जुनूनी हैं, और जुनूनी होने के साथ साथ आप लगभग आप 20 से ज्यादा शीट्स में काम कर रहे हैं सोशल सर्विस को लेकर। तो वो अभी हम कुछ तो जान पाए हैं, जैसे आपने इशारा किया कि आप वंदे बसंती एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और मैं दिल्ली में जब था मिलन जी, तो आपको बताऊं कि जो ओवर ब्रिजेस होते हैं, उनके जो अंधेरे कोने होते हैं, उनमें आर्ट गैलरीज डेवलप की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन को श्रेय भी दिया जा सकता है, इस मंच पर बात की जा सकती है उनके साथ में भी। तो उस आर्ट गैलरीज में उन्होंने बहुत सारी एक अच्छी रोशनी की व्यवस्था कर दी, और अपनी कुछ कलाओं को वहाँ पर प्रस्तुत किया डिफरेंट डिफरेंट शैली में। तो बस लोग वहाँ पर जुटने लगे देखने के लिए। तो वो, और वो अंधेरे कोने जो शायद अपराधों के लिए काम आते थे, वो रचनात्मक तरीके से काम आने लगे। तो शायद कुछ ऐसा ही आइडिया पे आप भी काम कर रहे होंगे, क्या अनुभव रहा इस दौरान?
0: अनुभव बहुत शानदार रहा, और जिनको पेंटिंग नहीं आती थी ना, वो भी अपना हौसला लेकर के आ गए थे कि चलो हम आर्टिस्ट जितना अच्छा पेंट नहीं कर सकते, पर आर्टिस्ट को पेंट करने के लिए बेस तो चाहिए होगा ना, उसके आजू बाजू की जगह तो साफ सफाई करने की जरूरत पड़ेगी। और लोग हमेशा बोलते कि अरे यार मेरे पास फंड नहीं था, या फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास पैसे आ जाते ना तो मैं और भी अच्छा काम कर सकता था। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, क्या पता शायद वो फंड भी आप ही का इंतजार करोगे, यार तुम कुछ काम करने लगोगे ना तो मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा।
1: क्या बात है।
0: जी, जी। तो आप मानोगे, एक भी प्रोजेक्ट में मैंने आज तक कभी किसी को हाथ नहीं फैलाया कि यार मुझे पैसे चाहिए होंगे, और चाहिए भी नहीं होते। आप मानोगे नहीं, हमने लगभग 200 से ज्यादा जगहों को तब्दील किया होगा अहमदाबाद के अंदर में। हम लोगों को बोलते हैं कि यार प्लीज तुम इस समय पे आना, पेंट वाली कंपनी सामने से आके बोलती है कि यार ये हमारे पास में रहा 100 लीटर 200 लीटर जो भी आपको पेंट चाहिए आप आके ले जाना। आजू बाजू के कैफे वाले होते हैं, वो सामने से बोलते भैया इतनी सारी भीड़ आएगी, हमारा एक पोस्टर लगा देना, आपके लिए नाश्ता हम भेज देंगे। जो खुर्ची और कुर्पी चाहिए होते हैं, वो सब लोग अपने आप ले करके आ जा रहे होते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो अभी तो खैर, मैं तो उस जमाने से हूँ जब मैं लोग बोलते थे या तो तुम चुरकटों में हो या ऑर्कुटों पे हो। ऐसा है। तो मैं तो वो ऑर्कुट के जमाने वाला हूँ, वो इंस्टाग्राम फेसबुक तो अब नई तकनीकें आ चुकी है, तो लोग थोड़ा सा और चीजों को बड़े पैमाने पे लेके चले जाते हैं। तो हम वही ऑर्कुट का इस्तेमाल करते थे, और लोगों को बोलते थे कि मुहिम छेड़ी है तो आप आना, और कंपनी बोलती थी कि यार आप नाम लो ना लो वो आप पे जाना जाएगा। तो बस इस तरीके से पूरा एक माहौल बना। फिर म्यूजिशियंस आ जाते थे कि आप लोग, हमको आर्ट तो आता नहीं है, हम वहां पे बैठ के गाना बजाना करते रहेंगे तो एक अच्छा माहौल जम जाएगा। तो सोचिए और क्या चाहिए मुझे, ना मैंने पेंट के पैसे दिए, ना चाय नाश्ते के पैसे दिए, ना वो संगीतकारों को कोई पैसे दिए, सब अपने अपना टैलेंट लेकर के आए थे और वो इवेंट पूरा अच्छा बन गया। तो ऐसे अलग अलग अलग अलग अलग, अलग सोच चलती रही। हमारे यहाँ पे नैन्सी करके बंदी थी, नैन्सी का ये प्रोजेक्ट था और वो भगत सिंह साहब को बहुत अच्छा, मतलब बहुत धुनी बच्ची थी। तो उसने वही बोला कि यार मेरे को रंग दे बसंती नाम रखना है और ये जितना भी शहर गंदा है, मतलब इतनी जुनूनी थी कि उसका तो बस चलता तो वो रातों रात पूरा शहर तब्दील कर देती।
1: बढ़िया। तो ये रंग दे बसंती की कहानी के लिए हम कभी नैन्सी से भी बात करना चाहेंगे आपके माध्यम से।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, ये जो पुरस्कार आपको राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया, ये क्या काम कर रहे थे? आपने बताया, इशारे में तो बताया आपने कि आप पेड़ों के साथ काम कर रहे थे, उनके आसपास जिस गिरफ्त में थे उस गिरफ्त से उनको आजाद दिल करा रहे थे। तो
0: जी
1: क्या लर्निंग रही और क्या हमारे अचीवमेंट्स रहे, उपलब्धियां रही इस बीच में, इस पूरी प्रक्रिया में?
0: तो क्या होता था, जाने अनजाने में लोग जो पेड़ों को भी है ना एक एडवर्टाइजमेंट का माध्यम बना दिया था। अब थोड़े खैर कम हो गए हैं। तो लोग क्या करते थे कि कील से नेल से इंटैक्ट करके पेड़ों पे अपने एडवर्टाइजमेंट भर भर के लगा देते थे, पीजी के, स्कूल के, इसके उसके सब चीज के। अब वो एक बार लगाया जाए तो समझ में आता है। अब एक पेड़ पे कम से कम 250 300 400 कील से पूरा ठोक ठोक के ठोक ठोक करके वो बोर्ड पूरी जो उसकी ट्रंक है उसको बर्बाद तहस नहस कर देते। अब होता क्या है कि है तो वो लोहा और लोहे में लगती है जंग, और वो जंग के कारण ट्री का जो पूरा ट्रंक है ना वो कमजोर हो जाता। अब उससे क्या होता था, आपका जो तना अगर कमजोर हो गया है तो हल्की भी बारिश या फिर थोड़ी भी आंधी टाइप की आती थी तो वो पेड़ गिर जाता था। तो ये जो किस्से हमने अभी सुनने बहुत ज्यादा हो गए कि हाँ हल्की बारिश आई और फलानी जगह के 20 पेड़ गिरे, कारण उसका यही होता है कि आपका जो तना है पेड़ का वो बहुत कमजोर हो गया होता है वो लोहे की जंग के कारण। आपके शरीर के अंदर में भी जैसे हमको अगर लोहे का कुछ लगता है तो पहला हम बोलते हैं यार टिटनस का इंजेक्शन ले लो, नहीं तो जंग के कारण सेप्टिक हो जाएगा। सो वैसे ही वो सेप्टिक पेड़ों को हो ही जाता है। अगर आप देखेंगे तो छाल से जब आप कील निकालेंगे तो एक अद्भुत करुणा का आभास आपको होगा। तो वो चीज को खत्म करने के लिए हम लोग जितने भी पेड़ों से वो कील निकाल करके फिर एक वैक्स बना करके नेचुरल पद्धति से कैसे हम लोग कुदरती तरीके से वो पेड़ को हील कर सकते थे, तो वो हील करने का काम हम लोग, क्योंकि क्या होता है घाव होता है, अगर वो वहां पे से अगर हमने उसको भरा नहीं तो वहां पे फंगी लगने का चांसेस हो रहे होते हैं, वो फंगस के कारण फिर वो दीमक और सब पेड़ को खोखला कर देगी। तो एक वैक्स आता है, वो वैक्स के थ्रू से कील निकाल करके वो वैक्स से कील को वो छेद को भरना होता है। तो ऐसे लगभग 5 लाख से ज्यादा पेड़ों को अलग अलग शहरों में जाकर के लोगों को जागरूक करके हमने पेड़ों को बचाने का एक छोटा सा अभियान 2016 से शुरू किया था। आशीर्वाद ये है कि अब वो अभियान को बहुत ज्यादा उग्र कार्य शैली में करने की जरूरत एटलीस्ट गुजरात में तो मुझे नहीं पड़ी ऐसा, बिकॉज अब सरकार ने ही यहाँ पे बैन करके रखा हुआ है कि अगर आपका लोकल म्युनिसिपैलिटीज में से हमने फरमान जारी करवाया कि अगर आपका एडवर्टाइजमेंट पेड़ों पे दिखाई देगा तो एक अच्छा खासा दंड आपको भरना पड़ेगा। तो लोकल बॉडी से अगर आप सपोर्ट लेते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है।
1: जी, और हमारे देश में लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम भी काम कर रहा है,
0: जी
1: और पेड़ हमारी लोक संपत्ति है,
0: जी
1: निश्चित
0: जी
1: रूप से अगर उसको कोई खराब करेगा तो उन उस अधिनियम की धाराओं में उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई भी बनती है।
0: तो वही वही चीज था ना कि कुछ अपराध जानबूझकर होते हैं, कुछ अनजाने में भी हो जाते हैं। जैसे बाद में हमको पता चला कि जैसे म्युनिसिपैलिटी भी अगर पेड़ लगाती है तो आप देखेंगे वो लोहे की जाली लगा देती है, तो ताकि गाय या कोई पशु आकर के उनका विनाश ना कर दे। अब वो जाली लगा तो देते हैं, पर पेड़ तो पेड़ है, वो तो बड़ा होगा। एक समय पर वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो जाली उसके अंदर चल जाती है। तो फिर उसके बाद में हमको बताया कि अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो एक उसका ये भी देखो कि एक टाइम के बाद में आपको वो जाली निकाल लेनी हो रही होती है। तो अब गुजरात में तो खैर अच्छी बात ये है कि अब उन्होंने वो जाली फाइबर वाली लगाने शुरू कर दी है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही लोहा तो क्या होता है टूट नहीं पाता, अंदर सिकुड़ जाता है ना, ये वाला सिस्टम ऐसा है कि जैसे पेड़ बड़ा होता है वो जाली अपने आप फट जाती है। तो फाइबर की होती है, लॉक लगे हुए रहते, तो पेड़ का तना तो जैसे ही फैलता है तो अपने आप निकल जाता है। अगर कोई भूल भी गया हो भूल से कि ये ट्री गार्ड हम कैसे निकाले, तो वो अपने आप निकल जा रहा होता है। तो संस्थाएं हैं, अगर आपको उनको भी आप समझाते, जैसे ट्री गार्डनिंग बैरिकेडिंग जो होता है, अभी सब क्या करते हैं वो पाइवोटल्स उनके मिट्टी के पूरे बना देते हैं। अब उससे क्या होता है, वो करना चाहते हैं कि वहां पे आके बैठ सके लोग और अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सके, या फिर चबूतरे जैसा बना करके वहां पे गाय के लिए रोटी या फिर पक्षियों के लिए अनाज डाल सके। अब उससे होता है क्या, जाने अनजाने के अंदर में कि हम पेड़ को पानी देने का रास्ता ही जो है वो खत्म कर देते हैं। सो हमने उनको समझाया कि अगर आपको ये बैरिकेडिंग कर रही है या पाइवोटल्स बनाने हैं तो आप थोड़ी जगह ऐसी रखें जो जमीन दोस्त हो, ताकि बारिश का पानी या किसी को पानी ना तो चाहिए ही ना, मतलब सबको स्रोत तो चाहिए जीवन का। तो ये छोटी छोटी चीजों का अभियान हमने छेड़ा था और एक अच्छा मार्गदर्शन मिला सारे दोस्तों का, अनुभवी लोगों का, और कार्य प्रणाली को हमने थोड़ा सा और विस्तृत करने की कोशिश करी तो अच्छा रिजल्ट आया। अब पेड़ गिरने कम हो गए और लोगों को और अच्छा लगने लगा कि हाँ कुछ नई सोच नई विचारधारा पे भी काम हुआ।
1: जी श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं मिलन बुजीवाल जी जो अहमदाबाद से आते हैं और आप उनको सुन रहे हैं रेडियो मधुबन के अपने फेवरेट प्रोग्राम जुनून है। तो मिलन जी से हमारा मिलन आज हो ही गया और इस मिलन की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिल रही हैं। तो इस अभियान का क्या नाम रहा, ये अभियान किसी बैनर के तले रहा या एक इंडिविजुअली आपने वॉलंटियर्स की टीम के माध्यम से किया? और आपको बताऊं मिलन जी, जी मिलन जी, और आपको बताऊं कि दुनिया को बदलने में वॉलंटियरिज्म का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। और लोग कहते हैं कि दुनिया को वॉलंटियर्स बदलते हैं ना कि शासक या राजनेता। जी आपका क्या मानना है?
0: बिल्कुल सही बात है, और आपको सिर्फ सोच से जुड़ना होता है और आप मानेंगे नहीं कि वो पहला कदम उठाना ही टफ है। आप वो पहला कदम एक बार उठा लेंगे ना, क्योंकि हर वो बंदा संकोच में है कि यार मैं वो काम करूं या ना करूं। इसलिए मैं बोलता हूँ ना मजाक मजाक में कि यार मैं बहुत अच्छा चोर हूँ, वो पहला कदम उठाना मेरे को बहुत अच्छा आता है। तो जो भी आइडिया अच्छा लगता है मैं उसको, आप कुछ नहीं दे सकते किसी को तो एक उत्साह दे दो। वो उत्साह ही इतनी अद्भुत चीज है ना, फिर लोग वो प्रोजेक्ट को अपने आप आगे ले जाएंगे। तो सेव द ट्री भी यही चीज था कि हमने इसका नाम बहुत सिंपली रख के रखा सेव द ट्री, क्योंकि हम पेड़ को बचाते और कुछ करते नहीं है, तो बहुत अतरंगी नाम रखने का दिमाग चलता नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा दिया नहीं है भगवान ने, बहुत छोटा सा दिमाग देके रखा हुआ है
1: जी।
0: तो और जितना सरल होता है ना उतना संचय होता है कि हाँ इसको रखा जा सकता है दिमाग में। इतनी मेरी 1 TB या 5 TB की मेमोरी है नहीं, 512 MB का ही है मेरा दिमाग, तो जितना चलता है उतना चला लेता हूँ। तो इस तरीके से हुआ था और बस लोगों से बात करी, और जो भी थोड़े आरजे थे अहमदाबाद के, मीडिया थी, तो उनसे हम लोग यही रिक्वेस्ट करते थे कि ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं, आप सिर्फ आपको अच्छा लगता है तो आप अपने न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में इसका आर्टिकल डाल दीजिए, तो अगर किसी को जुड़ना होगा तो वो अपने आप हम लोग से संपर्क में आ जाएगा। क्योंकि अच्छा कार्य होता है ना तो जुड़ना सबको होता है, पर वो यही सोचता है कि यार मैं कहाँ कनेक्ट हूँ। तो हम लोग वो अवेयरनेस के लिए लोगों को बोल देते कि यार आज के टाइम के अंदर में, जैसे मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मुझे तो डोनेशन मांगने का अधिकार है। मैं हमेशा मजाक मजाक में बोलता हूँ कि यार मेरे को तो दान मांगने का कुदरती और कार्मिक आधार है मेरा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये जो ये भी दान स्वरूप ही होगा कि अगर मैंने कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ अच्छा रखा है तो उसका शेयर का बटन आप दबा दो, उसको भी मैं दान स्वरूप ही मानूंगा। और वो भी आपको 11 गायों का जो दान आपने किया ना, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, ये एक ब्राह्मण का वचन है
1: जी।
0: तो वो इतनी सरल भावना के कारण बोले हाँ ठीक है चलो अच्छी चीज शेयर ही कर देते ना। अब उनके नेटवर्क में शेयर होती है, बात लोगों तक पहुंचती है, तो लोगों को लगता है हाँ यार इस चीज से जुड़ सकते हैं, ये सरल सा काम है, ये कर लेते हैं। बस इस तरीके से ही हम लोगों को जोड़ते गए और अलग अलग चीजें होती रही। एक बहुत अच्छा इसी अनुभव के साथ में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने किया था
1: जी।
0: जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं
1: जी,
0: उनके एग्जाम के पेपर लिखने के लिए लोग नहीं मिलते हैं और आज भी ये बहुत बड़ी दिक्कत है।
1: क्या बात,
0: इतने हुनर वाले बच्चे होते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई करी भी होती है, पर एग्जाम का पेपर उनको लिखना पड़ रहा होता तो उनको राइटर की जरूरत पड़ रही होती है। और कुछ बच्चे हमेशा सदमे में रहते हैं कि अरे यार मैंने पढ़ लिया है, सब कुछ आता है मेरे को, मैं लिख पाऊंगा या नहीं। तो हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा विद्युत करके बच्चा है, उसने बोला बोले भैया अगर आप मदद करोगे ना तो मैं ब्लाइंड पेपर्स के बच्चों के एग्जाम लिखने के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो आज भी अहमदाबाद के अंदर में हम हर रोज लगभग 150 से 200 ब्लाइंड बच्चों के पेपर लिखने के लिए जब एग्जाम का टाइम आता है तो पूरी टीम अलग अलग जगह, एक प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही होती है कि हाँ यार ये पूरा लिस्ट बनता है, इस फलाने बच्चे का एग्जाम का सेंटर ये है तो नवीन भाई उसका एग्जाम लिखने के लिए जाएंगे, तो एक बंदा नवीन को बताएगा कि नवीन भाई तुम्हारा सेंटर यहाँ पे है और तुमको आशीष का एग्जाम लिखना है, इस तरह की पूरे क्यूरेटेड वे। एक भी बच्चा जो थोड़ा भी भले उसको कुछ नहीं आता हो पढ़ना लिखना और उसको एग्जाम देने की इच्छा अगर जागृत हुई भी है तो उसको जितना आता है उतना लिखने के लिए राइटर उसको मिल जाएगा। ये एक्टिविटी काफी, ये भी मेरे को बहुत दिल से छुई हुई है कि हाँ यार एटलीस्ट किसी को ये तो नहीं था कि यार मेरे को आता सब कुछ था पर मेरे को लिख नहीं पाया
1: जी। और बीइंग अ विजुअली चैलेंज व्यक्ति मैं समझ सकता हूँ इस बात को, मेरी परीक्षाओं के दिनों में मुझे कितना स्ट्रेस होता था ये मुझे मालूम है।
0: अच्छा
1: जी जी जी जी जी जी, तो मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ और इसको लेकर स्क्राइब की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को उतना ही दिखा सके जितना आप हैं।
0: जी जी जी जी हाँ,
1: मैं भी इस मुहिम को लेकर सपोर्ट करता रहा हूँ और अपने शहर में कोशिश करता रहता हूँ कि जहाँ मेरी पोस्टिंग होती है या जहाँ मैं रहता हूँ तो वहाँ पर कुछ कर सकूँ। तो मैं मज़ा आ गया इस बात को लेकर कि भी आपने इसको भी लेकर भी आपने एक पहल की, इस अभियान को भी कुछ आपने नाम दिया या ये
0: नहीं कुछ नाम नहीं कुछ ना, वो शेक्सपियर ने बोला ना नाम में क्या रखा है, वो पता लगे उन्होंने नीचे अपना नाम लिखा है
1: जी।
0: हमने सिंपल कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के एग्जाम लिखने हैं तो आप आ जाइएगा, अद्भुत। और यही ये जो आपने बात बहुत अच्छी करी, कुछ बच्चे ऐसे बोल देते कि अगर आपको आता है तो आप लिख दो, तो हम लोग बहुत रिक्वेस्टफुली बोल देते कि यार प्लीज ये मदद मत करना, बिकॉज क्योंकि शायद कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसने अपनी मेहनत का ही लिखवाया हुआ होगा तो उसके साथ में ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको आता है तो आप पूरा पेपर भी शायद लिख दोगे या फिर आप एक एहसान कर दोगे उसके ऊपर, पर आप उसको कोई काम नहीं आने वाला है उसके, क्योंकि उनके पास में पूरे साल एक ही चीज का काम है कि वो पढ़ाई करे अच्छे से, जितना उनको आता है तो उतना ही आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो ये हम लोग थोड़ा सा
1: रिक्वेस्ट, इंटीग्रिटी की बात है, एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की बात है जो हमारे वॉलंटियर में होनी चाहिए। हम सभी बच्चों के साथ भी न्याय कर पाएंगे और उन बच्चों के बीच में आपस में भी न्याय कर पाएंगे
0: जी।
1: ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक बेहतरीन बात। अब हम आपकी एक और दूसरे जुनून की तरफ बढ़ते हैं जो शायद स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, या कहें तो ऐसा काम है जो हीलिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब सेवा का काम है, मानवता की सेवा का काम है एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस विधा को लेकर आपने कैसे शुरुआत हुई और इसकी इस दुनिया के बारे में बताइए ना थोड़ा सा क्या है ये।
0: तो मेरा बैकग्राउंड, मैं पहले बजाया करता था गिटार, मैंने जिंदगी के लगभग 10 साल मैंने गिटार की सेवा वेस्टर्न म्यूजिक में अपना समय बिताया
1: जी।
0: और उसके बाद में वो बहुत शोर शराबे वाला जीवन था, मतलब आप रॉक बैंड में होते हैं और आप मतलब इतना डिस्टॉर्टेड म्यूजिक आप बजाते हो और आप सुनते हो ना, तो अच्छा, तो वो भी एक अनुभव, अच्छा अनुभव। तो मैंने बोला जीवन के नव रस होते हैं, सब रस का एक अपना ही मजा है।

0: वहां से मैं आपको आजाद करके मैंने सितार को अपनी सेवा देने की कोशिश करी और लगभग 6 साल सितार सानिध्य में मैं रहा। और फिर उसके बाद में कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सितार के साथ में आने से ही हुआ कि अलग अलग स्पिरिचुअल हीलर्स से मैं मिला। और फिर एक बार मैं ट्रिप कर रहा था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो वहाँ पे भालुकपोंग नाम की एक जगह है। हाँ, तो वहां पे मेरा परिचय हुआ हिमालयन गोल्ड से, और बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस रहा कि जैसे जल तरंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसे कांसे के पंच धातुओं के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उससे आप डीप मेडिटेशन करते हैं। और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स फिर उसमें ऐड होते हैं, उसमें रैटल्स ऐड होती है। मतलब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, किसी आपको मिलेंगे नहीं, ये हाथ से खुद ही आपको बनाने पड़ते हैं अलग अलग चीजों को मिला करके। तो वो क्योंकि संगीत से अनुभव था और स्पिरिचुअल वर्ल्ड थोड़ी प्रेरणा स्वरूप था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ताकत है। तो मैं ये ताकत में जरूर मानता हूं कि कुदरत में, मैं जैसे ये पेन अगर मुझे दे दिया गया है, अगर ये पेन मुझे बोला जाए कि 1 घंटे ऐसे पकड़ के रखना है, ये मैं पेन कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये शायद मुश्किल से 15-20 ग्राम का पेन होगा, पर कहीं ना कहीं ये इतनी इतनी बड़ी जो पूरी माँ हमारी धरती है, ये बिना किसी सहारे के खड़ी अपने समय से घूम रही है। सारे के सारे जो पर्यावरण है, नीति नियम, आप 1-2 घंटा शायद लेट हो जाते होंगे उठने में, छुट्टी भी मना लेते होंगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर में, और जो कुदरत ने अपने साइकिल बनाई हुई है उसमें किसी की कोई छुट्टी नहीं है, और अनंत वर्षों से। तो आप मानो या ना मानो, कुछ तो पावर है, कुछ तो शक्ति है जो ये सारी चीज को नीति और निमित्त दोनों ही साक्षर कर रही है। तो बस वो खोज के अंदर में लग गए। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कुछ आप जीवन में करते हो और आपको पता ही नहीं होता है कि यार ये कैसे हो गया। अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दूं, तो भारत पाकिस्तान का मैच था, विराट कोहली, हम सब जानते हैं कि विराट कोहली को हम सिक्स मारने में कभी फेमस नहीं है, वो चौके बहुत अच्छा मारते हैं, कवर ड्राइव बहुत अच्छा मार रहे होते हैं, पर वो हाफिज भाई साहब को जो उन्होंने सामने छक्का मारा था, वो आज भी उससे अगर पूछो इंटरव्यू, बोलते हैं यार मुझे नहीं पता है कि वो सिक्स कैसे लगा था, बस कोई चमत्कार था वो उस दिन वो लग गया। आज अगर अब आप मेरे को वापस से बोलोगे ना, और ये खाली नहीं कि बड़े बड़े लोगों के जीवन के अंदर में ही, सूर्य कुमार यादव को आज भी अगर आप पूछोगे ना यार वो कैच कैसे किया, उसने बोला था कि मैंने प्रैक्टिस करके रखी हुई थी, पर उस टाइम पे कैसे हो गया उसी क्षण के अंदर में। तो ऐसा आपके जीवन में भी बहुत बार हुआ हुआ होगा कि सब आपने अपने जो भी कुल है, जो भी भगवान में आप मानते हो, आप अल्लाह में मानते हो, आप यीशु में मानते हो, या आप भगवान में मानते हो, माता रानी में मानते हो, किसी में भी मानते हो, किसी भी जीवन में जो साक्षर रूप आप मानते होंगे, वो यथाशक्ति आपके जीवन में स्तोत्र रूप आकर के आपको मदद करता है। आपको लगता है कि यार ये शायद नहीं होता, पर कुछ तो मैजिक हुआ और ये हो गया। तो बस उसी चीज के साथ में मैं अपने आप को कनेक्ट करता हूँ मेडिटेशन के थ्रू से, और अध्यात्म से थोड़ा जुड़ा हुआ हूँ कि यार ये शक्तियों को जितना और अनुभव कर सकूं। क्योंकि तो लाइफ में एक ऐसी चीज जो अगर मैं बोलूंगा ना कि आपके जीवन में वो होना ही चाहिए, वो है बिलीफ। आप कुछ भी चीज अगर आप सोचते हो कि आप जर्नलिस्ट बनोगे, तो आप पहले जर्नलिस्ट अपने दिमाग में बन जाते हो। फर्स्ट थिंग इज यू बिलीव कि यू कैन बिकम जर्नलिस्ट, और आप सोचते हो कि आप इतना बड़ा इंटरव्यू करोगे या फिर इतने लोगों के लिए इंटरव्यू करोगे, आप ये बिलीव निकाल दो अपनी लाइफ के अंदर में से, साहब आपका जीवन जो है ना वो रक्ति भर हो जाएगा। द पर्सन हु डोंट हैव बिलीव इज हेल्पलेस, इज जस्ट गुड टू लिव लाइक, दैट्स इट। तो आप हर काम, आप बड़े से बड़ा रिजॉर्ट भी बनाते हो, आप ब्रह्मा कुमारीज का इतना शानदार स्थल आप लोगों ने बना के रखा है, तो शायद वो किसी एक बंदे का बिलीव था कि यार ऐसा कुछ इतने आध्यात्मिक रूप में बन सकता है या बनाया जा सकता है। और उसके बाद में फिर लोग आते जुड़ते, एक अच्छा शिल्पकार आता है, मैं मेरी मेहनत से यहाँ करूंगा, एक अच्छा रंगकार आता है वहां से वो कलर करूंगा, एक अच्छा बढ़ई आता है वो बोलता है मैं यहाँ का फर्नीचर बनाऊंगा, पर वो बिलीव किसी एक इंसान का होता है। इतनी शानदार लोगों, इतनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना है तो एक रेडियो का माध्यम वो एक इंसान का बिलीफ होता है कि यार कुछ तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा जहां पे लोग अपने समय के अंदर में आकर के बैठेंगे और सुनेंगे। वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। जो सब चमत्कार है ना वो बिलीफ ही है, और आई बिलीव ये सब चीजें पॉसिबल होती है साहब, सब चीजें पॉसिबल।
1: आप डेथ मेटल से लाइव म्यूजिक की तरफ चले गए, तो आप कुछ दिखाना चाहेंगे लाइव हमारे श्रोताओं को, कुछ साउंड से परिचय कराना चाहेंगे?
0: बेसिकली बोल है, इसको हिमालयन बोल भी बोलते हैं, सिंगिंग बोल्स भी बोलते हैं, हीलिंग बोल्स भी बोलते हैं, पर जहां मैंने सीखा है वहां हमारे यहाँ इसको हिमालयन बोल्स कहा जाता है। सो ये वाइब्रेशन पे भी काम करता है और फ्रिक्वेंसी पे भी काम करता है। सो आई डोंट नो आप इसकी आवाज सुन पा रहे हैं?
1: हाँ सुन पा रहे हैं।
0: तो ऐसे लगभग 7 अलग अलग टोन्स होते हैं, तो अलग अलग साइजेस के अंदर में, जैसे ये है, ये थोड़ा और बड़ा साइज है, सो अलग अलग साइजेस पे ये काम कर रहे होते हैं। फिर ये टाइम्स है,
1: क्योंकि हम रेडियो के माध्यम पे हैं तो आपको इसका नाम और साउंड से परिचय कराना होगा हमारे श्रोताओं
0: जी। इसका साउंड, ये इसको हम लोग बोलते हैं कोशी चाइम्स
1: जी। और इसका साउंड कैसा हुआ?
0: मैं आपको रैटल्स की आवाज सुना देता हूँ।
1: हाँ
0: ये रैटल्स है, ये बनते हैं कनेर की गुठलियां आती है, और कनेर की गुठलियों को जोड़ जोड़ करके ये, अगर आप सुनेंगे तो झरने में से पानी बह रहा हो उसके जैसी आवाज इसकी आ रही होती है। फिर ये है कोकोनट रैटल, ये कोकोनट के जो सीड्स आ रहे होते हैं, छाल सॉरी, कोकोनट की जो छाल है उससे ये इंस्ट्रूमेंट बना होता है। फिर जो घुंघरू होते हैं वो घुंघरू से ये रैटल बनता है। तो ऐसे अलग अलग लगभग 50-60 से ज्यादा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फिर चिड़िया की आवाज के लिए एक पिकॉक इंस्ट्रूमेंट आ रहा होता है, उससे अगर आप सुने
1: तो श्रोता हूँ। तकनीकी खामी की वजह से अभी हम आपको साउंड से तो परिचय आपका नहीं करा पाएंगे, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे मिलन जी को कि वो इस दुनिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, इसके दर्शन पे बात करें और ये कैसे लाभकारी है हम लोगों के लिए पर बात करें।
0: सो लाइफ इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन, मतलब अगर आपके जीवन में वाइब्रेशन है इसका अर्थ है कि आप जीवित है। वाइब्रेशन हर एक वो नब्ज, हर एक वो अंग, हर एक वो चीज जिसके अंदर में थोड़ा भी वाइब्रेशन है मतलब वो चलायमान है। अगर आपके हार्ट में वाइब्रेशन है मतलब आप जीवित है, अगर आपके ब्रेन में वाइब्रेशन अगर बंद हो गई है मतलब अब आप कोमा में जा चुके हैं। तो वैसे ही आपके पूरे शरीर के अंदर में हजारों प्रणालियां ऐसी है जो रक्त संचारित होती है, और वाइब्रेशन एक अच्छा माध्यम है अपनी कोशिकाओं को और अपने पूरे के पूरे शरीर को एक अच्छा सरल और अनुभव कराने का कि आप शांत रह सकते हैं। तो इनके जो साउंड होते हैं वो वाइब्रेशंस, और इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती है वो आपके मन को खाली काम करती है। तो साउंड हीलिंग में बहुत सारा ऐसा मिथ है कि साउंड हीलिंग कैंसर ठीक कर देता है, साउंड हीलिंग आपका डायबिटीज ठीक कर देता है, साउंड हीलिंग आपका मोटापा ठीक कर देता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो बातें हैं मैं इससे थोड़ा सा परहेज ही रखता हूँ, ये प्रचार नहीं है, ये किसी भी चीज का दुष्प्रचार है, क्योंकि सोशल मीडिया में कंटेंट के नाम पे कुछ भी बता दिया जाता है कि हाँ साउंड हीलिंग से डायबिटीज ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। साउंड हीलिंग सिर्फ चार ही चीजों पे काम करता है। फर्स्ट, अगर आपको इंसोमिनिया है, अगर आपको नींद की शिकायत है। सेकेंड, आपको अगर ओवर थिंकिंग है सो उसके लिए। तीसरी जो चीज है स्ट्रेस, और चौथी और बहुत शानदार जो दोस्त हमने बना करके रखा हुआ है उसका नाम है डिप्रेशन। तो ये जो चार चीजें हैं उसमें एक ही चीज की जरूरत, आपको अपने मन को काम, दैट्स इट। और साउंड हीलिंग आपके अंदर एक कामनेस लाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब चीजों की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि लोग हर चीज में इवॉल्व हुए।
1: जी
0: जैसे अगर मैं सरल भाषा में आपको, लोग बोलते हैं कि यार साउंड हीलिंग से क्या होगा, क्या फायदा होगा, व्हाई वी शुड ट्राई साउंड हीलिंग, मतलब क्या जरूरत है इसकी। तो मैं एक साधक के रूप में ये बोलूंगा कि कोई जरूरत नहीं है। और किसी ने भी नहीं बोला है कि आप रेगुलरली इसको अपनाओ, ये वो, ये सिर्फ धीरे धीरे हम जैसे इवॉल्व हुए। जैसे खाना खाने की अगर मैं बात करूं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दाल, चावल, रोटी और एक सब्जी, इससे
1: जी
0: आपका पेट भर सकता है?
1: जी बिल्कुल
0: जी बिल्कुल भर सकता है ना।
1: जी
0: तो फिर पहले यही था कि अगर अच्छा खाना घर में बना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, बस बन गया, आपने अपना जीवन अच्छे से निश्वर कर लिया। अब
1: जी
0: धीरे धीरे हम इवॉल्व हो गए तो हमारे दाल, चावल, रोटी, सब्जी में सब्जी के प्रकार हो गए, चार दाल के प्रकार हो गए, तीन तड़का दाल, मखनी दाल।
1: जी
0: तो ऐसे ऐसे जीवन इवॉल्व होते रहा। उसके बाद में हमने दाल चावल के साथ में आप पिज्जा लेकर के आ गए, आप बर्गर लेकर के आ गए, आप भाकरी लेकर के आ गए, आप खांडवी लेकर के आ गए। तो सब चीजें, जैसे हमारा खाना इवॉल्व हो गया, पेट तो भर सकता था खाली दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाकर, वैसे ही बेसिक मेडिटेशन साधना से ही आप अपने जीवन के अंदर में सोलफुल कनेक्शन में जा सकते थे। पर क्योंकि लोगों को मेडिटेशन बहुत टफ लगने लगता है कि अरे कैसे ध्यान करे, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको सहारा देते हैं। तो
1: जी
0: वैसे खाना दाल रोटी से पेट भरता था, पर ये चार पांच चीजें और आ गई। तो किसी को तोरू की सब्जी नहीं अच्छी लगती है तो वो पनीर की सब्जी खा करके अपना प्रोटीन ले सकता था, या तो ऐसे अलग अलग चीज। तो वैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट आपको मदद करते हैं और काम होने में, और एक गाइडेंस मिलता है कि हाँ आप अपने आप को और काम कर सकते हैं, और एक कनेक्ट थोड़ा इजीली और जल्दी बैठ जाता है। तो जरूरी नहीं है खाली हिमालयन बोल से ही आप साउंड मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से, अगर आप सुन रहे हो तो 2-30 सेकेंड के अंदर में मैं आपको मेडिटेशन का एक सरल सिंपल ट्रिक बता दूंगा। अपने
1: जी
0: हाथों को लीजिए
1: जी
0: और ताली धीरे धीरे जोर जोर से बजाने का कोशिश करिए,
1: जी
0: आप भी करिए।
1: जी हाँ हाँ जी
0: अब आप सिर्फ अपने आप को अनुभव करिए, अपने हाथों को और वाइब्रेशन को।
1: जी बिल्कुल
0: मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आप और आपके श्रोता गण ये 15-20 सेकंड शायद कुछ सोचने की कोशिश भी करी होगी ना, नहीं कर पाए होंगे, और अभी भी आप उसका वाइब्रेशन अनुभव कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल
0: और आपके शरीर के हाथों के अंदर में ये जितने भी नसें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं किसी अंग से जुड़ी हुई है। इसीलिए बोलते हैं कि एक 10 मिनट का क्लैपिंग, ताली बजाना कोई बहुत बुरा काम नहीं है, आशीर्वाद ही मिलता है, अच्छा ही लगता है, माहौल अच्छा ही बनता है। तो दिन में 15-20 बार आप अपने सेहत के लिए ताली बजा ही लीजिए करिए, और ये वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करिए, और मेडिटेशन में आपका ध्यान बिल्कुल जाएगा। तो ये सबसे सस्ता, सुंदर और सरल तरीका है मेडिटेशन करने का कि आप ताली बजाइए, और जब तक वो वाइब्रेशन आपको आ रहा है, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ कि जब आप वो ताली बजा रहे होंगे और वो वाइब्रेशन फील कर रहे होंगे, ना आपको ओवर थिंकिंग आएगी, ना डिप्रेशन आएगा, ना इंसोमनिया, कुछ भी असर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर देते हो। सो बस यही सब चीजें हो रही होती है, और यही वाइब्रेशन आपके शरीर को मदद रूप बनते हैं।
1: जी, तो आपने बहुत सारी बातें विस्तार से आज की है और हम अभियानों से अध्यात्म की तरफ निकल गए। तो
0: जी
1: एक एक ही कार्यक्रम में अभियान पर भी बात हो गई और अध्यात्म पर भी बात हो गई, और शायद
0: जी
1: ये दोनों पक्ष मानवता के लिए जरूरी है। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसी कोई बात जो हम चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप साझा करना चाहेंगे, तो प्लीज आपके लिए मंच खुला है।
0: सिंपल सी चीज है, मैंने आपको 3-4 तरीके बताए हैं कि कि आप अध्यात्म से जुड़े रहें बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बिलीफ अगर होगा तो आप अपने आप को किसी भी फॉर्म में हील कर सकते हैं। नॉट ओनली हीलिंग, आप कुछ भी जीवन में कर सकते हैं। कोई ना कोई, मेरे को जापानीज लोगों का एक प्रोवर्ब बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं इंस्पायर करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ कार्य जीवन में किया है तो तुम कर सकते हो, अगर किसी ने कुछ कार्य कहीं पे भी किया हुआ है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर किसी ने कोई कार्य नहीं ही किया है तो तुम्हें कर ही लेना चाहिए।
1: क्या बात,
0: शायद तुम्हें ही उस चीज को करने के लिए निमित्त किया गया हुआ था, तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी ने किया है तो आपको तो कर ही लेना चाहिए, और अगर किसी ने नहीं किया, कोशिश भी नहीं किया, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप उसको कर ही लो। तो बड़े तेजस्वी लोग हैं साहब, और बड़े इंस्पायर्ड रहते हैं अपने अध्यात्म से और अपने कल्चर से, तो बहुत सीखने जैसा है। तो उनसे मैं, उन्हीं की जो आदर्श है उनको मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अपने जीवन में अपना ले, अपने जीवन में चुरा ले उसे, कि नई नई गतिविधियों में अपने आप को शामिल करे और अध्यात्म से जुड़े और बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग बनाए कि हाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो। और बहुत पावरफुल मैग्नेट है ये मेडिटेशन। सो योग तो है ही, योग के साथ में ये जो जोड़ है मेडिटेशन का, ध्यान का, वो ध्यान पे अपने आप को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और अद्भुत शक्तियों से आप अपने आप को साझा करेंगे। अगर बस जुड़ने की देरी है, वो बोलते हैं ना कि आपका मोबाइल तब तक ही ड्रेन्ड है जब तक वो कनेक्ट नहीं होता है सॉकेट के अंदर में। एक बार जैसे ही कनेक्ट हो गया ना, एनर्जी फास्ट चार्जर के रूप में काम करती है, तो वैसे ही कॉस्मिक कनेक्शन है कि वो सॉकेट में आपको अपना जो प्लग है ना वो कनेक्ट करना है, अद्भुत एनर्जी चैनलाइज होगी और ऐसी ऐसी चीजें आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे कि यार शायद ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं था, पर इफ यू वांट टू बी फ्रॉम ह्यूमन टू सुपर ह्यूमन यू हैव टू कनेक्ट विद कॉस्मिक एनर्जी आपको, और वो अध्यात्म के थ्रू से ही आती है। आप मुझे सुन लीजिए, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करना हो, मुझे मेरे शब्दों के लिए थोड़ी मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कुछ खराब भी करना हो तो भी वो अध्यात्म का पावर ही आपको उस शैली तक लेकर के जा सकता है। सो मैं विनाश की बात करने वाला इंसान नहीं हूं, पर मैं हमेशा यही बात करता हूं कि विकास का स्वरूप ही अध्यात्म है। तो बी कनेक्टेड एंड स्प्रेड ग्रेट पॉजिटिविटी एंड स्प्रेड ग्रेट अवेयरनेस जस्ट बाई कनेक्टिंग विथ योर कॉस्मिक एनर्जी।
1: और आपकी बात आप कह रहे थे तो मैं आपको बताऊं कि जब हिरोशिमा के ऊपर जब जिस टीम ने जिस फ्लाइट ने बॉम्ब गिराया, तो उनके पायलट ने और क्रू ने फिर बाद में किताबों में शेयर किया, अपनी अपनी बायोग्राफी में शेयर किया कि नॉर्मली हम जब बमबारी करके जब आते थे तो लौटते थे तो हम आपस में बात करते हुए आते थे और हमारे बीच में हल्की फुल्की हंसी मजाक होता था, चिट चैट होती थी। लेकिन जब हमने हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया और जब हमने देखा कि पीछे देखा तो बैंगनी कलर का मशरूम बन गया था उस शहर के ऊपर, तब हम पूरे रास्ते जब हम लैंड करके, 6 घंटे की यात्रा थी मतलब हिरोशिमा से वापस उनको लैंड करना था अपने बेस पे जहाँ से वो उड़े थे, उस 6 घंटे की यात्रा में हमने हम में से कोई बात नहीं कर पाया। तो शायद विनाश की बात पे ही एक वो लोग भी एक उस पर आत्ममंथन कर रहे होंगे कि हमने आज ये क्या किया है, दुनिया को ये क्या दिया है। खैर, तो जापानीज फूड के साथ में इस शो को खत्म किया जाए कि आप दुनिया में अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो आपको वो कर लेना चाहिए। शुक्रिया मिलन जी, बहुत ही थॉटफुल और क्या कहें कि एक आत्ममंथन वाला आपने शो दिया, और मेरे लिए तो है ही है। और आपने बहुत सारे रंगों के साथ, चाहे वो ब्लाइंड व्यक्तियों के लिए स्क्राइब को लेकर एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाना हो, चाहे रंग दे बसंती के माध्यम से अपने शहर को बेहतर बनाना हो, और चाहे उन पेड़ों को जो शहर में विज्ञापनों की भेंट चढ़ गए हैं उनको उससे बाहर लाना हो, और आपको राष्ट्रीय युवा अवार्ड मिला इस कार्य के लिए, आपको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं, और आप जीवन में ऐसे ही कार्य करते रहें। तो श्रोताओं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, और मैं आपका आरजे शरद साइनिंग ऑफ टुडे। थैंक यू।
0: धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: संत कबीरदास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना जाता है। उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। वे पंडित रामानंद के शिष्य थे और वीतरागी जीवन जीते थे। उनका चित्त राम में रमा था, मगर उनके राम दशरथ नंदन नहीं, शून्य स्वरूप परम तत्व थे। सारा जीवन काशी में बिताने के बाद अंतिम समय वे मगहर चले गए। यही था उनके आचार और विचार से एक होने का परिचायक। कबीर काव्यगत रूढ़ियों के न तो कायल थे और न ही जानकार। उन्होंने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा भी नहीं की। वे पंडित, शेख, अवधु और योगी सब पर आक्रमण करते, लेकिन बदनीयत से नहीं। भाषा उनकी चेरी थी, लेकिन वे शब्दों का आडंबर नहीं रचते। उनके लिए प्रेम ही परम पुरुषार्थ था। आपाद मस्तक प्रेम में भीगे कबीर आडंबर से कोसों दूर थे। वे न पूजा करते, न नमाज पढ़ते, न हज जाते और न तीरथ। उनका ऐसे लोगों से कोई सरोकार न था जो पढ़ पढ़कर पत्थर हो जाएं, लेकिन जिन्हें प्रेम की एक छींट भी न लगे। कबीर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो थे प्रेम के ढाई अक्षर, और यही ढाई अक्षर उन्हें विलक्षण बांकपन देते थे। कबीर औरों से अलग थे, भाषा में अलग, विचार में अलग, सलीके में अलग, सलूक में अलग। उनका प्रभामंडल सौम्य नहीं, प्रखर था। न वे किसी खांचे में अटते, न उनके लिए खांचा बनाना संभव। उनके साथ चलने के लिए घर भूंकना पड़ता। वे अपूर्व और इकलौती शख्सियत बनकर एक ऐसे मैदान में खड़े थे जिसकी कोई हद नहीं थी। चीजों को पकड़कर या ढोते हुए कबीर के मार्ग पर नहीं चला जा सकता। उनका मार्ग न तो हिंदू का मार्ग है और न ही मुसलमान का। कबीर नाम है ढाई अक्षर के बांकपन का।

0: क्या भजन आया रेडियो पे, सुन के दिल एकदम खुश हो गया। अच्छा काका, कबीर जी की भजन तो बड़े अच्छे होते हैं, इतना क्यों मानते हैं कबीर जी को, कुछ बताओ ना काका।
1: अरे काका बता दो, नहीं तो दिन भर जान खा जाएगा आपकी। अभी तो वैसे भी ढाबे पे कम लोग हैं।
0: तू चुपचाप रह। हाँ तो काका, कबीर दास जी बहुत पुराने समय से है ना।
2: हाँ।
1: अरे काका आज तो सुनाई डालो, आज का दिन अच्छा जाएगा, और वैसे भी सल्लू तो मानने वाला है नहीं।
0: हाँ हाँ काका, सुना दो कबीर दास जी के बारे में।
2: अरे बेटा सल्लू, समय था आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1456। शहर बनारस गंगा किनारे बसा हुआ, अरे वहाँ पैदा हुआ कबीर।
1: कबीर?
2: हाँ।
0: मतलब कि कबीर दास काका?
2: हाँ सल्लू, कबीर दास।
1: अरे हाँ काका, उनका तो हमने पढ़ा भी है।
2: हाँ, एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा को बनारस के लहर तारा तालाब किनारे पड़ा मिला था।
0: तालाब किनारे?
2: हाँ तालाब किनारे।
0: अरे ये सब तो नहीं मालूम था काका।
1: हाँ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम था काका।
3: बहुत थक गई मैं तो चलते चलते।
4: मेरी थकान तो तालाब किनारे की ठंडी हवा ने दूर कर दी।
3: मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है।
4: तालाब से दो घूंट पानी पी लो और दो घड़ी सुस्ता लो।
3: नहीं रहने दो, बहुत रात हो गई है।
4: पूरन मासी के चांद के उजाले में रात कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: हाँ, जैसे कोई नन्हा बच्चा रो रहा है, पर यहाँ तो कुछ नजर नहीं आता।
1: चलो चलो उधर चलकर देखते हैं, आवाज वहीं से आ रही है।
0: ये रहा, बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है।
1: या अल्लाह, कौन सा

0: बच्चे को इस तरह छोड़ गया। देखो देखो ना, मेरी गोद में आने के बाद कैसा चुप हो गया।
1: समझ नहीं आ रहा इस बच्चे का क्या करें।
0: अरे चलो इसे अपन घर ले चलते हैं।
1: पागल हो गई हो?
0: हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अरे अल्लाह ने हमें कोई औलाद नहीं दी, हम इसी को पालेंगे।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं किस मजहब या जाति का है, हम कल किसी झंझट में न पड़ जाएं।
0: इस डर से इस मासूम को मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दें क्या?
1: ये तो इंसानियत के खिलाफ होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं, हम इसे पालेंगे। अरे मालिक की भी शायद यही मर्जी है।
1: हम बे औलाद हैं, लोगों को क्या जवाब देंगे?
0: लोगों से क्या मतलब है हमें, कोई चोरी या बुरा काम तो नहीं कर रहे ना हम।
1: तू क्या समझती है कि बच्चे के मिलने से तू अकेली खुश है? मैं भी खुश हूँ।
0: बेशकीमती औलाद मिल गई है हमें, मन की साहत पूरी हुई।
1: तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। चल उठा, बच्चे को घर ले चलते हैं।
0: हाँ, चलो जल्दी घर चलो।
2: ये तो बहुत अच्छा हुआ काका कि नीरू और नीमा ने कबीर दास जी को तालाब के पास से उठा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हाँ काका।
3: हाँ बेटा, कबीर के आने से नीरू और नीवा के जीवन में बहार आ गई थी। नन्ना बाला कबीर दोनों की आंख का तारा था। लाड़ प्यार से पलता कबीर अब 6 वर्ष का हो गया था। था नन्ना पर सवाल बड़े बड़े करता था। अपड़ नीरू और नीमा उसके सवालों को सुनकर हैरान रह जाते थे।
4: अब्बा एक बात पूछनी है। पूछूं क्या?
1: साथ आते हुए तूने वादा किया था कि सवाल पूछकर मेरी खोपड़ी नहीं चाटेगा।
4: बस एक सवाल।
1: तू मानेगा नहीं, पूछ।
4: अब्बा वो जो आदमी खड़ा है उसने माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है?
1: क्योंकि वो ब्राह्मण है बेटा।
4: ब्राह्मण क्या होता है?
1: हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति है बेटा।
4: हिंदू कौन होते हैं?
1: जैसे हम मुसलमान हैं वैसे ही वो हिंदू हैं।
4: पर वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, फिर हिंदू कैसे हुए?
1: दोनों मनुष्य ही हैं, बस अलग पहचान के लिए हिंदू और मुसलमान हुए।
5: अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
4: अब्बा ये इतनी जोर से किसकी आवाज आ रही है?
1: चुप चुप, बिल्कुल चुप। ऐसा नहीं कहते, मौलवी साहब मस्जिद में अजान दे रहे हैं, खुदा के बंदों को इबादत के लिए बुला रहे हैं।
4: पर मैंने तो मस्जिद में किसी खुदा को नहीं देखा, वहाँ तो मौलवी साहब रहते हैं ना।
1: खुदा तो हम सबके दिल में रहता है।
4: फिर हम मस्जिद क्यों जाते हैं?
1: या अल्लाह, अच्छा अब तू चुप कर।
4: अब्बा बताओ ना ये अल्लाह कौन है?
1: अल्लाह और खुदा एक ही हैं, जिसने हम सबको बनाया है, इसीलिए हम उसकी इबादत करते हैं।
4: इबादत माने?
1: खुदा को खुश करने का तरीका।
4: इबादत से खुश हो जाते हैं वो?
1: लोग तो ऐसा ही कहते हैं।
4: इबादत तो आप भी करते हैं, फिर उसने हमें गरीब क्यों बनाया? और लोग तो अमीर हैं।
1: अपना नसीब है बेटा, खुदा ही हमें बनाता है और हमारा नसीब भी।
4: इसका मतलब खुदा भेदभाव करता है।
1: अल्लाह चुप कर, बीच बाजार पता नहीं क्या क्या बके चला जा रहा है, खुदा के लिए ऐसा नहीं कहते बच्चे।
4: पर अब्बा ये तो
1: अब बता। और सवाल नहीं, तेरे सवालों से मेरा माथा दुखने लगता है।

0: हो आई? दिन भर से काम कर रहे हो, अब बस भी करो।
1: महाजन को कल ही थान देना है। सुनो, जब से कबीर घर में आया है तब से हमारी हालत सुधर गई है।
0: मैं भी वही देख रही हूँ।
1: कबीर घर में नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
0: बाहर खेलने गया होगा बच्चों के संग। बुलाती हूँ अभी मैं। कबीर, ओ कबीर।
1: वो बच्चों के संग नहीं होगा।
0: हाय अल्लाह, फिर कहाँ गया होगा मेरा लाल?
1: पास वाले चबूतरे पर कुछ साधु बैठे हैं, उन्हें अटपटे सवालों से परेशान ना कर रहा हो।
0: अरे मुझसे भी पूछता है, खुदा कौन है, भगवान क्या है, अब मैं भला क्या जानूं?
1: बड़ा डर लगता है उसके सवालों से, कहीं किसी दिन बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। हम ठहरे छोटे लोग।
0: मौलवी साहब से कहें क्या कि इसे तालीम दे दे?
1: पगला गई हो, एक बार बात की थी तो? दुत्कार दिया मौलवी साहब ने, कहने लगे जुलाहे की औलाद दीनी तालीम हासिल करेगी तो कपड़े के हमारी औलादें बुनेंगी।
0: अरे बोलो। अम्मा, लो आ गया तुम्हारा लाडला।
2: क्या बात है अम्मा, क्यों परेशान हो? अब्बा भी परेशान दिख रहे हैं।
0: तेरी तालीम को लेकर परेशान है बेटा, मौलवी साहब मना करते हैं तालीम देने से।
2: मना करते हैं तो करने दो, मैं साधु संतों से हासिल कर लूँगा।
0: ना मेरे लाल, सुना है वो बच्चों को भगा ले जावे हैं।
2: अरे अम्मा, मुझे कोई नहीं भगा सकता।
0: उनके फुसलाए से कहीं तू साधु बनकर अपनी अम्मा को तो ना छोड़ेगा बिटवा?
2: अरे मैं अपने अब्बा और अम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तो बस ज्ञान पाना है, साधु से मिले या मौलवी से।
0: सुनो जी, मुझे तो बस यही चिंता खाए जाती है कि कहीं मेरा लाल मेरी नजरों से दूर ना हो जाए।
1: और मुझे तो फिलहाल यही चिंता सता रही है कि आज खाना कब मिलेगा।

0: कहते हैं ना बेटा कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, कबीर के भी दिखने लगे थे। दुनिया, खुदा, धर्म, पाप, पुण्य, मुक्ति और ऐसी तमाम बातों को लेकर उसकी जिज्ञासाएं बतलाती थी कि वो एक साधारण बालक नहीं है। कबीर अब किशोर अवस्था में आ गया था, ज्ञान देने वाला कोई गुरु तो मिला नहीं, इसीलिए साधु संतों और मौलवियों के पीछे घूमता, ज्ञान की तलाश में भटकता फिरता था वो।
1: मतलब कि बचपन से ही ज्ञान पाने की ललक थी उनमें काका।
2: अरे नहीं तो कोई ऐसे ही थोड़ी भटकता।
3: क्या बात है बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा?
4: मेरा नाम कबीर है, आप लोगों से कुछ सुनने आया था।
2: इतनी छोटी उम्र में साधु से क्या सुनोगे बच्चा, सिवाय भजन के सो गा रहे हैं, बैठो और सुनो।
4: आप भजन क्यों गाते हैं?
2: ईश्वर की महिमा है, सब अपने अपने ढंग से गाते हैं बच्चा।
4: ईश्वर? ईश्वर कौन है?
3: हम सबका मालिक।
4: अब्बा तो कहते हैं हम सबका मालिक तो खुदा है।
3: एक ही बात है बेटा, जो खुदा है वही ईश्वर है, एक ही मालिक के दो नाम।
4: क्या आपने उस मालिक को देखा है?
2: देखा तो उसे किसी ने नहीं।
4: फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर है?
3: क्योंकि हम हैं, ये दुनिया है, हमको इस दुनिया को उसी ने बनाया है और ये दिखती भी है।
4: ये दुनिया उसने बनाई तो उसे किसने बनाया?
2: उसे कौन बनाएगा, वो सर्वशक्ति संपन्न ही इस दुनिया को बनाने वाला है।
4: अच्छा बाबा, फिर उसने भेदभाव क्यों किया? किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को ऊंची जाति का और किसी को नीची जाति का क्यों बनाया?
3: अपने कर्मों के फल भोगते हैं हम सब।
4: पर जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन तो किसी का कोई कर्म नहीं होता, सभी जीव बराबर होते हैं। जब सबको बराबर मिला तो बाद में भेदभाव और छोटा बड़ा कैसे हो गया?
2: क्योंकि हर आदमी बाद में अपनी बुद्धि से ही कर्म करता है।
4: पर बुद्धि तो एक सिपाही, फिर सोच अलग क्यों?
3: ताज्जुब है बच्चा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने।
4: बाबा ये दुनिया उसने क्यों बनाई, यहाँ तो सभी दुखी हैं।
2: उसकी लीला वो ही जाने, हम तो बस उसके हाथ के खिलौने हैं, नचाता रहता है वो हमें।
4: कब तक?
3: जब तक हम उसको प्रसन्न कर इस माया मोह से मुक्त नहीं हो जाते।
4: मुक्त होकर कहाँ जाते हैं?
2: दूर तारों के पार, वहाँ आसमान में जहाँ स्वर्ग है।
4: किसी ने उस स्वर्ग को देखा है?
3: उसी को देखने की कामना में तो घर बार छोड़ आए हैं बच्चा।
4: फिर भी वो नहीं दिखा तो?
5: कबीर, अरे ओ कबीर, कब लो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ आई।
4: तू नाहक परेशान ना हुआ कर अम्मा।
3: बहन अद्भुत बालक है तुम्हारा।
5: सब उसकी कृपा है और आपका आशीर्वाद है।
6: मुझे तो ये किसी जन्म का अवधूत जान पड़ता है।
3: ऐसे सवाल खड़े कर दिए इसने हमारे सामने कि अब तक की सारी साधना बेकार जान पड़ रही है।
6: अरे बच्चा हमारे साथ चलेगा क्या?
4: नहीं, मैं अपनी अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मुझे आज्ञा दीजिए।
3: कल्याण मस्तु।
7: बालक तू चला गया पर हमें झिंझोड़ गया।
3: लगता है हम क्या अब तक अंधेरे में ही भटक रहे हैं।
6: यहाँ से चलो किसी और ठोर। अरे ना धी ना ना ना नी ना ना।
8: क्या बात है, बहुत उदास बैठी हो।
9: और क्या करूं, गरीब को औलाद भी दी तो निर्मोही।
8: बात क्या है, कुछ खुलासा तो करो।
9: अरे उसके दोस्त अनवर की शादी हो गई और एक ये है कि साधु संतों के बीच ही भटकता फिरता है।
8: उसके यही लक्षण देखकर तो मुझे उससे शादी करने के लिए कहने की हिम्मत ही नहीं होती। कौन भी आएगा अपनी लड़की इससे?
9: क्यों, क्या कोई चोर उचक्का है मेरा बेटा? कौन सी बुराई है मेरे बेटे में?
8: अरे ये सत्संग बत्संग।
9: अरे सत्संग करना तो ज्ञानी का काम है।
8: कौन है भाई वहाँ?
2: नीरू भाई, मैं हूँ।
8: आओ आओ, और सुनाओ क्या हाल है?
2: हमारा तो ठीक है, अपनी सुनाओ। कबीर नहीं दिख रहा?
8: हाँ उसी को लेकर फिक्रमंद हूँ, रोज नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। आज किसी पंडित से उलझ लिए तो कल किसी मुल्ला को छेड़ दिया।
2: अरे यही बताने तो मैं आया हूँ, पकड़ो उसे वरना फुर्र हो जाएगा।
9: मैं भी तो यही कह रही थी कि उसकी शादी कर देते हैं।
8: बावली हुई हो, वो कभी नहीं मानेगा।
2: कल मैंने भी सुना कबीर को खुलेआम पंडो पुजारियों और मुल्ला मौलियों को चुनौती देता है।
8: कैसे समझाऊं, मेरी तो वो बिल्कुल नहीं सुनता।
9: अरे बड़े बड़े कर्म कांडी पंडित रहे हैं यहाँ काशी में, वो क्या कर रहा है?
2: पंडित और मौलवी दोनों नाराज हैं, कुछ करना बैठे ये दोनों।
9: यही तो डर है मुझे।
8: अब रोने से कुछ ना होगा, कुछ उपाय करना होगा। आने तो आज उसे, जुलाहा है जुलाहे से रहे अपने ओहदे में। चले हैं दुनिया को ठीक करने।
2: कह रहा था जाति वाति कुछ नहीं होती, सब इंसान बराबर हैं। हिंदू और मुसलमान भी केवल भरम है, इंसानों का बनाया हुआ।
8: या मेरे मौला, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो नादान है, मूर्ख को ये सब कहने की क्या जरूरत है?
2: अरे यही नहीं, कहता था गंगा में डुबकी भर लगाने से न पाप कटता है और न ही राम का नाम जपने से मुक्ति मिलती है। और सुनो, देवी देवता सब झूठे कहता है, बलि के नाम पर पशु मारने वाले पंडित कसाई हैं, ऐसा कह रहा था।
8: तुम ही कुछ उपाय बताओ भैया।
2: अब मैं क्या बताऊं, वो तो बहुत खरा खरा बोलने लगा है, कहता है ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, तो हमसे क्यों जानवर कटवाता है, खुद ही खेत जंगल से उठाकर उन्हें क्यों नहीं खा जाता।
9: अरे लगता है ये हमें चैन से नहीं रहने देगा।
2: कुछ भी कहो भाभी जान, पर अच्छे अच्छे पंडितों और मौलियों की जबान पर लकवा मार जाता है उसकी बातें सुनकर। अब पता नहीं इतनी बुद्धि कहाँ से आई उसमें।
9: अरे साधु संतों की संगत में सीख गया लगता है।
8: अब तक घर नहीं लौटा, फिक्र हो रही है।
2: कहीं भटक रहा होगा ज्ञान की खोज में। अच्छा भाई मैं चलता हूँ।
9: सुनो मैं भी जाती हूँ उसे खोजने के लिए।
8: अब तुम ना जाओ कहीं।
9: क्यों?
8: आ जाएगा खुद ही, बच्चा थोड़ी है।

0: अरे तुम कब आए?
1: अरे कुछ देर हुई।
0: छुपके छुपके मेरा भजन सुन रहे थे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे रेदास, गंगा पार कुछ नागपंथी योगी ठहरे हैं, दो दिन से वहीं था, कुछ दिन और उनकी संगत में रहने का मन है।
1: सुना है उनकी साधना बड़ी निराली और रहस्यमय होती है।
0: वे ज्योति निरंजन के उपासक होते हैं।
1: तुम्हें ठीक लगा इनकी संगत में?
0: आडंबर तो है इनकी साधना में, पर कुछ बातें अच्छी हैं। जैसे घोर तांत्रिक क्रियाओं के सहारे सहज अवस्था में पहुंचने की बात करते हैं। सहज अवस्था में जो पहुंच गया वो अवधूत हो जाता है। अवधूत के एक हाथ में त्याग और दूसरे में भोग होता है, इसके बावजूद निर्लिप्त बना रहता है वो।
1: अजीब बात है।
0: मुझे तो ये योग और त्याग की आड़ में भोग भोगने की चालाकी जान पड़ती है।
1: फिर तुम क्यों उनकी संगत में?
0: क्योंकि उनका परम पुरुषार्थ मुक्ति है। इनका निरंजन ना सृष्टि करता है ना उनका सहारक।
1: इधर सराय के पास कुछ पंडित लोग जमे हैं, खूब किस्से कहानियां सुनाते हैं। चलो आज वहीं चलें कबीर।
0: चलो।

0: सर्वशक्तिमान परमपिता भगवान के चाहे बिना जगत में एक पत्ता भी नहीं हिलता।
1: पंडित जी, तो क्या ये चोरी चकारी, व्यभिचार और सारे दुराचार भी क्या उसकी मर्जी से ही होते हैं?
0: नास्तिक लगते हो तभी कुतर्क करते हो।
1: मंदिर मस्जिद में तो आपका सर्वशक्तिमान परमपिता खुद रहता है, फिर हमारे मंदिर मस्जिदों की ऐसी दशा क्यों?
0: ईश्वर की निंदा करने वाले तुम हो कौन?
1: मेरा नाम कबीर है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए।
2: 100% की बात कहते हैं कबीर, इनके आगे आपका झूठ ठहर ना पाएगा।
3: कोई नहीं मिट सकता।
0: हम वही कहते हैं जो शास्त्रों और वेदों में लिखा है।
1: पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा बताइए, आपका वो ईश्वर कहाँ रहता है?
0: अरे हर जगह हर प्राणी में रहता है।
1: ईश्वर पत्थर की मूर्ति में रहता है क्या, जिसके सामने आप भैंसा और बकरा काटते हो? उनमें भी तो वही ईश्वर रहता होगा, ठीक कहा ना मैंने?
0: हमारे धर्म का अपमान करने आए हो?
1: संतों देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। संतों देखत जग बौराना, संतों देखत जग बौराना।

0: मतलब कबीर दास जी की चर्चा हर जगह होने लगी थी काका?
1: हाँ सल्लू, काशी में कबीर की चर्चा होने लगी थी। पंडितों और मुल्लाओं पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रहारों से वे जन सामान्य में लोकप्रिय होते जा रहे थे।
2: वो तो होंगे ही काका।
1: बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये धर्म के ठेकेदार उनकी खरी बातों से भय खाने लगे थे। और उधर अम्मा अपने लाल की चिंता में मरी जाती थी।
3: अम्मा कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है।
4: देती हूँ बेटा, पर मेरी एक बात मानेगा, मेरे लिए एक बहू ला दे बेटा।
3: अम्मा मैं शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ूंगा।
4: तेरे दोस्त अनवर ने भी तो कर लिया ना ब्याह।
3: वो भी मुझसे शादी कर लेने को कह रहा था।
4: ठीक तो है।
3: मुझे माया मोह के बंधन में मत बांध अम्मा, मैं तो परम आनंद पाना चाहता हूँ।
4: तू छोटा था ना, तब से मैं आस लगाए बैठी हूँ बेटा कि एक दिन मेरी भी चांद से बहू आएगी, घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी।
3: तू रो मत अम्मा, नहीं तो मैं सच्ची में शादी कर लूंगा।
4: हाँ सच्ची।
3: अम्मा अपने आप को पहचान अम्मा, छोड़ दे मोह माया के बंधन, दुनिया को मेरी नजरों से देखने की कोशिश कर।
4: माँ होकर तुझसे मोह न पालू, ये नहीं हो सकता बेटा।
3: आखिर कितने दिनों का साथ है हमारा, जो उगता है वो डूबता भी है, आया है तो जाना भी है, वियोग तो होकर रहता है, इस कटु सत्य को जान अम्मा।
4: कल की सोचकर आज का सुख छोड़ दो बेटा। मैं
3: पल भर के सुख में मत पड़, इसमें पड़कर हम दुखी ही होते हैं।
4: अपनी अम्मा को भरमाने की कोशिश मत कर, शादी कर ले।
3: फिर वही बात अम्मा, सारे रिश्ते नाते पलक झपकते मिट जाते हैं, कौन कब साथ छोड़ दे नहीं कहा जा सकता। जोगी का जीवन ही मेरी नियति है अम्मा।
4: जोगी बनना चाहता है, पर मैं जाऊंगी तेरे ही कंधों पर बेटा।
3: दुआ कर कि मैं कामयाब हूं।
4: तेरी ज्ञान की बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, पर माँ हूं ना, इसलिए मेरी दुआ तो हमेशा तेरे साथ ही रहेगी बेटा।
3: इस माया ठगनी की गति आज मैं तुझे सुनाता हूँ अम्मा।
4: अच्छा।

0: हमें और इस संसार को किसी ईश्वर या खुदा ने नहीं बनाया।
1: फिर ये मुल्ला, मौलवी और पंडित किसकी इबादत या पूजा करते हैं?
0: ये सब मन के भरमा, उन्हें कुछ भी नहीं पता।
2: अरे भाई, पता तो तब चले जब कुछ हो।
0: वो मानते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान है इस संसार को चलाने वाला।
2: और वो वहां ऊपर आसमान में रहता है, क्यों कबीर?
0: रैदास, सब कोरी कल्पनाएं जिनके प्रति विश्वास पैदा किया गया है।
1: पूजा पाठ के पाखंड के फंदे में फंसते जाते हैं, है ना साहेब?
2: जानते हैं सब, पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता?
0: रैदास, अव्वल तो सब जानते नहीं और विरोध की आवाज को कुचल दिया जाता है।
1: साहेब, निराकार और निर्गुण जैसा कुछ होता है क्या?
0: ऐसे नहीं मानोगे तो निराकार और निर्गुण ईश्वर कहकर मनवाएंगे।
2: परंतु साहेब, फिर उपासना किसकी करें?
0: मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास।

0: आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो।
1: क्या कबीर, ये कैसी बात कही?
0: रैदास, बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर को पाना है तो वो तुम्हारे भीतर ही है। तेरा साहिब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले?
1: कबीर, तो क्या मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ?
0: अवश्य अवश्य रैदास, सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं और जन्म मरण की भूल भुलैया में भटक रहे हैं।
1: तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी कबीर?
0: अच्छे कर्मों से, तुम्हारा कर्म ही असली पूजा है।
1: अच्छा, समझ लो, अपने आप को पहचान लिया, अब फिर उसके आगे?
0: तो सब कुछ समेट कर अपने आप में मस्त रहो, ना कुछ कहना और ना कुछ सुनना।
2: भाइयों, शांत हो जाइए सब, अब आज का सत्संग शुरू होता है।

0: आप आप ईश्वर के खिल्ले उड़ाते हैं, वो आपको दंडित करेगा।
1: पत्थर की बेजान मूर्तियां तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारी मोहताज हैं।
2: अरे चलो भाई, बिना गुरु वाले से ज्ञानी से बहस बेकार है।
0: चलो चलो,
2: फालतू की बातें करता है। चलो
3: साहेब, ये दोनों रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद हाल जानकर आग बबूला होंगे।
1: रैदास, स्वामी रामानंद ज्ञानी हैं, हम उनका दर्शन अवश्य करेंगे।
3: लेकिन साहेब, स्वामी रामानंद तो पूजा आराधना वाले हैं।
1: हाँ रैदास, वो मूर्ति पूजक हैं। वो भी मानते हैं कि परमेश्वर कहीं है।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: फिर भी रैदास, वो ज्ञानी हैं और ज्ञानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए।
3: साहेब, फिर तो आपकी और उनकी राह भिन्न हुई।
1: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, कहो कैसे आना हुआ?
1: आपके दर्शनों का मोह खींच लाया। ये दोनों मित्र हैं, रैदास और सेना नाई।
5: स्वामी जी प्रणाम।
4: कल्याण हो, सुना है तुमने मेरे शिष्यों को निरुत्तर कर दिया।
1: मैं तो केवल सच कहता हूँ।
4: गुरु के बिना भी तुम ज्ञान के भंडार हो कबीर।
1: बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई।
4: वाह कबीर वाह। खैर, भगवान को भोग लगाने का समय हो गया है, जाओ कहीं से गाय का दूध ले आओ।
1: जी बहुत अच्छा।
0: देखा गुरुजी, कितनी देर हो गई। हम न कहते थे कि ये बहुत विचित्र हैं।
4: अब कौन सी विचित्र बात देखी तुमने इसमें?
0: अरे, ये अपने शिष्यों के साथ गाय के कंकाल के पास बैठे कंकाल से दूध देने की प्रार्थना कर रहे थे।
4: कंकाल से दूध? अरे भाई कबीर, क्या बोरा गए हो? कंकाल भला दूध कैसे देगा?
1: गुरुजी, जब आपका पत्थर का भगवान दूध पी सकता है तो कंकाल दूध क्यों नहीं दे सकता?
4: वाह कबीर वाह, तुम धन्य हो कबीर। यूं ही ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहो, धन्य हो।
1: स्वामी जी, मेरा कोई गुरु नहीं है।
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान तुम्हारे भीतर है, ज्ञान की गंगा बहाते रहो।
1: लेकिन मैं जाति से जुलाहा हूँ।
4: अरे पगले, साधु की कोई जाति नहीं होती।
1: मैंने अपना घर भी नहीं त्यागा है, फिर साधु कैसे हुआ?
4: जिसे छोड़ना था, जैसे मोह, लोभ, अभिमान, वो सब तो छोड़ दिया ना आपने।
1: गुरुजी, आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगा आपके दर्शन करने।
4: कल्याण हो।
1: कौन?
6: अरे साहेब, मैं और रैदास।
1: आओ भाई।
3: साहेब, आपके सत्संगों ने काशी के पंडितों और मुल्लाओं दोनों के बीच कोहराम मचा रखा है।
6: अरे वो दोनों मिलकर लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं।
3: और तो और कबीर, सत्संग में आने से रोकने के लिए लोगों को धमका भी रहे हैं।
6: अरे कबीर, सुना है कोतवाल के साथ लेकर कोई साजिश रची जा रही है।
1: जितनी उनकी समझ है वो उतना ही तो करेंगे।
3: लेकिन कबीर, काशी में वो बहुत ताकतवर हैं और किसी भी साजिश को अंजाम दे सकते हैं।
6: हाँ, हुकूमत भी उनके साथ ही रहेगी।
1: तो उनका मुकाबला हम लोगों को जगाकर करेंगे।

0: मियाँ कोतवाल साहब आधा वर्ज है।
1: अरे आधा वर्ज है मौलवी साहब, कहिए कैसे तकलीफ की?
0: अरे मियाँ तकलीफ में तो हम खुद हैं, कबीर ने जीना हराम कर रखा है।
1: अरे तो आप उसका जीना हराम कर दें।
0: अरे तो उसी के लिए तो आपके पास आए हैं।
1: अरे मैं भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ?
0: आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं कोतवाल साहब।
1: अरे देखिए मौलवी साहब, ये मजहब का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
0: लाहौल बिला कुव्वत एक सिरफिरा मजहब के खिलाफ बातें फैलाकर फसाद करने पे आमादा है, और शहर कोतवाल कान में तेल डालकर बैठे देंगे क्या?
1: मौलवी साहब अदब कायदा ना भूले।
0: बेअदबी के लिए माफी चाहता हूँ। पर आप उसका मुंह बंद करें।
1: हाँ ठीक है, सोचेंगे हम इस पर।
0: हाँ बेहतर होगा। अच्छा खुदा हाफिज।

0: शिव शिव शिव शिव। कोतवाल साहब नमस्कार।
1: नमस्कार पंडित जी। अरे कहिए, क्या आपको भी कबीर से तकलीफ है? पर पंडित जी, हमको तो पता चला है कि उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों काफी तादाद में हैं।
0: अरे बरगला दिया है साहब उसने, और अपने आम आदमी को अकल ही कितनी होती है।
1: अरे इसी बात का फायदा तो आप लोग उठाते हो।
0: देखिए गोतबा साहब,
1: अरे छोड़ो पंडित जी। खैर, हमने सुना है कुछ दोहा मोहा कहता फिरता है, मजमा भी लगाता है। वो
0: दोहा नहीं है, वो बर्छी है। बर्छी?
1: बर्छी
0: जो सीधे कलेजे में उतरती है हमारे।
1: अच्छा, अब फिर आप ही बताइए कि हम क्या करें।
0: अरे उसे जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
1: तो समझिए पंडित जी, आपका काम हो गया।
0: तो हम चले।
1: अरे कोड़े पड़ेंगे तो सारी गर्मी निकल जाएगी तेरी, समझा? अबे बोल, अरे बात गर्मी चढ़ गई है।
2: छोड़ दो इस गरीब को, शर्म आनी चाहिए आपको एक लाचार पर हाथ उठाते हुए।
3: साहब साहब, मुझे बचाइए साहब, साहब दे।
2: इस गरीब का अपराध क्या है?
1: अरे महसूल देने में आना कानी करता है ये बदमाश।
2: तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसे सरे रहा पीटेंगे?
1: देखो भाई, मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, इसे थाने ले जाकर ही रहूंगा। हाँ चल। क्या बात है? आप हैं कौन?
2: मेरा नाम कबीर है। किस गुनाह के लिए इस गरीब को सताया जा रहा है?
1: सुनो, हम तो हुकूमत का काम कर रहे हैं।
2: गरीबों पर अत्याचार?
1: अरे देखो भाई, हम सिर्फ हुक्म की तामीर कर रहे हैं।
2: गरीब को सताने का हुक्म मिला है क्या आपको?
1: अरे लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। सिपाही जरा कबीर को भी गिरफ्तार तो कर लो।
4: कोतवाल साहब, ऐसा गजब न कर बैठिएगा। कबीर को गिरफ्तार करने के पहले एक पल सोचिएगा जरूर।
5: अरे जरा अक्ल से भी काम लीजिए कोतवाल साहब।
1: अरे हाँ भाई, समझ रहे हैं समझ रहे हैं। चलो ठीक है सिपाही, छोड़ दो इसको, छोड़ो।
3: साहब आपने मेरी जान बचा ली साहब, बहुत मारा साहब।
2: जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक यूं ही जुल्म सहोगे, कुचले जाओगे।
3: पर अब हम जुल्म ना सहेंगे साहब, हम में हिम्मत भी नहीं है।
2: ऐसा ना कहो भाई, तुम्हारे पास हिम्मत है, बस एकजुट होने की जरूरत है।

0: प्योरी अम्मा, अरे अब तू भी कबीर के कवित्त गाती है?
1: अरे आप भी गाया करें हुजूर, बहुत अच्छे कवित्त हैं।
0: अरे चुप, बंद करवा दूंगा, समझे कि नहीं?
1: अरे मगर कोतवाल साहब, किस जुर्म में? मैं तो गरीब बुढ़िया हूँ।
0: अरे कबीर के कवित्त गाने के जुर्म में, और क्या?
1: अरे हम तो पेट भरने के लिए गाते हैं, ये तो जुलम है ना कोतवाल साहब।
0: अरे अम्मा तो कुछ और गाओ ना।
1: पर हमें तो कबीर साहब के कवित्त ही अच्छे लगते हैं। अरे माटी का है कुमार से माटी।
0: अरे, अरे अरे अरे अम्मा सुन, तो पैर भुगतने के लिए भी तैयार हो जा।
1: अरे अब आप कबीर साहब से ही कहिए, वो देखिए इधर ही आ रहे हैं। अरे माटी का कुमार से माटी का कुमार।
2: क्यों भाई कोतवाल जी, अब क्या भिखारियों को भी पकड़ने का विचार है?
0: अरे नहीं नहीं कबीर जी, जी जी जी, वो मेरा मतलब है कि
1: आपके कवित्त के गाने के जुर्म में ये हमें गिरफ्तार करने वाले थे।
2: कोतवाल जी, भजन गाना तो कोई जुर्म नहीं?
3: साहब हम सब इसका विरोध करेंगे।
4: लगता है रेदास, हुकूमत भी हमारे सत्संग से दहशत में आ गई है।
3: हुकूमत से डरकर सत्संग ना करें, ये हो नहीं सकता।
2: ठीक कहा रेदास, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे।
0: अरे या कबीर, अरे हम कहां गिरफ्तार कर रहे हैं।

0: कहते हैं वो यही छूट जाता है।
1: मरने पर तो ये शरीर यही छूट जाता है, फिर इसे हम अपना क्यों कहते हैं?
0: यही तो हमारा अज्ञान है।
2: इसका मतलब ये कि इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं?
0: हाँ रैदास, यही सच है। किंतु एक चीज हमसे कभी अलग नहीं होती।
1: वो कौन सी चीज है कबीर?
0: हमारी आत्मा, वो ही परमात्मा है।
2: फिर ऋषि मुनि किसकी खोज में कठोर तपस्या करते रहते हैं?
0: जो पहले से उनके भीतर है रैदास, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता। अज्ञानवश उसे ही पाने के लिए कर्मकांड करते हैं।

0: अपने कबीर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।
1: हाँ अम्मा हाँ, हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच में वो तो समान रूप से लोकप्रिय हैं।
2: अरे अम्मा, उन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में बिताया, पर जीवन में यात्राएं भी काफी की। काशी में अपनी मंडली के साथ सत्संग के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे वे।
0: अरे भैया, अपने कबीर ने जीवन भर धार्मिक अंधविश्वासों, कर्मकांडों और पाखंड के खिलाफ जन चेतना जगाने का कार्य किया है। और भैया, सुनो।
3: हाँ भैया।
0: और सुना है कि कबीर काशी छोड़कर मगहर जा रहे हैं।
1: क्या?
2: अम्मा, मैंने भी सुना है। इस बात से पंडितों में सनसनी फैल गई है।
0: लेकिन जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
2: नहीं अम्मा।
0: लेकिन भैया, काशी में छोटे तबके के लोग और शोषित जन इस समाचार से बहुत दुखी हैं।
2: हाँ अम्मा, हम सबका मसीहा जा रहा है।
0: सच कहा भैया।
2: हाँ अम्मा, इसका मतलब क्या होता है?
0: अरे मगहर यानी इस नाम का गांव नहीं, बल्कि ज्ञान का मार्ग।
2: अच्छा।
0: अपने कबीर कहते हैं
2: हाँ।
0: मग यानी रास्ता और हर यानी ज्ञान।
2: वाह, सही कहा अम्मा, सही कहा।
4: अरे अम्मा, अम्मा, अम्मा, अपने कबीर नहीं रहे।
0: अरे
4: कबीर का देहांत हो गया।
0: अरे बेटा, क्या?

0: हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए भाइयों, अब कबीर को अच्छी तरह नहला धोकर हम उसके अंतिम संस्कार के लिए अपन ले चलते हैं।
1: अरे लाहौल विलाकुबर, कैसी बात कर रहे हो, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा।

0: निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आज है 24 नवंबर 2024, और 24 नवंबर 2024 को आप थोड़ा सा सोच के देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं, और आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं. और खैर, ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी, और जीवन रोशनी में हम जीवन मूल्यों को जानते हैं, चाहे वो गाने के माध्यम से हो, चाहे वो दोहे के माध्यम से हो, या फिर किसी बड़े के जीवन को अध्ययन करते हुए हम जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और इसके साथ साथ आप भी अपने राय हमें बताते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत. और आज ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, और लाइव कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर. तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं, जिनको हम ऑथर कहेंगे, स्पीकर कहेंगे, कोच कहेंगे, फैसिलिटेटर कहेंगे, मेडिटेशन एक्सपर्ट कहेंगे, दत्ता रोकड़े भाई जी. और इन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं, इन्हें काफ़ी समय से एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा. पर्सनल एम्पावरमेंट कोच और कॉरपोरेट फैसिलिटेटर के रूप में बहुत सारे विषय पर वो बात करते हैं. अगर इन जनरल में कहूँ, लगभग मेरे सामने जो है वो 50 से ज़्यादा विषय हैं. इन सारे विषय को बताऊंगी तो शायद जीवन रोशनी कार्यक्रम ही कम पड़ेगा. तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाए, इस बारे में वो यूथ को सिखाते हैं. तो आज हमारे मध्य ऐसे एक्सपर्ट है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रोताओं के साथ वो बातचीत करेंगे, और हम उनसे बहुत सारे खजाने जो है वो निकालेंगे. दत्ता भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में.
2: थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए.
1: जी, तो जैसे आप तो एक्सपर्ट हैं, तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, या आज भी वो अपने मूल्यों को खोज रहे होते हैं कहीं ना कहीं?
2: ये तो देखिए, हमारे लाइफ में वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो जीवन के जो मूल्य है या वैल्यूज़ है, ये हमें हर प्रकार से जैसे हमारी लाइफ को शेप देते रहते हैं.
1: जी.
2: और हमारी जैसे जैसे लाइफ के गोल्स हम सेट करते हैं, तो उस अनुसार हमारे अंदर वो गुण तो है ही, वो मूल्य तो है ही, लेकिन उसकी प्रायोरिटी मैं कहूँगा कि चेंज होती है.
1: जी.
2: है ना, जैसे अगर हम एक कोई स्टूडेंट है, उसके एग्ज़ाम है, तो वो डेफिनेटली बहुत हार्डवर्क करेगा, है ना, पढ़ाई करेगा, फोकस्ड रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, तो ये उसकी प्रायोरिटी हो जाती है.
1: okay.
2: और वही स्टूडेंट अगर छुट्टी है तो क्या करेगा? एंजॉय करेगा, खुश रहेगा, है ना, खेलेगा. तो ये इस तरह से उसके क्या होगी प्रायोरिटीज, वो गुण जो है, वो मूल्य जो है, वो प्रायोरिटी पे आ गए.
1: ओके, सो प्रायोरिटीज के बेसिस पे हमारे मूल्य चेंज होता रहता है.
2: गोल्स
1: चेंज होते हैं, पर मूल्य वही रहते हैं.
2: हाँ, मूल्य तो हमारे अंदर सारे क्वालिटी, सारे जो वैल्यूज है वो हमारे अंदर तो है ही. बस जैसे जैसे हमारे गोल्स होते हैं, उस अनुसार हम उन मूल्यों को प्राधान्य देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं.
1: जी, तो मूल्य होने से हमें फायदा क्या है?
2: मूल्य जो है, वैल्यूज कहे, मूल्य कहे, ये

0: बहुत सारे भाई बहन ऐसे मैं देखता हूँ जिनसे मिलता हूँ, जॉब कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छा है, जो बाकी लोग आशा रखते हैं कि नहीं मेरी एक परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। जैसे होता है कि लोग कहते हैं नहीं शादी हो, बच्चे हो, इतना बैंक बैलेंस हो, मतलब जो भी उनके एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, एक परफेक्ट फ्रेम ऑफ लाइफ होता है, तो वो होते हुए भी वो सेटिस्फैक्शन अंदर नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हम वो काम करते हैं लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो हमारे हम इंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज़ हमारे कहीं ना कहीं लाइफ में डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो डिसीजंस लेने के लिए हमें वैल्यूज़ बहुत हेल्प करते हैं।
1: जी ओके कहीं ना कहीं क्या वैल्यूज़ एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसानियत से भरपूर कर देता है।
0: ऑफ कोर्स ये हमारे पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को शेप करता है,
1: जी
0: हमारे विचारों को एक अच्छी दिशा देता है, हमारा व्यवहार उससे बहुत अच्छा बनता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं आप क्या सोच रहे हैं कि जो मूल्य हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वो हमारे जीवन को क्या बनाता है? आपके नज़रिया से आप क्या सोचते हैं, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-1415-1415 पर। तो आइए यहाँ पर एक अल्प विराम लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस गाने के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM, और ये है कार्यक्रम जीवन रोशनी।

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: ए रुक, कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
3: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और हम जीवन रोशनी में रिवाइज कर रहे हैं कितने सारे मूल्यों को हमने जाना है कहीं ना कहीं, लेकिन मूल्य क्यों ज़रूरी है, मूल्यों को पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर हम अपने मूल्यों को दर्शाते हैं और अपने वैल्यूज़ के साथ हम कार्य क्षेत्र में आते हैं तो ये सब कैसे पहचाने। कई बार हम दूसरों के गुण को तो पहचान लेते हैं, उनके अवगुण को भी पहचान लेते हैं, जब खुद के बारे में सोचा जाता है, खुद के गुण अवगुण को पहचानने में बहुत बार मुश्किल लगता है। तो आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट दत्ता भाई जी हैं, आइए उनसे जानते हैं और इसे और विस्तृत रूप से डीपली समझते हैं मूल्यों को। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम के अंतर्गत जी। तो जैसे ब्रेक से पहले आपने कहा कि मूल्य हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है और इसके साथ साथ एक हमें शेप देती है, तो अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अपने अच्छाइयाँ या मूल्यों को हम कैसे पहचानेंगे।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि हम दूसरों के गुण अवगुण बहुत ईजीली देख सकते हैं और वो बहुत हमारे लिए इजी है क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद को देखना होता है तो हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो उसके लिए हम काफ़ी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कैसे हमारे वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़ के साथ हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की पसंद अलग है। अब आप चेक करो, जैसे अगर आपको कोई गीत बहुत पसंद है तो वो कौन सा गीत है, और उन गीतों में वो सुनते हुए आपको, आप अपने आप से पूछो कि मैं एक गीत सुन रहा हूँ तो मुझे उसमें क्या अच्छा लग रहा है, तो कौन सी क्वालिटीज़ मुझे उसमें बहुत अच्छी लग रही है। या फिर आप देखो, आपके फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे आपके आसपास है, आपके परिवार में है, आपके स्कूल या ऑफिस में है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स है या पॉलिटिकल लीडर्स है, कोई भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी हमें क्यों अच्छी लगती है, उनकी कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज़ हमें अच्छी लगती है।
0: ओके, जैसे कि मेरा एक गाना है, जब हम पढ़ाई करते थे तो ये फिल्म रिलीज हुई थी थ्री इडियट्स, और सब लोग गाते थे ये गाना कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, कोटों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल,
1: राइट।
0: तो इसमें क्या मूल्य आएगा, ये तो है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए ठीक है, ओके ऑल इज वेल, तो इसमें कौन से गुण रिफ्लेक्ट करते हैं।
1: आप अपने आप से पूछो कि आप ये क्यों सुन रहे हैं गाना, वो सुन के आपको कौन सी फीलिंग्स आप इमर्ज होती है, या कौन सी फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है,
0: लाइटनेस, या फिर ऐसा करते कि ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब टेंशन वेंशन तो है बट थोड़ा सा रिलैक्स करो और सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, ऐसा टाइप।
1: वेरी गुड, तो उसमें आप जैसे निश्चिंत हो जाते हैं।
0: ओके, तो बेफिक्र हो जाते हैं,
1: बेफिक्र हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आप एक करेज फील करते हैं, है ना, हिम्मत आ जाती है आप में। तो इस तरह से आप देखो कि ये जब सुन रहे हैं गाने भी, तो उसमें मुझे कौन सी क्वालिटीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, या वो मुझे हिम्मत दे रही है। कोई गाने सुनते हैं, राष्ट्रभक्ति के गीत सुनते हैं, तो एकदम पेट्रियोटिज्म हमारे अंदर का जाग जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, एंड एवरी वन इज़ लाइक मैं रेडी हूँ फाइट करने के लिए, वो वाली फीलिंग हर एक के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से वो गीत सुनकर ही क्या हो जाता है, हमारा ऑटोमेटिकली वी ट्यून टू दोज वैल्यूज, टू दोज ब्यूटिफुल क्वालिटीज़, और उसके साथ जैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी वो क्वालिटी, आपके अंदर भी वो क्वालिटी, और वो क्वालिटीज़ के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ के साथ जैसे हम जुड़ते जाते हैं और हम फील करते हैं कि यस वी आर वन फैमिली।
0: जी जी बिल्कुल, और कभी कभी हमें वो किसी के मुस्कुराहटों पे हो निशार, है ना, ये गाना बहुत पसंद आता है लोगों को, जीना इसी का नाम है, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो जिसके जो भी फेवरेट गाने हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सोचिए कि वो गाना आपको क्यों पसंद है, तो आप ऑटोमेटिकली अपने मूल्य भी पहचान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस गाने के जो शब्द है उसके साथ आपकी जीवन मूल्य भी कनेक्ट कर रहा है।
1: Beautiful.
0: ये कहना चाह रहे हैं,
1: ये भी है गीत है, चाहे कोई वन लाइनर्स किसको बहुत पसंद आते हैं, कोई शेर है, कोई वन लाइनर्स है, या कुछ कुछ जैसे आपने लिटरेचर पढ़ा है वो लाइंस आपको बार बार याद आती रहती है।
0: ओके, जैसे तो, मुझे ऐसा लगता है कि ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना,
1: राइट,
0: मतलब रेडी टू फेस,
1: यस। तो वो जो है आपका, अगेन यहाँ पे करेज भी दिखता है आपका, है ना, तो इस तरह से आप चेक करो कि वो जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको कौन सी क्वालिटीज के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं।
0: इसमें मजबूरी भी तो है, ये भी तो एक आप कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिविटी नहीं है।
1: तो वैल्यूज़ जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे एक बार ही ऐसे एक व्यक्ति के साथ मैं डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम जैसे वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लाइफ में जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज़ की बात करते हो, वैसे ये क्वालिटीज़ जो है ना, जो कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी होते हैं।
0: ओके,
1: तो हमें क्या करना है, हमें ट्यून करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स द राइट वैल्यूज़, है ना। अब लोग गलत काम भी करते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें हमारा फोकस जो हो वो अच्छाई की तरफ हो, हमें अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ हो, हमें अपने विचारों को एक बहुत सुंदर दिशा देनी है, अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देना है, तो हमें अच्छे थॉट्स के साथ ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर की, जो गुड क्वालिटीज़ है, उस पर जितना फोकस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या इवन यूथ्स, उनको समझने के लिए देखो मैं ये कहता हूँ कि देखो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दोस्त जो है आपके बारे में जब आप नहीं रहते हो तो क्या बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ योर पर्सनल ब्रांड, तो आपने अपना ब्रांड कैसे बनाया है, लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आपका नाम लेके आपको नहीं जानते, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से आपको जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कहेंगे, नहीं ये बंदा जो है ना ये बहुत रिस्पेक्ट करता है सबकी, ये बहुत हार्ड वर्किंग है
0: जी,
1: ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इसमें बहुत पेशेंस है, तो क्या करेंगे वो आपके क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस करेंगे
0: जी,
1: उसका वर्णन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे देखो, आप किसी कोई आपको पूछे आपका सबसे फेवरेट पर्सन कौन है, तो स्टूडेंट्स को APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्यों अच्छे लगते हैं, नहीं ही वॉज दो ही वॉज अ पोलिटिकल लीडर, ही वॉज वेरी हम्बल
0: जी,
1: ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, है ना। मतलब वो ह्यूमिलिटी है, वो पावर है, वो अथॉरिटी है उनमें, लेकिन फिर भी जैसे उनकी जो क्वालिटीज़ है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो दीज वैल्यूज़ यू नो वी हैव टू होल्ड इट वेरी स्ट्रांग, तो ये हमारे रूट्स है, और अगर हम इन रूट्स को पकड़ के रखेंगे तो हम लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं।
0: ओके, बहुत सारे इंसान हैं, सबके अंदर वैल्यूज़ हैं, और वो लोग अपने वैल्यूज़ को लेकर के चलते हैं, लेकिन कई बार वो अच्छे इंसान के साथ कुछ हो जाता है या फिर खुद से गलतियाँ हो जाती है, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं। तो क्या अपने अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ है या ऐसा कोई टेक्निक है जिसके माध्यम से उस गिल्ट को हम पार करके फिर से वैल्यूबल बन जाए?
1: अब इसके लिए क्या होता है ना, जैसे हम अपनी वैल्यूज़ की जब बात कर रहे हैं, हमारा फोकस जो है, अब उसके कई तरीके हैं उस गिल्ट से बाहर आने के लिए। अगर हम वैल्यूज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं, अगर हम उसके बारे में सोचें और हमारे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हमारे लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेट्स से मेरे जीवन में कभी कोई फेलियर आया हो, तो उन फेलियर से बाहर आने के लिए मुझे कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की।
0: ओके,
1: तो शायद आप गिव अप करने कर रहे थे, चलो कोई स्टूडेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टूडेंट बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, फेल होते हैं
0: जी, जी।
1: तो फेल होने के बाद एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो वो गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब मुझे नहीं पढ़ना है और छोड़ देते पढ़ाई, कोई होते हैं जो और हिम्मत करते हैं, नहीं और अच्छे से पढ़ूंगा नेक्स्ट टाइम, तो मैं ना आउट ऑफ मार्क्स ले लूँगा उस टेस्ट में, लेट्स से मैथ्स का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, या साइंस का है, या कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या होता है वो एक डिटरमिंड एक थॉट जो आता है, वो हिम्मत जो करता है, तो उस हिम्मत के आधार से उसको वो बल मिलता है और उस बल से वो सफल होता है।
0: ओके, जी जी बिल्कुल। तो ऐसे हम मतलब अकेले में कभी बैठ के ये सारे चिंतन कर सकते हैं कि जब पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास तो उसमें हम कैसे बाहर आए, तो हमारे कौन से मूल्य था उसमें?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे अपने साथ बैठते हैं, अपनी लाइफ को जैसे थोड़ा देखते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जैसे मेरा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन है खुद के साथ में
0: जी। तो क्या आप हमें कोई ऐसे रिफ्लेक्शन गाइडेंस कमेंट्री के द्वारा बता सकते हैं कि कैसे हम अपने पास्ट की सिचुएशन को सोचें और फिर रिफ्लेक्ट करें कि कौन से मूल्य था जिससे हम अपना करके उभर सकें?
1: डेफिनेटली, जैसे एक होता है कि हम किसी के गाइडेड थॉट्स के साथ चले, और दूसरा ये होता है कि हम अपने लिए जैसे कुछ राइटिंग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात आ गई, आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, फेल हो गए, या फेलियर का को फेस करना पड़ रहा है, कोई लाइफ में ऐसी स्टेज आ गई, जैसे अभी ऐसे हो रहा है कि अभी सामने बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप रुको थोड़ा,
0: अच्छा पॉज,
1: टेक अ पॉज, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है लाइफ में, किसी ना किसी मोड़ पे हर एक के साथ ये सिचुएशन आती है, चाहे आप कितने भी अनुभवी हो, सक्सेसफुल हो, अमीर हो, या किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं लाइफ में इस दौर से उसको गुजरना ही पड़ता है। तो ऐसे समय पर हमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कोई कहता था ना कि यू नो दिस शल पास, दिस टाइम शल पास, है ना, ये भी समय जैसे बीत जाएगा
0: जी।
1: तो ये जब हम सुनते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं, तो हमें और हिम्मत आ जाती है। तो इससे समय पे मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बैठो, थोड़ा अपने माइंड को पहले सेट कर दो, और इसके लिए राइटिंग इज़ द पावरफुल टूल। तो आपके मन में जो जो थॉट्स आ रहे हैं आप लिखो उसको, और देखो आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, और अपने आप से पूछो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो उस समय आपको वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे
0: जी।
1: ओके, सबसे पहली बात तो है कि मुझे लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो खुशी कहाँ से आएगी। सबसे पहले तो मुझे शांत रहना है, मुझे मन में स्थिरता बहुत ज़रूरी है, तो स्टेबिलिटी है, पीस है, तो मुझे शक्ति चाहिए, वो शक्ति कहाँ से आएगी। तो मुझे कुछ अच्छी बातें सुननी ज़रूरी है, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो संग है, वो जो मतलब आपका एक फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, तो ये देखो ये जो सारी क्वालिटीज़ अगर हम फोकस करते हैं, इन वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली देखना आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, और उससे बाहर आना आपको बहुत ईजी हो जाएगा।
0: जी जी बिल्कुल। मान लीजिए ये पास्ट की बातें हैं, या आपने कहा कि राइटिंग के द्वारा भी हम चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि सिचुएशंस में और बेहतर क्या हो सकता था और हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कोई करंट सिचुएशन है और वहाँ पर हमें गुस्सा आ रहा है, तो उस समय कैसे पॉज ले सकते हैं? क्या वो प्रैक्टिकल सिचुएशन जब हो रहा होता है तभी हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि हम उस सिचुएशन को वहाँ पर पहले जैसे हम बात करते थे या फिर हमारे रिएक्शंस जैसे होते थे उसे बदला जा सकता है?
1: अब जैसे हमारे बिहेवियर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और जैसे हम अपने पहले भी शायद किसी ने शेयर किया हो, हमारे बिहेवियर्स एक तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिएक्टिव बिहेवियर है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है
0: जी।
1: रिएक्टिव बिहेवियर वो है जैसे कोई बात आ गई और इमीडिएटली हमने रिएक्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने तुरंत गुस्सा कर दिया, उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या अपमान कर दिया उसका, या कुछ भी किसी मतलब बहुत रूढ़ तरीके से बात किया, बहुत ज़ोर से बोला या कुछ और अपशब्द भी बोल दिया उसको, शायद गाली दे दी। तो इस तरह से मेरा एक रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, मतलब बात आई और मैंने तुरंत रिएक्ट किया, दैट इज़ वन बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर। दूसरे टाइप का बिहेवियर है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर
0: जी।
1: रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या है? कोई भी बात आई, मैंने पॉज लिया, सोचा I have a choice, अभी बात करनी है, बाद में बात करनी है, या बात ही नहीं करनी है। तो I have a choice, तो अब मैं हम इसीलिए कहते हैं ना बहुत बार आप सोच समझ कर बोलो, तो आपने सोचा समझा, you have a choice, and then आपने response दिया, तो वो मेरा responsible behavior हो गया।
0: Okay, तो तभी आप अगर आप गुस्सा करते थे और आप चाहते हैं अभी पीस को अपनाने के लिए, तो ये टेक्निक्स
1: बिल्कुल
0: यूज कर सकते हैं।
1: तो मेरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होगा कि आई हैव टू होल्ड टू दैट वैल्यू ऑफ पीस लव सो स्ट्रॉन्ग कि मुझे अपने आप से भी प्यार करना है, क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है
0: जी।
1: तो मैं अपने आप से प्यार करूँ पहले, और मैं अपने आप को कहूँ कि नहीं, आई लव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू बी पीसफुल बिकॉज ये मेरे लिए अच्छा है।
0: ओके,
1: तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ पीस तो ज़रूरी है डेफिनेटली, बट थोड़ा अपने आप पर प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसमें आपको रहना है
0: जी।
1: और जैसे हम कहते हैं ना गुस्सा आता है तो जैसे हमारा बॉडी पे उसका बहुत असर होता है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है जो हमें शायद पता भी नहीं है
0: जी, जी।
1: तो इसीलिए दैट लव वाली फीलिंग अपने लिए अगर इमर्ज करेंगे विद दैट लव एंड पीस, तो बहुत अच्छा मैजिक हो सकता है, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा प्यार किसी से है तो वो खुद से होता है।
0: नहीं होता है करना चाहिए नहीं होता है
1: नहीं होता है ना। अभी देखो अगर आपको चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे बताओ?
0: हमेशा
1: यही सोचेंगे
0: तो
1: हाँ मलम पट्टी पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उससे पहले छूटना चाहते हैं।
0: हाँ,
1: तो प्यार करते हैं इसीलिए, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मुझे क्या करना है, ठीक हो रहा है तो हो जाए, नहीं तो छोड़ तो नहीं देते ना उसको। तो आपको प्यार है इसीलिए तो आप उसकी फिक्र है, ठीक होना चाहते हैं, है ना।
0: तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर में थोड़ी सी थिन लाइंस है क्या? कैसे पहचानेंगे हम सेल्फ केयर कर रहे हैं या सेल्फ लव है ये?
1: सेल्फ लव और सेल्फ केयर जैसे आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से समझना इसे, और आप खुद का ध्यान रख रहे हैं, तो इट इज़ लाइक बेसिकली जैसे मैंने कहा कि चोट लगी आप उसको इलाज करा रहे, तो व्हाट यू डूइंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, और आप साथ साथ आप सोच क्या रहे हो, है ना, आपके थॉट्स किस तरफ है। है ना, मुझे अपने आप से प्यार करना है लेकिन मुझे अपने थॉट्स को नेगेटिविटी की तरफ से जाने से बचाना है।
0: ओके, तो वो सेल्फ लव होगा,
1: वो केयर होगा मेरा, लव के साथ आई एम केयरिंग, मेरा खुद का ध्यान रख रहा हूँ मैं कि नहीं तुझे ऐसे नहीं सोचना है, तुझे ऐसी परिस्थिति में ऐसा सोचना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ। बच्चे को भी बोलते हैं ना वहाँ नहीं जाना, नहीं तो चोट लग जाएगी या कुछ, मतलब है ना, इट इज़ नॉट सेफ, तो यू आर प्रोटेक्टिंग, तो यू टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड। तो उसी तरह से हमें अपना भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, ध्यान रखने से अच्छे अच्छे मूल्यों को अपना सकते हैं।
1: हाँ,
0: सेल्फ लव जरूरी है उसके।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल अपने वैल्यूज ही है ये तो।
0: जी, एक बात और कही जाती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, तभी आप मूल्यों को अपना सकते हो, तभी आप अपनी जो जिंदगी को दूसरे तरीके से देख सकते हो। तो ये पॉजिटिविटी है क्या, मतलब कैसे पॉजिटिव रहेंगे?
1: अब पॉजिटिविटी अपने एक वैल्यू ही है, राइट, एक मूल्य ही है,
0: मूल्य ही,
1: राइट, पॉजिटिविटी। तो अब पॉजिटिव रहना है तो पॉजिटिविटी एक, आई मीन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक भी है, राइट। तो पॉजिटिव रहना है क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। अच्छा सोचूंगा तो अच्छा मिलेगा, शुभ सोचेंगे तो शुभ होगा। तो अगर मैं अगर उल्टा सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? तो जो मेरा इनपुट रहेगा वही मुझे आउटपुट मिल रहा है।
0: जी,
1: तो इसीलिए आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ टू पॉजिटिविटी, कि कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे वो पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना है ना। बहुत लोग कहते हैं नहीं मैं इतना पॉजिटिव सोचता हूँ, कुछ नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आप एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ऑथर ने लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मुझे बहुत पसंद आता है, कहते हैं कि 100 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, वो काम नहीं करते, उसके दो ही रीजंस होते हैं।
0: जी,
1: एक तो आपने क्लियरली वो एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया, ये नहीं होगा, तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, दैट इज़ वेरी क्लियर, ऑब्वियस है ना। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा एक रीज़न है जिसकी वजह से इतना पॉजिटिव सोचने के बाद भी वो नहीं होता, और वो है कि आपका डाउट।
0: जी, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है।
1: हाँ, तो आप सोचते कि आपने सोच लिया कि नहीं मेरा ये काम हो जाएगा, हो जाएगा, फिर आप सोचते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि मैं इतना सोच रहा हूँ ये काम होगा, लेकिन क्या सच में होगा? तो वो जो डाउट क्रिएट किया, तो वो पूरा उसका असर जीरो हो जाएगा।
0: जी,
1: तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑलवेज आई हैव टू ट्यून माई सेल्फ, कुछ भी हो जाए नहीं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। और ये क्या होता है कि एक दिन में नहीं होता, एक इंस्टेंस से नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपको कॉन्शियसली वो ट्यून करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोचना ज़रूरी है, अच्छा आपका चिंतन होना ज़रूरी है, लोगों में अच्छाई देखना ज़रूरी है। कि अगर मैं जिन लोगों के साथ भी रहता हूँ, चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन उसमें मेरे लिए अच्छा क्या है?
0: ओके, तो वो सोचने से वो आपको दिखाई देगा कि क्या पॉजिटिविटी है उस सिचुएशन में।
1: हाँ बिल्कुल, जैसे देखो बहुत लोग ये एग्जांपल तो कई बार देते हैं ना, जैसे देखो एक प्लेन पेपर है और उसमें अगर हम एक डॉट मतलब कर दें, तो कहते हैं कि अच्छा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो सब कहते हैं नहीं वो डॉट दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा पेपर है, लेकिन उस पर वो मार्क पे ज़्यादा जल्दी अटेंशन जाता है। तो हमारा भी क्या है, ओवरऑल ये सिर्फ पेपर की पेन वो डॉट की बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस बिहेवियर में भी उनके अंदर की अच्छाई क्या है उस पर मेरा फोकस जाना ज़रूरी है।
0: तो उसे निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहला तो है मैं क्या देख रहा हूँ।
0: जी,
1: जो देखूंगा वही मेरे संकल्प चलेंगे, वही मैं सोचूंगा, राइट। तो अगर वो जिस तरह से भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, अपने आप से पूछो उसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा ही वो आपको दिखाई देगी, एंड यू विल पिक ओनली दोज गुड क्वालिटीज, है ना। जैसे मम्मी पापा घर पे बच्चों को डांटते हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अब बच्चों ने पूछना चाहिए अपने आप से क्यों डांटते इतना, उनको क्या फ़ायदा? लेकिन इनको बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो उसको ज़्यादा खुशी होगी, और पेरेंट्स को तो उससे ज़्यादा खुशी होगी।
0: जी,
1: पढ़ाई तो अल्टीमेटली बच्चे को करनी है, लेकिन रिजल्ट से खुशी दोनों को मिलने वाली है।
0: जी, वो खुशी के लिए।
1: हाँ,
0: और इसके साथ साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही होगा जब हम पढ़ाई अच्छा करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। जी हाँ, और जैसे आपने कहा नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वर्क प्लेस के बारे में, जब जो उस कार्य क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज वहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन वाला माहौल है, कंपैरिजन वाले माहौल है, तो उसमें हम दिन रात उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसे पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे वहाँ पर?
1: अब ऐसे सिचुएशन में हमें एक जो वैल्यू है या क्वालिटी का है वो बहुत हेल्प करती है, वो है पेशेंस।
0: ओके,
1: जब मैं कहता हूँ मुझे पॉजिटिव रहना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दवाई है जो मैंने आज ले ली और उसका रिजल्ट मुझे कल दिखाई देगा।
0: जी,
1: सो आई हैव टू बी वेरी पेशेंट। और आपके पेशेंस और आपकी जो सबके लिए एक अंदर से बहुत शुभ भावना है, ये बहुत अच्छे है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारा अच्छा सोचना उनको परिवर्तन कर देगा। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरा एक
0: कितने दिन में कर सकता है, लेकिन आपने बोला मेडिसिन नहीं है ये।
1: तो इट टेक्स टाइम। अभी आई रिमेम्बर मेरे एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं जॉब करता था, तो वहाँ पे ना मेरा जो वर्क स्टेशन था उसके पहले जैसे हमारा अकाउंट्स का एक बंदा बैठता था, और उसकी एक टिपिकल आदत थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर देखूँगा, आई कॉन्टैक्ट होता है हमारा, एक दूसरे को देखते हैं। तो उसकी आदत थी कि वो कभी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सामने से बात कर रहा हूँ तो वो इधर लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, बट मुझे नहीं देखेगा। तो मैं नया था तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों, तो मैं क्या करता था, उसके सामने जाता था तो वापस वो इधर मुँह कर देता था। तो और सब लोगों ने नोटिस किया था, और मैंने शायद किसी से पूछा नहीं, और मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो। तो हुआ ये कि थोड़ा अजीब सा लगा, आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, बट लेटर आई रियलाइज कि अच्छा ये इसका हैबिट ही ऐसा है। तो होता ऐसा था कि सभी को कंप्लेन था इस बात का, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। और वो भी चेंज नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से तो वैसे ही था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बोला कि नहीं ये अच्छा है, ये सोचा। और जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता था तो उसका वर्क स्टेशन पहले था, और फिर मैं आगे जाता था
0: जी
1: उसको क्रॉस करते हुए। तो एवरीडे मैं कुछ नहीं, आता था उससे मिलता था, भले वो जैसे भी लेफ्ट देखे राइट देखे, मैं उसको ग्रीट करता था, दो मिनट बात करता था उससे, और फिर आगे चला जाता था। ना इसका असर ऐसा हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने लगे उसको, 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया। धीरे धीरे वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने लगा। मैंने उसको बहुत प्यार से एक बार फीडबैक भी दिया था उसका, तो ही स्टार्टेड मेंटेनिंग दैट आई कॉन्टैक्ट। और उसका रिजल्ट मुझे इतना ब्यूटीफुल रहा कि यूजुअली क्या होता है कि हम काम करते हैं तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ तो काम रहता ही है कुछ ना कुछ।
0: जी।
1: तो मेरा जब काम रहता था तो मैं उसको कॉल करता था कि मुझे आना है मिलने आपसे, तो वो कहता था कि नहीं तुम रुको मैं आता हूँ तुम्हारे पास।
0: जी।
1: एंड अदरवाइज ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे मेरा बॉस है तो वो कॉल करता था तो उसको वो बुला लेता था कि आप मेरे पास आओ। तो सी दिस इज द चेंज। आप किसी व्यक्ति के बारे में आप जज करने के बजाय आप उसके लिए बस वो प्यार वो शुभ भावना रखो कि ये अच्छे है, और उनकी अच्छाई पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप वो रिजल्ट देखेंगे। ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप रिजल्ट ज़रूर देखेंगे।
0: जी, दुनिया के कुछ दस्तूर है आप कह सकते हैं, और कुछ हमारे सोसाइटी के बाइबल कह सकते हैं आप, श्रीमद कह सकते हैं, कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। घर में अगर लड़की है तो उसको ऐसा होना चाहिए, और लड़का को ऐसा होना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। तो जज कैसे नहीं करे, वो तो बचपन से आदत है, तो जज नहीं किए बिना कैसे हम रह सकते हैं, या फिर उस मोमेंट में हमें क्या सोचना चाहिए?
1: अब उसके लिए तो एक कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जैसे हम आप पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, तो क्या हम जैसे पॉजिटिव सोचते हैं तो अगर हम जज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो दोनों पहलू दिखाई दे रहे हैं, या फिर हमारा अटेंशन ज़्यादातर वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाता है, या कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, ये ऐसा ही होना चाहिए वो वैसा ही होना चाहिए। जब ये वाले कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आते हैं या बहुत ज़्यादा हम एडमिंट रहते हैं, तो विच मीन्स आई एम बीइंग वेरी जजमेंटल।
0: जी, क्योंकि परवरिश कहो या फिर कहीं ना कहीं माहौल ही ऐसा है।
1: हाँ, बड़ों को देख के कभी कॉपी किया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हम उन्हीं को देख देख के वो जैसा बिहेव करते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं, वैसे ही फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक करके हम अपने आप को देखना चाहिए कि क्या ये मैं कर रहा हूँ ये राइट है, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है इस सिचुएशन के साथ डील करना, या इस व्यक्ति से अगर मैं इस तरह से बात करता हूँ तो शायद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो क्या मैं कोई और तरीके से इनसे बात कर सकता हूँ।
0: जी,
1: तो हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या व्हाट कुड बी अनदर वे टू डू इट। हम क्या करते हैं, पहले से अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ तो मैं उसी तरह से काम करना पसंद, क्यों, क्योंकि आदत हो गई है। जैसे आप देखो कि आपकी आदत जो होती है ना, आदत से इंसान मजबूर हो जाता है।
0: जी।
1: अब आपका सिंपल हैबिट है, आप फॉर एग्जांपल राइट हैंड से ब्रश करते हैं रोज मॉर्निंग में, आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो तो थोड़ा अनईजी होगा, डिफिकल्ट होगा
0: जी,
1: और आपका प्रेजेंट में रहेंगे आप. क्यों? क्योंकि राइट हैंड से करते तो हम भाई हाँ मुझे ऑफिस जाना है, ये करना है, आज मेरा दिन, मतलब वही वाला एक थॉट प्रोसेस रहेगा. तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: तो उसको अलग तरह से सोचना जरूरी है, अलग पर्सपेक्टिव लाइफ में लेके आना बहुत जरूरी है, तब जाके हम ग्रो कर सकेंगे
0: जी. मतलब हर कोई यूनिक है ये हम सोच सकते हैं, कोई गलत नहीं है.
1: और क्या होता है, जैसे मैंने अपने मेंटर से एक बात सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे जब बात करते हैं तो स्टार्ट टेकिंग अ फ्रेश मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई टेलर के पास जाओ सिलाई करानी है, तो आप भले उसको एक हफ्ते बाद मिलो, एक महीने बाद मिलो, या अगले दिन भी मिलो, तो वो हमेशा फ्रेश मेजरमेंट लेगा
0: जी.
1: आप कहेंगे नहीं मैं तो कल परसों ही आया था, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे मेरा फ्रेश मेजरमेंट लेना. क्यों? क्योंकि उसको पता है शायद हो सकता है कुछ चेंजेस आए हो
0: जी.
1: तो हमें भी ये मेंटली अप्लाई करना है इस बात को, कि मैं सुबह से लेकर शाम तक उस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी हो सकता है
0: जी.
1: एक सिंपल सा कॉल उसकी लाइफ को, उसके पर्सपेक्टिव्स को, उसकी जो जीवन की जो वैल्यूज है, धारणाएं, वो सारी बदल सकता है, दिशा बदल सकता है. तो इसीलिए जब भी मैं किसी से मिलूं, लेट मी टेक अ फ्रेश मेजरमेंट. एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू डील विद पीपल, एंड एक्सेप्टेंस इसकी वजह से मेरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है.
0: एक्सेप्टेंस मतलब हर सिचुएशन को, और मतलब जो इंसान है उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी है. ऐसा
1: बिल्कुल इंसान हो, सिचुएशन हो, उस जो भी परिस्थिति में है, मैं उसको पूरी तरह से स्वीकार करूँ.
0: ओके, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो.
1: बिल्कुल. अब मेरी टीम में लेट से कोई बंदा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई है नहीं कर रहा है, बट आई नीड टू फाइंड आउट द रीज़न. शायद उसकी उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, फैमिली में कोई शरीर छोड़ दिया है, कुछ और सिचुएशंस है उसकी, अप्स एंड डाउन्स है, मे बी उसका असर हो सकता है. तो आई नीड टू सिट एंड टॉक टू दैट पर्सन, फाइंड आउट क्या रीज़न है
0: जी.
1: भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे थे तो अचानक क्या हो गया? तो ये जो मेरा कनेक्शन है उसके साथ में, वो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं उसको एम्पावर करेगा.
0: ओके.
1: और उसको मैं अगर थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ इमोशनली, तो वो कमाल करके दिखा सकता है. और बहुत बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि यही चीज़ लैक करती है, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, और एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है
0: जी. ये सारे ही जीवन मूल्य हैं.
1: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल. और जैसे भाई जी ने कहा कि किसी से हम मिलते हैं, ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, उन्होंने अपने मेंटर से सीखा और आज हमें उन्होंने शेयर किया ये बात हमारे साथ, कि जो मेन एसेंस मुझे लगा कि फ्रेश मेजरमेंट्स, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है या किसी की कही हुई बातों से आप किसी को जज करते हैं, तो ये हम अगर नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, और हम बेहतर सीख पाएंगे और बेहतर एक्सेप्ट कर पाएंगे एक दूसरे को. फ्रेश मेजरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपने ये कहा. और एक्शन प्लान के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे वो हमारा घर हो, या हम ऑफिस में जा रहे हैं, या हम स्कूल्स और कॉलेज में जा रहे हैं, तो माइंडसेट को कैसे बना के जाएं सुबह से या जब हम निकल रहे होते हैं?
1: इसके लिए ना मैं हमेशा लोगों को तीन जनरेशन्स की बात करता हूँ. ओके? क्योंकि इम्पोर्टेंस समझेंगे तभी हम उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, वो लाइफ में हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे
0: जी.
1: तो मैं सभी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा. लेट से देर इज़ अ जनरेशन ए, जनरेशन बी एंड जनरेशन सी. अब ये ए बी सी क्या है, लेट्स लुक एट इट. ओके, तो जो जनरेशन ए की बात हम कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से का वो जो जनरेशन है, तो वो थोड़ा सा पीछे जाके अगर हम देखेंगे तो उनके लाइफ स्पैन में अगर हम देखेंगे, या उनके जीवन काल में अगर आप देखेंगे, कि जैसे वैल्यूज़ को बहुत स्ट्रांग होल्ड करके रखा था इन्होंने, है ना. जैसे एक फैमिली का, एक जॉइंट फैमिलीज थे, आपस में एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार से रहते थे, कम कमाते थे लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी. गांव में अगर आप देखेंगे कोई चीज़ बाहर रखी तो इतना लोग ऑनेस्ट थे, या इतना लोग दूसरों पर ट्रस्ट करते थे कि चिंता नहीं थी उनको कि कोई लेके जाएगा या कुछ चोरी हो जाए, वो डर नहीं था
0: जी,
1: है ना, फियरलेस थे बिल्कुल. तो वो एक जनरेशन था, लोगों का एक कमिटमेंट है उस पर, मतलब इतना ज़्यादा था कि किसी ने अगर किसी को कुछ प्रॉमिस कर दिया तो वो शरीर भी नहीं छोड़ते थे, वो कमिटमेंट पूरा किया. बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि उसने वो प्रॉमिस फुलफिल किया और शरीर छोड़ दिया
0: जी.
1: मतलब इतना वैल्यू था वो कमिटमेंट का, वो प्रॉमिस का. सो दैट इज द जनरेशन वेयर वैल्यूज वर वेरी स्ट्रांग
0: जी.
1: राइट अब हुआ ये कि जनरेशन बी की बात करते हैं, जहाँ पे हुआ क्या कि लोगों ने उनके बच्चे है या फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये वैल्यू से हमारा कुछ होने वाला नहीं है
0: जी.
1: हमें तो सुख चाहिए, हमें तो साधन चाहिए, हमें तो संपत्ति चाहिए. तो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर हो गई और फिर साधन तो बहुत सारे आ गए, सुविधा भी बहुत मिली, लेकिन खुशी कम
0: जी,
1: दुख बढ़ गया है ना. एवरीथिंग इज देयर टुडे, लेकिन क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को
0: जी,
1: झूठ बोलना शुरू कर दिया. अरे ये इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा झूठ तो ये अभी के ज़माने में चलना है तो हमें थोड़ा तो झूठ बोलना ही पड़ेगा. तो अडल्ट्रेशन है, करप्शन है, सब मिलावट, ये वो सब बातें कहाँ से आई, ये मिक्स हो गए सारे वैल्यूज.
0: ओके,
1: कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया वैल्यूज को, है ना. तो इसीलिए लोगों ने गलत काम करना शुरू कर दिया है ना
0: जी.
1: अब झूठ बोल दिया तो ट्रस्ट भरोसा तो रहा ही नहीं. प्रोडक्ट बना दिया लेकिन उसकी क्वालिटी में खराबी आ गई. तो क्वालिटी है, कोई भी ब्रांड को ब्रांड कैसे बनता है, ये सारी क्वालिटीज बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में तो वैल्यूज लिखे रहते हैं, एक्सीलेंस है, क्वालिटी है, कस्टमर सर्विस है ना
0: जी.
1: तो ये क्या है, ये सारे तो वैल्यूज से ही बना हुआ है. अगर वो इंसान में वो क्वालिटीज है तभी तो उसके ब्रांड में आएगी
0: जी.
1: तो वो मिडिल वाला जनरेशन जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया वैल्यूज को.
0: ओके,
1: बट नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड जनरेशन. अभी जो समय है या आने वाला जो समय है वहां पर वी आर फोर्स टू लिव विद वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल किसी को जो जनरेशन बी में अगर हम देखेंगे वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो गए, किसी को चोरी करने की आदत है, कोई चीजें चलते चलते उठा लेता है
0: जी.
1: अब देखो अभी के जमाने में हम देखते हैं कि भाई कहीं पर भी जाओ कैमरेज लगे हुए हैं, चाहे वो घर है, ऑफिसेज है, कहीं पर भी है, तो ये कॉन्स्टेंटली अंडर एक सर्विलेंस है ना. मतलब देख रहे लोग आपको, मतलब आप छूट ही नहीं सकते. किसी ने कोई चीज उठाने की सोची भी तो उसको पता है कैमरा लगा हुआ है, वो चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं सोचेगा
0: जी.
1: वो कैमरे को देख के क्या होगा, अटेंशन आ जाएगी, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है. मतलब क्या हो रहा है कि आई एम फोर्स टू लिव विद दोज वैल्यूज
0: जी,
1: है ना. अगर कोई मर भी जाता है तो उसको फाइंड आउट करते भाई कहाँ से है
0: जी,
1: उसका डीएनए से पता चल जाता है या पता लगा लेते हैं. तो इस तरह से हमारा वो सिस्टम कितना वो हमें हेल्प कर रहा है, एंड वी आर फोर्स्ड टू लिव विद वैल्यूज. तो उससे अच्छा है कि मैं पहले ही अपने वैल्यूज के साथ अगर रहूं, उसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखूं अपनी लाइफ में और उन वैल्यूज के साथ अपना जीवन अगर स्पेंड करूं, तो मेरे जीवन में मुझे कुछ और करने की या सोचने की जरूरत ही नहीं है
0: जी. भले कैमराज हो लेकिन मैं सेफ हूँ क्योंकि अब मैं अपने वैल्यूज के साथ
1: हूं. बिल्कुल बिल्कुल. अभी लोग कहते हैं कि नहीं आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में पर्सनली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ या मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉरपोरेट में प्रोग्राम्स करता हूँ तो एक जगह पे प्रोग्राम किया मैंने और बाद में आके वो एचआर मुझसे बात करता है. उसने कहा कि सर आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, मुझे आपसे एक बात करनी है. तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ फीडबैक है क्या? बोला नहीं नहीं सर, मुझे इनफैक्ट आपको कुछ और बात बोलनी थी. तो कहा कि आप जब हमारे हेड एचआर हेड से मिलने आए थे तो उस वक्त हमारे पास 10 और प्रोफाइल्स थी
0: जी.
1: तो मैंने देखा कि आपका तो एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है और उनका एक्सपीरियंस आपसे कई गुना ज़्यादा था, 30-30 साल के भी लोग थे. एजुकेशन वाइज भी मैंने देखा कि आपका एजुकेशन और उनके एजुकेशन में काफ़ी पीएचडी होल्डर्स थे या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, अलग अलग और सर्टिफिकेशंस किए थे. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है. तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं समझ गया कि क्या डिफरेंस है, हमारे मैम ने आपका प्रोफाइल क्यों सिलेक्ट किया. तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप जब अपने वैल्यूज़ में बहुत स्ट्रांग रहते हो तो आप जो बोलते हो ऑटोमेटिकली आपको कन्वे बोलना नहीं पड़ता कि बिलीव मी और ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू यूज़ दोज वर्ड्स. लेकिन आप जिस तरह से बोलते हो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके बोलने में, आपके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करती है
0: जी.
1: और लोगों को दिल तक वो बातें पहुँचती है और उनको परिवर्तन करना बहुत ईजी हो जाता है.
0: अब जैसे हैं वैसे.
1: बिल्कुल. मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे वॉक द टॉक. आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं और वो आप बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. आपको जैसे वो चिल्लाने की जरूरत नहीं होगी, ये करो ये वो सब. मोटिवेशन तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा फिर वापस गायब. सो नेक्स्ट डे जैसे आप नहा के फ्रेश हो गए बिल्कुल, तो मोटिवेशन भी चला जाएगा
0: जी जी.
1: तो ऐसा ना हो, मतलब आप जब वो चीज़ अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं वैल्यूज़ को आप इतना स्ट्रांगली पकड़ के रखा, तो जैसे वो महात्मा गांधी के लिए भी एक स्टोरी सब लोग सुनाते हैं, एक माता हाँ कंप्लेन करती थी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खा रहा है, तो आप उसको बोलो कि नहीं खाए, तो उनको कहा कि नहीं एक हफ्ते बाद आओ
0: जी,
1: तब तक उन्होंने छोड़ा और फिर उनको बोला। तो ये स्टोरी तो सभी ने सुना हुआ है। तो माना हम अगर कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैल्यूज़ भी ऐसे ही हैं, हम अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी फॉलो करेंगे। एंड इसीलिए एक हमेशा ये कहा जाता है इंग्लिश में कि यू नो वैल्यूज़ आर नॉट टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना, मतलब हमें सीख कर हम वैल्यूज़ नहीं सीखेंगे। बच्चों को हम कहें कि नहीं आपको बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और अगर उसने देखा कि अपने पिता अगर उसके माता पिता से अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे तो बच्चे वो कभी नहीं सीखेंगे।
0: राइट जी बिल्कुल। और अभी वक्त हो गया अलविदा कहने का, एंड बहुत ही अच्छा रहा ये प्रोग्राम, मुझे पर्सनली तो बहुत ही अच्छा लगा, रिवाइज हो गई कि क्या मूल्य एक्चुअली है और जीवन मूल्यों को कैसे अपनाना चाहिए। जीवन रोशनी में तो हम यूं ही कितने सालों से स्पॉटलाइट वैल्यूज जीवन रोशनी कार्यक्रम के माध्यम से ये जानते आए हैं, तो आज रिवाइज हो गया। आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सुभाष भाई जी का मैसेज आया है, धन्यवाद, वो बहुत ही रेगुलरली हमारे सारे कार्यक्रम सुनते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने हेल्दी रिलेशनशिप और गोल और स्वतंत्रता, ये बातें जो हैं आपकी बहुत उन्हें अच्छी लगी। इसके साथ साथ जीवन में हर बार एडजस्टमेंट और इसके साथ साथ समाने की शक्ति बढ़ाने पड़ती है, ऐसे उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फीडबैक के लिए। यहीं पर हम रुकना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दत्ता भाई जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर रीति से आपने प्रश्न पूछे और बहुत सारी बातों को एक सरफेस पे ले आए और काफ़ी क्लैरिटी हुई। थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जब जब आप शांतिवन आएँ तो हमारे स्टूडियोज में ज़रूर आएंगे।
1: ज़रूर ज़रूर ज़रूर, थैंक यू
0: जी। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

सिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है।

0: हाँ भैया, ओम शांति।
1: ओम शांति दीदी, मैं अभी रोहन के घर पर हूँ। आपने कहा था ना कि रोहन से बात करनी है।
0: हाँ हाँ, दो ना फोन उसे।
2: हाँ दीदी।
0: रोहन बेटा, कैसे हो?
2: ठीक हूँ मैं।
0: मम्मी ठीक है अब?
2: हाँ, आज मम्मी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, मामा जी लेकर आ रहे हैं।
0: अचानक सब कुछ कैसे हो गया? कुछ बीमारी थी क्या पापा को?
2: नहीं दीदी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मैं अपना होमवर्क कर रहा था और पापा सोफे पर बैठ के मोबाइल चला रहे थे और अचानक आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा सो गए होंगे। मैं हंसते हुए बोला, पापा पापा, बैठे बैठे नींद आ गई क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, पापा पापा, पर वो जगे ही नहीं। तभी मम्मी ने डॉक्टर को कॉल लगाया, हॉस्पिटल ले गए, चेक किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला साइलेंट हार्ट अटैक था, अब ये नहीं रहे। फिर मम्मी को बहुत बड़ा धक्का लग गया, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तब से मम्मी को भी अस्पताल में एडमिट कर दिया। रुकिए, लगता है मम्मी आ गई शायद।
0: बेटा ठीक है, पहले उनसे मिलो।
1: दीदी, जब से ये सब हुआ है रोहन कुछ खा ही नहीं रहा है। कहता है पापा से वादा किया था कि बाहर का खाना और प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाऊंगा, जब मम्मी बनाएंगी तभी खाऊंगा। दीदी अब आप ही देखो, बच्चा है, भूखा है, पर इतना जिद्दी।
0: ओह, तभी मुझे आज सुबह से रोहन की शक्ल बार बार ध्यान में आ रही थी। मैं अभी उसके लिए ही टिफिन पैक कर रही थी, मैं बस निकल ही रही हूँ।
3: आजा बेटा आजा, तू तो चुप ही हो गई, कुछ तो बोल सरिता।
2: मम्मी मम्मी,
3: थोड़ा पानी भी पी ले। देख वो रोहन कैसा मायूस हो गया है, बस तुम्हें ही देखते जा रहा है, कुछ खाया भी नहीं उसने।
2: मम्मी प्लीज, मम्मी आप ऐसे करेंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा।
1: भाभी जी, आपको हिम्मत रखनी होगी अब।
4: क्या भगवान को भी बस कोई और नहीं मिला, उम्र ही कितनी होगी उनकी।
1: हाँ, मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है अभी आ जाएंगे कहीं से। रोज वॉकिंग पर जाते थे, कभी कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं।
3: बहू कुछ तो बोल बेटा, पत्थर जैसी बैठी है, बस थोड़ा रो ही ले, बोल हमसे कुछ, मन हल्का होगा जरा।
0: रोहन बेटा, ओम शांति।
3: देखो ना बहन जी, ये क्या हो गया, कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी।
0: हम सब यहाँ मेहमान हैं, कोई पहले जाता है कोई बाद में, जाना सबको है।
3: लेकिन क्यों, इससे अच्छा तो मुझे ले जाता, मेरा क्या बचा था, अब क्यों छीन लिया भगवान ने हमसे उन्हें।
0: माता जी, ये जन्म और मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है और ये किसी की भी इच्छाओं पर आधारित नहीं है, यहां तक कि भगवान के भी नहीं। यही नियति है, हमें किसी पर भी दोषारोप नहीं करना चाहिए।
5: लेकिन क्यों, क्यों कोई और नहीं मिला, वो मेरे पति थे, मेरा जीवन थे, हमारे लिए सब कुछ थे।
0: जी मैं समझ सकती हूँ, ये समय कठिन है, लेकिन ये संसार एक अनादि नाटक है, ये धरती एक रंगमंच और हम सब इसके कलाकार हैं, और इस नाटक में हर एक का पार्ट तय है, कब आना और कब जाना सबका समय फिक्स है।
4: लेकिन इतना अचानक कोई कैसे जा सकता है, ना कोई बड़ी बीमारी ना कोई दर्द, अचानक ही।
0: देखिए हर आत्मा कैसे जाए ये तो उसके कर्म ही तय करते हैं।
1: दीदी लेकिन इनके जैसा तो कोई इंसान था ही नहीं, सभी से बहुत प्यार से बात करते थे, सबको मदद करने में आगे होते थे।
0: हाँ जी, लेकिन मृत्यु अच्छे या बुरे कर्म के कारण नहीं, बल्कि ये एक प्राकृतिक सत्य है। बाकी उनके पुण्य कर्म ही अगले जन्म में भी उन्हें मदद करते रहेंगे। जैसे उनके अंत समय में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, ना दर्द हुआ, इसके लिए भी भाग्य चाहिए।
3: लेकिन फिर भी भगवान उसे ले गया, ये क्या उम्र थी उसकी जाने की?
0: माताजी, मैं फिर से बता रही हूँ, भगवान उन्हें नहीं ले गए हैं, उनका साथ बस यही तक था, इतना ही लिखा हुआ था। हमारे क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से कुछ भी समाधान नहीं मिलने वाला है। जीवन का यही नियम है, इस सत्य को एक्सेप्ट करने में ही शक्ति है।
5: उन्हें दुखी करके बस खुद चले गए।
0: बहन, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन आपसे कई गुना ज्यादा दुख उस आत्मा को है। आपने तो सिर्फ एक एक रिश्ता खोया है, है ना? आपने पति खोया है, रोहन ने अपना पिता खोया है, और माताजी ने अपना बेटा खोया। लेकिन जरा सोचिए, उस आत्मा ने क्या क्या खोया? अपना बच्चा, माँ, पत्नी, अपने सारे मित्र संबंधी, घर, व्यवसाय, कई सारे सपने, और सबसे प्यारा, अपना खुद का शरीर खोया। सब कुछ छोड़ा।
4: सच में हमने बस एक को खोया, लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया।
0: जी, इसीलिए भगवान से या उनसे शिकायत के बजाय उन्हें शांति दे।
1: अरे रोहन, आज स्कूल क्यों नहीं गया?
2: पापा, आज मन नहीं था।
1: बहाने मत बना, पढ़ाई जरूरी है, ऐसे कैसे चलेगा?
2: पापा,
1: अगर नहीं गया स्कूल तो अब मैं तुम्हारे टीचर को कॉल करके बता दूंगा।
2: नहीं पापा, सॉरी पापा, कल पक्का जाऊंगा स्कूल, सॉरी पापा।
4: रोहन, रोहन क्या हुआ?
2: पापा, पापा कहाँ हैं? अभी तो आए थे, मुझे बोले स्कूल जाओ।
5: पापा नहीं आएंगे बेटा, पापा अब नहीं आएंगे, वो चले गए, बहुत दूर चले गए हमसे।
2: नहीं मम्मी, मैंने अभी तो देखा उन्हें।
0: रोहन, जो उनके सबसे नजदीक और प्यारे रिश्ते होते हैं, उन्हें उनके होने का आभास होता है, या सपने में आकर कुछ कहते हैं। आप उनके साथ को बस महसूस कर सकते हैं।
5: काश सिर्फ एक बार हम उनसे बात कर पाते।
0: काश नहीं, सच में वो हमें इस समय सुन सकते हैं। हम जो भी भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो उसे समझ सकते हैं। इसीलिए अगर अभी हम टूटेंगे या रोएंगे, तो उन्हें भी दुख और परेशानी महसूस होगी। वो हमारे आसपास ही है।
2: दीदी, लेकिन फिर वो हमें दिख क्यों नहीं रहे हैं?
0: बेटा, जब आत्मा शरीर से निकल जाए, तब वो उसी शरीर के आकार की लाइट की आभा के रूप में होती है, जो हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन तक यही रहती है अपने लोगों के आसपास, और फिर आत्मा अगले नए गर्भ में, नए शरीर में प्रवेश करती है और एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेती है।
2: अब मतलब पापा की आत्मा भी कुछ दिन बाद छोटा बच्चा बन जाएगी?
0: हाँ जी, पर जब हम मोहवश रोते हैं तो उन्हें भी दुख होता है, इसलिए आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे बेवजह जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के रिश्ते उन्हें रो रो कर याद करते हैं।
2: फिर तो उन्हें बहुत तकलीफ होती होगी फिर।
5: लेकिन वह कहाँ जन्म लेंगे? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? क्या वह हमें पहचान पाएंगे?
0: जी नहीं, ये तो इस विश्व नाटक का राज है। आत्मा अपने पुनर्जन्म के बाद अपने पिछले जन्मों के रिश्ते को पहचान पाए, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अब हमारा बस यही कर्तव्य है कि मोहवश रोना नहीं, सच्चे दिल से उनके नए जन्म, नए जीवन के लिए उस आत्मा को प्रेम, शांति और शक्ति देना।
3: हाँ, लेकिन उसे भूलना तो मुश्किल है।
0: जी, याद तो आएगी, इतने दिन साथ में जो बताए हैं, लेकिन रोकर नहीं, प्यार से याद करें और उनको शांति और शक्ति का वाइब्रेशन भेजे।
5: वाइब्रेशन? मैं समझी नहीं दीदी।
0: वाइब्रेशन अर्थात हमारे विचार के प्रकंपन उन तक पहुंचते हैं, जो कि मेडिटेशन के द्वारा उनको अपनी स्नेह शक्ति और शांति की लहरें भेज सकते हो।
5: दीदी, क्या आप हमारी तरफ से भेज देंगी? क्योंकि हमें तो आता भी नहीं है।
0: ये तो बहुत आसान है, मैं सिखा दूंगी। लेकिन अभी तो सब पहले भोजन करें, फिर आज शाम को सेंटर पर आप आएंगे और हम सब साथ में उनके लिए मेडिटेशन करेंगे।
5: दीदी, सच में पहले से थोड़ा ज्यादा हल्का लग रहा है।
0: उन्होंने जीते जी हम सबको सुख देने का प्रयास किया है, तो वो अब भी आपको दुखी देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए चलो जल्दी जल्दी भोजन कर लो।
3: आप लोग खा लो, मुझे मन नहीं है।
0: अरे ऐसे कैसे मन नहीं, ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है। जब मन कमजोर हो तब ये जरूर खाना चाहिए, सबसे ज्यादा ताकत देता है ये। चलो बहन, शक्ति बनकर खाना होगा ताकि रोहन भी प्यार से खा सके।
5: चल रोहन, आज तेरी दीदी का टिफिन खाते हैं।
1: ना ना दीदी, आप हमें क्यों?
0: सभी के लिए है ये, भगवान का प्रसाद है।
6: मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की नई शुरुआत है। देह मरता है, आत्मा नहीं। जब हम उसे प्रेम से विदा करते हैं तब वो आत्मा अपने अगले सफर पर शांतिपूर्वक आगे बढ़ती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार नया पहनते हैं, कुछ वैसे ही आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करती है। हम सब इस धरती पर मेहमान हैं। कोई भी कभी भी देह का त्याग कर सकता है। इसलिए सदा याद रहे, हर घड़ी को अंतिम घड़ी, इस स्मृति से हर घड़ी को सफल करना सीखें। मोह के इस जंजाल से खुद को मुक्त करें, क्योंकि मोह मुक्त जीवन ही सक्षम और सुखी होता है। सिर्फ सभी से आत्मिक प्रेम रहे, आत्मज्ञान से खुद को मजबूत बनाएं। ओम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और जिंदगी के उस पन्ने पर आ गए हैं हम जहाँ पे दोस्तों प्यार ही प्यार है, क्योंकि यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं खुद में चेंजेस करने के, खुद को समझने के, खुद के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने के। जब हम ये सब करते हैं तो प्यार बढ़ता ही जाता है जिंदगी से और खुद से भी। तो दोस्तों कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और सालों से अनेकों की मदद करते आए हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, फिर से एक बार जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर युवाओं से बात करना बहुत बहुत मजेदार होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा उनके अंदर होती है वो ऊर्जा हम भी बदले में महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, वो यूथ वापस आ जाता है और बहुत खुशी भी होती है। श्रीनिधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्रीनिधि जी रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं और साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर और ग्लोबल एंकर भी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, नमस्कार कल्पना जी, नमस्कार सभी दोस्तों को। और लव यू जिंदगी के इस एपिसोड में, हर एपिसोड में कुछ अलग चर्चा करते हैं, तो इस एपिसोड में भी एक नए विषय पर हम चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। तो आशा है कि इस चर्चा से मैं खुद भी बहुत कुछ सीखूंगा और जो कुछ मैंने सभी से सीखा है वो साझा करने का भी एक अच्छा मौका है।
0: जी, और बहुत सुंदर बातचीत हुई है पिछले कुछ एपिसोड्स में भी। हमने जाना था कि किस तरह से एंजाइटी या एंग्शियस होना डिफरेंट है, या किस तरीके से हम डिप्रेशन को सैडनेस के साथ कंफ्यूज नहीं कर सकते। कल्पना जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो कई बार आजकल हम बहुत सारी चीजें, क्योंकि पढ़ सकते हैं, आज हमारे पास AI है, हमारे पास गूगल है, तो हम बहुत सारी चीजें वो अपने सिम्टम से खुद ही समझने की कोशिश करता है, मुझे शायद ये हो गया है, मुझे शायद ये हो गया है, और वो पढ़ के और ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या आपके पास भी इस तरह से आते हैं लोग कि उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे यही हुआ है, इस तरह से मेंटली हमें पता होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है ही, या डायग्नोस की जाती है प्रॉब्लम, सिम्टम्स समझने पड़ते हैं?
1: जी, कई बार लोग गूगल में सर्च करके आते हैं कि मुझे अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो जरूर मुझे ये बीमारी हो चुकी होगी, क्योंकि उसमें वो सिम्टम्स बताए जाते हैं कि भाई आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, या हाथ पांव में पसीने आ रहे हैं, या गिडीनेस फील हो रही है, या उदासी महसूस हो रही है, या अकेलापन महसूस हो रहा है, लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है रातों में, या भूख नहीं लग रही है, खाना हजम नहीं हो रहा है। तो कई सारी बातें जब हमारे साथ होने लगती है, अप एंड डाउन हमारे लाइफ में आने लगता है, तो लोगों के पास आजकल एक ही सोल्यूशन है, सर्च करो, गूगल करो और आइडेंटिफाई करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग पहले से ही डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि शायद हमें ये तो नहीं हुआ है, उनको पता होता है। अब हमें उनको अवेयर करना होता है कि जो भी लक्षण है तो उन लक्षणों को हम अलग अलग कैसे पहचाने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग क्यों होती है, कैसे होती है और उसका कारण क्या होता है, ये अवेयरनेस आ जाने के बाद और थिंकिंग के लिए कुछ उपाय करने के बाद वो ओवर थिंकिंग पर हम ओवरकम कर सकते हैं। केवल मुझे ये हो रहा है, ये जानकारी ही जरूरी नहीं है, परंतु ये मुझे क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना सीवियर है। हाँ, मैं अपने श्रोताओं से भी पूछना चाहूंगी कि जब भी कभी कोई

0: मिलने जुलने की इच्छा नहीं होती है कितने दिन से, 3 हफ्तों से ज्यादा अगर ये लक्षण है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर या काउंसिलर से मिलने की आवश्यकता है। सो सबसे पहले है कि तीव्रता कितनी है, दूसरा है कितना लंबे समय से मैं इसको फेस कर रहा हूं। तो इन लक्षणों को लेकर हम अपने आप निदान न करें, लेकिन किसी डॉक्टर या काउंसिलर या साइकोथेरेपिस्ट की अगर परामर्श लेते हैं हम, या किसी जानकार समझदार व्यक्ति के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी करते, तब भी हमें कुछ न कुछ सकारात्मक सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और हम उससे ओवरकम कर सकते हैं।
1: मतलब प्रोफेशनल हेल्प लेनी जरूरी है सिम्टम्स को, लेकिन अगर हम माने कि जैसे स्ट्रेस, आपने कहा समय कितना समय से हो रहा है, तो स्ट्रेस तो बचपन से ही हो रहा है, एग्जाम के समय हो रहा है, और कोई चीज आई तो भी हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, तो क्या मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हो रहा है, लेकिन जब कोई सिचुएशन आती है तो स्ट्रेस होने लगता है, या बॉडी में पसीना आने लगता है, या फिर हाथ पैर में थोड़ा मुझे या डिजीनेस लगती है, या एकदम से वीकनेस लगने लगती है, या पेट में कुछ दर्द होने लगता है, तो ये हर बार होता ही आ रहा है, तो क्या फिर ये मतलब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए यहाँ पे?
0: सिचुएशन को लेकर थोड़े समय के लिए स्ट्रेसफुल होना, उसको यू स्ट्रेस कहा जाता है। वो स्ट्रेस अच्छा है कि थोड़ा सा हमें अलर्ट करता है, वो स्ट्रेस कि भाई एग्जाम है, तो एग्जाम के समय हम अलर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस भी लगता है, थोड़ी सी घबराहट भी होती है, लेकिन वो घबराहट कुछ अनहोनी मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजों को लेकर होती है कि मैंने जो पढ़ाई की उस अकॉर्डिंग पेपर आएगा या नहीं, कुछ और ही क्वेश्चंस आए तो क्या होगा। सो अगेन ये थॉट्स से रिलेटेड है। सो अगर हमारे विचार पॉजिटिव है, हर आने वाले खतरे को जानते हुए हम अगर पॉजिटिव रहते हैं, और अपने आप को जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, सेरेटोनिन और डोपामिन, वो हमें जो आने वाली खतरा है या जो भी कठिन परिस्थिति है उसका सामना करने की शक्ति हमें डेवलप करती है। सो थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, घबराहट हो जाती है, हम उसको मैनेज करना सीख जाते हैं। वो स्ट्रेस नुकसानकारक नहीं, वो थोड़ा बहुत हर किसी को होता ही है, परंतु हमेशा कुछ कारण के बिना मुझे ज्यादा सोचने की, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है, तो वो ये आदत अगर बचपन से है, कंटिन्यूस है, तो मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेने की आवश्यकता है। काउंसलर के पास जाकर सीबीटी, आरईबीटी टेक्निक्स के माध्यम से थॉट चेंज किस तरह से है, थॉट्स को कैसे बदलना है, वही विचार है बट उसको दूसरी तरीके से हम सोचते हैं तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आपने परीक्षा का एग्जाम्पल दिया, सो परीक्षा के समय हमें थोड़ी सी घबराहट तो होती है, बट जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने मेहनत की है और मुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि कुदरत का ये नियम है, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। सो ये पॉजिटिव थॉट ही हमें हमारा अप्रोच बदल देता है, और वो जो एंजाइटी होती है एग्जाम देने से पहले वो कम हो जाती है, और एग्जाम के टाइम पर हम रिलैक्स होकर आराम से पूरा पेपर लिख पाते हैं या सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो लिमिटेड टाइम होता है
1: जी
0: उसमें सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना ये भी जरूरी होता है।
1: बिल्कुल
0: तो कई सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती है कि मुझे जवाब भी लिखने हैं, टाइम भी मैनेज करना है, नहीं तो कई बार होता है मुझे आता सब कुछ है बट मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाता हूँ, उसकी वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ। तो जैसे ही एक थॉट मेरे मन में आता है स्ट्रेस के अगेंस्ट, एंग्जाइटी के अगेंस्ट, कि नहीं, मैंने जितनी मेहनत की है उसका फल मुझे जरूर मिलेगा, तो वैसे ही आपकी अप्रोच, आपका एटीट्यूड, आपका एक्शन और आपका जो रिस्पॉन्स है वो तुरंत बदलने लगता है।
1: बिल्कुल, मतलब हमें ये भी समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा किसी सिचुएशन में स्ट्रेस होना अलग है, और हर वक्त वो बना रहना या बिना सिचुएशन के होना, वहां पे हेल्प की जरूरत ज्यादा है। श्रीनिधि जी, आपसे इसके एक और एस्पेक्ट के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो सफर कर रहा है, या वो अपने दोस्तों से भी पीछे हट रहा है वो व्यक्ति, या फिर कांस्टेंट स्ट्रेस में है, बिना सिचुएशन के उसे डल फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स है, फैमिली है, उनको कैसे एक्ट करना चाहिए या कैसा होना चाहिए? बिकॉज

0: हमें पता चलता है तो हमें लगता है अरे तुम तो उस समय कैसा बिहेवियर होना चाहिए आसपास के लोगों का।
1: जब आसपास के लोगों की बात की जाती है, यूजुअली ऐसे व्यक्ति जो क्लिनिकली डायग्नोस्ड हो, जिनको इस प्रकार की समस्या है, या ये कहें कि ये बीमारी कह सकते हैं आप, और जरूरी नहीं कि बीमारी का कहने का तात्पर्य ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये कोई चिंताजनक लेवल पे बीमारियां हो। कभी कभार ये शॉर्ट टर्म भी होता है, जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार हुआ है, 3 4 दिन के लिए हुआ है, हफ्ते भर के लिए हुआ है, इन्फेक्शन छोटे टाइम के लिए भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो डायग्नोसिस मिलती है हमको कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा ज्यादा परेशान रहते हैं, या इनको एंजाइटी है, या इनको ये डिसऑर्डर है, तो हमें उन लोगों के आसपास रहने वाले लोगों के प्रति भी, जो हम उनके केयर गिवर्स हैं या उनके दोस्त हैं या उनके परिवारजन हैं, उनको भी एक प्रकार की सेंसिटाइजेशन होना आवश्यक है। बहुत बार जब हम इन चीजों को स्वयं नहीं समझते और परिवार के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई चीज हो रहा होता है, उस समय पर हमारी सही समझ और सही सहयोग ना होने की वजह से उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो ठीक होने में मदद मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, क्योंकि हम इन चीजों को सही तरीके से नहीं समझते। इसलिए प्रायः ये चीज देखी जाती है कि परिवार के सदस्यों को, या अगर वो शादीशुदा है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाकर इन चीजों के ऊपर बातचीत की जाती है, और जो ट्रीटमेंट है या एक्शन प्लान है कि हमें किस प्रकार से, भले वो काउंसलिंग हो या चिकित्सकीय सलाह हो या दवाइयां भी हो, तो वो साथ में एक्सप्लेन की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्तिगत सपोर्ट सिस्टम बनता है कि जिससे उसे ठीक होने में मदद मिलती है। जितना जल्दी उसे एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट मिलता है, उस व्यक्ति के ठीक होने की संभावना तो ज्यादा बनती ही है, मगर ठीक होने में उसे कम समय भी लग सकता है। इसलिए इन चीजों की समझ होना बहुत आवश्यक है, और खासकर भारत जैसे देशों में आज जब हम इसे एक सकारात्मक रूप में देखते हैं कि लोग मेंटल इलनेसेस के प्रति, मनोस्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, उन चीजों को शहरों में, कम से कम बड़े शहरों में, ज्यादा ओपन तरीके से हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मान लेना कि हाँ, एक व्यक्ति घर में है जिसको किसी प्रकार की समस्या है और हमें उसका ख्याल रखना है, अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो भी ये चीज बहुत मददगार साबित होती है। खासकर कॉलेज गोइंग जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है कि उनके दोस्त इन चीजों को समझें और वो उनके मददगार बने उनके हीलिंग प्रोसेस में। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज दोस्तों को या साथ में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है, तो कहीं कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि वो भी हीलिंग के प्रोसेस में मददगार होने की जगह और नुकसान करने वाले बन जाते हैं, जाने अनजाने में। कभी कभार इन चीजों की समझ नहीं होने के कारण लोग इन चीजों का मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से व्यक्ति की हालत जो सुधरनी होती है वो और ही खराब भी हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, और साथ साथ लोगों को जब हम उन्हें ठीक करने के कगार पर ले जा रहे हैं, तो उस मार्ग पर और लोगों को साथ लेना भी आवश्यक।
0: कल्पना जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: बिल्कुल, मैं सहमत हूँ श्री जी के साथ कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से किसी परेशानी का सामना कर रहा है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, स्ट्रेस हो, ओवरथिंकिंग हो, सो परिवार की परिभाषा ही यह है कि ऐसे समय पर परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, एक दूसरे को मदद करे। और ऐसे समय पर कुछ वैल्यूज की आवश्यकता होती है जिसे प्रैक्टिस में लाना, जैसे शांति बनाए रखना। जब वल्नरेबल कंडीशन होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उस समय आसपास के लोग उसके प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अगर करें, उसे समझने की कोशिश करें, तो ये सबसे बड़ा सहयोग होता है। दूसरी बात ये कि इम्पेशेंट ना हो जाए कि अरे ये कितने दिनों से इसकी ये प्रॉब्लम चल रही है और ठीक ही नहीं हो रही है। सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यही वो चीजें हैं जो हमें परिवार के रूप में एक दूसरे को जोड़ती है। तो कभी कोई परिवार में किसी न किसी को हमारी मदद की प्रैक्टिकल या सूक्ष्म रूप से जरूरत हो सकती है। जैसे कि किसी को प्रैक्टिकली फिजिकली हेल्प चाहिए होती है, किसी को मेंटली हेल्प चाहिए होती है। सो वो धैर्यता, वो शांति का गुण दिखाना परिवार वालों को, ऐसे समय पर बहुत जरूरी होता है। हम वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम के समय अगर बच्चों को एग्जाइटी होती है, आज ही मैं एक न्यूज पढ़ रही थी कि एक बच्चे ने अपने एग्जाम में 100% मार्क्स लिए, तो उसके दादाजी बता रहे थे कि हमने कभी इस पर प्रेशर नहीं डाला, पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला, हमने उसको हमेशा ये कहा कि अगर तू 35% पासिंग मार्क्स लेकर भी पास हो जाएगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बिना प्रेशर से की गई पढ़ाई की वजह से वो 100% मार्क्स ले आ पाया। ऐसा नहीं है कि केवल यही कारण बना है, IQ लेवल भी होता है हर एक व्यक्ति का, परंतु पेरेंट्स से या परिवार वालों से जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है।
0: जी, तो मतलब जैसा आपने कहा कि परिवार का कितना सुंदर मीनिंग ही यही है। फिजिकली हेल्प चाहिए वो तो हम समझते हैं, पर मेंटली हेल्प चाहिए कई बार वो समझने से चूक जाते हैं और उसका वर्स प्रभाव भी पड़ सकता है। तो बहुत जैसा आपने कहा, शांति का गुण उस समय हमें बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है और पेशेंस भी चाहिए डील करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो दीदी, मैं जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस एपिसोड के तो अंतिम कुछ घड़ियों में आ गए हैं हम, आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि इससे ही जुड़े हुए कई और ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसे हम फेस कर रहे हैं, यूथ फेस कर रहा है, उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा एडिक्शन भी है जिसके बारे में हम हेल्प लेना नहीं चाहते, किसी को ये कहना नहीं चाहते कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं कि मुझे मदद चाहिए। तो ऐसे भी अगर लोग हमें सुन रहे हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। फिलहाल दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई मेडिटेशन ऐसी प्रैक्टिस हम कर सकें या कहीं से शुरुआत कर सकें, जो हम अगर ये मान लीजिए डेवलप ही हो रहा है, ओवरथिंकिंग में हम जा भी रहे हैं, तो थोड़ा खुद को वापस ला सके वहां से।
2: जी, किसी भी प्रॉब्लम की जड़ में हमारे थॉट्स होते हैं, ये हमने तो देखा, तो हमें थॉट्स से ही रिलैक्सेशन की शुरुआत करनी है। तो मैं अपने श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि वो जहां कहीं भी हैं, एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। एक मिनट बहुत थोड़ा समय होता है, लेकिन ये एक मिनट बहुत इफेक्टिव भी हो सकता है। एक मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। अगर आपके पास कोई दीवार है तो दीवार से पीठ टिकाकर अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गहरी और लंबी सांस लें, अपनी आंखों को बंद करें और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें। हर सांस के साथ वातावरण से शांति और सकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश होने दें। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने दिलो दिमाग पर छाया हुआ तनाव, नेगेटिविटी को, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर की ओर धकेल दे, छोड़ दे। सांसों पर ध्यान दे। लंबी और गहरी सांस लेते हुए अपने मन में इन तीन विचारों को 3 बार रिपीट करें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं संतुष्ट हूं। 3 बार रिपीट करते हुए इन विचारों को अपने मन में समाने की कोशिश करें। गहरी और लंबी सांस ले और 3 विचार जो हमें करने हैं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं और मैं सारे विश्व को शांति का दान दे रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, सारे विश्व की शांति की मैं कामना कर रहा हूं। इन विचारों को रिपीट करें। जैसे ही ये विचार हम मन में दोहराते हैं, हमारा मन और शरीर शांत और रिलैक्स फील करने लगता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे मन को स्थिर करें और आखिरी वाक्य लेकर जाए अपने साथ। मैं हर परिस्थिति में रुककर सही चुनाव कर सकता हूं। मैं हर परिस्थिति में रुककर सही चुनाव कर सकता हूं। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। एक खुद पे विश्वास ऐसा लगता है कि पुनर्जागृत हम कर सकते हैं और रिमाइंड करा सकते हैं ये स्टेटमेंट्स को बार बार जब भी जरूरत पड़े। बहुत टाइम भी नहीं लग रहा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस।
2: धन्यवाद।
0: श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करेंगे आगे भी हम इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे और बहुत मदद हमें मिल पाएगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और कल्पना जी का भी, जिन्होंने हम सभी को आज ये चीज अनुभव कराया कि हम सभी इन चीजों के प्रति थोड़ी सी अगर अटेंशन देते हैं तो हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ये पॉसिबल है ये हमने जाना और शुरुआत कैसे करनी है ये भी समझा। तो दोस्तों अगर फिजिकल मसल एक दिन में नहीं बनती तो भाई मेंटल एफर्ट करने में हम एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उदास क्यों हो जाते हैं या निराश क्यों हो जाते हैं। चलिए फिर से एक और हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं आगे बढ़ते हैं और जिंदगी को कहते हैं लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन के साथ
2: जिंदगी
0: जुड़े रहिए
2: प्यार
0: सुनते
2: का
0: रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गीत है।

तारों भरी ना मैंने तो दिन का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है, ये समझ में आएगा। ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद भोगवाद ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद भोगवाद के कारण।

करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

0: एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सुन रहे हैं वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की साहस भरी कहानी। वो शूरवीर जिनके फांसी पर चढ़ते हुए आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। ये एक ऐसा मंत्र था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में जबरदस्त ऊर्जा भर दी थी। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया तो ये पूरे राष्ट्र की आवाज बन गया। तमिलनाडु में भारतीय, पंजाब में क्रांतिकारी, सभी इससे प्रेरित हुए। ब्रिटिश पाबंदियों के बावजूद लोग इसे गाते एवं गुनगुनाते रहे। यहाँ तक कि 1906 के बारीसाल आंदोलन के रक्तपात के बीच भी यही मंत्र गदर पार्टी, आजाद हिंद फौज और 1946 के नौ सैनिक विद्रोह में गूंजता रहा। खुदीराम, अश्वाकुल्ला, आजाद और तिरुपुर कुमारन सभी का नारा एक ही था, वंदे मातरम। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार किए और अपनी आवाज उठाना एक अपराध बन गया, जब लाठीचार्ज, गोलियां और जेलें भी भारतीयों को रोक नहीं पाई, तब हमारे क्रांतिकारियों ने पुकारा था वंदे मातरम, वंदे मातरम। ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जानते थे कि वंदे मातरम की गूंज में डर के लिए कोई जगह नहीं है। तभी तो मृत्यु को सामने खड़ा देखकर भी क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा का साहस नहीं टूटा।
1: दीदी, सच में मदनलाल का साहस देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
2: यही तो वीरों की विशेषता होती है बन्नू, वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। पुलिस हिरासत में जाने से लेकर अदालती कार्यवाही शुरू होने तक मदनलाल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई।
0: वाइली की मौत की जांच कैंसिंगटन टाउन हॉल में कोरोनर सी लक्समू ड्रियो के सामने चल रही थी। वहां ब्रैड्सफोर्ड गार्डन्स हैम्पस्टेड के एक पूर्व सैनिक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स रोलरटन वहां मौजूद थे, लेकिन मदनलाल ने इस कार्यवाही में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। कोर्ट में एक गवाह ने ढींगरा पर कुछ अजीब से आरोप लगाए।
3: ढींगरा ने शायद भांग नाम का नशा किया था, क्योंकि वे थोड़े सुस्त और खोए खोए से थे। भारतीय लोग इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले अक्सर भांग का सेवन करते हैं।
4: क्या आपने ढींगरा को किसी नशे के असर में देखा था?
5: नहीं, ढींगरा बिल्कुल सामान्य स्थिति में लग रहे थे और पूरी तरह शांत थे।
0: मुकदमे के दौरान मदनलाल ढींगरा की मकान मालकिन हैरिस ने भी अपना पक्ष रखा।
6: नहीं, मुझे नहीं लगता कि ढींगरा किसी तरह का नशा करते थे।
0: वॉक्सहॉल ब्रिज के डॉक्टर जॉन बुकानन हत्या की जगह पर पहुंचने वाले पहले डॉक्टर थे, उन्होंने भी गवाही दी।
7: भीड़ में वह सबसे शांत व्यक्ति लग रहे थे।
0: मुकदमे के दौरान मदनलाल ढींगरा की मानसिक जांच मनोचिकित्सकों द्वारा की गई थी, ताकि ये पता चल सके कि क्या उनकी मानसिक स्थिति सामान्य से कमजोर है। लेकिन जांच के नतीजे सामान्य आए। जब वेस्टमिंस्टर के कोरोनर जॉन ट्राउट बेक के सामने जांच हुई तो ढींगरा ने अपना पक्ष रखा।
8: मुझे लाल काका की आकस्मिक मृत्यु पर गहरा अफसोस है। अगर वे बीच में ना आए होते उनकी जान न जाती।
0: ढींगरा को वेस्टमिंस्टर पुलिस कोर्ट के मजिस्ट्रेट हॉरिस स्मिथ के सामने पेश किया गया। वहां उन्होंने कहा,
8: मैं दया की भीख नहीं मांगता और ना ही मैं अपने ऊपर आपके अधिकार को स्वीकार करता हूं।
0: ढींगरा का मामला सेशंस कोर्ट को सौंप दिया गया। उन्होंने कोर्ट से सीधे सीधे पूछा,
8: अगर जर्मनों को इंग्लैंड पर राज करने का कोई अधिकार नहीं है तो फिर अंग्रेजों को भारत पर राज करने का क्या अधिकार है?
0: मुकदमे के दौरान भारतीयों को कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अपने अंतिम दिनों में मदनलाल ढींगरा ने इच्छा जाहिर की थी कि अपने कपड़े, किताबें और अन्य सामान बेच दिए जाएं।
9: उससे जो भी पैसा मिले उसे नेशनल फंड में जमा करा दिया जाए। हालांकि इन्हें लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जब्त कर लिया। दो ट्रंक चीफ इंस्पेक्टर मैकार्थी ले गए। ढींगरा ने चिट्ठी दी थी जिसमें उन्होंने नितिन सेन द्वारका दास को अपनी निजी चीजों का मालिक बनाया था, लेकिन लंदन टाइम्स की 1 जनवरी 1910 की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 1909 को जब ये मामला बो स्ट्रीट मजिस्ट्रेट की अदालत में आया तो उन्होंने फैसला सुनाया कि पुलिस ढींगरा की चीजें नितिन सेन को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि मदनलाल ढींगरा ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी।
1: दीदी, क्या किसी ने मदनलाल ढींगरा को बचाने का प्रयास नहीं किया? और सावरकर जी ने?
2: बुरे वक्त में ही अपनों की असल पहचान होती है बन्नू। खुद मदनलाल के भाई भजनलाल ने उनका साथ छोड़ दिया जबकि वे लंदन में ही कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन सावरकर जी ने साथ नहीं छोड़ा।
9: असल में 5 जुलाई 1909 को कैक्सटन हॉल में मदनलाल ढींगरा की निंदा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भजनलाल भी शामिल थे। सभा की अध्यक्षता आगा खान कर रहे थे। भावनगरी ने प्रस्ताव पेश किया था और अमीर अली ने उसका समर्थन किया था। जब प्रस्ताव पर मतदान हुआ तो कई लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। आगा खान को घोषणा करनी पड़ी कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। तब सावरकर ने उसका पुरजोर विरोध किया और कहा,
10: नहीं, सर्वसम्मति से नहीं, इस प्रस्ताव के विरोधी भी मौजूद है, मेरा नाम दर्ज करें, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
11: पकड़ो इसे।
2: जानती हो, इस बात पर वहां भारी हंगामा मच गया। भावनगरी गुस्से से आग बबूला हो गए और सावरकर को पकड़कर हॉल से बाहर निकालने की कोशिश की। तब आगा खान ने उन्हें फटकार लगाई। पामर नामक एक यूरेशियन व्यक्ति ने सावरकर पर वार किया, उनके शरीर से खून बहने लगा। इसके बावजूद सावरकर ने कहा,
10: मैं अब भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।
9: तभी सावरकर के मित्र एमपीटी आचार्य ने छड़ी से पामर पर वार कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस घटना पर अपना रोष व्यक्त किया।
12: सावरकर को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। उन पर हमला करना अत्यंत निंदनीय और घोर अन्यायपूर्ण है।
9: इस घटना के बाद सावरकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों को एक पत्र लिखा।
10: चूंकि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस मुकदमे पर चर्चा करना और इसके लिए अपराध तथा अपराधी जैसे शब्दों का प्रयोग करना कोर्ट की अवमानना के समान है।
9: सावरकर का यह पत्र 6 जुलाई 1909 को टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। उधर मदनलाल ढींगरा की निडर देशभक्ति ने कुछ अंग्रेजों को इतना प्रभावित किया कि वो उनके लिए दया की अपील तक करना चाहते थे। उनमें से एक थे रिव्यू ऑफ रिव्यूज के संपादक W.T. स्टेड। स्टेड सावरकर के प्रशंसक और भारत की आजादी के समर्थक दोनों ही थे। उन्होंने अपने घर पर बिपिन चंद्रपाल के भारतीय सभ्यता पर व्याख्यानों का आयोजन किया था, लेकिन दया याचिका दायर करने की बात कहने की वजह से स्टेड को 3 महीने की जेल काटनी पड़ी। बाद में ऑब्जर्वर को लिखे एक पत्र में स्टेड ने तर्क दिया,
12: ढींगरा ने पागलपन के दौरे में यह हत्या की थी, इसलिए उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए।
9: स्टेड के अलावा सचिव मॉर्ले के परिषद के कई सदस्य मदन लाल ढींगरा की मौत की सजा के बजाय आजीवन कारावास देने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि उनकी शहादत से हिंसा और भी भड़क सकती है। कैबिनेट के कुछ सदस्य भी आजीवन कारावास के पक्ष में थे, लेकिन मॉर्ली अपने बात पर अड़े रहे।
13: जो भी हत्यारा पकड़ा जाएगा उसे फांसी पर लटकाया जाएगा, ढींगरा का भी यही हश्र होगा।
9: ढींगरा की बहादुरी ने सम्राट एडवर्ड सेवन को भी बेहद क्रोधित कर दिया था। 17 अगस्त 1909 को लिखे एक पत्र में उन्होंने मॉर्ली को सख्त निर्देश दिया,
4: भारतीयों को बिना किसी ठोस कारण के इंग्लैंड आने से रोक दिया जाए। ऐसे छात्र इंग्लैंड में रहते हुए राजद्रोह सीखते हैं और अपने देश लौटकर दूसरों को भी भड़काते हैं।
9: आखिरकार 17 अगस्त 1909 का दिन आ ही गया जब ढींगरा को फांसी पर चढ़ाया जाता। उनके कई दोस्तों ने पेंटन विले जेल में उनसे आखिरी बार मिलने की कोशिश की। सावरकर के सुझाव पर मुंबई से निकलने वाले गुजराती दैनिक पारसी के संपादक जे एस मास्टर ने लंदन के अंडर शेरिफ और गृह मंत्रालय को एक लिखित अर्जी भेजी और जवाब का इंतजार करने लगे, लेकिन दोनों ही जगहों से उनकी अर्जी ठुकरा दी गई। जेल में मदन लाल को इसकी भनक लगी।
8: मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों से मिले बिना ही इस दुनिया से चला जाऊंगा।
9: जेल के अंदर और बाहर दोनों ओर इस चर्चा ने काफी जोर पकड़ लिया था। कई भारतीय नौजवान जेल के दरवाजे के बाहर उदास जमा हो गए थे। उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। यहाँ तक कि बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया था।
14: गजब का तेज है मदनलाल के चेहरे पर। अपनी मौत को सामने देखकर भी वे कितने शांत और संयमित हैं।
9: फांसी से एक दिन पहले मदनलाल चैन की नींद सोए थे। फांसी वाले दिन उन्हें जगाना पड़ा था। उन्होंने रोज की तरह अपने सुबह के कामकाज निपटाए और पेट भर नाश्ता किया। ठीक 9 बजे मदनलाल फांसी के फंदे पर लटकने के लिए निकल पड़े। हटसन नाम का एक ईसाई पादरी उनके पास आया, लेकिन मदनलाल ढींगरा ने उसे यह कहकर लौटा दिया कि वो एक हिंदू हैं। तब लंदन के डिप्टी अंडर शेरिफ मेटकाफ ने पेंटन विले जेल के डिप्टी गवर्नर हेल्स की मौजूदगी में ढींगरा को उनकी मौत का वारंट पढ़कर सुनाया और उनसे कुछ औपचारिक सवाल पूछे। मदनलाल ढींगरा ने उनके सवालों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांत कदमों से फांसी के फंदे की ओर बढ़ गए। उनकी इस बहादुरी को देखकर उनके साथ चल रहे अधिकारी भी हक्के बक्के थे। ढींगरा ने वहां खड़े जल्लाद पियर पॉइंट को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़ गए। उन्होंने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। इस दौरान मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले, वंदे मातरम,
15: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।

0: दीदी, क्या मदन लाल जी का शव उनके दोस्तों या रिश्तेदारों को दिया गया?
1: रिश्तेदार कैसे, मदन लाल को फांसी दिए जाने के कुछ ही समय बाद उनके भाइयों ने ढींगरा उपनाम छोड़ दिया, सिवाय डॉक्टर बिहारी लाल के।
0: फिर किसे मिला शव?
1: मास्टर जी को मदन लाल ढींगरा के शव का पोस्टमार्टम देखने की इजाजत दी गई, लेकिन उन्हें ढींगरा का शव ले जाने की इजाजत नहीं मिली, जबकि ढींगरा की इच्छा थी कि उनके शव का अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया जाए, यानी दाह संस्कार हो। कई लोगों ने गृह सचिव हर्बर्ट ग्लैडस्टोन से इसकी गुजारिश की, लेकिन उसे नामंजूर कर दिया गया। ये कैसी विडंबना थी बन्नो, कि फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले एक इंसान की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होने दी गई। उनके शव को एक ताबूत में बंद करके जेल परिसर के अंदर ही दफना दिया गया।
0: क्या इस जेल में और भी क्रांतिकारियों को सजा दी गई?
1: हाँ बन्नो, इस जेल में दो भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटकाया गया था।
2: मदन लाल की फांसी के बाद मास्टर जी जब अंडर शेरिफ के साथ जेल के बाहर गए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। डेली मिरर के संवाददाता ने मास्टर जी से पूछा,
3: क्या भारतीय लोग ढींगरा को शहीद मानेंगे?
4: बिल्कुल, उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अब भलाई के बारे में उनका जो नजरिया था वो सही था या गलत, ये तो अपनी अपनी राय की बात है।
2: अगस्त 1909 के द टाइम्स लंदन के पेज 7 पर एक रिपोर्ट छपी कि 9 बजे के कुछ ही देर बाद मदन लाल की मृत्यु की घोषणा की गई। पियर पॉइंट जल्लाद था। शव का दाह संस्कार करने की इजाजत के लिए दी गई अर्जी को नामंजूर कर दिया गया था। इस कारण जेल की चार दीवारी के अंदर ही आम रिवाज के मुताबिक शव को दफनाया जाएगा। इससे पहले इसी अखबार ने 24 जुलाई 1909 को ढींगरा की सजा शीर्षक के नाम से एक संपादकीय लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हत्यारे ने जिस बेपरवाही का प्रदर्शन किया वो इस तरह की थी जो सौभाग्य से इस देश में होने वाले ऐसे मुकदमों में आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने जानबूझकर अपनाई गई उदासीनता और अवज्ञा का रवैया बनाए रखा। वो मुस्कुराते हुए कटघरे से बाहर निकला। ज्ञानचंद वर्मा की इच्छा के अनुसार सरदार सिंह राणा ने मदन लाल ढींगरा का अंतिम बयान एक पोस्टकार्ड पर उनकी तस्वीर के साथ प्रकाशित करवाया। उनका ये अंतिम बयान भी कम प्रेरणादायक नहीं था। चुनौती शीर्षक वाले इस बयान में मदन लाल ने लिखा था,
5: मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ दिन पहले मैंने देशभक्त भारतीय युवाओं को अमानवीय तरीके से फांसी दिए जाने और देश निकाला दिए जाने के बदले में एक विनम्र प्रतिशोध के तौर पर अंग्रेजों का खून बहाने का प्रयास किया। इस प्रयास में मैंने अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी से सलाह नहीं ली। मैंने अपने कर्तव्य के अलावा किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र जिसे विदेशी संगीनों के जोर पर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया हो वह हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। चूंकि एक निहत्थी कौम के लिए खुले मैदान में युद्ध करना असंभव है, इसलिए मैंने अचानक हमला किया। चूंकि मुझे बंदूकें रखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक हिंदू होने के नाते मुझे लगा कि मेरे देश के साथ किया गया कोई भी अन्याय ईश्वर का अपमान है। उसका उद्देश्य ही श्री राम का उद्देश्य है, उसकी सेवा ही श्री कृष्ण की सेवा है। स्वास्थ्य और बुद्धि से कमजोर मुझ जैसा एक पुत्र अपनी माँ को अपने रक्त के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता, इसलिए मैंने उसी रक्त को उसकी वेदी पर अर्पित कर दिया। वर्तमान में भारत को केवल एक ही पाठ सीखने की आवश्यकता है, वह है मरना कैसे है, और इसे सिखाने का एकमात्र तरीका है स्वयं मर जाना। इसलिए मैं मरता हूं और अपनी शहादत पर गर्व करता हूं। ईश्वर से मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है, काश मैं इसी मां की कोख से पुनः जन्म लूं और इसी पवित्र उद्देश्य के लिए बार बार अपने प्राणों की आहुति देता रहूं। तब तक जब तक कि यह उद्देश्य सफल न हो जाए और भारत माता मानवता के कल्याण तथा ईश्वर की महिमा के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होकर खड़ी न हो जाए। वंदे मातरम,
6: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: यही है वंदे मातरम की ताकत, हमारी संस्कृति की विरासत और चेतना की अभिव्यक्ति है। ये हमारी मिट्टी की धड़कन, अस्तित्व की पहचान है। ये हमें याद दिलाता है कि हम केवल एक देश के नागरिक ही नहीं बल्कि भारत माता के पुत्र हैं। मदन लाल ढींगरा की शहादत से कई अंग्रेज भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। खुद विंस्टन चर्चिल ने ब्लंट से ये बात साझा की। माय डायरीज में ब्लंट लिखते हैं,
7: हम फिर से देर रात तक बैठे रहे। चर्चिल ने कई यादगार बातें कही। मदनलाल ढींगरा के बारे में उन्होंने कहा कि कैबिनेट में उनके बारे में काफी चर्चा हुई है। लॉयड जॉर्ज ने उनके सामने एक देशभक्त के तौर पर ढींगरा की तारीफ की। चर्चिल भी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि 2000 साल बाद भी मदनलाल ढींगरा को याद किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हम रेगुलस, कैरेक्टिकस और प्लूटार्क के नायकों को याद करते हैं। चर्चिल ने ढींगरा के आखिरी शब्दों को भी दोहराया।
2: मदनलाल ढींगरा का ताबूत 12 दिसंबर 1976 को भारत के तत्कालीन कार्यवाहक उच्चायुक्त नटवर सिंह की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकाला गया। इस ताबूत को फिर हवाई मार्ग से भारत लाया गया। आज की कड़ी में इतना ही। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और कह सकते हैं अपना भाषा में मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर एक मंच प्रदान करते हैं, जिस मंच का माध्यम से अपना आवाज को जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये रेडियो सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा प्रस्तुतिकरण होता है और सामुदाय के लिए रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है इस तरह कार्यक्रम को लेकर। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर चंडला ग्राम पंचायत स्थित चोरबा प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों को एक मंच जो जरूरत था आज वो जरूर पूर्ण करने जा रहे। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए संस्था प्रधान HM सर से थोड़ा बातचीत कर, पहला बार आए फिर भी पहला साक्षात्कार में ही बच्चों को एकत्रित कराकर सहयोग दे रहे। तो सर आपका वेलकम, आपको स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम प्रकाश चंद है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरबा चंडेला में जून 2022 में मेरी न्यू ज्वाइनिंग हुई है इस वर्ष।
0: सर नामांकन में बालिका शिक्षा और बालक में क्या फर्क है बताइए।
1: हमारे यहाँ बालक है 75 और बालिका है 76, हमारे यहाँ कोई बराबर ही है, दोनों बालक बालिका है यहाँ पर।
0: सर राजकीय नौकरी मिलना कितना भाग्य का बात है, एक बार मेहनत करो इसके बाद आप सरकार का बेटा बेटी बन जाते हैं। तो सरकार आपको

0: बैठ गए। तो पहली बात तो बच्चों को नियमित विद्यालय आने पर जोर, हमने कई बार कार्यक्रम करे, यहाँ पर 26 जनवरी को भी हुआ हमारे घर पर, तो हमने ग्रामीणों को भी संबोधित करा था, बोला था कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजे, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चे नियमित विद्यालय गए, हम यहाँ अनुशासन में रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो सफल होंगे।
1: सर के लिए ताली बजाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को अपना विद्यालय में नियमित साफ सफाई होकर आएंगे और जितना सर बताएंगे उसको कान से अच्छे से सुनना, कैच करेंगे। सुनना भी एक कला है, श्रवण करना। अच्छा भोजन करते हैं, बासी भोजन नहीं करते हैं, अच्छा बात सुनते, खराब बात नहीं सुनते हैं। कान को हम पवित्र करना चाहिए और मुख भी पवित्र करते, जैसे दांत मुख मंजन करते तो हमारा भोजन अच्छा से जाता है, बिना मंजन से जाएगा तो हमारा पेट में बहुत कीटाणु रोग होता है। हमारा कान भी एक माध्यम है, जो सर पढ़ाते हैं स्कूल में उसको अच्छे से सुनना। शिक्षा में जो ज्ञानात्मक शिक्षा का साथ साथ क्रियात्मक एक्टिविटीज कराते हैं, गतिविधियाँ, इसका साथ साथ भावनात्मक भी होना चाहिए। हमारा स्कूल एक परिवार है, विद्यालय के परिवार जैसे है, तो सर लोग जैसे पढ़ाते हैं बच्चे हमारा उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से स्कूल के कार्य में लगाएंगे, भावनात्मक होगा तो जरूर हमारा गांव, हमारा विद्यालय और हम खुद अनुशासन में रहेंगे। हमारा गांव, हमारा देश अनुशासित होगा और भारत विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं लगेगी। जब भारत 100 साल मनाएगा उस समय ये बच्चे ही आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सर, इस कार्यक्रम को हमारे साथ और एक सर जी, सर आपका वेलकम, आप अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर।
2: मेरा नाम रोहित प्रकोट है, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरवा चंडेला में कार्यरत हूँ, जहाँ जून 2022 में मेरी ज्वाइनिंग हुआ और मैं अपने जीवन में अनुशासन की वजह से आगे बढ़ा हूँ।
1: अरे वाह, ताली बजा सर के लिए।
2: जीवन में संघर्ष मेरे बचपन से चला आ रहा है। मेरे पापा की डेथ 2012 में एक्सीडेंट की वजह से हो गई, जिसके बाद पूरा घर का बाद बड़ा होने के नाते मुझे संभालना पड़ रहा था। उस वजह से मैंने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हुए मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ा और अनुशासन की वजह से मैं आज शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ।
1: सर, इस कार्यक्रम को हमारा बच्चे भी सुन रहे हैं, अभिभावक भी सुन रहे हैं, शिक्षा जगत में जो जो हमारा लिसनर्स वो भी सुन रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। तो आज आपका सक्सेस स्टोरी, जो मेहनत, मोहब्बत, लगन, दृढ़ता से, अनुशासन से आज यहाँ तक पहुँचे, इसका श्रेय, धन्यवाद आप किसको देना चाहते हैं?
2: मैं अपनी माँ को देना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे पापा के न होने के बावजूद भी हमेशा मुझे आके प्रेरित किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई है जो नहीं कर सकते थे वो भी मैंने कर लिया। प्रेरक मेरी माँ ही है,
1: इसलिए कहते हैं माँ को प्रथम गुरु, क्योंकि हम जब संसार में आते हैं तो हमको हमारा परिचय का साथ माँ बाप का परिचय वही सिखाते हैं, ये बाप है, ये चाचा है, ये भाई है, सब सिखाते हैं। तो माँ, जब हम पैदा होते हैं माँ शब्द उस समय ही पैदा होता है, क्योंकि माँ बोलने वाला लड़का ही माँ शब्द यूज करता है। तो दोनों का कितना तालमेल है, और माँ का और बाप का जो अवदान है हमारा प्रति जो दिया हुआ है हम कभी नहीं भूल पाते। सर, आज भाव विभोर होकर अपना माँ को ये कार्यक्रम डेडिकेटेड कर रहे हैं, क्योंकि माँ है तो हम है, और माँ तो शब्द में जादू है और वो खुद नहीं खा के बच्चों को सब कुछ कराते हैं, हमेशा हमसे आगे बच्चे बढ़े। तो आपका मम्मी क्या करते हैं?
2: मेरे मम्मी तो
1: घर का काम,
2: घर का काम है, मेरे पिताजी कारीगर का काम करते थे।
1: ओहो,
2: वो भी चले जाने के बाद फिर हम अकेले हुए थे
1: घर में। और कौन कौन है परिवार में?
2: मेरे दो बहन है जिनकी शादी हो चुकी है और दो भाई और है जो छोटे हैं।
1: आप कहाँ से बिलोंग करते?
2: मैं बांसवाड़ा जिला घड़ी तहसील से बिलोंग करता हूँ, लोहरिया से।
1: जी जी, बहुत अच्छा। तो बच्चे भी कभी आप थे और आज बच्चों को आप पढ़ा रहे, आप संबंध बना रहे, क्योंकि बच्चे कच्चा मिट्टी है जो दो तिहाई जीवन का इस समय में सीख जाते हैं, देखना पढ़ना सब कुछ सीख जाते हैं। आप उनका क्रिएटर है, एक निर्माता है।
2: जी सर,
1: आप जैसे कहेंगे, जैसे उनको देंगे शिक्षा, वो शिक्षा लेकर आगे बढ़ते। तो आप बच्चों को जब देखते हैं तो आपका मन में क्या आता है? बचपन का याद आता है?
2: जी सर, बचपन का याद आता है, क्योंकि हम भी छोटे थे तो शरारतें करते थे, जिस तरह बच्चे आज कर रहे हैं वही हम भी कर रहे थे। और बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि अनुशासन में रहोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे, अगर अनुशासन नहीं है जीवन में तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
1: अनुशासन बहुत आवश्यक है, जो बच्चे अनुसार

सित होकर माँ बाप का, बड़ों का, शिक्षक का, गुरुजन का बात मानते उस पद पर चल पड़ते तो आगे कामयाब तक पहुंचे। सर अपना बात को बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों का आवाज को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए आज राज्य के प्राथमिक विद्यालय चोरबाग जो कि चंडला ग्राम पंचायत स्कूल से प्रस्तुतकरण हो रहा है। अभी एक प्रस्तुति सुनाएंगे। सर किसको बुलाएंगे?
1: नितिन शर्मा और किशन कुमार को।
0: नितिन शर्मा और किशन कुमार एक प्रस्तुति देंगे, वो भी अपना परिचय देंगे, तो अपना अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम है नितिन शर्मा।
0: ओके।
2: कक्षा चौथी में पढ़ता हूँ। मेरी विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरबा चंडेला अबूरोड जिला सिरोही।
0: अरे वाह, वेरी गुड।
3: मेरा नाम है किशन कुमार, मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरबा चंडेला सिरोही जिला।
0: वाह बहुत अच्छे। इस तरह बच्चे बिना झिझक से, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पहला बार मौका मिला रेडियो में अपना आवाज सुनाने के लिए। खुशी लग रहा है बच्चों को, क्योंकि ये एक नया कार्यक्रम उनके लिए। रेडियो मधुबन इस तरह बच्चों को जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। तो किशन जी बढ़ो, तुम क्या बनना चाहेंगे?
3: पुलिस।
0: पुलिस, अरे वाह। पुलिस क्यों बनेंगे, क्या करेंगे पुलिस से बनकर?
3: देश की सेवा करने के लिए।
0: पुलिस देश का सेवा करता है, रक्षा करता है, चोर को
3: पकड़ने के लिए।
0: पकड़ने के लिए। कोई चोरी नहीं करना चाहिए, चोर अच्छा नहीं, अच्छा आदमी बनना चाहिए। किशन अच्छा अच्छा क्या प्रस्तुत करेंगे दोनों मिलकर? गीत गाएंगे
3: जी।
0: कौन सा प्रस्तुत करेंगे, सुनाओ।
4: शुरू
3: जी।

0: क्या बात, पेड़ है तो जीवन है, जाल है तो पेड़ है, पेड़ है तो जाल भी है, जीवन है। पेड़ हमारा मित्र, वृक्ष को अपना मित्र बना, वो हमें सब कुछ देता है। जैसे गीत में बहुत चीज सिखाया, बारिश भी पेड़ का चलते मिलता, ऑक्सीजन भी वृक्ष से ही मिलता है। हर जन्मदिन में एक एक पौधा लगाना चाहिए। लगाते बच्चे, लगाते हैं ना, नहीं लगाए तो लगाना एक दिन। सर आपका स्कूल में भी जिसका जिसका बर्थडे होता है ना, जन्मदिन मनाते हैं एक बार महीने में, लास्ट में सामूहिक रूप में जिसका जिसका जन्मदिन है उसको एक एक पौधा, चॉकलेट नहीं चाहिए, चॉकलेट बहुत खाए हैं, केक बहुत काटे हैं, वो पैसा को एक पौधा, कोई भी एक पौधा लगाना चाहिए। वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है और वो हमारा साथी बनेगा। इसलिए हर स्कूल में जब भी जाते हैं हम बताते हैं, जन्मदिन पर बा राष्ट्रीय पर्व पर अपना नाम पर एक पौधा को लगाकर उसको दोस्त बनाना है, फिर उसका देखभाल करेंगे तो जो अच्छा से देखभाल करेंगे उसको प्राइज मिलेगा। चाहे सरपंच तरफ से हो, चाहे स्कूल तरफ से हो, चाहे कोई भामाशाह तरफ से हो, कोई एनजीओ की तरफ से, उनको प्राइज मिलेगा जो अच्छा देखभाल करेगा। इसमें आपका क्या विचार सर?
1: सही बात कही आपने, ये प्रकृति को हरा करने के लिए आपका विचार बढ़िया है। हर बच्चे को एक पौधा अपने जन्मदिन पर उगाना चाहिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तुम क्या नाम बताया?
2: नितिन। नितिन शर्मा।
0: नितिन शर्मा जी, अच्छा। बढ़कर क्या बनेगा नितिन?
2: सर
0: बनेगा। अच्छा, आपका स्कूल में कितने शिक्षक है?
2: तीन।
0: क्या क्या नाम?
2: प्रिंसिपल है और मैम।
0: बताओ देखिए।
2: प्रकाश सर, सर कमलेश सर, प्रिंसिपल का सुनीता मैम।
0: अच्छा, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल मैंने HM को बोलते हैं। अरे वाह, वो आए नहीं आज ना? है
2: नहीं।
0: आए नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या पढ़ाती है प्रिंसिपल मैम?
2: इंग्लिश।
0: अरे वाह, तुम कौन सा टीचर बनना चाहेंगे? इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गणित टीचर, कौन सा टीचर बनना चाहेंगे?
2: गणित।
0: अरे वाह। अच्छा, जैसे आप पेड़ का गीत गाए ना, पौधा कौन सा, कितना पौधा का नाम बताओ?
2: फल का पेड़ होता है,
0: जैसे
2: अमरूद का भी पेड़ होता है।
0: ओके, वेरी गुड।
2: अनार का भी पेड़ होता है,
0: ये सब फल है। हाँ,
2: और नींबू का भी पेड़ होता है,
0: ये सब फल का पेड़। उनको दीजिए, तुम बताएगा। जैसे फल का बता दिया, जो छाया देता बड़ा बड़ा पेड़, फल नहीं देता लेकिन छाया देता है, देखा है
2: जी?
0: बताओ पेड़ का नाम, देखा ना साइड में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ जो छाया देता है?
3: आम का पेड़।
0: आम का पेड़, वेरी गुड, ताली बजा, पास हो। आम का पेड़। और पीपल।
3: पीपल।
0: और बड़ा, वो भी बड़ा पौधा होता है। और नीम का पेड़, देखा है नीम?
2: हाँ, मैंने देखा है।
3: देखा है।
2: और बड़ा होता है।
0: और जामुन।
3: जामुन का पेड़।
0: जामुन का पेड़ बहुत अच्छा पेड़।
2: और बोर का पेड़।
3: बोर का पेड़।
0: अच्छा, बोर, अभी तो धीरे धीरे याद आ रहा है। ये सब पेड़ होता है, पेड़ लगाना चाहिए। हरा भरा पौधा लगाएंगे तो हमको छाया भी मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला नितिन को और किशन को सुन रहे थे। पेड़ का ऊपर का गीत, पेड़ बचाओ तो जीवन बचेगा, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जल है, पेड़ है तो सब कुछ है, इसलिए पेड़ लगाओ भाई, पेड़ लगा गीत ब्रेक का पहले सुन रहे थे। और इसका बाद दो कन्याएं, दो छात्राएं उपस्थित है, मासूम मासूम चेहरा, नाम बताओ अपना अपना।
1: मेरा नाम जोशना है।
0: क्लास?
1: क्लास चौथी।
0: चौथी, ओके।
1: राजकीय प्राथमिक विद्यालय
0: चोरबा।
1: मेरा नाम है खेमी, मैं पास से मैं बताऊँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरबा चंडीला आगरो जिला सिरोही।
0: अरे वाह, जिला सिरोही। और राज्य राजस्थान, और देश भारत। देश भारत माता की
2: जय।
0: वंदे
2: मातरम।
0: क्यों हम बीच में भारत माता को जय कर रहे हैं? क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव से हम स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर है, भारत का उत्थान हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय चोरबा स्कूल के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, प्रस्तुति सुनेंगे। पेड़ पौधा के नाम सुने तो पेड़ पौधा फल फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं, तो सब्जी का ऊपर में एक गीत प्रस्तुत करेंगे। जोशना एंड पार्टी शुरू करते हैं।

0: sim.
1: पतंग और सब्जियां जोशना, ये गीत कहाँ से सीखी? घर में कि स्कूल में? बता।
0: स्कूल में।
1: स्कूल में कौन सिखाई? स्कूल में होता है, मैम सिखाते। जोशना बड़े होकर क्या बनेगी? डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ बनेगी?
0: डॉक्टर।
1: डॉक्टर का काम क्या होती है?
0: सुई लगाते।
1: बच्चे सुई का पूरा याद रखते। डॉक्टर में सिर्फ सुई लगाते हैं, दवाई देते, इलाज करते हैं, है ना? आपका स्कूल में आते हैं बीच बीच में?
0: जी।
1: आते हैं। वाह, आएंगे तो आपका स्वास्थ्य को जांच करेंगे, है ना? तो आज जब सब्जियों का ऊपर गीत गाए तो कुछ सब्जियों का नाम बताएंगे? बताओ।
0: बैंगन।
1: अरे वाह।
0: टमाटर।
1: ओके। टमाटर का कलर कैसे है?
0: लाल।
1: लाल होता है, पकने के बाद लाल होता है। अच्छा, और भिंडी का कलर क्या होता है?
0: हरा
1: होता है। वेरी गुड। और भिंडी हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, और आलू भी होता है। अरे वाह। और
0: प्याज
1: भी होता है। अच्छा, स्कूल में पोषाहार मिलता है? पोषाहार खाना मिलता है, भोजन? स्कूल में क्या क्या सब्जी होता है बताओ? जोशना बताएगी? हाँ बता।
0: दाल भी होती है।
1: हाँ, दाल भी होती है। और कभी सब्जियाँ होती है? कौन सा सब्जियाँ?
0: बैंगन भी होती है।
1: बैंगन भी होती है। पालक?
0: पालक भी होती है।
1: पालक तो सब्जी नहीं है ना?
0: नहीं।
1: सब्जी नहीं है? और क्या है? फल है? सब्जी है। देखा, मैं तो टेस्ट कर रहा था, हम जो बोलते हैं उसको मान लेते हैं। पालक एक सब्जी है, फल नहीं है, सब्जी है ना? और तुम्हारे घर में कौन कौन है?
0: मम्मी रो।
1: और गाँव रो हूँ नाम? चोरवा। तुम्हारा दोस्त रो हूँ नाम? जोशना है तुम्हारा दोस्त। जोशना, तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ। दोस्त खिमी। तो पक्का पास हो गए दोनों। खिमी बोलती जोशना, जोशना बोलती खिमी, है ना? बहुत अच्छा। तो स्कूल में कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं? खिमी, कौन सा टीचर, कौन सा मैम आपको अच्छा लगते हैं?
0: प्रकाश सर।
1: प्रकाश सर क्या पढ़ाते हैं? हिंदी? सब पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पास हो गए। तो हमारा सर इस कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो सर क्या बताना चाहेंगे बच्चों का इस तरह? थोड़ा सा उनका जो झिझक को दूर करने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसको बुलाने के लिए। तो मंच में बच्चे थोड़ा पहले आते तो थोड़ा घबरा जाते हैं, डर थोड़ा बहुत है, लेकिन अगला बार जब आएंगे पूरा बुलंद आवाज से पूरा नाम रोशन करेंगे। करेंगे ना खिमी और जोशना?
0: हाँ।
1: खाना खाएगा ना आज? बोलो हाँ जी।
0: हाँ जी।
1: हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। देखिए सर, हमारा उमंग सब बढ़ाएंगे सर। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव और अंचल में आते हैं, तो आप तो शहर अंचल से आए होंगे, लेकिन गांव का बच्चे को जब देखते हैं मासूमपन है, ज़्यादा चुप रहते हैं, चुप रहेंगे तो सुख मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर बच्चियों के लिए, जोशना और खिमी के लिए, क्या विशेषता है इनके पास?
2: ये दोनों बढ़िया बच्ची है। ये आज घबरा रही है जीजा के, ये क्या नए को देखते ना किसी को भी, तो आज तो जीजा के नीचे खुल ले ऐसे बात करते हैं ये।
1: अच्छा,
2: आज इन्होंने नहीं आपको देखा, इस कारण ये थोड़ा अंदर बैठे, डर है इनके थोड़ा आज क्या।
1: अच्छा।
2: तो ये हर कार्यक्रम में भाग लेती है।
1: भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम और अगला प्रस्तुत

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे लेते हुए सुन रहे थे सब्जियां हमारा स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यकता है। हरी सब्जियां खाओ और बीमारी को भगाओ। डॉक्टर तो पास से आएगा ही नहीं, हरी सब्जियां खाएंगे तो ताज़ा सब्जियां जब खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्कूल में पोसार फल फ्रूट दूध का साथ सब चीज़ सरकार ने दिए हैं, जिसका चलते नामांकन में बच्चों का बढ़ोतरी हो रहा है। बच्चों को जो स्कूल में मिलता है घर में वो चीज़ कभी कभी मिलता नहीं है। अंगूर सेब संतरा केला सब देते हैं, फल फ्रूट खाएंगे तो बच्चों का विकास होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे लेते हुए हमारे साथ दो छात्र है, सुनाएंगे अपना अपना नाम। नाम सुना?
1: साहिबराम।
0: साहिबराम क्लास
1: पांचवी।
0: पांचवी। और गांव
1: चोरवा।
0: ना कौन सा फल से आता है? आंबा बेरी छपा बेरी कौन सा फल से आते हैं?
1: चोरवा
0: फली है। कोई फली? हाँ। कितना फली है यहाँ पर? जैसे माता फली, भूता फली, बहुत सारा फलियाँ हैं
1: जी।
0: तो चोरवा में फलियाँ हैं?
1: हाँ।
0: बताओ कौन सा कौन सा फलियाँ?
1: ऊपर फली है वो।
0: ऊपर फली ओके।
1: फतापुर फली
0: ओके।
1: चकोड़ा फली।
0: चकोड़ा फली, सकोड़ा फली ओके।
1: ढूंढाई फली।
0: ढूंढाई फली देखो कितना फली, इतना नाम देखो।
1: तेलपुर फली।
0: तेलपुर फली अच्छा, चंडला में आता है। आंबाबेरी भी है?
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा।
2: मेरा नाम है नितिन शर्मा।
0: नितिन शर्मा
2: चौथी।
0: हाँ।
2: विद्यालय का नाम राजकीय प्रारंभिक विद्यालय चोरवा चंडला अबरोड जिला राजस्थान
0: राज्य। तुम्हारा दोस्त
2: किशन।
0: किशन, किशन के पास क्या गुण है, क्या विशेषता है? दोस्त
2: वो पढ़ाई में अच्छा है इसलिए हम दोनों भाई पढ़ाई में अच्छे हैं इसलिए।
0: जो पढ़ाई अच्छे करते हैं उनका साथ दोस्त करना चाहिए है ना नितिन?
2: नहीं,
0: दोनों दोस्त है, पढ़ाई अच्छा करते हैं इसलिए हमको दोस्त बना। क्या सहयोग देता है, क्या मदद करता है आपको?
2: सब मदद करता है।
0: जैसे सब मतलब खाना खिला देता है आपको?
2: नहीं, इसके घर पे जाता
0: जाते तो क्या करते, खाना देता है, भोजन भी कराता है, फल फ्रूट देता है, और क्या देता है? ऐसे दोस्तों का सबको नहीं बनाया, बस उसको बनाया तो कुछ देता होगा ना। कॉपी कॉपी किताब देता है?
2: हाँ।
0: वो भी देता है। और कोई सब्जेक्ट कोई विषय आपको समझ में नहीं आएगा तो आप किसको पूछते हैं, दोस्त को ना सर को?
2: सर इसको नहीं आता सर को पूछते हैं।
0: अरे वाह, जब दोस्त को नहीं आता तो आप सर को पूछते हैं। तो क्या प्रस्तुत करेंगे दोनों मिलकर, कुछ सुनाएंगे?
2: हाँ,
0: सुनाओ।
2: ठंडी ठंडी मटकी माँ मोगिया तारे सीन जोड़ी बारा भी वन जबरो मजो लागे। ठंडी ठंडी मटकी माँ मोगिया तारे सीन जोड़ी बारा भी वन जबरो मजो लागे।
0: ये कौन सा गीत, आदिवासी गीत ना राजस्थानी ना फिल, कौन सा गीत? आदिवासी कौन सा गीत सर, सर बताएंगे? और फिर एक बार गाओ।
2: ठंडी ठंडी मटकी माँ मजिया तारे सीने जोड़ी बाला वे वन जबरो मजो लागे। ठंडी ठंडी मटकी माँ मजिया तारे सीने जोड़ी बाला वे वन जबरो मजो लागे।
0: अभी सार बताएंगे
2: सर, ये इसको आता है, मुझे नहीं आता था। हाँ, बोला था।
0: ये कौन सा गीत है, ये राजस्थानी गीत ना गुजराती गीत?
3: आदिवासी।
0: आदिवासी गीत, आदिवासी गीत में भी इतना मैंने प्रमोशन हो गया। अभी आदिवासी गीत पहले जैसे नहीं, अभी तो बहुत अच्छे गीत गाते हैं और हमको कंफ्यूज कर दिया भाई, ये राजस्थानी ये आदिवासी कि गुजरात, हमको तो लग रहा था गुजराती। कोई बात नहीं, हमारा सभी श्रोता आज सुन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे हमारा सर? सर जो भाषा में जो विविधता है, आज हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे ओडिया हो, चाहे तेलुगु हो, बहुत सारा विविधता को लेकर हम सब भाषा को हम सम्मान देते हैं है ना। हमारा आदिवासी गीत में जो मिठास है, जो शुद्धता है, जो भोलापन है देखने को मिलता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कौन सा मेला होता है आदिवासी में बताओ? मेला भरता है?
2: हाँ।
0: क्या क्या मेला भरता है?
2: मंदिर का मेला होता है।
0: जैसे कब मेला भरता है?
2: गर्मी को,
0: गर्मी का टाइम शीतला माता मंदिर में होता है। होली हो, दिवाली हो, मनाते हैं ना शादी में। बारवा भी करते हैं, बारवा भी करते हैं ना
2: जी।
0: गणगौर त्योहार होता है? गणगौर घर में तो गणगौर त्योहार होता है ना? नहीं होता है? होता है तो आप लोग मालूम। कोई बात नहीं, मेले में जो जाते मेला भी भरता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए
4: और एक प्रस्तुति सुनाएंगे।
0: लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ब्रेक का पहले सुन रहे थे राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोरबा चंडला का आवाज। सही बच्चे पढ़ाई अच्छा लगता है
1: जी।
0: स्कूल अच्छा लगता है
1: जी।
0: सही बच्चे राजी खुशी है
1: जी।
0: बड़े अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: छोटे अच्छे लगते हैं
1: जी।
0: सब में जी हाजिर करते हैं बच्चे।
2: नितिन हमारा होशियार टैलेंट बच्चा है, थोड़ा बोलने में होशियार है। बोलो कुछ बोलना है।
3: प्रार्थना बोलो।
2: प्रार्थना बोलना है। क्या प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना?
3: ये सर।
2: ये तो बोलेंगे बच्चे शारदा माँ का गीत प्रार्थना होगा, हर स्कूल में होता है।
0: नितिन और उनका दोस्त मिलकर प्रार्थना गाएंगे, उसका साथ साथ बच्चे भी गाएंगे प्रार्थना के रूप में। शुरू में होना चाहिए था लेकिन लास्ट में हम प्रार्थना करा रहे हैं।
2: कोई बात नहीं, स्वागत करते हैं।
0: प्रार्थना के रूप में एक गीत प्रस्तुत करेंगे सामूहिक रूप में नितिन एंड उनका सभी दोस्त। सुनते हैं एक प्रस्तुति
2: शुरू।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना का माध्यम से हमारा दिल का तार, बुद्धि का तार माँ सरस्वती तक पहुँच रहा है, क्योंकि विद्या का देवी है और हम सब बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा जगत में हमारा नन्हे मुन्ने बच्चे काम नहीं है, पढ़ाई करके कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कार्यकर्ता, कोई सरपंच बनेंगे बड़े होकर। ऐसे बच्चों को एक मंच जब मिलता है अपना बात को रख पाते हैं। नितिन, स्वच्छता को लेकर क्या कहेंगे, साफ सफाई रहने से क्या फायदा होता है?
1: बीमारी नहीं लगती।
0: ओके,
1: और बीमारी लगेगी।
0: हाँ, साफ सुथरा रहेंगे, स्वच्छता रहेंगे तो क्या फायदा होता है? एक तो बीमारी नहीं आएगी और दूसरा
1: पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा।
0: वेरी गुड, ये सही बात। जब हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा पढ़ाई अच्छा होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। गंदगी रहेंगे तो बीमारी तो होगा और पढ़ाई
1: नहीं
0: हो पाएगा, इसलिए स्वच्छ रहना चाहिए। अच्छा नितिन, स्वच्छता से फायदा दो बात बताए, एक तो बीमारी नहीं होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, और जहाँ स्वच्छता है, जहाँ साफ सुथरा है, वहाँ पर और क्या होगा?
1: और
0: आप जब साफ सुथरा रहते हैं तो आपको क्या लगता है?
1: अच्छे।
0: हाँ, खुद को
1: अच्छा
0: लगता है। गंदगी अच्छा लगता है किसको? नहीं, सभी साफ सुथरा रहते हैं। साफ सुथरा रहने के लिए क्या क्या करते हैं, नाम बताओ, और साफ सुथरा कैसे रहते तुम बताओ?
1: मेरा नाम किमी, नहाते हैं,
0: नहाना चाहिए, नहाएंगे तो साफ सुथरा होगा, गंदगी पसीना सब निकल जाएगा, इसलिए डेली नहाना चाहिए। नहाते हैं बच्चे?
2: जी।
0: मंजन?
2: जी।
0: फिर तेल लगाते हैं, साबुन वगैरह लगाते हैं, इसके बाद ड्रेस पहनकर साफ सुथरा से आते हैं। कोई बच्चे ऐसे नहीं जो बिना नहाए आते हैं, ऐसे कोई है नहीं, सब नहाते हैं। नहाने से क्या होता है कौन बताएगा? नहाने से हमको क्या फायदा? नितिन तुम बताओ।
1: बीमारी नहीं लगती
0: और
1: पढ़ाई में मन लग जाता है।
0: पढ़ाई में मन लगता है, नहाने से कोई भी देखेगा तो उनको
1: अच्छा
0: लगता है, खुशी मिलेगा, है ना? आपको तो फायदा ही है, आपको देखने से खुशी मिलेगा कि नहीं दूसरों को? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रस्तुति सुनाएंगे, लेकिन अल्प विराम के बस सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम ब्रेकअप पहले एक प्रार्थना विद्या की दात्री माँ शारदा का प्रार्थना सुन रहे थे। हमें खुशी है बच्चे इस तरह प्रार्थना करते हैं, साफ सुथरा स्वच्छ रहते हैं, और जो स्वच्छ रहते हैं उनका दिमाग खोलता है, बुद्धि में ज्ञान रहता है जो भी पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, तीन परिया है, गुड़िया है, सुनाएंगे अपना अपना नाम।
4: मेरा नाम काली है, कक्षा तीसरी।
0: अच्छा।
4: राज्य प्राथमिक विद्यालय संडिला अवरोध सिर। मेरा नाम सपना है, कक्षा चौथी।
0: चौथी।
5: मेरा नाम सीता, कक्षा पांचवी।
0: पांचवी। तो सुनाएंगे गीत, सुना।

0: कितना सुंदर, और ये जो आदिवासी गीत में पढ़ाई शिक्षा का ऊपर में सुंदर प्रस्तुति किए सामूहिक रूप में। नितिन, ये गीत में क्या सीखने को मिला? शिक्षा मैंने पढ़ाई करने से कितना फायदा है वो बात बताए। इस गीत से क्या सीख मिलता है?
1: पढ़ने आने का मिलता है, कपड़े मिलते हैं।
0: पढ़ने से हमको कपड़ा भी मिलता है?
1: नहीं, स्कूल आने से
0: हाँ, पढ़ाई करने से। हाँ, और क्या मिलता है? हाँ, तुम बताएगी।
1: कॉपी मिलती है।
0: और क्या क्या मिलता है बताओ? कपड़ा मिलता है, ड्रेस, यूनिफॉर्म, और
1: शिक्षा मिलती है।
0: शिक्षा मिलती है, और
1: इनाम मिलता है।
0: हाँ,
1: कोई भी प्रोग्राम होता है,
0: कॉपी मिलता है।

0: कॉपी भी मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सभी स्कूल आना चाहिए, स्कूल आने से उनको तो शिक्षा मिलती है और यूनिफॉर्म ड्रेस भी मिलता है और खाने के लिए भोजन मिलता है, दूध भी मिलता है ना। हाँ, कहीं बताया नहीं, अभी बताएंगे सभी क्या क्या मिलती है,
0: बता। शिक्षा, कपड़ा,
2: कपड़ा मिलता है, दूध भी मिलता है,
3: रोटी भी मिलती है, रोटी सब्जी मिलती है, चावल दाल खिचड़ी और रोटी दाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। सभी अपना अपना नाम बताएंगे।
4: मेरा नाम नितिन है।
5: मेरा नाम है किशन कुमार।
6: मेरा नाम है चेतना।
7: मेरा नाम है सपना।
8: मेरा नाम है खीमी।
9: मेरा नाम है साहिबा।
10: मेरा नाम है जोशना कुमारी।
11: मेरा नाम है काली।
1: अपना अपना नाम बताए, सुंदर कार्यक्रम को सजाए। इस कार्यक्रम सभी को नाम का साथ धन्यवाद। ये था बच्चों का तोतल तोतली आवाज में अपना भाव भावना और गीत का माध्यम से प्रस्तुत किए। सब बड़े होकर अपना अपना लक्ष्य रखें, ऐसे आगे बढ़ें, ये हमारा सुभावना। रेडियो मधुबन इस तरह मंच देते रहेंगे और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहेंगे, है ना बच्चे
12: जी।
1: सब खुद के लिए ताली बजाओ। ताली बजाने में कोई पैसे नहीं लगता है और खुशी मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप मिलते हैं नई नई प्रतिभाओं से, उनसे मुलाकात भी करते हैं और एक संगीत के सफर पे भी चलते हैं हम साथ साथ। वैसे दोस्तों, हम जानते हैं संगीत के कितने प्रकार है और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से हर चीज जैसे एक क्लिक पर ही उपलब्ध है। लेकिन संगीत आधारित किस पर होता है अगर ये सोचा जाए तो भाई ये समझ में तो आने में देर नहीं लगेगी कि बिना कविताओं के, बिना शब्दों के संगीत अधूरा है। तो इसीलिए आज जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो शब्दों को बहुत बखूबी पिरोती हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सरलता से शब्दों में, कविताओं के रूप में वो व्यक्त करती हैं। रिया हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में, सांझ बाबा साहेब घुगे जी, जो कि बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, इंग्लिश लिटरेचर इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी उनके मेजर सब्जेक्ट्स है। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं इतनी छोटी सी उम्र में और नेशनल लेवल की पब्लिक स्पीकर भी हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सांझ, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले तो हमारे जो लिसनर्स हैं, मैं चाहूंगी उनके लिए एक बार थोड़ा आप अपने शब्दों में भी अपना परिचय दें।
1: ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं सांझ घुगे हूँ एंड मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं रेडियो मधुबन के साथ जुड़ रही हूँ और उसके जरिए आप सभी से मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स रेडियो मधुबन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अ ह्यूज एंड स्पेशल थैंक यू टू परमात्मा फॉर ब्लेसिंग एंड शॉवरिंग मी विद सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रूहानी यात्रा पे आपको लेके जाने का मैं प्रयास करूंगी थ्रू पोएटिक वर्ड्स एंड इंटरेक्शन। सो आई होप कि आप सब एंजॉय करें।
0: सांझ, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने 3 किताबें लिखी हैं, है ना, उनमें से एक तो मेरे सामने है अभी जिसका नाम है बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। इसके अलावा ये आपकी 3री किताब है,
1: राइट?
0: इससे पहले 2 किताबें किस बारे में लिखी हैं आप?
1: मैंने जब फर्स्ट बुक लिखी थी दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड दैट वाज अ पीरियड ऑफ लॉकडाउन। एक्चुअली मैंने जब मेरी फर्स्ट बुक लिखी थी तो फिर वो मैं जब 10th में थी तब लिखी थी एंड उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था, बिकॉज ऑफ विच मेरी 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स तो कैंसिल हो गए थे। सो आई वॉज लाइक वेरी डिसहार्टेड, मुझे बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी और फिर मेरी एग्जाम्स कैंसिल हो गई, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, मैं थोड़ी उदास हो गई थी। सो व्हाट माय फादर सजेस्टेड इज मी इज कि मेरे पापा ने कहा कि तू क्या कर, तू एक किताब लिख डाल, बिकॉज उन्हें पता था कि मुझे लिखना बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: यस। तो फिर मैं पहले से जैसे जैसे मुझे कोई थॉट्स क्लिक करते थे मेरे माइंड में, मैं उन्हें तुरंत लिख देती थी। तो मैंने उस वक्त क्या किया, जो भी मेरे पास मेरे जो थॉट्स थे मैंने पेजेस पे लिखे

0: एंड उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें, लोगों को सबको बहुत पसंद आई. एंड मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब एक्चुअली यू नो जब आपकी बुक किसी को हेल्प कर जाती है. बिकॉज जैसे कि मेरा जॉनर ही सेल्फ हेल्प है, आई राइट मोटिवेशनल बुक्स, दैट्स नॉन फिक्शन. तो फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने आके मुझे बताया पर्सनली कि जो जैसे मुझे जो छोटे थे या फिर मेरे एज के जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे उन्हें बहुत पसंद आया. उन्होंने मुझे आके बताया कि इसका हमें बहुत हेल्प हुआ है, इससे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है, एंड उसने हमें सच में ये बुक पढ़ के हमें सच में मोटिवेशन फील हुआ है. सो ये सब मैंने जब सुना तब मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि यस, मेरा जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया है.
1: क्या बात है. अच्छा सांच, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहती हूँ और बुक के बारे में. लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही संगीत का है ना और कविताओं का प्रोग्राम है. आज एक्चुअली कविताओं का बन गया है. तो क्योंकि आप लिखते हैं पोएट्री भी, तो क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कुछ आपका लिखा हुआ पढ़कर सुनाएंगे?
0: जरूर. मुझे पोएट्री लिखना बहुत पसंद है और मेरी लिखने की जर्नी ही पोएट्री से शुरू हुई थी.
1: अच्छा, शुरुआत मतलब वहां से हुई जो आगे जाके बुक तक पहुंची.
0: यस,
1: वंडरफुल.
0: तो मेरे पास बहुत कविताएं हैं और मैं यूजुअली इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन मैंने हिंदी में भी लिखा था लास्ट ईयर. मैंने कुछ कविताएं हिंदी में लिखी थी, तो उसमें से मैं एक पेश करना चाहूंगी.
1: जरूर.
0: तो इसका शीर्षक है, मेरा प्यारा शिव है आया. मनुष्य जीवन के हैं पांच स्वरूप, ज्योति बिंदु बन परम रूप. तो देवता दूजा लक्ष्य अथवा पूज्य स्वरूप है बेहद पूजनीय. तो ब्रह्मा जीवन है ज्ञान का भंडार, तथा फरिश्ता बन करना है सबका उद्धार. ज्ञान का सागर प्रेम और आनंद में समाया, ले बिंदु का आकार, मेरा प्यारा परमात्मा है आया. मीठे बच्चे सिकिलदे बच्चे बोल, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया. अनगिनत राज खोल, खुद को खुद से है मिलाया. मेरा प्यारा भोला शिव है आया, मेरा प्यारा भोला शिव है आया.
1: सो स्वीट, बहुत ही सुंदर आपने जो बात कही. मुझे लगता है आपको जैसे परमात्मा से बहुत कनेक्ट महसूस होता है हमेशा.
0: जब मैं योग में बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है.
1: वो अनुभव आपने लिखा
0: जी.
1: ये कब लिखी थी आपने, मतलब कब लिखा आपने?
0: 2024 में लिखा था, दिसंबर 2024, जब मैं बाबा मिलन के लिए आई थी.
1: अच्छा, जब आप यहाँ पे आए तब आपने लिखा. ओके, तो आपके मन में जब कोई भावनाएं आती हैं तो आप उनको लिख देते हैं
0: जी,
1: है ना, चाहे पोएट्री के फॉर्म में हो चाहे किताबों में आपके नो कोटेशंस वगैरह भी आपने लिखे हैं बहुत सारे. तो जैसा आपने पहले कहा था सांझ की आपने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी है, तो थोड़ा बताएंगे सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होती है?
0: जी जरूर. सेल्फ हेल्प का अर्थ ये है कि ऐसे किताब जो पढ़कर आपको कोई हेल्प मिले उससे. देखिए, अभी सेवा करने का या फिर हेल्प करने के अनेक अनेक तरीके होते हैं, तो उसमें से एक किताब भी है. और फिलहाल इन 21st century ये जो सेल्फ हेल्प बुक है या फिर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रही है. अच्छा. अगर हम बाकी के ऑथर्स को भी देखें, इंटरनेशनल ऑथर्स जैसे कि जय शेट्टी है, तो फिर उनके बहुत सारे नॉन फिक्शन या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स है which are doing very very good in the market and people are liking that a lot.
1: अच्छा.
0: Yes, क्योंकि आज का समय ऐसा है जिसमें लोगों को help चाहिए कुछ तो भी, and it is not possible कि हर बार हर कोई counselor के पास जा सके. बहुत से लोगों को नहीं पसंद counselors के पास जाना. तो ऐसे समय में I think कि books पढ़ के वो खुद खुद की help कर ले.
1: अच्छा.
0: Self help, खुद खुद की help करना.
1: That's wonderful. तो आपने जो पहली बुक लिखी, क्योंकि कोविड का समय था, बहुत मुश्किल समय था सबके लिए, अपनों से दूर थे, हेल्थ की गारंटी नहीं थी और बहुत चीजें हो रही थी जिसमें खुद को हम हेल्पलेस महसूस कर रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे. तो ऐसे में मोटिवेशन कहाँ से आया, बिकॉज मोटिवेशन लॉस हो रहा था उल्टा. तो आपने वो क्या तरीका ढूंढा ऐसा, या कुछ आप ऐसे शेयर करना चाहेंगे, मे बी टिप्स या एनीथिंग जो आपने उसमें मेंशन की?
0: यस, जैसे मैंने आप बताया मुझे पोएम लिखना बहुत पसंद था. तो फिर मेरी उस बुक की शुरुआत ही फर्स्ट पेज ही पोएम से शुरू होती है.
1: ओके.
0: तो वो पोएम थी, आई स्टिल रिमेम्बर, उसका टाइटल था ओ लाइफ.
1: ओ लाइफ,
0: यस. तो मैंने लाइफ के बारे में लिखा था. तो फर्स्ट चैप्टर या सिंगल लाइफ था, पोएम थी ओ लाइफ. तो उसमें उस पोएम का मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: क्योंकि वो तो इंग्लिश में थी, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था, लाइफ को मैंने एक एंटिटी मतलब एक लिविंग पर्सन बोल के अज्यूम किया था. ओके. मतलब इसे सोचा कि लाइफ है. सब लोग बोलते हैं मुझे लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, पर लाइफ है क्या एग्जैक्ट? तो फिर मैंने उसमें लिखा था कि ओ लाइफ, आप कहाँ हो, मैं आपको कहाँ ढूंढ सकती हूँ, मुझे आप दिखते क्यों नहीं हो, क्या आप ऊपर हो, नीचे हो, मेरे

0: लेफ्ट में हो, राइट में हो, मुझे पता नहीं आप कहाँ हो, लेकिन आप हो। क्या मैं आपको बुर्ज खलीफा पे ढूंढ सकती हूँ? या आप कहाँ हो मुझे नहीं पता। क्या आप थोड़ी देर रुक नहीं सकते मेरे लिए? ओ लाइफ, व्हाई कांट यू वेट फॉर मी? क्या आप रुक सकते हो मेरे लिए? लाइफ, आपके पास पॉज बटन है क्या? अगर आपके पास पॉज बटन होता तो शायद ही जब मेरे बहुत सुंदर पल रहते थे लाइफ के, तब मैं आपको पॉज कर सकती थी। पर लाइफ, आप हो कहाँ? वेयर आर यू, वेयर आर यू? ओ लाइफ, आप हो कहाँ? और फिर उसमें एक चैप्टर ये भी था, फोकस एंड बिलीव। तो उसमें मैंने लिखा था कि आपका जो भी एम है लाइफ में, उस पर आप पूरा फोकस कीजिए और बिलीव रखिए खुद के ऊपर। सो फोकस एंड बिलीव, इस मंत्रा से यू कैन कॉन्क्योर वट एवर यू वॉन्ट।
1: आपको लगता है आपकी लाइफ में इस मंत्र ने बहुत काम किया है?
0: Yes, अभी भी कर रहा है एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक कि अगर हम लाइफ में हमारे जो गोल्स है, जो एम्स है, उस पर फोकस्ड रहेंगे और खुद पे विश्वास रखा, तो सब कुछ संभव है।
1: दैट्स वंडरफुल। कोई ऐसी चीज है जो आपको लगा हो कि ये थोड़ी मुश्किल थी अचीव करनी, लेकिन आपने किया? थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैंने आपको तुरंत तुरंत पूछ
0: यस,
1: दिया।
0: एक्चुअली अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है, शायद आगे जाके हो सकता है और मे बी नॉट, आई डोंट नो। बट एज आई सेड, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव दैट आई कैन डू एवरीथिंग। तो आई होप कि ऐसा समय तो कभी ना आए, बट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल अगेन।
1: नहीं, लेकिन ये बहुत वंडरफुल बात है। देखिए, हम लोग के पास एम होते हैं और कई बार हमें वो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन शायद आपके पास विश्वास इतना है कि आपको कोई चीज मुश्किल नहीं लगती।
0: मुझे फेथ भी बहुत है परमात्मा में कि नहीं, जो भी मुझे चाहिए या फिर जो भी मैं मन से अगर मैं कुछ विश करूं, तो फिर वो जरूर पूरा
1: जरूर
0: होगा।
1: पूरा होगा। दैट्स वंडरफुल। ये मुझे लगता है बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में। दैट्स ग्रेट। सांच, आप कोई और अपनी पोएम लिखी हुई हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे?
0: जरूर। ओके, ये आई गेस सबको बहुत पसंद आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा।
1: जरूर।
0: इसका शीर्षक है, एक कदम है बढ़ाना।
1: एक कदम है
0: जी,
1: बढ़ाना।
0: ईर्ष्या तथा द्वेष की अग्नि को असीम प्रेम की शीतलता से है मिटाना। गुस्से के ज्वाले को शक्ति के सागर से है सहलाना। परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना। तेजस्वी किरणें धारण कर जग को है उजालना। जिंदगी के उलझनों से न डर। परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना। तू है शक्ति, तू ही शिव शक्ति। परमात्मा से मिलन मना, स्व के गुणों को है निहारना। परमात्मा की ओर एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना, एक कदम है बढ़ाना।
1: ये एक कदम कई बार बड़ा मुश्किल होता है,
0: जी
1: लेकिन वो कदम बढ़ाया। तो कहते हैं ना कि आप पहला कदम बढ़ाते हैं और जैसे आपका आधा काम हो गया। ये तो कहावतें मशहूर हैं, लेकिन जो आपने बात कही अपनी कविता के माध्यम से कि अपने को भी कई बार हम ऐसे सोच लेते हैं ना कि मेरे अंदर ये कमी है, ऐसा है वैसा है, और हम वो कदम नहीं ले पाते। क्या आपके मन में था जब आपने ये लिखा?
0: नहीं, मेरे मन में ऐसा तो नहीं था कि मेरे अंदर कुछ कमियां हैं या फिर मैं कदम ना बढ़ाऊं। बट यस, कुछ काउंटर पार्ट्स थी जिनके वजह से मुझे लग रहा था कि मैं बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। आई वाज इन टू अ डायलेमा, लाइक कंफ्यूजन स्टेट में, यू नो। बट देन फाइनली नहीं, वो सब कुछ साइड में रख के, अगर हम लोग थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो हमें दूर ले जा रही है उनको अगर साइड में रखे, तो फिर देर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स। देर इज अ होल विंडो। देन अगर हमने एक बार वो विंडो के बाहर देख लिया, एक कदम बढ़ा लिया, देन इट इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल। तो
1: तो आप जब
0: मैंने तो अपना एक कदम बढ़ा लिया है, क्या आप सब बढ़ाएंगे?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो जब आप कविता लिखते हो तो क्या सोचते हो उस वक्त? मतलब कि मैं आप सोचते हो कि अभी मुझे लिखना है, या कभी रैंडम थॉट आता है आप लिखना शुरू करते हो?
0: ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोएट्री इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ थॉट। यस, तो फिर आई मीन आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ टू राइट। मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकती कि सांश अब तुझे बैठना है, तुझे पोएम लिखनी है, दिस इज योर टाइटल, यू हैव टू राइट दिस। नो, वो फिर पूरा कॉर्पोरेट टाइप ऑफ हो जाता है। तो आई कैन नॉट फोर्स माई सेल्फ, बट यस, जो फ्लो ऑफ थॉट्स है या फिर जो पोएट्रीज या फिर जो आइडियाज मुझे आते हैं ना, वो अचानक से सडनली क्लिक होते हैं। नाउ इट माइट बी ड्यू टू द सराउंडिंग समटाइम्स, और एल्स ड्यू टू सर्टन, कोई मैंने कोई इंसिडेंट्स देख लिया, तो फिर वो देख के मुझे स्ट्राइक होता है, तो देन आई जस्ट राइट इट डाउन। मैं वो लिख लेती हूँ, और फिर जैसे मैंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया है, मैंने अगर दो लाइन लिखी या फिर एक पैराग्राफ लिखा ना, तो आगे का ऑटोमेटिकली आते जाता है. एंड इवन दो मैं जो वर्ड्स वगैरह भी यूज करती हूँ पोएट्री में, वो ऑटोमेटिकली राइम हो जाते हैं. ये मुझे बहुत मैजिकल लगता है कभी कभी, बट दैट इज द मैजिक ऑफ पोएम्स आई थिंक.
1: दैट इज ट्रू. राइटिंग का ये मैजिक है. और yes. मुझे लगता है जितना हम खुद को एक्सप्लोर करते जाते हैं, उतने थॉट्स क्लियर होते जाते हैं और उतना लिखना नेचुरल होता जाता है. दैट्स सो वंडरफुल. आपको क्या क्या मिलता है लिख के, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो, व्हाट डू यू फील, क्या क्या प्राप्ति होती है आपको?
0: सैटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन एकदम शांत लगता है एंड सैटिस्फाइड भी लगता है, संतुष्ट फील होता है मुझे, एकदम संतुष्ट.
1: ये मुझे लगता है यही दो चीजें तो हम चाहते हैं जीवन में ना
0: जी,
1: कि वो मिले, खुशी मिले और कंटेंटमेंट मिले हमको, है ना, संतुष्ट.
0: एक्चुअली आजकल सब लोग खुशी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी एक्चुअली हमारे अंदर ही है, हमें बस उसे बढ़ाना है, बाहर लाना है.
1: मतलब ये अदर वे राउंड.
0: यस. Okay. मैंने एक बहुत ही अच्छा एक थॉट पढ़ा था एक ऑथर का. सो वो ये था कि इन ऑर्डर टू सी यू नीड टू क्लोज योर आईज. मुझे बहुत टच कर गया.
1: सो नाइस, सो डीप.
0: यस,
1: है ना. तो कितना सोचने वाली बात है कि आपको देखने के लिए आपको आंखें बंद करने की जरूरत है.
0: जी
1: हाँ, ये आप सोचने वाली बात है. मुझे लगता है श्रोताओं आप भी सोच सकते हैं कि आंखें बंद करके ऐसा क्या दिखेगा जो दिख नहीं पा रहा हमें. और सच में कभी कभी वो जर्नी बाहर की नहीं अपने अंदर की होती है, जिसे हम बाहर करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो तभी कभी कभी खो जाते हैं. चलिए, फिलहाल ऐसी बातें तो बहुत, मुझे लगता है जब आप पोएट को पढ़ते होंगे या किसी को सुनते होंगे, आपको भी कोई ना कोई लाइन जरूर पसंद आई होगी. अगर आई है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415. सांझ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, है ना, पब्लिक स्पीकर भी हैं. ये जर्नी कैसे शुरू हुई स्पीकिंग की, या फिर आपने थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए.
0: एक्चुअली मैं जब स्कूल में थी, सो दैट टाइम आई वाज वेरी एक्टिव. मुझे एंकरिंग करना बहुत पसंद था और मुझे चांस भी मिला. मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था, मुझे चांस दिया एंकरिंग करने का हमारे एनुअल फंक्शन में एंड ऑल. तो उसके बाद तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ स्टेज के लिए. और हमारा तो जैसे एनुअल गैदरिंग बहुत बड़ी रहती थी, देयर यूज्ड टू बी 2,000 to 3,000 क्राउड ऑलमोस्ट. तो उनके सामने मैंने एंकरिंग की थी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया था मेरा, लैंग्वेज पे कमांड भी मेरी अच्छी थी. फिर उसके बाद में व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, सो दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अबाउट लाइक आई गॉट टू नो अबाउट दिस BCS, दैट इज भारतीय छात्र संसद.
1: अच्छा.
0: यस, जो महाराष्ट्र में होता है पुणे में.
1: अच्छा.
0: और वहां पर पूरे भारत से अलग अलग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट स्पीकर्स आते हैं.
1: अच्छा.
0: तो वो सिलेक्शन का एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है. एक्चुअली पहले हमें हमारा एक 3 मिनट का वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है स्पीच का, फिर उसमें से वो कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहां पर जाकर एक्चुअली लाइव में इंटरव्यू लेते हैं वो हमारा. वहां पर भी हमें हमारी स्पीच बोलनी पड़ती है. एंड देन एंड ओनली देन दे सेलेक्ट ओनली 24 स्टूडेंट स्पीकर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. यस. तो फिर वहां पर सब लाइक जम्मू से लेके कन्याकुमारी, फ्रॉम राइट फ्रॉम ईस्ट लाइक आसाम एंड अप टू गुजरात, हर एक स्टेट से वहां पर स्टूडेंट्स आए थे.
1: ओके.
0: यस, सो दे सेलेक्टेड 24 स्टूडेंट स्पीकर्स एंड आई वाज वन ऑफ देम, लाइक आई रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र इन दैट.
1: क्या बात है, कितनी प्राउड फीलिंग.
0: यस. एंड मेरा टॉपिक भी बहुत अच्छा था, शायद आपको पसंद आए, इसलिए मैं टॉपिक बताना चाहूंगी. AI एंड सोशल मीडिया, पावर और पिटफॉल, ये मेरा टॉपिक था.
1: ओके.
0: मतलब जो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया है, तो फिर इससे हमें इसकी वजह से मतलब ये पावर है या एक गड्ढा है जिसमें हम गिरते जा रहे हैं.
1: और आपको क्या लगता है क्या है?
0: मैंने तो इसमें एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रख के बताया था, क्योंकि जैसे कि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर यहाँ पर पूरी तरह से सोशल मीडिया या फिर AI से दूर हो जाना इज नॉट द सोल्यूशन. बट यस, दोनों का बैलेंस करके अगर हम चले तो इट इज गुड. जैसे एक शेक्सपियर का कोट है, सुपरफ्लुइडिटी कम सूनर बाय वाइट हेयर बट कॉम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर. इसका मतलब कि कोई भी चीज को अगर हम लिमिट में यूज करेंगे तो इट इज वेरी बेनिफिशियल, वो बहुत अच्छी प्रूव होती है. लेकिन अगर उसी चीज का हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो फिर वो हमारे लिए घातक हो सकती है. तो वैसे ही सोशल मीडिया का अगर हम लिमिटेड अपने काम के लिए और अच्छे काम के लिए यूज करेंगे तो फिर इट इज अ चेरी ऑन द टॉप, सोने में सुहागा. लेकिन अगर हमने उसका ओवर यूज किया तो फिर वो उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो यस, तो मेरे स्पीच में मैंने एक सोल्यूशन भी दिया था सबको कि माइंडफुलनेस के बारे में भी मैंने बताया था. पहले तो मैंने बताया कि हमारा ब्रेन इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. तो अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे सोशल मीडिया का तो फिर उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन पे वो कैसे अफेक्ट करेगा, ये मैंने एक्सप्लेन किया. उसके बाद मैंने सोल्यूशन ओरिएंटेड मेरी स्पीच बनाई, जिसमें मैंने बताया कि आप लोग अगर ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप ये बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे.
1: माइंडफुल मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
0: यस,
1: क्योंकि उसके बिना हम अति में चले जाते हैं, और अति तो वैसे भी कहा जाता है किसी चीज की अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है उसकी भी अति करते हैं तो नुकसान करती है. मुझे लगता है हमारे पूर्वज और हमारे घर घर में हमने ये बातें सुनी है
0: जी,
1: तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी रेलेवेंट है. जैसे आपने बताया आपकी पब्लिक स्पीकिंग जर्नी यहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बहुत हमारे युवा है जो साथी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं. दोस्तों आप भी सोचिए, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास भी होंगी जो हम कभी सोचते हैं कि कॉलेज के बाद शायद उनको करेंगे, लेकिन आज से शुरू करेंगे तो और आपके लिए जीवन में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है. ये हमें सांझ से भी जानने को मिला. तो सांझ, कोई और आपकी पोएट्री जो आपको बहुत पसंद हो, ऐसी दिल के करीब कोई है?
0: हाँ, ये वाली मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि इस पोएम में मेरा खुद का नाम भी है.
1: Yes. क्या बात है.
0: मेरा नाम सांझ है और सांझ का मीनिंग है संध्या, इवनिंग.
1: Okay.
0: Yes. तो इसमें मैंने उसका भी उल्लेख किया है, थोड़ा डीप है वो, तो हम समझते हैं. इसका टाइटल है ढलती है सांझ, मधुर वाणी से तेरी दुनिया को तू राह दिखाए, राह चलते राही को भी तू अपना बनाए, सृष्टि का ये अद्भुत चक्र तू चलाए, कर्म के हिसाब किताब समझाए, रूहानी राह तू दिखलाए, हम बच्चों को तू अपना बनाए, समय चक्र का खेल है निराला, सतयुग का सुवर्ण सफर है सुहाना, राम राज्य लाएगा युग त्रेता, द्वापर में होगा खेल द्यूत का, युगो युगो की है ये कहानी, शक्तियां मनुष्य की है ढलती, कल की अवतार कलयुग लाए, संगम युग का सीमित है समय, अंधेरी रात का संदेशा लाए, ढलती है सांझ, एक सुनहरी सतयुगी सुबह लाए, ढलती है सांझ.
1: क्या बात, क्या बात, बहुत ही सुंदर आपने, मतलब एक जैसे जर्नी बताई सृष्टि की, आपने बात की बहुत बड़ी बड़ी बातें की. तो आपको जब भी कोई इस तरह की बात लगती है कि हाँ बहुत यू नो भगवान से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है, तो क्या आप उसे पोएट्री में उतारने का प्रयास करते हैं?
0: जी, ये वही प्रयास था.
1: हाँ.
0: जो शायद मैंने तो पूरा प्रयास किया है इसको सफल बनाने का, लेकिन आप जरूर बताइए आपको पसंद आई होगी तो.
1: जी, और बहुत सुंदर लिखी है आपने, है ना, बहुत कई बार. और कविता एक ऐसा माध्यम है मुझे लगता है जो हम बड़ी बड़ी बातें शायद सिर्फ सुनकर समझ नहीं पाते. वो कुछ शब्दों का इस प्रकार से नो लिखा जाता है उन्हें. तो सांझ, हम आपसे बात कर रहे थे, आपने पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी वहां से शुरू की, फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आपने क्योंकि नेशन वाइड आपने है ना एड्रेस किया है, तो वो आगे कैसे बढ़े या क्या आपने यू नो उसके बाद कदम उठाए?
0: वो जो स्टेज था वो बहुत बड़ा था BCS का, इतना बड़ा स्टेज दिया, उतना करेज दिया, बिकॉज वहां पर 10,000 to 15,000 पब्लिक एंड ऑल यूथ. एंड हमारे साथ मेरे साथ स्टेज पे वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए थे. तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड परमात्मा को, उन्होंने मुझे इतना करेज दिया, उतनी शक्ति दी कि मैं इतने सारे 10,000 to 15,000 पब्लिक थी वहां पे, मैक्सिमम यूथ, उनके सामने खड़े रह के इतने अच्छे से.
1: बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है. आपको डर नहीं लगा?
0: नहीं, एक्चुअली हमारे अंदर जब हम स्टेज पे जाते हैं दो टाइप के फीलिंग्स रहते हैं, एक एक्साइटमेंट, एक फियर, राइट? तो अगर फियर की क्वांटिटी ज्यादा रही तो डर लगता है, लेकिन मेरे अंदर एक्साइटमेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी जिसने फियर को ओवरलैप कर लिया, तो इसलिए आई थिंक मुझे डर तो नहीं लगा. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड.
1: क्या बात है, इतने सारे लोगों के बीच में बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए है ना, और यूथ के सामने स्पेशली बोलने के लिए शायद, क्योंकि तो बहुत जल्दी देखते हैं कि आप अच्छा बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो क्या हुआ।
0: और वहां पर तब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, लाइक मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थॉमस संगमा जी भी प्रेजेंट थे, उनके उनके द्वारा मुझे ट्रॉफी भी मिली, उनके द्वारा सम्मान हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे एक और थोड़ा करेज बिल्डअप हुआ, आई मीन कॉन्फिडेंस और लेवल अप हो गया। फिर उसके बाद आई स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन टू लॉट मेनी कॉम्पिटिशन्स, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स लाइक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो भी। और अभी रिसेंटली यूथ फेस्टिवल हुआ था 2025-26, तो फिर उसकी जर्नी मेरी शुरू हुई थी सितंबर में। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल राउंड हुआ, I came first in that, then I got qualified for the central like round, like universities aaye the hamare hi district se, to fir usme bhi I got selected and I got qualified once again. Fir finally abhi recently last month mein jo hua tha, that was zonals, to usme center zone ka wo pura competition tha, wahan pe all the universities from Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, itne universities aaye the. So, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू नेशनल्स विद गॉड्स ग्रेस। अब नेशनल्स मेरी होगी यूथ फेस्टिवल की चेन्नई में इन मार्च।
1: इसमें आप किस बारे में बोल रहे हो?
0: इसमें अभी टॉपिक एक्चुअली हमें पता नहीं रहता है, हमें कंपटीशन के एक दिन पहले टॉपिक मिलता है, देन हमें प्रिपेयर करना पड़ता है
1: एक ही दिन में।
0: जी, एक ही दिन में।
1: अच्छा, और आपने किस बारे में बोला था जब ये तीनों स्टेट्स के?
0: अभी जो रिसेंट का हुआ था सेंटर जोन का हमारा, तो उसमें मेरा टॉपिक था स्वदेशी 2.0, बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट विकसित भारत।
1: ओके,
0: यस, तो स्वदेशी सेल्फ रिलायंस पे था ये। अच्छा हुआ बहुत।
1: कुछ मेन पॉइंट्स आप बता सकते हैं क्या क्या आपने कवर किया?
0: जी, मैंने एक्चुअली जो शुरुआत थी वो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से की थी, कि जैसे वो एक सभा ले रहे थे और उसमें उन्होंने बताया था कि स्वदेशी का अर्थ उन्होंने समझाया था।
1: अच्छा।
0: तो स्वदेशी का ये अर्थ नहीं है कि हम फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें या फिर उन्हें जलाए, रास्ते पे जलाए एंड ऑल, सो दैट इज नॉट व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है, हमें जो इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना है, क्योंकि जब हम हमारे खुद के होममेड इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट दिखाएंगे तभी जाके हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे और हम उन्हें यूज कर पाएंगे। और जितना ज्यादा हम स्वदेशी अपनाएंगे उतना ज्यादा आई गेस ग्रोथ होगी इंडिया की।
1: बिल्कुल।
0: सो स्वदेशी मतलब फॉरेन गुड्स को जलाना या बॉयकॉट करना नहीं है, स्वदेशी मतलब खुद के गुड्स को अपनाना।
1: हाँ, मतलब जो भारत में बन रहा है ना, वो उस पर विश्वास रखना, उसको इस्तेमाल करना, उनको बढ़ावा देना।
0: जी,
1: बहुत सुंदर। जैसे आपकी तो बहुत सारी मतलब चीजें हैं, आपको अगर मैं ये जानना चाहूँ आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में?
0: या
1: एक यू नो एक सवाल होता है कि क्या करना है।
0: जी, मुझे एक्चुअली बहुत सारी चीजें करने का मन में है, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन जैसे हमारे गोल्स फिक्स्ड रहते हैं तो वैसे ही मेरे भी गोल्स फिक्स्ड है। मुझे एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर बनना है, राइटर बनना है।
1: जो तो आपने कब से शुरू कर दिया जर्नी जिसके लिए आपने?
0: तो उसी के पाथ पे मैं अभी चल रही हूँ एंड मैं जरूर रिनाउंड ऑथर बनूंगी। एंड इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर UPSC।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: यस,
1: That's wonderful. मुझे लगता है ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट गोल है।
0: जी,
1: और UPSC की पढ़ाई भी आसान नहीं होती है, बहुत टफ होती है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स माना जाता है उसको।
0: जी,
1: तो उसमें तो बहुत मेहनत करनी होती है।
0: हाँ,
1: बहुत पढ़ाई।
0: और मेरा एक बहुत ज्यादा मन से सपना है, इट्स काइंड ऑफ ड्रीम दैट आई एम लिविंग फॉर कुछ सालों से, तो वो ये है कि मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे रिसर्च में भी बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिसर्च करते हुए।
1: अच्छा।
0: तो मेरा ये सपना है कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरी PhD कंप्लीट करूं, बिकॉज ऑक्सफोर्ड इज द लाइक बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन द होल वर्ल्ड एंड वहाँ की लाइब्रेरी तो इतनी बड़ी है, वहाँ पे ओरिजिनल वर्क्स रखे हैं, तो मुझे वो जरूर पढ़ना है।
1: चलिए, हम बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपके सारे सपने पूरे हो और बहुत अच्छे और कंस्ट्रक्टिव और बहुत ऐसे सपने हैं मुझे लगता है जिनसे समाज को भी फायदा होगा ना, चाहे वो किताबें हो, चाहे आपका UPSC का एग्जाम हो, है ना, चाहे इंग्लिश लिटरेचर की बात है तो नॉलेज तो हमेशा काम आती है. तो वंडरफुल वंडरफुल ड्रीम्स आपकी हैं, और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी ऑल द वेरी बेस्ट आपको.
0: थैंक
1: यू. और क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की बात हुई है और आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, तो क्या कोई इंग्लिश पोएट्री आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
0: जी जरूर, आई वुड लव टू डू दैट.
1: भाषा तो भाई एक ऐसा माध्यम है जिसे समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है पोएट्री को समझने का आज हम प्रयास करेंगे.
0: जी, तो मैंने एक कविता लिखी थी रेन के ऊपर, बारिश पे.
1: बारिश पे, क्या बात है.
0: तो मैं वो सुनाना चाहूंगी. इसका नाम है अ सोनेट ऑन रेन. तो ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है. शेक्सपियरियन सोनेट एक टाइप है पोएट्री का, जिसमें चार पैराग्राफ्स होते हैं विद फोर लाइंस एंड एक एंडिंग में एक कॉपलेट रहता है, मतलब टू लाइंस ओनली. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट.
1: ओके,
0: तो फिर दिस इज अ सोनेट ऑन रेन. द रेन हैज कम with mystical wonders, rejuvenating the lives of some, is the rain showering from ears. The rain sliding down drop by drop, seems silver and straight, clattering upon the rooftop, and bustling through the gate. The trees giggling and swaying and gay, the squirrels in them playing in full sway. The time has come to bathe me, the time has come for the rain to play. I could smell the alluring trance of mud, and a gentle breeze wailed me as the petals of a bud.
1: क्या बात है. तो रेन को जैसे आपने यू नो क्रिएट किया अपने माइंड में, ऐसा लग रहा है कि यू नो बारिश हो रही है और वो पड़ रही है और वो ड्रॉप ड्रॉप है ना गिर रही है.
0: जैसे हमें सीन देख सिल्वर सिल्वर दिखता है ना जब गिरती है, तो स्ट्रेट और सिल्वर टाइप दिखता है.
1: राइट, बिल्कुल. और बहुत सुंदर तरीके से आपने व्यक्त किया वो अनुभव जैसे, है ना, क्रिएट किया.
0: जैसे बारिश होती है तो हमें तो खुशी होती ही है, लेकिन नेचर को भी उसके साथ बहुत खुशी होती है. जैसे ट्रीज एकदम ऐसे ऐसा लगता है कि वो डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ट्रीज के ऊपर स्क्विरल्स रहती है, वो भी खेल रही है, मस्त मस्त एकदम एंजॉय कर रही है.
1: अच्छा, ये कब लिखा था आपने?
0: I don't remember this, मुझे याद नहीं, because मैं बहुत लिखती रहती हूँ. नहीं नहीं, कॉलेज में लिखा.
1: कॉलेज में लिखा है. ओके, तो आप कब से लिख रहे हो, मतलब कब आपने शुरू किया था पोएट्री लिखना?
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड.
1: सेवेंथ स्टैंडर्ड,
0: जी.
1: ओके, फर्स्ट टाइम आपने कब लिखा था?
0: जी.
1: और उसके बाद से आप हमेशा लिखते रहते हैं?
0: यस.
1: ओके, अच्छा, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके लिखने के बारे में, या फिर आपकी जो ये आप आज बुक्स लिख रहे हैं, या फिर आपने जैसे पहले कहा कोविड के टाइम पे आप कहीं ना कहीं इश्यूज दिखते रहते थे, इस बारे में क्या सोचते हैं?
0: मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ही बहुत सपोर्ट किया है, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक कि उनका एक बैकबोन टाइप सपोर्ट है मेरे लिए, इसलिए मैं आज इतना कुछ कर पा रही हूँ. जैसे आपके सामने अभी मेरी बुक है अभी, तो जो आप देख सकते हैं, तो फिर मेरी मॉम ने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की है. जैसे कि इसका जो फाइनेंस है वो पूरा मम्मी ने किया है. तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझ में इतना विश्वास दिखाया एंड मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. एंड मेरे पापा, जिन्होंने मुझे अ सिंगल लाइफ लिखने के लिए मोटिवेट किया था, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आप लिखिए, पब्लिश कीजिए. तो उनसे मैं मोटिवेट हुई और फिर मैंने लिखा, मतलब मैंने हिम्मत दिखाई वो लिखने की, एक कदम बढ़ाया मैंने मेरा.
1: एक कदम बढ़ाया आपने.
0: जी, तो सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फादर, एंड आई एम वेरी ऑफ कोर्स श्योर कि वो भी जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे उन्हें जरूर खुशी हो रही होंगी,
1: क्योंकि उनका मोटिवेशन ही आपको लाइफ में आगे लेके जा रहा है. डेफिनेटली. एक और चीज पूछनी है मुझे आपसे, क्योंकि जब हम लाइफ में होते हैं बहुत बिजी होते हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, यू नो देयर एग्जाम्स, देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, उसके बीच में आप लिखने के लिए तो स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, तो वो कैसे आप निकालते हो?
0: मुझे ना एक दिस इज लिटिल बिट क्या कह सकते हैं, मजेदार बात है ये कि जब भी मेरी एग्जाम्स रहती थी तब भी मुझे कुछ ना कुछ सोचता था लिखने के लिए. क्योंकि एग्जाम्स के लिए जब हम पढ़ाई करते तो इट्स ऑब्वियस कि आजूबाजू में बहुत शांति रहती है घर में, एंड हमारा माइंड तब बहुत फोकस्ड रहता है, बिकॉज इट्स लाइक कि कल परसों पेपर है, हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरे फोकस के साथ, एंड देन तब शांत रहते था, माय माइंड यूज्ड टू बी फोकस्ड. तो फिर तभी मुझे थॉट्स आते जाते थे, एंड आई वाज लाइक अरे यार मेरी एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, तो मैं पढ़ाई करूँ या ये पोएम लिखूँ. बट देन नहीं, मैं लिख लेती थी तब तुरंत और फिर साइड में रख देती थी, फिर एक बार मेरा मन सेटिस्फाई हो गया पोएम लिख के कि आई वाज जस्ट स्टडी लाइक कंटिन्यू विद माय स्टडीज अगेन.
1: हाँ अच्छा, मतलब उसके बीच में आप टाइम निकालते कि पहले ये हो जाए उसके बाद. लेकिन मुझे लगता है उसके पीछे ये भी राज है कि भाई आप रेगुलरली पढ़ते हो, आप हमेशा से तैयारी रखते हो
0: जी.
1: नहीं तो केवल एग्जाम के वक्त आप एग्जाम के वक्त तो टेंशन हो जाती है. नहीं तो
0: अरे exactly. मैं बहुत पहले से मेरी तैयारी शुरू करती हूँ एग्जाम्स की. एंड मैं तो मान के चलती हूँ कि एग्जाम्स को भी हमने सेलिब्रेट करना चाहिए.
1: ओके
0: यस, बिकॉज एग्जाम इज अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल. जैसे हम देखते हैं हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं, वो फेस्टिवल रहता है 8-9 दिन का. वैसे ही एग्जाम्स भी रहते हैं, 8-9 दिन तो चलते ही एग्जाम्स हम सबके. तो फिर हम लोग भी उससे, हम लोग एग्जाम्स को भी वैसे फेस्टिवल की तरह क्यों ना सेलिब्रेट करें. और अगर जब हमें पता है कि हमें पढ़ना ही है, एग्जाम्स देने ही है, तो खुशी खुशी पढ़े. अच्छा और एक्स्ट्रा समझ में आ जाएगा.
1: हाँ ये बात तो सही है, लेकिन कई बार उस चीज का स्ट्रेस हो जाता है ना कि कितने नंबर आएंगे, दोस्त ने कितना पढ़ लिया, मैंने कितना पढ़ लिया.
0: नहीं मुझे इसका स्ट्रेस नहीं आता, बिकॉज सबसे पहले तो मैं दूसरों के साथ कभी कंपेयर किया ही नहीं है मैंने, ना ही अब आगे भी, अब तक नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगी. मैं सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करती हूँ और खुद से मेरी कॉम्पिटिशन रहती है कि मुझे लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स थे, उससे ज्यादा मुझे अगले एग्जाम में लाना है. तो इससे हमारा सेल्फ ग्रोथ होती है.
1: इतनी सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर कहाँ से आई?
0: जब से परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा है तब से वो तो पॉजिटिविटी भरते ही जा रहे हैं.
1: मतलब आपके अंदर मिलता ही जा रहा है आपको. और ये वाली जो बात आपने कही, क्या मतलब परमात्मा के मिलने से क्या फर्क पड़ता है लाइफ में? या एक बिकॉज आप बहुत यंग है और यूजुअली ये माना जाता है कि आपको भगवान को याद करना है तो उसकी उम्र आएगी, आप थोड़ा यंग लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है ना, उसके बाद ठीक है जब हमारे पास टाइम होगा तो हम भगवान को बैठ के याद करेंगे, भजन गाएंगे, सब करेंगे. और यूथ के लिए तो लगता है कि अभी तो टाइम है कि हम थोड़ा पार्टी करें, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें. तो आप इस डायरेक्शन में कैसे, मतलब आपको लगता है क्या मिलता है ऐसा? या फिर क्या फिर भगवान के साथ जुड़ के ये सब नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के साथ पार्टी नहीं होती?
0: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बिगिन बाय सेइंग कि जो बड़ों का थिंकिंग प्रोसेस है वो उनकी जगह पे सही है, यूथ्स जो सोचते हैं वो अपनी जगह पे सही है. बट मुझे पर्सनली क्या लगता है कि भगवान से मिलन मिलाने के या परमात्मा से कनेक्ट करने का कोई एज नहीं रहता. ओके बिकॉज जैसे मंदिर है तो फिर मंदिर में तो छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं, भगवान से प्रे करते हैं, तो तब तो हम एज नहीं देखते. तो यहाँ एज क्यों देखे? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम अ राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर. तो उसमें मैंने ये सीखा है कि राजयोगा का अर्थ क्या है. यहाँ पर मैं थोड़े समय में बताना चाहूंगी राजयोगा अर्थात क्या. राज मतलब सुप्रीम, मतलब जो बड़ा है, राज. ओके एंड योग, योग यानी तो कनेक्शन. तो जैसे हमें पता है हम आत्मा है, अ सोल. तो एक सोल की, आत्मा की सुप्रीम सोल से कनेक्शन, दैट इज इन सिंपल टर्म्स राजयोगा. तो फिर जब मैं ये करती हूँ तो आई इमेजिन कि लॉट ऑफ पॉजिटिव रेज आर फॉलिंग अपॉन मी. मेरे ऊपर बहुत सारी परमात्मा की पॉजिटिव किरणें पड़ रही है, मुझमें शक्ति आ रही है, पावर आ रही है. मेरे आत्मा के जो गुण है, लव, पावर, पीस, प्योरिटी, ब्लिस, नॉलेज, हैप्पीनेस, वो सब इंक्रीज हो रहे हैं. तो ऐसा जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यानी कनेक्शन फील होता है.
1: ये बहुत अच्छी आपने बात की.
0: एंड दूसरा, जैसे आपने कहा कि यूथ को अभी आजकल पार्टीज वगैरह करना है, तो आई डोंट डिनाई दैट उनको करना है तो वो जरूर करें, लेकिन एक बार उन्होंने ये भी अनुभव जरूर करना चाहिए कि परमात्मा से जब हम लोग एक मिलन कनेक्शन जोड़ते हैं या फिर जब योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें एक सही राह दिखने लगती है एंड हमारे गोल्स क्लियर होने लग जाते हैं. फिर ऑटोमेटिकली उनका माइंड भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. एंड मेरी जो ये मैंने बुक लिखी है रिसेंट, बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, तो उसके पीछे का रीजन ही वो है लिखने के लिए कि जैसे हम अभी देख रहे हैं यूथ कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड इंडिया में स्पेशली, इंडिया में तो मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ्स की है, 27-28 पॉपुलेशन एंड परसेंट पॉपुलेशन इन इंडिया इज यूथ पॉपुलेशन.
1: इंडिया इज अ यंग कंट्री.
0: यस, तो फिर यूथ्स को स्पेसिफिकली एक सही राह दिखाने के लिए शायद उनको पसंद आ जाए और उनको कुछ यू नो कनेक्टिविटी महसूस हो, पॉजिटिविटी महसूस हो एंड उसके द्वारा उनको बेनिफिट हो जाए, उनका माइंड परिवर्तन हो जाए. तो दैट्स व्हाट माय पर्पस इज.
1: ओके, तो ये जो आपकी किताब है जिसका नाम है बियॉन्ड लाइफ अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी,
0: जी,
1: इसको किसे पढ़ना चाहिए?
0: जो सीक्वेंस है इसमें 14 चैप्टर्स है, तो आई वुड सजेस्ट गो विद द सीक्वेंस. सबसे पहला चैप्टर ही है द पर्पस.
1: ओके,
0: तो हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, मैंने वो उसमें मेंशन किया है. लाइक मैंने ये नहीं बताया कि आपका पर्पस ये है, आपको ये करना है. दिस इज सेल्फ हेल्प बुक, तो आप ये पढ़िए और आप खुद आपके लाइफ का पर्पस ढूंढिए.
1: ओके, कौन पढ़ सकता है इसे? मतलब बच्चों के लिए है, यूथ के लिए है?
0: 15 अबव एवरीवन.
1: अच्छा, ओके. और ये कहाँ मिलती है, ये कहाँ उपलब्ध है आपकी बुक?
0: ये अमेज़न पे उपलब्ध है. Amazon पे आप सर्च कर सकते हैं Beyond Life by Sanjay Gogi and you'll get it.
1: तो आपकी तीनों बुक्स उपलब्ध हैं वहाँ पे?
0: जी.
1: Okay. एक बार नाम बता देंगे तीनों का?
0: Yes. The first one was A Single Life, The Guide for a Better Life, Bodhi, Enlighten Thyself on the Voyage, Life. And this is the most recent one, Beyond Life, A Transforming Journey.
1: तो मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब, अगर आप चाहते हैं पढ़ना सेल्फ हेल्प किताबें इस जॉनर में और आप पढ़ते रहते हैं तो भी कुछ नया कंटेंट है आपके लिए, नहीं पढ़ते हैं और तो भी शायद शुरुआत कर सकते हैं. और बहुत सुंदर सुंदर किताबें आपने भी पढ़ी हैं, है ना, आप बता रहे थे. तो आपको पढ़ने का भी शौक रहा है हमेशा से?
0: दिस इज अगेन अ लिटिल कंट्रास्टिंग थिंग. थोड़ा कंट्रास्टिंग है ये, क्योंकि मुझे पढ़ने से ज्यादा लिखना पसंद है पहले. अच्छा. से ही तो मैं स्कूल में वगैरह थी तब तो मैं बस ज्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती थी. मैं बस स्कूल के जो किताबें थी वो बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मेरा नॉलेज परफेक्टली सेट था. लेकिन अभी अभी जैसे मैं कॉलेज में आई, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तब से मैंने पढ़ना ज्यादा शुरू किया है, मुझे पसंद आने लगा है पढ़ना.
1: ओके
0: जी,
1: तो मुझे लगता है हमने बहुत ढेर सारी बातें करी हैं आपसे, लेकिन जाते जाते मैं एक दो चीजें आपसे रिक्वेस्ट करूंगी. एक, आप जो यूथ आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? और दूसरा, हम आपकी जाते जाते एक और प्यारी सी पोएम जरूर सुनेंगे.
0: जरूर. सो दिस इज फॉर ऑल द यूथ इफ यू आर लिसनिंग टू मी. मैं जब अभी यहाँ पर मधुबन में हूँ एंड यहाँ पर योग करते हुए मुझे एक बहुत ही अच्छा थॉट क्लिक हुआ था, तो वही मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी, विच इज डिविनिटी इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, सो लेट अस ऑल हेड ऑन अ डिवाइन पाथ.
1: ओके, Divinity is the new way of life.
0: Right.
1: Okay. ये क्यों आपके मन में आया ये thought?
0: मैं बस ऐसे बैठी हुई थी and I was thinking कि जब हम लोग एक रूहानी राह पे चलते हैं, when we are following a divine

0: और यहाँ आपने कहा ये ऑटोमेटिक मिल रहा है ना?
1: जी
0: तो स्पिरिचुअलिटी को कई बार हम समझते हैं कि एक तरह के कपड़े पहनना या एक समय पे कुछ करना या फिर एक जगह जाके ही कुछ करना है, लेकिन जैसा आपने कहा इट इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका
1: जी।
0: है।
1: एंड डिविनिटी या स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं बोलता है कि आप लोग आपके जो भी डेली के कार्य है या फिर जो भी आप कर्म करते हैं उससे दूर हो जाए।
0: हाँ ये कभी भी नहीं बोलता है,
1: यस
0: बल्कि उसको और आपके लिए और आनंदमय बना देगा ना, और इंटरेस्टिंग बना देगा आपके लिए।
1: एडजस्ट लाइक वी हैव टू मेक इट आवर वे ऑफ लाइफ, इसको हमें लाइफ में इंडल्ज करना है टू ग्रो इवन मोर।
0: हाँ ऐसा नहीं कि एक घंटा स्पिरिचुअलिटी बाकी लाइफ अलग।
1: हाँ एग्जैक्ट
0: वो दोनों एक ही चीजें हैं। सो
1: एंड इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो अभी यूथ को है अगर उनको सच में ग्रो करना होगा तो।
0: हाँ ग्रो तो करना है जीवन में। तो सांझ जाते जाते आपकी कोई पोएट्री ऐसी जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें, जो आप चाहें इस थॉट के साथ वो यू नो थोड़ी देर रहे।
1: ओके श्योर। सो मेरे इस पोएम का नाम है स्प्रिंग। विंटर्स, जैसे कि विंटर्स खत्म होने के बाद स्प्रिंग आने वाला है, तो ये स्प्रिंग पोएम शायद आपको पसंद आ जाए। विंटर्स आर गॉन, गॉन आर द कोल्ड विंड्स, नाउ प्रिवेल्स द ब्लूमिंग ट्रीज, decent and warm are the currents, waves rejoicing in glee, birds cheer and flee, dancing through the blooming trees, the time is set, set for a transformation, winters to summers is the spring in notion, blending the seasons, mending for reasons, are the springs that flourish even. Thank you.
0: इसको थोड़ा सा समझा सकते हैं आप क्या बोला?
1: जरूर। तो इसमें मैंने ये बताया है कि अभी विंटर्स चले गए हैं और विंटर्स की जो कोल्ड हवाएं है, ठंडी हवाएं, वो भी उसके साथ चली गई विंटर्स के साथ। और अभी हम देख सकते हैं ट्रीज को, वो ब्लूम हो रहे हैं और जो करंट्स है मतलब जो हवाएं है वो अभी वार्म है और बहुत ही खुशनुमा है, प्लीजेंट है। और जो वेव्स है हवाएं वो भी बहुत खुशी से झूल रही है। एंड बर्ड्स बहुत चीयरफुल है, बहुत हंस रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं इधर उधर क्लाउड्स में अगर आप देखें तो। एंड ट्रीज डांस कर रहे हैं। और अभी टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन का, विंटर्स से समर्स का। विंटर्स और समर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको बीच में जो समय रहता है उसे हम स्प्रिंग बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग अभी नोशन में है, मतलब वो अभी चल रहा है। एंड स्प्रिंग का काम ही ये है, दो सीजन्स को वो ब्लेंड करता है। और उसके पीछे भी एक रीजन है,

0: कि अचानक से सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ठंडी से गर्मी, तो फिर शायद लोग बीमार गिरने लगे या फिर वो सूट ना करे एटमॉस्फेयर। तो इसके बीच में स्प्रिंग रहता है जो न्यूट्रल होता है थोड़ा, और इसी के साथ स्प्रिंग अभी फ्लरिश हो रहा है।
1: सो नाइस, एक तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से उसे एक्सप्रेस किया, यू नो अगेन वो आपने जो शब्द कहे ना हम देख पा रहे हैं जैसे अपने मन में वो, और दूसरी बात ये कितनी अच्छी बात आपने कही ट्रांसफॉर्मेशन, नेचर भी ख्याल रखता है ना, नेचर भी ऐसे बना है कि एकदम से दो सीजन सच में सर्दी और गर्मी आ गए एक के बाद एक, तो मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी एक जर्नी
0: जी
1: ना अपने आप में महत्वपूर्ण है, कभी कभी हमें लगता है चेंज तुरंत हो जाए।
0: यस, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी इन आवर लाइव्स,
1: बहुत जरूरी।
0: यस, तो इसी के साथ एक थॉट मुझे याद आया, एक कोट याद आया, मैंने पढ़ा था, चेंज इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड वी मस्ट अडॉप्ट दिस चेंज।
1: चेंज को अडॉप्ट करना है और चेंज को समय भी दीजिए और चेंज के साथ थोड़ा रहिए। और कभी कभी लगता है हम निराश जल्दी हो जाते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना और तुरंत ही पूरे होते हैं, बड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन समय दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम दीजिए। चलिए फिलहाल तो वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का दोस्तों, मुलाकात करेंगे मधुबन अनप्लग्ड के अगले एपिसोड में। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं रेडियो मधुबन के नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। सांझ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार सुन के, और यू नो एक विश्वास भी होता है कि हाँ भाई भारत का भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यूथ कितने पॉजिटिव है ना, कितने फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो भी आपने कायम रखा और इतनी सारी सुंदर सुंदर कविताएं भी हमें पढ़कर सुनाई, आपकी किताबों के बारे में भी हमें बताया, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। आई गॉट अ न्यू स्पिरिट कमिंग ऑन दिस रेडियो टुडे, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस मैंने अनलॉक किया आज। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच दोस्तों आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया इजाजत लेने का, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: दोस्तों, ये तो अक्सर होता है कि जब हम कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या कोई गीत सुनते हैं, हमारे पांव अपने आप ताल देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गीत नहीं सुन रहे हैं लेकिन मन खुश है और पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक खुशी में नाचता है। और ये जो कहावत है, खुशी में मन नाच रहा है, नाचने की जब बात आती है, नृत्य की जब बात आती है, तो ये कोई कोई व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये हर एक कर सकता है, हर एक करता भी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम हर कोई अंदर ही अंदर कई बार नृत्य करते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो इस नृत्य को बाहर भी करते हैं और लोगों के अंदर खुशियों का एक ऐसा संचार करते हैं जिससे कि वो जो एक अनुभव है हमारे लिए एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव बन के रह जाता है। हम आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसे ही मेहमान को लेकर के आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में नृत्य के द्वारा कईयों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको जीवन के कई नए रसों से उनको अवगत कराया है, किसी के जीवन में उसे रोजगार के रूप में या व्यवसाय के रूप में अनुभव कराया है। तो नृत्य को केवल नृत्य ही ना बना करके उन्होंने एक शिक्षा के रूप में पूरे भारत में फैलाया है। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के हमारे मेहमान हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय मीनाक्षी चित्रंजन जी। मीनाक्षी चित्रंजन जी भरतनाट्यम कला की एक प्रख्यात गुरु हैं। वो नृत्यांगना तो है ही लेकिन साथ में गुरु है, क्योंकि वो स्वयं तो नृत्य करते हैं लेकिन सैकड़ों बच्चों को वो इस शैली से शिक्षित कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं मीनाक्षी जी का हमारे स्टूडियो में। मीनाक्षी चित्रंजन जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से आपको आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हम। आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षक का जीवन कितना व्यस्त होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, विच इज रियली वेरी वेरी ग्रेट फॉर अस। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड इसलिए आपका दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। मैं ये सोच रहा था श्रोता साथियों कि कभी भी जब कोई कलाकार आता है हमारे बीच में तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूं, कहाँ से शुरुआत करूं। सबसे पहले तो जब मैं उन्हें देखता हूँ तब मुझे लगता है कि आई एम वेरी इल ड्रेस्ड, बिकॉज मीनाक्षी जी यू लुक सो ब्यूटिफुल। आप इतने मतलब भारतीयता की एकदम एपिटोम है, एकदम शिखर पे है, एंड मैं एक बहुत कैजुअल टी शर्ट में हूँ और मुझे लग रहा है मैंने आज गलत ड्रेस का चुनाव किया। लेकिन यहाँ से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ, आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, इन द सेंस आप जब किसी से मिलने जा रहे हैं तो इंटरनली आप क्या बुद्धि में रखते हैं। जैसे आज आप हमारे श्रोताओं से मिलना चाह रहे थे तो आपने क्या खुद को सेल्फ डायलॉग दिया या खुद से क्या बातें की कि आज आपने खुद को प्रिपेयर किया है।
1: पहले मेरे धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप लोगों से हमारे नृत्य की करियर के बारे में बताऊं। और जब कृष्णा जी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपकी इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछ रहे हैं कि कैसे मैंने तैयारी की। बस मेरे मन में यही सोच आई थी कि जब मैं कृष्णा जी और ब्रह्म कुमारी को देखती हूँ ना, तो एक बहुत प्योर, वेरी सिंपल और कितना नोबल कॉज में वो लोग अपना लाइफ बिता रहे हैं। तो मेरे मन में यही सोचा कि अगर मैं उनके साथ बात करने वाली हूँ तो जो कुछ भी मेरे अंदर, जो उनके लिए इतना एडमिरेशन है, और मैं भी उसी तरह बहुत सिंपल से, बहुत ऑनेस्टी से, बहुत प्योरिटी से, जो मैं इतना बड़ा कला को सीखा है उसको मैं अच्छी तरह आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने किया कि आपने कहा कि हमारा देश का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, वेल्थ, संपत्ति है हमारा म्यूजिक और डांस। सो इसे हमें शेयर करने में मुझे बहुत खुशी है।
0: मीनाक्षी जी, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देना चाहूंगा कि ये केवल आप ही नहीं सोचते, हम भी सोचते हैं आपके प्रति ऐसे कि भारत की एक ऐसी बेटी जिसने भारत की कला सभ्यता को इतने शिखर तक पहुंचाया कि भारत ने उसे अपना एक यशस्वी रतन समझा, आपके प्रति भी हमारे दिल में इतना ही आदर है, इतना ही सम्मान है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी इसको अनुभव कर पा रहे होंगे।
1: जरूर जरूर।
0: तो मीनाक्षी जी, हम शुरुआत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की पहले हम जानना चाहेंगे नन्ही मीनाक्षी की कहानी से, जो कि आज मीनाक्षी चितरंजन एक बहुत ही विख्यात भरतनाट्यम की ना केवल नृत्यांगना है लेकिन शिक्षिका भी है। आप हमें बताइए, आपकी जुबानी, आपकी कहानी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ है आपके जीवन में और आज आप यहाँ पर हैं।
1: तो आपने मेरे अभी तक मेरे लाइफ की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी, मगर ये बात भी बताना है कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर सकती हूँ, मगर कई टाइम होगा कि मुझे अपने कुछ विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी मिल
0: बिल्कुल
1: जाएगा, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो हमें थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए कि हम
0: जी
1: दोनों
0: जी
1: भाषा
0: बिल्कुल,
1: को
0: आप दोनों भाषा मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं
1: मिक्स करके बताएंगे।
0: जी
1: अच्छा,
0: जी
1: ओके। तो मेरा शुरुआत इस बात से करना है कि हम लोग अर्ली 60s में पैदा हुए थे। हाँ, और उस टाइम की व्यवस्था ऐसी थी कि उसी टाइम हमारे कला जैसा नृत्य कला आप लोग जानते हैं तो ये ब्रिटिश रिजीम में वो सब दबाई गई थी। तो उस टाइम अच्छे घरों की लड़कियां नृत्य नहीं सीखते थे, बहुत गाने में सीखते थे, मगर नृत्य को ऐसा लग गया कि वो उतना उचित नहीं है कि लड़कियां नाचना, ऐसा टाइम था। इसीलिए मेरे माता जी, जो जिसको डांस और म्यूजिक में बहुत शौक था, वो उसे नहीं सीख सकती थी क्योंकि उसे वहां नहीं भेजते थे। वो थोड़ा वीणा वीणा सिखाया, थोड़ा गाना सिखाया, मगर नृत्य को नहीं सिखाया। तो उनको लगा कि अगर उसको एक लड़की की ब्लेसिंग मिल जाए तो जरूर वो लड़की को मैं नाचना सिखाऊंगी। तो इसीलिए मेरे माता जी के इंटरेस्ट के कारण मुझे 4 साल में

वहां मैं इन बड़े गुरुओं से सीखना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि ये नृत्य सीखना और उससे एक लेवल तक आने के लिए देर लगता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 years जरूर लग जाता है, जब तक हमारा फाउंडेशन को अच्छी तरह सीखे और जितना चाहे एक प्रोग्राम करने के लिए जो आइटम्स चाहे वो सीखने के लिए डेफिनेटली 6 years हो जाता है। इसीलिए उस उम्र में चार साल में शुरू किया और 9 साल में मेरा वो बोलते हैं ना अरंगेट्रम का मतलब है जब हम पहले मंच पर चढ़ते हैं और अकेले करते हैं। हो सकता है पहले बच्चों के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज किया, मगर वो जब गुरुजी समझते हैं कि ये मिनिमम जिसके कारण उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उसे अरंगेट्रम कहते हैं, जो पहले बार हम मंच पे खड़ा होकर सभी को बुलाकर हम एटलीस्ट मिनिमम 1.5 hours तक हम डांस करके दिखा सकते हैं, वही तो अरंगेट्रम है। ओके, तो यही था हमारा शिक्षा डांस क्लास में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट सर्विस में थे वो एक IAS ऑफिसर थे, तो उनको बदली हुआ और वो दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था, तो मैं भी इसी कारण अरंगेट्रम के बाद दिल्ली जाना पड़ा। मगर मेरा माता जी को ऐसा था कि अगर दिल्ली में हो या कहीं भी हो वो नाचने को नहीं छोड़ना है, तो उन्होंने ढूंढा और अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी के कोई रिश्तेदार वो थे दिल्ली में, तो उनको पकड़ा और वो घर आते थे और हमें सिखाते थे। और इस तरफ मैंने शैली को बदलना नहीं किया, तो वही शैली पंदनल्लूर शैली से ही मैं थोड़ा और बहुत सीखने लगा। मगर हर साल 2 बार जब भी छुट्टी होता था समर में, मई जून को चेन्नई आते थे और खूब प्रैक्टिस होता था और जरूर 1-2 प्रोग्राम करते थे, उसके बाद वापस पढ़ाई के लिए दिल्ली जाते थे। मगर अगर दिसंबर में भी हॉलीडेज होता है तो चेन्नई आ जाते थे इसी के कारण। तो जो हमने दिल्ली में रहा बट वहाँ तब नैनीताल या शिमला या हिमाचल प्रदेश कहीं भी नहीं गए, बस यही था उनके मन में कि चेन्नई आए वो छुट्टी के दिन यूज करे और सीखे। हाँ, तो ऐसा चल रहा था, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर बदली हुआ, दिल्ली से वे वापस चेन्नई आ गए। वो टाइम था जब मैं भी थोड़ा बड़ी हो गई, मुझे और भी समझ आ गई कि ये डांस क्या होता है, क्योंकि पहले ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स जाते हैं या पढ़ाई करते हैं इसी तरह एक नाचना भी सीख लिया और वो बहुत खुशी से नाचते थे, मगर उसके नेक्स्ट लेवल को जाना पड़ता है, तो वो एज के साथ ही आता है ना, तो एज के साथ आया। वो जब हम वापस आए तब मेरा उम्र होगा 15-16 हो गया, तो हमारे मन में ये भी लग गया कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, तो मैं इसके बारे में और कुछ सीखना चाहती हूँ, उसके बारे में उसका हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इसका थियोरी, इसका कितने हम्स है ना, वो सब सीखना चाहती हूँ। इसलिए उस टाइम मैं समझती हूँ कि बहुत सारा मैंने सीखा। हमारे वही गुरुजी हमारे गुरुजी के पास गए, वो भी देखा कि अभी ये लड़की को बहुत पसंद है, जो भी वो जानते थे वो हमें सिखाए थे। उन वो गुरुजी को बहुत मैं धन्यवाद और प्रणाम हर वक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना ही वो डांस सिखाए मगर उसके बारे में कितना हमें श्रद्धा से करना है, कितना डिसिप्लिन से करना है, कितना मन लगा के करना है, कितना फोकस से करना है। ऐसा नहीं कि एक आइटम सीख लिया, थोड़ा नाच लिया और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बारे में उतना उन्होंने वो पीरियड फ्रॉम 16 to about 22 6 साल हमने उनके साथ काम किया और जो भी वो सिखाए वो सब सीख लिया। और हमें पता लग गया कि बस डांस करना ही नहीं है मगर वो अभिनय जो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन, मुख अभिनय और उसके साथ जो भी जेस्चर है उनके साथ अच्छी तरह वो अभिनय प्रेजेंट करे, तभी वो दो दर्शकों को समझ आएगा कि क्या हम क्या करते हैं। बिना बोले, बिना एक शब्द बोले हमें करना है, पूरा रामायण दिखाना है, पूरा महाभारत दिखाना है, तो उसके लिए कितना उसकी वो क्या बोलते हैं कि कितना अंदर से इमोशन आना चाहिए, वो शार्पनेस से मुख में दिखाना चाहिए, हर मसल, मुंह का सर मसल, आई आई

0: नाक, एवरीथिंग हैज टू बी मूविंग. तो ये सब इतना एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते हैं, फिर भी एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश करते हैं. तो ये ट्रेनिंग उस वक्त बहुत सख्त था, और हम भी वो उस उम्र में है जो हमें और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बस पिताजी माताजी सब कुछ तैयार कर रहे हैं, हमें गाड़ी भेज रहे हैं, ड्राइवर देता है जाता है, हमें कोई वो सब की प्रॉब्लम नहीं है ना. तो हम पूरा मन इसमें लगा सकते हैं. आज जब मैं शिक्षक हूँ, मैं वही बोलती हूँ लड़कियों से, अगर आप अभी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो बहुत गलत बात है. क्योंकि आपके लाइफ में वो दिन आएगा जब तुमको करना मुश्किल हो जाएगा. अभी जब मुश्किल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए सब लोग कर रहे हैं, तुम बस फिजिकली यहाँ आकर थोड़ा दिमाग लगाकर सीखना है. अगर आप इस टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे. उस टाइम हमने और हमारा माताजी और पिताजी इसका बहुत सपोर्ट थे, क्योंकि उसमें उनके लिए ये उन्होंने ही मुझे चुना कि नाट्य सिखाने के सीखने के लिए. तो वो जो कर सकते हैं, लोगों से मिलना या परफॉर्मेंस अरेंज करना हमारे लिए, वो ऑर्केस्ट्रा को रेडीमेड बनाना, ये सब सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नाट्य के लिए. क्योंकि गाना भी ऐसा है कि हम जाकर बैठ कर गाना कहीं भी गा सकते हैं. डांस ऐसा नहीं, बहुत सारी तैयारी है, उनका एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उनके साथ हम प्रैक्टिस रिहर्सल करना पड़ता है, उसके लिए इतना सा मेकअप और ज्वेलरी और डांस ड्रेस और कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, ऑडियो, ये सब अच्छी तरह से आता है, तब ये प्रोग्राम और भी जमता है. सो इसके लिए बहुत, अगर हमारे लिए वो फैमिली सपोर्ट हो तो जरूर वो लड़कियां और भी अच्छी कर सकती हैं. और आजकल ये भी है कि खर्चा भी बहुत करना पड़ता है वो भी एक बात है ना. सो इस तरह, सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज अलोन, माय इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट इन डांस वाज गोइंग अहेड. फिर क्या हुआ, मेरी शादी हो गई थी. शादी होने के बाद 1981 then 82 85 में दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की. सो वो टाइम है जब हमारा प्रायोरिटी थोड़ा बदल जाता है, हम अपने बारे में ही नहीं सोच सकते हैं, थोड़ा सा सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है. तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वो नाट्य में उतना जितना फोकस पहले था उतना नहीं हो सका, तो मैंने थोड़ा बैक सीट लिया. मैंने सोच लिया कि अभी हमारा काम है कि बच्चों को पहले देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, सब कुछ. मगर क्लास जाती थी और उनके साथ, मास्टर के साथ मैं सिखाती भी थी. ऐसा चल गया और 5 साल ऐसा हो गया जब तक बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं हुए ना, हो गया. तो मैं उस टाइम समझती हूँ कि डांस मुझे वापस चुन लिया. मुझे बहुत आश्चर्य है कि सब कुछ कैसा अच्छी तरह बन गया. हमारा घर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट घर के पास एक अच्छा मास्टर थे जो आकर क्लास कर सकते थे, और मैं एक एरिया मैलापुर में थी जहां और इजी है डांस सीखना और परफॉर्मेंस करना. तो उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर मेरा करियर शुरू किया, और फिर यही होता था कि परफॉर्मेंस करें. 1991 में मैंने सोचा कि क्या, उस टाइम हमारे गुरुजी सब बहुत बड़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, और अपना स्कूल सब बंद कर दिया, और उस शैली में बहुत लोग नहीं थे जो इतना प्योर और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस, पंदनल्लूर स्टाइल, उनमें बहुत लोग नहीं सीखे थे. तो मैंने सोचा कि 1991 को मैं एक स्कूल शुरू करूँ, और जो इतना ब्यूटीफुल डांस जिसने मैंने सीखा उसको कैसे बांटूं, कैसे नेक्स्ट जेनरेशन को देना है ना, तभी ये जाता रहेगा. इसीलिए मैंने 1991 को स्कूल भी शुरू किया. और मैं बहुत दृढ़ से कह सकती हूँ कि जब हम सिखाना शुरू करते हैं वो हमारे लिए एक दूसरा लर्निंग है. जो जो हमको दिमाग में अपने आप करने में नहीं समझ आई, वो सब समझ जाते हैं जब हम देखते हैं और सिखाते हैं. तो वो सेकंड लर्निंग होता है. तो वो शुरू किया, और 1991 मतलब अभी 35 इयर्स हो गया डांस स्कूल में. और बहुत बहुत सैटिस्फाइंग प्रोफेशन है मेरे लिए, कि मैंने ना ही मैंने डांस किया, ना ही मैंने इसकी आनंद पूरा लिया, अभी मैं आनंद को बहुत बच्चों से मैं बांट रही हूँ, और जब देखती हूँ जो बच्चे 5 साल में आते हैं, कैसे आते हैं और कैसे वो एक एक एक एक करके जब वो बड़ी होती हैं, ये डांस के वजह से वो कितना बदल देते हैं, कितना उनमें ग्रेस आ जाता है, उनमें एक पर्सनालिटी आता है, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ना ही डांस सीखते हैं मगर ये सब भी हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी हो जाता है और वो हमारे ट्रेडिशंस को जान जाते हैं। आजकल कहाँ जानते हैं, कोई उनको बताते नहीं है और वो पढ़ते नहीं है या देखते नहीं है। अभी ऐसा डांस और म्यूजिक में उन्हें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कहानी आता है और गणेशा ने कैसा वो आम को लिया, या महाभारत की स्टोरी, रामायण की स्टोरी, हर वक्त यही उनको दिमाग में आता है कि अल्टीमेट है कि अच्छाई बुराई से विन कर जाएगी, अच्छा रहना इज द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा उनका कितना वेल बीइंग होता है ना, फिजिकली वेल बीइंग, उनको एक्सरसाइज हो जाता है, सर से पांव तक एक्सरसाइज है इसमें। आजकल अगर आप किसी के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे कि स्पॉन्डिलोसिस है, वो जो एक्सरसाइज बताते हैं, जैसा वो सब करते हैं, ये सब करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, सब कुछ डांस में आ जाता है। और अगर आप आई डॉक्टर को जाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करो। ये आंख के साथ हम कितना करते हैं, पूरा फेशियल मसल्स के साथ हंसना रोना सब कुछ करते हैं। तो इसमें से हमारा टोनिंग ऑफ द मसल्स हेड टू टो, हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है, और अल्टीमेट है स्पिरिचुअल। हमारा कला भक्ति से इतना जुड़ा है, भक्ति के बिना कला नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति, वो कोई भी देवता हो, वो जीसस हो, मोहम्मद हो, हमारा हिंदू हो, जो भी हो, कहते हैं एक ही है, सुप्रीम गॉड, वन ब्रह्मन ब्रह्मन। सो ये सब शिक्षा कहाँ मिलेगी एक ही कला में? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, सब कुछ जुड़कर आता है। इसीलिए मैं कहीं जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है बात करने के लिए, मैं इसकी महत्वपूर्ण को बोलती हूँ।
1: मीनाक्षी जी, आपने अपने कला को आपने इस तरीके से इतना डिटेल में हमको समझाया, अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि अगर मैंने सीख लिया होता तो शायद मैं भी, जैसा आप कह रहे हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से एक सक्षम अनुभव करता। क्योंकि जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि ये केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं, इसमें आपको अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में भी सीखने को मिल रहा है, ये भक्ति से जुड़ा हुआ, आप ईश्वर के भी नजदीक रहते हैं, और चूंकि आप एक्टिव हैं, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई शिथिलता नहीं आएगी, यू विल बी ऑलवेज वेरी एक्टिव, आपको अच्छा फ्रेश महसूस होगा। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा। लेकिन क्या भरतनाट्यम कभी भी कोई भी सीख सकता है, या इसका कोई एक पर्टिकुलर एज होता है जिसमें सीखना बेटर होता है?
0: देयर इज नो डाउट, वो जो बोलते हैं चाइल्डहुड एंड यूथ इज द बेस्ट टाइम टू लर्न, उसमें कोई क्या बोलते हैं, देयर इज नो डाउट, उसमें शंक कुछ नहीं है। ओके
1: जी,
0: अगर मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग मुझसे, जब मैं स्कूल सब कर रही थी ना, चले मेरे दोस्त या कई लोग लड़कियां आकर बोलते थे कि हमने बचपन से, मुझे ये बहुत शौक था मगर हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सीखने के लिए, क्या हमें सिखाएंगे? या वो लोग बोले कि हम बहुत अच्छा करते थे मगर उसके बाद कोई पढ़ाई के लिए, या मैं मैरिज के बाद हमारा घर में वो सपोर्ट नहीं था, हम नहीं कर पाए, मगर अभी बच्चे बड़े हो गए, हम अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट है, आप हमें सिखाएंगे, पूछेंगे? तो मैंने सोच लिया, मैंने बोला कि नहीं, जो एज भी आप लोग हो, आप आ सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आप सोच लीजिए कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है तो आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। मगर एक बात मैं कहती कि आप लोग इसे ऐसा मत देखिए कि मैं सीख कर स्टेज में जाकर परफॉर्म करूंगी, नहीं चाहिए, वो एक बात है, कर सकते हैं, मगर वही है, वही गोल नहीं है,
1: गोल आंतरिक खुशी होना चाहिए कि मैं अपनी खुशी के लिए कर,
0: खुशी के लिए, तुम्हारे पास ये डिजायर होता है ना,
1: इच्छा,
0: वो इच्छा, एक ही लाइफ हम रहते हैं तो वो इच्छा को पूरी करनी चाहिए। थोड़ा देर, 3 महीने करिए, 1 साल करिए, 2 साल करिए, उसके बाद छोड़ जाइए, वो भी ठीक है, मगर आपका इच्छा पूरा हुआ और वो लोग जब आए और वो लोग आज भी आ रहे हैं। मैंने एक अभी रिसेंटली एक डॉक्टर, वो आई डॉक्टर थी और उसके वो स्टार्ट किया 35 में, 41 में मैंने उसको स्टेज में डाला, वो अरंगेट्रम किया। उसके आंख में पानी थी और उनके माता पिता के आंख में पानी थी। हमने नहीं सोचा कि हो सकता है, मगर अगर वो सेल्फ पावर, सेल्फ में कॉन्फिडेंस लेकर उसको मेहनत करने के लिए तैयार थी, हम कुछ भी कर सकते हैं। एज इज नो बार।
1: तो उम्र की कोई बाधा नहीं होती दोस्तों, जैसे कि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने हमें बताया, लेकिन बाधा होता है अपने खुद के मन का। अगर आपके मन ने ठान लिया कि मुझे ये करना ही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके मन को संभालना, उसको समझाना, उसको अपना साथी बनाना, ये बहुत बड़ी कला है। और इस कला को सीखने के लिए हमें अध्यात्म बहुत मदद करता है। कभी कभी हमारे आसपास जो हमारे लोग होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे शिक्षक होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं, ये वो रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं। जैसे मीनाक्षी जी की कहानी में हमने सुना कि उनकी माता जी ने अपने 5 बच्चों में से जो इकलौती बेटी थी उसको उन्होंने नृत्य में डाला, क्योंकि उनके दिल की ये तमन्ना थी कि जो मैं नहीं कर पाई शायद मेरी बेटी कर सके। अभी हम चलते हैं वापस मीनाक्षी जी की कहानी में, जहां से हम कुछ कुछ सवाल चुनेंगे और उम्मीद करते हैं मीनाक्षी जी उन सवालों के साथ हमें और भी कई बातों को सिखाएंगी।
0: मेरे पास एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है।
1: सो यू आर द मिडिल वन।
0: मिडिल वन।
1: अच्छा, तो मतलब एक बहन है, आप इकलौती बहन है और एकमात्र बेटी के प्रति आपकी माँ ने एक विजन सोचा। जब छोटे होते हैं तब तो मम्मी पापा जो कहते हैं वो हम करते हैं इजीली, उसमें हमें कोई शंका नहीं होता, बोला है ये करो तो हम कर लेते हैं। लेकिन बचपन में ही खेलने कूदने का भी समय होता है, थोड़ा शैतानी शरारत करने का समय होता है। उस समय अगर कोई आपको एक ऐसी विधा में डाल दे जहाँ एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या कला हो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, बहुत अनुशासन है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कहाँ मम्मी भेज रही है रोज, जहाँ पर मेरे को टीचर रोज स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो करने कहता है, आपके मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाग जाओ इससे?
0: नहीं नहीं, वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारा वो उतना कठिन नहीं था, वो थोड़ा बैलेंस था। स्कूल जाते थे और हफ्ते मैंने बोला ना 3 बार क्लास जाते थे और वो ग्रुप क्लास थी और बच्चे वहां आते थे, और मैं सोचती हूँ कि मैं उसे पसंद करती थी कि जाकर वो 3 बार डांस करें। और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी खेलती थी, आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट, बास्केटबॉल खेलती थी, सब कुछ करते थे, क्योंकि हमें और कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था ना उस टाइम। कहाँ था उतना डिस्ट्रैक्शन
1: उस टाइम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब कुछ नहीं था,
0: कुछ भी वो नहीं था। और बस खेलने के लिए माता जी पर, पिताजी, मैं कहती हूँ कि अच्छा बैलेंस करते थे, और उसमें ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट करके सब कुछ बताते जो हमें पसंद नहीं है, वैसा नहीं है। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरे स्कूल में आजकल के बच्चे ना डिफरेंट होते हैं, हमें ये मानना जरूर है कि आज के बच्चे जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसका बहुत डिफरेंट है। उनको कई कई एक्सपोजर्स हैं, उनको कई कई इंटरेस्ट हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस सबको हम हर वक्त ऐसा नहीं बोल सकते हैं नहीं करो नहीं करो नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये पेरेंट्स की रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जब वो बच्चे ग्रोथ की टाइम ना। कई माता जी हमसे आकर बोलते हैं पता नहीं आजकल वो रेगुलर नहीं आ रही है, हम उसे प्रेशर नहीं करना चाहते हैं, हम उसे फोर्स नहीं करना चाहते हैं इसीलिए। तो मैं कहती आप लोग क्यों समझते हैं कि ये प्रेशर है, ये आप ही लोग ऐसा बोल के प्रेशर है। थोड़ा सा उसको प्रेशर नहीं समझना नहीं है, उसको ऐसे कहना है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम, मैं ले जाऊंगी तुम्हें क्लास, मैं आपके साथ आऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी और वापस जाने के टाइम कुछ ना ऑन द वे बैक उसको एक आइसक्रीम देकर ले जाएगी, स्मॉल स्मॉल थिंग। और जो लोग आज आप सोचिए, जो लोग कुछ ना कुछ पाए हैं, वेदर इट इज क्रिकेटर, वेदर इट इज चेस प्लेइंग, म्यूजिक, डांस, सभी बोलेंगे कि हमारा माता पिता जी का सैक्रिफाइस, उन्होंने क्या क्या किया हमें बढ़ाने के लिए। तो ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ऐसा नहीं सोचना कि अलीन मेरा टाइम अब मेरे पास टाइम नहीं है उसे ले आने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं।
1: और शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसमें, जरूर समय भी देना पड़ेगा और दिल से उस पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा
0: और उसको अभी आजकल हमारे स्कूल में बच्चे हफ्ते में दो बार आते हैं, एक घंटा के लिए रहते हैं, सो होल मंथ में 8 घंटा, वो बहुत आसानी है, मगर उनका वो फोकस होना चाहिए और उसमें माता पिता की रोल बहुत जरूरी है।
1: ये चीज मैंने गौर किया आपकी कहानी में भी कि आपके मम्मी पापा ने एक चीज आपको बहुत मदद किया और वो ये था कि उन्होंने इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत दिया, जैसे भी अभी आप चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट हो गए या कहीं दूर चले गए, लेकिन उन्होंने आपको इमोशनली ये चीज को फील करने दिया कि ये तो बड़ा आसान है, ये दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप बस इसमें लगे रहो। तो ये जो एक इमोशनल सपोर्ट है जैसा कि आप अभी भी कह रहे थे, इससे क्या है बच्चे को ये फील हो जाता है कि अच्छा मुझे तो बस इतना ही करना, बाकी तो मम्मी पापा देख लेंगे। तो वो जो एक इत्मीनान आता है दिल में, एक जो सुकून आता है कि भाई मेरा इतना ही करना है, मैं उतने पे ही फोकस करूं, ये आगे बढ़ने में मदद करता है। जहां सामने वाले की बुद्धि इसमें फंस जाए कि इसको कैसे ट्रबल शूट करें, कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल के लाएं, वहां फिर धीरे धीरे सीखने से दिल हट जाता है, क्योंकि कोई चीज कठिन लग रही हो तो उसको सीखने में मन नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज अगर सरल लगती हो और मनोरंजन लगता हो तो उसको करने में दिल करेगा और उसकी वजह से व्यक्ति और भी उसको सीखना चाहेगा।
0: जैसे मैं कहती हूँ ना, जब बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, मेरा फर्स्ट गोल यही है कि वो खुशी से मेरे क्लास को आना है, क्योंकि उसको टाइम है, अगर कुछ नहीं आया ये बात नहीं है कि उसको डंडा से मारो और बोलो करना ही है, क्यों, उसके पास टाइम है, वो सीखेगी। कई लोग जल्दी सीखेंगे, कई लोग लेट सीखेंगे, तो क्या हुआ। तो अगर हम वो बैलेंस, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए मगर वो बच्चों को एक कंफर्ट देना चाहिए कि वो क्लास में आएगी तो खुशी से आएगी। अगर वह खुशी से क्लास आएगी हम उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मगर अगर उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है चाइल्ड में प्रॉब्लम हो या टीचर में प्रॉब्लम हो या पेरेंट में प्रॉब्लम हो और वो रुक जाता है, तब मुश्किल होता है।
1: यहाँ पर मुझे एक और चीज, जैसे आपने बताया कि बच्चों को ये चीज समझना जरूरी है कि मेरा एक समय है जब मैं पक जाऊंगा, और दो फल आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते कि कौन पहले पकता है, हर एक का एक समय निर्धारित है। लेकिन आपने भी देखा है कई पिछले 10-15 वर्षों से हमारे समाज में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो किसी भी विधा में हो, लेकिन कला के विधा में ये कॉम्पिटिशन चमक दमक और ग्लैमर के साथ आता है। आपने जब सीखा तब आपके गुरु के कहने पे 5-6 साल जब आपके गुरु ने बोला कि मुझे लगता है अब ये तैयार है, तो इनका डेब्यूट कराया गया, अरिंगटम कराया गया, राइट। लेकिन आज क्या है, पेरेंट्स आते ही हैं टीचर के पास ये सोच करके कि कब ये रेडी हो जाएंगे, कब हम फलाने टीवी शो में जाएंगे या फलाने टैलेंट शो में जाएंगे। तो ये जो एक दौड़ने की जो एक भावना है, किसी से आगे बढ़ने की जो भावना है, आपको लगता है ये सीखने में कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर देता है।
0: बहुत सही बात, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछा है, क्योंकि हम समझते हैं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, कॉम्पिटिशन अच्छा है, मगर ये जेलसी जो होता है ना, वो आ जाता है, तभी क्या हो जाता है कि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना,
1: ईर्ष्या,
0: ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन। उस टाइम हमारे जैसे हमारे बड़े लोग के वैल्यूज को बच्चों को सिखाना चाहिए छोटे में ही। आजकल प्रॉब्लम ये है, बच्चों को ये बात नो सुनना ही पसंद नहीं है उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, वो नहीं आया तो वो उसको दे नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। और पेरेंट्स भी बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत साल पहले मेरे लड़का ने कुछ, मेरे पिताजी के साथ कुछ खा रहे थे, तो कुछ लकर कुछ खाने में रखा था और मैंने बोला अपा आदित्य, मैं सन्स नेम इज आदित्य, आदित्य को ये पसंद नहीं है, आदित्य डजंट लाइक इट समथिंग। तभी उन्होंने बताया, आप लोग अगर बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस करके आप ही बोलते हैं कि इसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, यही पसंद है, यही देना है उसको, उसमें एक एटीट्यूड आप ही बढ़ाते हैं। यहाँ रखा है, खाना रखा है, वो जो कुछ भी रखा है वो खाएगा, यानी थोड़ा खाएगा या नहीं खाएगा, ओके। मगर आप लोग उसको बिल्ड करेंगे और बोलेंगे मेरे लड़के को यही चाहिए, वो ही पसंद है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहां नहीं बैठेगा, उसी टाइम वो बच्चों को वो एक ईगो पैदा कर देते हैं। ये नहीं करना है, वो छोटे में सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और अच्छी तरह हर टाइम उनको बताना है कि आप यू बी द बेस्ट यू कैन बी, तुम हाउ डू से दैट,
1: आप अपना बेहतरीन बनने का प्रयास, हाँ, किसी और से नहीं, बिल्कुल।
0: आप में कुछ होगा जो उसके पास नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बढ़ाओ
1: जी।
0: कई बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं और मुझे मालूम है उनको डांस के बारे में उनका फिजिकलिटी या उनका मेथड ऑफ डूइंग वो ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है, मगर ये शैली इसकी सूटेबल नहीं है। पूछ लो कि अगर उसका इंटरेस्ट गाने में हो, पेंटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो, उसको बदली कर दो। वो भी हमारा एज अ गुरु आई मस्ट टेल देम द फैक्ट्स, क्योंकि आपने जो बोला था ना, इसमें बहुत सारा ग्लैमर है, इसमें स्टेज में चढ़ाकर सब लोगों को आकर्षण करना है। अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो उसको फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। तो तब हमें ही बताना चाहिए कि रूट को थोड़ा घुमा लो या कुछ कर लो
1: जी।
0: ये बहुत साइकोलॉजिकली आजकल बहुत बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली उनको डील करना पड़ता है
1: जी। मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स ने एक चीज पक्की कर ली थी कि जैसा आप चाहेंगे आपको वो मदद करेंगे, लेकिन आपके पीछे वो एज अ बैकबोन रहेंगे, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों का थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा देखते तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि जीवन में उतार चढ़ाव एक प्राकृतिक नियम है। उस उतार और उसके बाद जो चढ़ाव है, जहाँ मेहनत होती है वहां बच्चों को पीछे से सपोर्ट करना है, ना कि बच्चों का होकर के उनका कर देना। यू विल नेवर डू होमवर्क फॉर योर किड, यू विल लेट द किड डू इट, राइट?
0: पेरेंट्स एंग्शियसनेस इज नाउ टेकिंग ओवर।
1: जो घबराहट है पेरेंट्स के अंदर जी,
0: दे कांट सी देयर चिल्ड्रन डिसअपॉइंटेड, दे कांट सी देयर चिल्ड्रन अपसेट, सो क्या कर जाते हैं, उसको बहुत शील्ड करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा क्या करेगा
1: जी, तब तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी मुझे एक और सवाल पूछना था, जैसे आपने बताया कि तरुणावस्था में आपको नृत्य के प्रति अंदर से एक आंतरिक रुचि आने लगी, आप उसकी और गहराई में जानना चाहते थे, क्या आप मुझे एक कोई ऐसा किस्सा या कोई एक ऐसी कहानी बता सकते हैं जिसको सुनते हुए, क्योंकि जैसे आपने बताया भरतनाट्यम या कोई भी जो शास्त्रीय कला है उस विधा में हम कहानियां ज्यादा सुनते हैं, कहानियों को ही हम नाट्य रूपांतरण करते हैं या उनको ही हम गाते हैं या उनको ही हम चित्रण करते हैं, कोई एक ऐसा प्रसंग जो आपको लगा कि इसने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया, वो कौन सा प्रसंग था?
0: एक याद आती है, मैंने एक ये बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नेहरू सेंटर कहते हैं, लंदन में है
1: जी,
0: और लंदन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, नेहरू सेंटर में मैं जाकर वो हमारा नृत्य किया, और वहाँ के ऑडियंस बहुत सारे लोकल ब्रिटिश लोग थे और फॉरेनर्स थे, और उसके बाद हम सब मिलकर एक रिसेप्शन की तरह रखा, डिनर रखा, तब मैं कई लोग बोल रहे थे कि हमारा इंडियन डांस को कितना वो पसंद कर रहे हैं, तो मैंने बोला उनसे कि उसी एक दिन पहले मैंने जाकर वो प्ले लायन किंग
1: जी,
0: लायन किंग को मैंने लंदन में वो देखा, और मैं टोटली आई वाज अमेज्ड, क्या क्या कोऑर्डिनेशन, क्या परफेक्शन, एक एक रोल, एक एक एनिमल को कैसा उन लोगों ने स्टेज में लेकर हमारे आंखें के आगे रखा, कैसा लाइटिंग, व्हाट इज कॉस्ट्यूम, कितना म्यूजिक, ये सब मुझे बहुत लेफ्ट मी टोटली अमेज्ड। सो मैं उसके बारे में उनसे बोल रही थी, तब मालूम है उन्होंने क्या कहा मुझे, हाँ हाँ यस यस वी आर वेरी गुड एट दैट, मगर यू नो व्हाट वाज फॉर अस वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, वी सॉ वन डांसर, शी वाज स्टैंडिंग ऑन द डांस एंड शी बिकेम सो मेनी कैरेक्टर्स, शी बिकेम कृष्णा, She became a mountain. She became the river. She became the deer. She became the hero. She became the Nayika. One person is standing there and showing us so much. There is no technological brilliance. There is no lighting. There is no all this amazing things. So that is art. What you are doing is very beautiful. It is artistic. तभी मुझे भी याद आया कि हमारा कला कितना महत्व है तो हम इसके वी मस्ट वर्क वी मस्ट डू मोर एंड मोर परफेक्शन
1: जी
0: क्योंकि ये और सिमिलरली नो एक कहीं पर मैंने किया वो ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसको कहते हैं जगदो धारण आदि शीतल यशोदा व्हाट अ ग्रेट सोल यशोदा वुड हैव बीन that the Supreme Lord was just a boy, baby in her hand. And she didn't know it. She scolded him, she begged him. He begged to her for forgiveness. What sort of a great lady that Yashoda must have been. And when I was doing it, that lady doesn't understand our word, only the action. And she said, I'm missing my child so much. The child was not there with her. So our music and dance has this power of moving people. It is moving their soul, it's moving their emotion. So these are all things which make you realize how lucky I have been, what a lot of grace of God I have got to be able to be like how you are saying. You are feeling so bad that you were not having this opportunity. I am feeling so blessed that I was given this opportunity.
1: जी
0: एक बात है हमारे गुरुजी बोलते थे बहुत बड़े गुरु होंगे उनको अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा बहुत अच्छा करने वाला शिक्षक होगा उसको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा तो अच्छा गुरु और अच्छा शिक्षक कनेक्शन होता है तो वो भगवान की कृपा है
1: जी जहाँ आपने अपना अनुभव शेयर किया कि जब आप लंदन आए और आपने यहाँ का जो शो होता है वो देखा और आपको लगा कि भाई इतना अच्छा तो हम क्या ही करेंगे लेकिन जब आपने किया और तब लोगों ने बोला कि भाई वो तो लाइट तकनीक की जो भी चीजें हैं इनोवेशन और इतने सारे लोग मिलकर के एक प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ एक ही व्यक्ति है जो हर प्रकार के चरित्र को अकेले ही निभा ले रहा है वो कृष्ण भी बन जाते हैं वो राधा भी बन जाते हैं वो पहाड़ भी बन जाते हैं पेड़ भी बन जाते हैं जानवर भी बन जाते हैं सब कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा है ना इसमें कोई चकाचौंध है ना कोई इसमें एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू है लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के द्वारा ही ये सारा चित्रण कर पाना ये अपने आप में एक कला है तो ये समझ में आता है कि कई बार हम जैसे दिया तले अंधेरा होता है हम खुद रोशनी के नीचे हैं और हमें पता ही नहीं कि हम किस चीज के अंदर हैं। भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी सभ्यता है हम उसके रिचनेस को उसके शक्ति को पहचान नहीं पाते और जो हमारे सामने ज्यादा घूम रहा होता है मीडिया की वजह से उसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और हम उसको पहले सीखने के लिए या उसके पीछे हम पहले भागते हैं इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा खुद का है वो पीछे रह जाता है अकेला पड़ जाता है और उसे आगे बढ़ाने वाला कोई होता नहीं ऐसे में जब आपके पास नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए या पुराने भी आते हैं जब सीखने के लिए आप उनको क्या वैक्सीनेशन देते हैं ताकि वो चकाचौंध में फंस ना जाए और जिस चीज के लिए वो आए हैं उस चीज को और गहराई से समझे किस तरीके से आप उनको एक अंदरूनी गुरु की तरह परामर्श एक दोस्त की तरह सलाह देते हैं जिससे उनको समझ में आए कि ठीक है वेस्टर्न चीजें भी मुझे सीखना है लेकिन पहले मैं अपने देश के परंपरा को उसकी सभ्यता को आत्मसात करूं फिर मैं आगे बढ़ू तो आप क्या वैक्सीनेशन या इम्यून सिस्टम उनका कैसे तैयार करते हैं
0: करेक्ट करेक्ट ये एक बहुत इट्स अ चैलेंज क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि आज की टाइम इज चेंजिंग और ये बच्चे डिफरेंट एनवायरमेंट से आ रहे हैं मैंने क्या देखा कि इनिशियली जैसे मैं बोला बच्चे खुशी से डांस क्लास आना चाहिए और उसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट भी होते हैं मगर जोकिंग भी करते हैं और उनको सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा ये बहुत लॉन्ग जर्नी है ये नहीं है कि इसका समाप्त दो दो दो वर्ष लिए सीख लिया तो मालूम है या 10 वर्ष सीख लिया मालूम है 50 वर्ष के बाद भी मुझे कितना मालूम नहीं है हा? तो ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा टाइम टेस्टिंग के लिए नहीं है तो मैं क्या करती हूँ जब वो 3-4 साल हो गया और थोड़ा आइटम्स को शुरू कर दिया ना, तो मैं क्या करती हूँ, उन लोगों को कुछ ना कुछ एटलीस्ट 2 times इन द ईयर, यार 1 time डेफिनेटली उनको मिला के उन्हें स्टेज में प्रेजेंट करती हूँ। तो क्या होता है, जब वो बोलती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम कर दिया है, आप लोगों यू विल टेक पार्ट, उसी दिन नेक्स्ट क्लास में ही उनका चेंज हो जाता है। जब वो मालूम होता है कि हाँ मैं भी डांस जाऊंगी, मैं मेकअप करूंगी, ड्रेस पहनूंगी और मैं डांस करने वाली हूँ, उनका और पेरेंट्स का सबका थोड़ा, आपने बोला ना वो इंजेक्शन विटामिन अंदर जाएगा और वो 1 साल तक रहेगा। अगले साल जो और भी उन्होंने सीख लिया उसको भी एक इकट्ठा करके उसे थोड़ा सा यू नो मेक इट लिटिल फन एंड उसको प्रेजेंट करते जाते हैं, ताकि जब उनका टाइम आता है, जब मैं समझती हूँ कि वो अपना सोलो अपने आप डेब्यू परफॉर्मेंस 1 hour 20 minutes के लिए कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा से तैयार हो गए हैं। और जब वो दिन आता है, वो दिन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए इतना खुशी का दिन है, और जो याद वो कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर कर कर अच्छी तरह जब वो करती है। उसके बाद उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, वो एक बार ही होती है, ऐसा नहीं कि हम अरंगेट्रम करते रहेंगे उनके लिए, उसके बाद उनको सस्टेन करने के लिए ही हमें बहुत बहुत
1: बैलेंस
0: मेहनत बैलेंस कभी कभी थोड़ा सा प्रोग्राम दे सकते हैं, मगर एक टाइम आ जाता है, हो सकता है ये 15-16 टीनेज में 1-2 बच्चे छोड़ जाएंगे, बस 10th हो गया, 12th हो गया, बिजी हो गया और उसी तरह थोड़ा सा वो डांस अभी फिजल हो जाएगा। कई बच्चे में अपने आप इट इज देयर इंटरेस्ट, नो लॉन्गर पेरेंट्स इंटरेस्ट, माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा की बात नहीं है, उसको आता है कि मैं इसको पसंद कर रही हूँ, आई लाइक इट।
1: तो मुझे लगता है जब वो अपनी पसंद से होता है तभी वो एक ऐसे शिखर पे पहुंचता है जब देश उसको मान्यता देने लगता है, जब विदेश देश हर तरह उस चीज की मतलब सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। अगर वो किसी के दबाव में किया जा रहा है तो वो किसी परफॉर्मेंस स्टेज तक ही रहता है, वो एक ऐसा कला नहीं बनता जिसको लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे भारत के श्रेष्ठ सम्मान में से सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने अपने कला को अपनी रीति से अपनाया, किसी के कहने से नहीं, शुरुआत भले माता पिता ने किया, गुरु के आदेश और निर्देश में उन्होंने शुरू किया, लेकिन जब उनके दिल के कोने ने देख लिया कि इस पूरे जगह में केवल नृत्य का ही वास है, तब उन्होंने उस नृत्य को इतने आगे परचम तक पहुंचाया जहां पर उनका नाम और भरतनाट्यम का नाम एक होने लगा और भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जब ये सम्मान आपको मिल रहा था तब आपको वो छोटी बच्ची मीनाक्षी जो जाती थी सीखने के लिए और जिसका 9 वर्ष की आयु में पहली बार डेब्यूट हुआ और जब 2008 में आपको पद्मश्री मिला, तो इस पूरे श्रृंखला को अगर आपको किसी मेटाफर में या किसी उदाहरण के तौर पर समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे, क्या आपका अनुभव रहा होगा?
0: पद्मश्री मुझे मिला, मीनाक्षी सभानायकम चित्तरंजन को पद्मश्री दिया गया, मगर उसका कारण मैं नहीं हूँ। मैं एक इट इज अ फिजिकल फॉर्म दैट इज डन इट। उसका कारण है मेरे गुरुजी, माताजी, पिताजी, जो जो सैक्रिफाइस वो करे होंगे, तब मैं बच्ची थी तब तो मुझे याद भी नहीं है क्या किया होगा
1: जी।
0: वो जो किया, मेरे रसिका, मेरे ऑडियंसेस जो आकर मुझे वो मोटिवेशन दिया कि आप जो कर रहे हैं अच्छा है, ये सब लोगों की पद्मश्री है। वो मैंने उसको रिसीव कर दिया। मेरी थी कि आपने जो कहा ना, जब हमें कुछ काम करना पसंद है हमको वो मेहनत नहीं लगेगा। बोलते हैं ना, बेस्ट जॉब इज इफ यू विल डू इट इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड, पे इज द एडिशनल बोनस यू आर गेटिंग if you are doing something you like very much, like अभी लोग पूछते हैं तुम कैसे अपने घर चलाती हो, बच्चों को देखती हो, आज पोता पोती को भी देखती हूँ, सबको देखती हूँ कैसा, तो मैं कहती हूँ जो जब मैं अंदर जाकर नाचने लगती हूँ मैं उसे उतना पसंद करती हूँ, मुझे ये मेहनत नहीं सोचती हूँ। इट इज फॉर मी रिलैक्सेशन
1: जी,
0: उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टायर्ड हो गई हूँ, नहीं।
1: ये आपका आराधना है जहाँ से आपको शक्ति मिल रही है। तो ये नृत्य आपके लिए केवल नृत्य नहीं, आपकी उपासना है, आपकी आराधना है, जहाँ से आपको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, और फिर उसको वो अपने जीवन में आप डालते हैं। आपके क्लास में, आप चूंकि शिक्षिका हैं इसलिए मैं बार बार आपके शिक्षण की तरफ जाता हूँ, एक समाज की एक मान्यता, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाई एक टाइम था जब लड़कियों के नृत्य करने पे लोगों को खराब लगता था, ब्रिटिशर्स से पहले भी मुगल काल में भी ऐसा था कि केवल किसी एक प्रांत या किसी एक समाज के हिस्से को ही नृत्य से जोड़ा जाता था, बाकी किसी को कहते थे भद्र घर की लड़कियां जो है वो नृत्य नहीं करती, गाना भी नहीं गाती। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा खुला, लेकिन आज यही रुकावट जो है आपको देखने को मिलेगा जेंडर्स में, लड़कियां ही डांस करती हैं, लड़के डांस नहीं करते, लड़के डांस करेंगे तो कुछ और टाइप का डांस करेंगे, भरतनाट्यम कथक ये लड़कों को नहीं शोभता, ऐसा सुनने को बहुत मिलता है, और लड़कों के अंदर में भी ये होता है कि ये तो लड़कियों का काम है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, ये बहुत सही बात है। एक टाइम था कि बहुत लड़कियां ही इसमें आती थी, वेरी फ्यू मेल डांसर्स,
1: जबकि आपके गुरुजी खुद पुरुष थे।
0: पुरुष थे मगर वो एक दिन भी खड़ा होकर नाचना नहीं किया। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि वो बैठकर अपने वो डंडे से जो हम रिदम करते हैं ना, उसके साथ ही हमें सिखाया था, एक दिन भी उठकर हमको दिखाया नहीं।
1: ये तो कमाल है, फिर आप सीखे कैसे?
0: ऐसा है कि क्लास में हमसे जो पहले सीख रहे थे हम उनको देख रहे थे ना, वो एक शिक्षक थी, और वो जो कहते थे हमें मालूम जाता था कि क्या करना चाहिए। वो लोग, वो मास्टर्स ऐसे थे, वो डांसर्स नहीं थे, वो डिफरेंस है। आजकल का डिफरेंस ये है कि सभी गुरुओं डांसर्स हैं, क्योंकि वो पंडित जी अभी चली गई, उनके बच्चे सब नाच डांस में नहीं है। मेरे गुरुजी के लड़के सब गवर्नमेंट जॉब या कहीं जॉब पे, कोई भी वो डांस नहीं। और जैसे हम लोग जो उनके स्टूडेंट्स थे, अभी हम सिखा रहे हैं, सो हम है जो परफॉर्मर कम टीचर। यही अभी बात ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही है।
1: श्रोता साथी, मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा कि मीनाक्षी जी इतने एक दुर्लभ सुनने जैसे और एक कठिन सुनने जैसे विद्या की बात कर रही, जहाँ पर जो गुरु है वो खुद नहीं करके दिखा रहे, वो केवल आपको निर्देश दे रहे हैं, और गुरु के साथ आप इतने कनेक्टेड हैं कि उनके निर्देश को आप ऑटोमेटिकली मान पा रहे हैं, और आपके सामने जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसा शिक्षण आज के जमाने में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यही मीनाक्षी जी हमें बता रही हैं। जी मीनाक्षी जी, आगे बताइए।
0: वही बात है। और दूसरा बात ये है कि टुडे सीन भरतनाट्यम में और शैली में भी बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे कर रहे हैं।
1: कला को किसी जाति से, किसी जेंडर से, किसी लिंग से जोड़ना ये हमारी बेवकूफी है, क्योंकि कला का कोई लिंग नहीं होता, उसका कोई जाति नहीं होता, वो ईश्वर की देन है, उसे उस रूप से आत्मसात करने में ही हमारा और हर एक का भला है। जब हम उसको जज करने लगते हैं कि ये खाना पकाना लड़कियों का काम है, ये करना लड़कों का काम है, तो ये दिखाता है कि हम कितने अनभिज्ञ हैं सत्यता से और वास्तविकता से। जहाँ नृत्य के देवता नटराज हैं, जो कि एक पुरुष देवता है, वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि नृत्य जो है वो पुरुषों के लिए नहीं है या किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। मीनाक्षी जी, अगला सवाल है कि भारत का ये जैसे कार्यक्रम का नाम है यशस्वी भारत, आप विदेश भी गए हैं और विदेश में जाकर के आपने भारत के सभ्यता का प्रदर्शन किया है, तो वहाँ के रिएक्शन से आपको क्या महसूस होता है कि हमारा भारत यशस्वी किन किन कारणों से है?
0: Definitely, I mean, our civilization, our history, we are the oldest and the culture, the dance, music, our scriptures, literature, Vedas, math, the whole world admires us for what we have given our Bharat, India, what it has been and what civilization, what all it has given to the world. I think they respect and they are aware of this pride of India. And according to me, it is our richest wealth. That is why we must somehow preserve it. Mm. We must keep it. And how to preserve? We have to transfer it to the next generation. So that is what I keep saying. All the people who are good in anything, whether music, dance, sports, in education, द मोर यू एजुकेट द नेक्स्ट जनरेशन यू कैन कीप दिस प्राइड ऑफ इंडिया
1: अलाइव. भारत की धरोहर को अगर बचाना है तो उसे आगे पास ऑन करना पड़ेगा, अपने पास रखने से नहीं होगा. और संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारा एक नागरिक होने के नाते भी और एक मनुष्य होने के नाते भी हमारे एक कर्तव्य है. आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम में आदरणीय मीनाक्षी चित्रंजन जी से, जो कि भारत की एक अद्भुत विख्यात नृत्यांगना है भरतनाट्यम शैली, जिन्हें उनके नृत्य के प्रति समर्पण भाव के लिए, नृत्य के द्वारा उन्होंने समाज में जो बदलाव लाया है उसके लिए भारत सरकार ने 2008 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया. हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं और हम जानना चाहेंगे मीनाक्षी जी से, अगर मान लीजिए आपको एक जादुई छड़ी दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगे?
0: I would want to remove the suffering of our people.
1: लोगों के अंदर की जो व्यथा है, दुख है, उसको आप हटाना चाहेंगे.
0: But I want everybody to be happy.
1: बहुत सुंदर विचार है मीनाक्षी जी का कि जादुई छड़ी मिले तो मैं हर व्यक्ति के दिल से दुख को हटाना चाहूंगी. लोग चाहे अमीर हो ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन खुश जरूर हो ये चाहिए. यही है दोस्तों, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण कि वो भले भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हर कोई भरतनाट्यम सीखे, वो ये चाहते कि हर कोई सुखी हो. सर्वे भवन्तु सुखिना का उनका भाव है.
0: If you are not sukhi, you cannot do what you are doing well.
1: जो आप अच्छा कर रहे वो भी नहीं कर सकते अगर आप सुखी नहीं है. तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो हमें बांध के नहीं रखती कि केवल अपनी विधा का ध्यान रख, वो हमें आध्यात्मिक बना देती है, अंदर से हमें ऊंचा बना देती है. इसलिए वो भले भरतनाट्यम की नृत्यांगना, लेकिन भरतनाट्यम का नहीं सोच रही, वो पूरे जनमानस के जीवन का सोच रही है. ये धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति की. जाते जाते मीनाक्षी जी आपसे हम खेलना चाहेंगे एक रैपिड राउंड, जिसमें हम करेंगे आपसे एक सवाल जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा या एक वाक्य में देना होगा.
0: बहुत एग्जाम हो रहा है अभी.
1: मैं समझता हूँ, खैर है तो ये रेडियो शो, लेकिन इसमें हमारे दोस्त जो है आपके अभिनय को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब यूट्यूब पे हम डालें वीडियो को तो अभिनय को जरूर वो देख पाएंगे. ले आप चाहे तो अभिनय के द्वारा भी इसका जवाब दे सकते हैं. तो पहला सवाल है आपसे, शांति क्या है?
0: अंदर, अंदर का पीस. बाहर नहीं है, अंदर है
1: शांति.
0: हमें अंदर से, अंदर है, हमें वहीं पर ढूंढना चाहिए.
1: तो दोस्तों अगर आप शांति ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो अंदर जाने के लिए कह रही है मीनाक्षी जी. सुख क्या है?
0: सुखिनो भवन्तु.
1: जब सब सुखी हो उसमें सुख है. संतुष्टता क्या है?
0: जब हमारे डिजायर को कंट्रोल करें,
1: इच्छा पर कंट्रोल, नियंत्रण, ये सुख, ये संतुष्टता है. बहुत सुंदर.
0: कंटेंटमेंट,
1: कंटेंटमेंट, संतुष्टता. शिक्षा क्या है?
0: शिक्षा इज नॉलेज,
1: ज्ञान.
0: ज्ञान अज्ञान को जो रिमूव करता है वही शिक्षा है.
1: तो अंधेरा समझ लीजिए जैसे कि रोशनी, अंधेरे को जो हटाता है वो शिक्षा है. सेवा क्या है?
0: सर्विस. ऐसा करना चाहिए जिससे जो हमसे लेता है उसको हम छोटा ना समझे. ऐसा करना चाहिए जैसे हमें लगता है कि हमको उसने एक वर दिया है कि हम ये कर सकते हैं.
1: वाओ, ये तो बहुत ऊंची बात कही मीनाक्षी जी ने कि सेवा वो है जहाँ पर आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें छोटा ना समझे. आप ऐसा समझे कि उनकी वजह से आपको सेवा का एक वरदान मिला है. तो सेवा जिनके प्रति कर रहे हैं उनको ऊंचा देखना, ऊंची नजर से देखना, ये वास्तविक सेवा है. ये बहुत सुंदर जवाब था. मीनाक्षी जी, भारत क्या है? मैंने देखा आपकी आंखों में एक चमक आ गई. भारत क्या है?
0: भारत वैकुंठ है.
1: भारत वैकुंठ है जहाँ सर्व सुख है,
0: जहाँ देवर देविया देवा सब यहाँ परेड कर किए हैं, जहाँ भगवान सब यहाँ आ गए हैं.
1: जी, भारत वैकुंठ है. आखिरी सवाल और आखिरी से पहला सवाल, भरतनाट्यम क्या है?
0: भरतनाट्यम उसका नाम में ही है. भरतनाट्यम है भा भावा रा रागा ता ताड़ा, जिसमें भावा रागा और ताड़ा जुड़ा है वही नाट्यम है. ये तीनों उसमें है.
1: भरतनाट्यम में भाव, राग, ताल तीनों हैं, तभी वो भरतनाट्यम है। लेकिन अगर भरतनाट्यम को आपको किसी उदाहरण से देना हो, जैसे भरतनाट्यम आपके लिए, अगर आप उसको एक मेटाफराइज करें या उसको आप एक पर्सोनिफाई करें, तो क्या है भरतनाट्यम आपके लिए?
0: भरतनाट्यम हम कहते हैं भरतनाट्यम, आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी अ फीस्ट फॉर द आईज, फॉर द इयर्स, फॉर द माइंड एंड फॉर द सोल।
1: भरतनाट्यम आंखों के लिए भोजन होना चाहिए, कानों को सुनने के लिए मधुर होना चाहिए, मस्तिष्क के लिए, बुद्धि के लिए चर्निंग अच्छा भोजन होना चाहिए, और आत्मा को सुख देने वाला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए भरतनाट्यम एक अनुभव है,
0: क्या कहते हैं, ये नाट्य योगा है।
1: योग है। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल कठिन है, लेकिन मैं समझता हूँ आप इसका जवाब जरूर दे देंगे। मीनाक्षी चित्रंजन कौन है?
0: एक पिक मिट्टी का एक पिक है बस, और क्या है।
1: लेकिन उस छोटे से कण के बगैर पूरा धरती नहीं बन सकता, तो वो कण भी अपने आप में यूनिक है, और ये भारत का एक ऐसा कण है जिस कण को लोग अपने माथे पे लगाते हैं। तो ऐसे धरती के कण को मीनाक्षी जी के शब्दों में हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया। आज आपने हमें अपने नृत्य शैली से भी अवगत कराया, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई रहस्य है, जो कि शिक्षादायी है, जो कि आध्यात्मिक बातें हैं, उनसे भी आपने हमें और हमारे श्रोताओं को अभिभूत किया। मीनाक्षी जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल जीवन के लिए, और आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे इतने सारे बच्चों के लिए जो भी भरतनाट्यम के शिक्षार्थी हैं, हमारी तरफ से, रेडियो मधुबन के सब परिवार की तरफ से एवं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं की तरफ से दिल से शुभकामनाएं हैं।
0: आपने मेरे जीवन का, ओवर 50 साल का जीवन को बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर से बाहर निकाला। आपके प्रश्न सब बहुत बहुत नॉलेजेबल और क्या बोलते हैं ना, वर्थवाइल थे, जिसके कारण मैं भी इतना बात कर सकती थी। तो आपको भी मेरा धन्यवाद एंड सभी सुनने वालों को नमस्कार।
1: दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान मीनाक्षी चित्रंजन जी को। यशस्वी भारत कार्यक्रम हर बार आपके बीच में एक ऐसे मेहमान को लेकर के आता है जिसने भारत के क्राउन में, उसके ताज में एक नगीना ऐड किया है, और वो नगीना वो खुद होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपने जीवन के द्वारा भारत को यशस्वी बनाने का व्रत आगे बढ़ा रहे होते हैं। मीनाक्षी जी से बात करते हुए हमें कई चीजों का अनुभव हुआ, मैं समझता हूँ आपने भी उन चीजों का अनुभव किया है। हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे एक और रतन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन, जय हिंद, जय भारत।
2: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी 1 मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर के झा, कृष्णकांत झा हमारे साथ उपस्थित है। आप होम्योपैथ है और योगा कोच है और वेलनेस ट्रेनर भी हैं। आप जगह जगह लोगों को जो है अवेयर करते रहते हैं, बीमारियों से मुक्त रहकर स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। पर आपका सपना है कि सभी लोग जो हैं अब बिल्कुल स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे, ऐसे शुभ आशा के साथ आप सबके साथ जुड़ते हैं। और आपने कुछ नए टेक्निक्स भी यूज किए हैं अपने लाइफ में, जैसे सिटिंग भुजंगासन, ये सारी चीजें जो है बहुत ही सिंपल और आसानी से आप 5 या 15 मिनट के बीच में कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सरसाइज, कुछ लाइफस्टाइल के सुंदर एक्टिविटीज आप लोगों से करवाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए बताते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके ये छोटे छोटे टिप्स जो है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर जो है अवसर प्रदान करता है हेल्दी रहने का। और योगा से या जो आपके नएतम टेक्निक्स आपने बताए हैं उससे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए, आज हम लोग उनसे जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर के झा जी से। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
1: नमस्कार। ओम शांति
0: जी। डॉक्टर के झा, अब जो है कल एक बहुत ही सुंदर जो है खास इस बात पे काम करने वाले हैं, जैसे कि नो टोबैको डे 31 मई को हम लोग मनाते हैं, तो तंबाकू मुक्त भारत का विजन लेकर वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली पश्चिम विहार में आयोजित किया है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप पहले जी।
1: बेसिकली कल 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो मेनली मेरा मेन एम है कि बीमारी मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये एक मोटिव लेके मैं चल रहा हूँ। और कल इसका एक स्टार्ट कह सकते हैं, जिसको कि फुल फ्लेज रूप में लोगों में अवेयरनेस बढ़े तंबाकू निषेध के प्रति भी, बच्चों में जागरूकता। स्कूल्स में मैं कैंप्स करते रहता हूँ। उस पार्क, बहुत बड़ा पार्क है पश्चिम बिहार का, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पार्क, बहुत बड़ा पार्क है और उसमें अपने काफ़ी सारे लोगों ने उसमें आने का रखा हुआ है। मुझे लगता है 100 से 150 से ज़्यादा ही लोग आएंगे। तो मेन मेरा एजिंग पे रिसर्च है। मैं 10 से 20 से 30 साल रिवर्स की बात कहता हूँ और रूट कॉज को मैं कहता हूँ कि अगर आप समझ लेंगे, बीमारी के कारण को अगर आप समझ लेंगे तो बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। इसी धारणा को लेकर मैं चल रहा हूँ कि भारत बीमारी मुक्त बने। मेरा जो NGO जिसका नाम है BIP, मैं कहता हूँ कि अपना देश बीमारी मुक्त बने, ये हमारे NGO का नारा है। और इसके लिए प्रति मंथ हम लोग कहीं ना कहीं कैंप करते ही रहते हैं। अब ये इवेंट अभी कर रहे हैं, इसके बाद अगले मंथ में कुछ और इवेंट करेंगे। तो मेरा कहना है कि रूट कॉज जो है अपना पोस्चर, अगर पीठ की स्टिफनेस का केयर कर लिया जाए, पोस्चर का ध्यान रखें और फूड का ध्यान रखें, तो हम लोग लाइफ टाइम यंग रह सकते हैं, फिटनेस मेंटेन रख सकते हैं। और वही आसान, मन करता है ये खा लो ये पी लें और वर्कआउट नहीं होता, उसके लिए मेरा वही आग्रह है। और जहाँ तक मुझे याद है कि पिछले साल, कितना, 2 साल पहले या 3 साल पहले आपके चैनल पे ही आपने मुझे मौका दिया था, जिसमें सिटिंग भुजंगासन मैंने बताया था और कुछ सिंपल चीजें मैंने बताई थी।
0: तो डॉक्टर के झा, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे आप जो है इस अभियान को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है जागरूक भी है और लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आप इवेंट करते रहते हैं। तो कल का इवेंट खास हेल्दी रहे, सबके सबका हेल्थ अच्छा रहे, इस भाव से आप कर रहे हैं। तो नो टोबैको डे को लेकर आप जो है तंबाकू निषेध को लेकर किस तरह से काम करना चाहते हैं, क्या तंबाकू के सेवन या नशे की जो चीज़ें सेवन करते हैं उन लोगों को आप क्या सजेशन देते हैं, क्या बात बताते हैं जी?
1: इसमें मुख्य रूप से तो जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं तंबाकू से जुड़ी हुई चीजें, उनको मेरा कहना है कि अगर आप चाह लेंगे कि मुझे ये छोड़ना है, ये संकल्प अगर बनाएंगे, तो योग में ये दम है, ध्यान और प्राणायाम में ये दम है कि वो धीरे धीरे आपका स्ट्रांग हो जाएगा विल पावर और हो जाएगा। साथ में वही उसी के लिए कल का वो जो इवेंट है उसमें वही सारी चीजें मैं रखूंगा। लेकिन ऐसे समाज के ऐसे वर्ग

0: तो स्कूल्स में, कॉलेज में, डिफरेंट लोकेशंस में मैं ये कैंपेनिंग ऐसे भी करते रहता हूँ। योग का अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपका मन का स्ट्रांगनेस बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत ऐसी चीजें आपसे दूर रहेंगी। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जिस संगत में आप रहेंगे वो धीरे धीरे वो संगत आपके बिहेवियर में असर आएगा, फिर आपको लगेगा भाई चलो ठीक है एक आध बार से क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे आपके हैबिट में आता जाएगा।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारे जीवन में जो है नशा आता है, इसके बारे में आपने बताया। निश्चित तौर पे हमें संकल्प करना होगा कि कैसे हम इससे दूर रहें और इससे मुक्त हो जाएं। तो आइए इस पर, जैसे कोई बंदा है जिसको नशे की लत लगी है, हम उसको कैसे छुड़ाएं, क्या बताएं हम उसको?
0: मुख्य रूप से मैं इसमें कहता हूं कि ध्यान और प्राणायाम, प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क को स्ट्रांग कर देगा। बेसिकली श्वास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल है अपने लाइफ में, अपने मस्तिष्क के लिए, अपने मन के लिए। कहा जाता है कि मन और श्वास का, विचारों मतलब आपके मन और श्वास का आपस में कोरिलेशन है। जब आप श्वास पे ध्यान देने लगते हैं, श्वास गहरा होता है तो ऑटोमेटिकली मन शांत होता है, और मन शांत होगा तो चीजें, जो विचार आपकी कई सारी चीजें आ रही हैं रुक जाएंगी, और उसकी वजह से जो भी ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू तो एक गंभीर चीज है, लेकिन मैंने देखा कि आहार में ही, खाने पीने में ही कुछ ऐसी चीजें जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य नुकसान करती हैं। जो लोग योग का अभ्यास करते हैं धीरे धीरे उनके वो प्रैक्टिस में हट जाता है। मैंने जैसे थायराइड की बीमारियां के लिए जो दवाई स्टार्ट होना था फिर मैंने कराया, तो मेन मेडिटेशन करने से, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास जब आप करेंगे तो आपका मन का स्ट्रांगनेस, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन मजबूत होगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इसमें सिंपल प्राणायाम, अपना मैं एक सरल श्वसन की बात कहता हूँ कि अपना श्वास को फील कीजिए उतरता हुआ, आप देख रहे हैं 10 सेकंड में श्वास आपका भीतर आया और एकदम निकालेंगे धीरे धीरे 20 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में श्वास खींचना और 20 सेकंड में श्वास निकालना। अगर आप ये अभ्यास करने का प्रयास करने लग जाएंगे 5 मिनट के लिए सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके विचारों में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको इस अभ्यास को नियमित करना है कि अपने सामान्य श्वास को देखें, फिर उसी के साथ अनुलोम विलोम, धीरे धीरे गहरा श्वास, धीरे मतलब श्वास की आवाज खुद को भी ना सुनाई दे, लेकिन बहुत कठिन है। जनरली ज्यादातर लोगों को जो मैं कराता हूं तो लोग एक तो 3 से 4 सेकंड में श्वास भरते हैं और ये आवाज के साथ करते हैं, मेरा कहना है नहीं, इसको आप कोशिश कीजिए 10 से 15 सेकंड में श्वास खींचना और 10 से 12 सेकंड सही, और 15 से 20 सेकंड में निकालिए, फिर बाद में 30 सेकंड में निकालिए। तो धीरे धीरे ये अभ्यास आपके जब क्रम में आ जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम क्लीन होने लगेगा, आपका मन स्ट्रांग होने लगेगा, तो चीजें बदलने लगेगी। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, नॉर्मल मैं फिर से
1: जी
0: जो नॉर्मल
1: जी
0: लोग करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, और जो मैं कहता हूँ वो दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा जब उसको लोग देख के करेंगे। ये ज्यादातर लोग करते हैं, इसको इम्प्रूव कर लिया ये तरीका को, इससे फायदा मिलेगा।
1: जी
0: अब जो मैं कहता हूं वो तरीका देखा जाए।
1: जी

0: ये बहुत कठिन है, मन इतनी देर के लिए श्वास गहरा खींचने का अभ्यास बन ही नहीं पाता है। मतलब लोगों को होता है कि हड़बड़ी में कर लो, मतलब एक खाना पूर्ति के रूप में लोग मामली करते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप ये 5 मिनट के लिए से 10 मिनट के लिए अगर करने लग जाएंगे तो आपके हार्मोन्स का, आपके मनोमस्तिष्क का, आपके विचारों में शक्ति आएगी, आप जो चाहेंगे होगा। आप चाह लेंगे कि मुझे मेरा थायराइड ठीक हो, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ जाए, जो भी चाहेंगे, धीरे धीरे चीज स्थिति वो बन जाएगी। लेकिन वो संकल्प जब आप ये बनाएंगे कि मुझे आजीवन स्वस्थ रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने परिवार में लोगों को स्वास्थ्य के लिए जगाना है और हम जिसको जानते हैं उसको भी अवेयर करें, तो ये इस अभियान में मैं चाहता हूँ कि समाज के सभी लोग मेरे साथ जुड़े, एज एम्बेसडर बने बीमारी मुक्त भारत अभियान पे, जो मैं आगे इस स्लोगन को बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं चाहूंगा कि सभी भारत के देश के लोग, सभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आप को पहला संकल्प अपना कि मुझे अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रखना है। उसके लिए आप आहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकें, अपने मन को स्ट्रांग करके जब आप करेंगे तो आहार में रात का खाना हल्का कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मीठा आप खाते हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा कम कर देने की, मिलावट है तो और मिलावटी चीजें कहीं ना कहीं लीवर किडनी पे इफेक्ट करती हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप अपने आहार को परिवर्तन कर लेंगे, योग एंड प्राणायाम का अभ्यास एंड उसके साथ थोड़ा सा वॉक में, ब्रिस्क वॉक या रनिंग, तो कल जो मेरा प्रोग्राम है उसमें 1.5-2 किलोमीटर, मतलब 1 से 3 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, उसके बाद जुम्बा डांस होगा, उसके बाद मेरे सेशन होंगे जिसमें कि मैं ये सब चीजें जो प्रैक्टिस कराता हूँ वो कराऊंगा। उसमें कई सारी चीजें, वार्म अप एक्सरसाइजेस से लेकर सूक्ष्म क्रियाएं होंगी जिसमें मेरा जोर रहेगा, प्लस प्राणायाम ध्यान का। तो मेरा ये आग्रह है कि जो लोग जहां भी हैं, अगर जो दिल्ली NCR में है, उस कल का इस कार्यक्रम में आकर के सुबह बढ़ाएं, मेरे साथ संकल्प लें, प्लस जो जहां है कल कम से कम इस आपके चैनल पे भी लाइव रहेगा, मेरे चैनल पे भी लाइव रहेगा, तो उस जगह पे अपने आप को इससे जोड़े, इससे जुड़ करके इस सब संकल्प को आगे बढ़ाएं।
1: जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे हम जो है नशे से मुक्त रह सकते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में आपने कुछ बातें और कुछ टेक्निकल टिप्स भी बताया, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, कैसे श्वास लेना है, कैसे श्वास छोड़ना है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो अनुलोम विलोम की तरह आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और विधिवत अगर आप अभियान में जुड़ते हैं तो तब आप म्यूजिक के साथ लोगों के साथ मिल के करते हैं तो एक एनर्जी मिल जाती है और आप लंबा समय तक उसे कर सकते हैं। तो शुरू में ये योग जो है, ये प्राणायाम जो भी है, हम लोग जब शुरू करते हैं तो इंडिविजुअल ना करके ग्रुप में शुरू करें, रेगुलर करें, और कुछ समय के बाद फिर आप इंडिविजुअल करेंगे तो शायद वो चीज़ें अच्छी रहेगी, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। तो ये रेगुलरिटी जो है इसमें ज़्यादा देखी गई है, रेगुलर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर KK झा जी बता रहे थे, खाना पीना उसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, रात का खाना आपको ठीक से समझ के खाना है, और थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन भी अति आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए, नशे से मुक्त होने के लिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट के नशा केंद्र होते हैं जहाँ पर लोगों को एडमिट किया जाता है और उनको फिर ट्रीट किया जाता है, वहाँ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाते हैं फिर से वो वापस उसी संघ में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नशा केंद्र होते हुए भी नशा मुक्ति का ये अभियान फेलियर लगता है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी,
0: मैंने ही देखा है कि क्योंकि मैंने नशा उन्मूलन केंद्र पे आज से तकरीबन मुझे लगता है कि लगभग 30 साल पहले मैंने काम किया है। वाराणसी में एक नशा उन्मूलन केंद्र है जहाँ की मैंने अपने शुरुआती मतलब समय में मैं कुछ समय तक वहाँ पे मैं जुड़ा था, वहाँ पे मैं अभ्यास करा रहा था कुछ स्कूल्स में, बनारस में कुछ स्कूल्स में मैं कराता रहा, एक आध मेडिकल सेंटर पे मैं रहा। तो वो अनुभव मेरे साथ है, मेरे पास वो अनुभव है कैसे लोग ठीक होकर के चले जाते थे, बाद में कुछ लोग वापस आते। तो उसमें मैंने वही देखा कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसके कारण फिर से उन्होंने शुरू किया, लेकिन ज्यादातर लोगों का उनके संगति के कारण कि पुराने लोगों के साथ फिर से उठना बैठना हुआ तो वो फिर उसके कहने पे या फिर मन, चूंकि मन का मेन मैंने कहना मेरा देखा हुआ है कि मन स्ट्रांग होगा तो चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग उसने ऐसे भी बाद में आके मेरे से मिले कि नहीं गुरुजी मैं बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बाद से एकदम नहीं हाथ लगाया। हाँ वो लोग कभी कभी मिलते हैं तो कोशिश करता हूँ उनसे दूरी बना के रखूं और अपना ध्यान परिवार पे या कुछ जो अपने काम पे मैं दे रहा हूं, तो मेरा मतलब 50% क्या 60-70% ऐसे भी लोग मुझे मिलते रहे, लेकिन कुछ लोग वापस फिर उसी चक्र में, तो वो संगति का। लेकिन मेरा भी कहना है कि संगति के साथ, संगति को उस छोड़ा जाए साथ में, मतलब सत्संग बनाया जाए, मतलब अब कुछ ना कुछ इसमें अध्यात्म लोगों से मिलना, आप किसी मंदिर से जुड़ जाएं, मंदिर में भजन कीर्तन में आप शामिल हों, और जब आप किसी भी एक चीज से कनेक्ट होंगे, किसी भी एक अच्छी वातावरण में या माहौल में होंगे, ऑटोमेटिकली आपके मन में आपके विचारों में शांति आएगी, आपका मन स्ट्रांग होगा और कुछ ब्लेसिंग परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है, उसका लाभ अलग से मिलता है। तो ये जरूरी है कि संगति प्लस मन में विचारों में थॉट, तो जहां भी नशा उन्मूलन केंद्र है वहां पे जनरली कराया तो जाता ही, लेकिन फोकस उस समय किया जाए कि नहीं हमें इसको बिल्कुल मतलब संकल्पित कि अगला जीवन हमें इस नशा से मुक्त रहना, तब वो पॉसिबल।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर के झा जी। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को, दर्शकों को इस बात पे थोड़ा सा जोर देना है कि अगर आपके घर में आप नहीं करते हैं, आपके परिवार में कोई है जो इस तरह का नशा करता है, तो उन्हें नशा उन्मूलन केंद्र के बाद नशा मुक्ति केंद्र से जोड़ना जरूर चाहिए। जोड़ने के बाद फिर उन्हें अपने ही संग में रखना जरूरी है। जैसे ही संघ हम दूसरा कर देते हैं या उनको छोड़ देते हैं तो वहां पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर जा ने बताया कि आपको अध्यात्म से भी जुड़ जाना चाहिए, जिससे जो है हमारा मन को शक्ति मिलेगा, और मन शक्तिशाली है तो फिर आप नशे के अधीन नहीं होंगे। यहाँ पर एक सवाल आया, सिगरेट पीना हानिकारक है ये मालूम होते हुए भी लोग क्यों पीते हैं, क्या कारण?
0: कारण वही तनाव है, टेंशन, कोई किसी प्रकार का, जब दिमाग में टेंशन आता है तो नशा तो छोड़िए तंबाकू या सिगरेट, लेकिन कुछ लोगों को आप देखिएगा जो टेंशन में आते हैं नाखून खाते रहते हैं, या कुछ लोग हैं पेंसिल ही लेकर के, जनरली लोगों को आप देखिएगा, और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, काफी सीनियर पोजिशन में बैठे हुए लोगों को मैंने देखा है कि पेंसिल या मेरे साथ एक संपर्क में एक बड़ी कंपनी में मैं कंसल्टेंट जाता रहा, वहां पे सीनियर मोस्ट अधिकारी, उनका मतलब उनकी आदत थी कि वो हमेशा ऐसे, तो बोले कि बचपन में थोड़ा सा भी टेंशन होता है तो मैं अपने नाखूनों को उंगलियों को मैं, और वो उंगली खा लेते, मतलब स्किन को काट के खाने लगे, और मुश्किल से 2 साल के बाद, मतलब मेरे ख्याल से 53-54 के एज में उनका किडनी का या कुछ इशू हुआ, नहीं रहे। तो मेरा ये कहना है कि ये टेंशन के कारण, तनाव के कारण इस तरह की चीजें आती हैं, तो उस तनाव के लिए योग से बढ़ के कुछ नहीं है। और प्रभु पे जब आपकी श्रद्धा होगी, आप जिसको मानते हो उस पे जब आपका भरोसा होगा, तो ऑटोमेटिकली मन शांत होने लगेगा। टेंशन लाइफ में, मनुष्य जीवन तनाव से भरा हुआ ही है, लेकिन उस तनाव को बैलेंस करने के लिए अगर आप किसी भी एक उसका सहारा लेंगे, प्रभु का सहारा लिया जाए, मेडिटेशन योग ध्यान का सहारा लिया जाए, तो उस चीज से आपका बचाव रहेगा।
1: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि तनाव के कारण लोग सिगरेट पीते हैं, ये आपने बताया, और किसी भी तरह का तनाव आता है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाना या पीना शुरू कर देता है, ये भी अब देखा गया है। और जैसे उंगलियों के नाखून खाना या फिर स्किन को ये करना,
0: अभी मैं एक अभियान पे और काम कर रहा हूँ, जो बच्चे छोटी उम्र मतलब जो 2 महीने मतलब 6 महीने तक के बच्चों को मैं कहता हूँ छोड़ दिया जाए, 6 महीने से ऊपर के बच्चे जो नाखून या मुंग मतलब छोटे बच्चों का आप देखिएगा जनरली के मुंह में अंगूठा लेके या कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि पैर के अंगूठे को लेके चूसते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ कभी ऐसा कहीं देखा हो आपने? मुझे तो याद है, मैं देखते रहता हूँ पैर के नाखून पैर का अंगूठा हाथ से पकड़ के वो चूसते रहते हैं। तो ये 6 महीने तक को उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन 6 महीने के बाद के बच्चे जो नाखून या उंगली मुंह में लेके चूसते हैं, मेरा सिंपल कहना है सभी अभिभावकों से सभी गार्जियन से मेरा आग्रह है जो भी ये वीडियो देखें वो लोग इस चीज को जरूर प्रमोट करें कि नीम के पत्ते, नीम का पत्ता या आंवला, आंवले को कस करके या नीम के पत्ते को पूरा घस पेस्ट बना के उसका रस निकाल के उस बच्चा जो जो उंगली चूस रहा है या जो अंगूठा चूस रहा है उस पर लगा दिया जाए। और आंवला भी कर सकते हैं, आंवले से भी होगा, नींबू से भी हो सकता है, नींबू का रस हो जाए, आंवले का रस हो जाए, नीम का पत्ता, तो उसको लगेगा कसेला, वो अपने आप छोड़ देगा। तो 2-4 दिन 2-4 बार 10 बार के बाद वो बच्चा आगे जीवन में कभी मुंह में उंगली नहीं डालेगा, कुछ खाने की आदत उसकी नहीं होगी। बचपन की ये आदत नाखून खाना ये मैंने देखा। आप स्कूल में, मैं चूंकि कैंप्स करते रहता हूँ, आपके साथ भी कुछ एक स्कूल्स में गया हूँ जहां तक आप भी याद करें कि कुछ बच्चे जनरली नाखून या उंगली चबाते रहते हैं। बड़े बड़े गार्जियंस को मैं कई बार जब बड़े लोगों के साथ होता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, उनको भी देखता हूँ कुछ लोगों की का नाखून या फिंगर मुंह में ही होता है। ये बहुत अनहाइजीन है, बहुत खतरनाक है, आपका इम्यूनिटी को लो करने में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मेरा ये अभियान भी मतलब मैं बीमारी मुक्त भारत अभियान के साथ ये 2-3 पॉइंट्स पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ कि लोग छोटे बच्चों को उस तरीके से टैकल करें, नींबू का रस लगा दें, नीम का पत्ते का रस लगा दें, आंवले का रस निकाल के लगा दें, तो वो आदत ही छूट जाएगी। और जब ये चीजें हुई और बचपन से ही मेरा आग्रह है कि बचपन से ही बच्चों को आप योग के अभ्यास से जोड़ें, खुद भी मेडिटेशन करें, कहीं मंदिरों में जाके थोड़ा सा। जनरली मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो कहीं भी जाकर के अध्यात्म से जुड़ते हैं वो नशा के ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है। 1-2% की बात होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है शायद वो नहीं के बराबर। मोर देन 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो इन चीजों से दूर रहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाते हैं, उनमें ये प्रवृत्ति बनती है। तो इसके लिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं किसी जगह से, केंद्र से संपर्क में रहें, किसी मंदिर से आप जुड़ें, आप जाकर के वहां पे सप्ताह में 1-2 बार जाकर के आप समय दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोई मंत्र का जाप करें, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली और उन मंत्रों में वो शक्ति है उस जगह पे, वो ऊर्जा होती है जो कि आपको सपोर्ट करती है, उसका लाभ मिलता है अपने पूरे जीवन में, उसका लाभ मिलता है, समस्याएं थोड़ी कम महसूस होती है, मन स्ट्रांग है, तो समय अच्छा भी आता है खराब भी आता है। और ये मैं इसको एक रूप से जो मैं समझता हूँ, जीवन परीक्षा की घड़ी है, लाइफ टाइम हम एग्जामिनेशन में ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता है तो भी और खराब होता है, दोनों परीक्षा है।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: हुआ पता चला कि बहुत आपके पास सुख है, बहुत ज्यादा फंड है, बहुत पैसा है, आप कहीं ना कहीं किसी नेगेटिव चीजों में आपका दिमाग जाएगा, ये कर लो ये कर लो, और समस्या बढ़ती है तो वो भी परीक्षा है। तो कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, ये योग का अभ्यास या ये प्रभु में ये भक्ति से ये चीजें संभव है, तो वो जब ये चीज लोगों को जानकारी मिलेगी तभी वो अपने आप को उन चीजों से बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा आपने सोचा है, और लोगों के लिए आप जो है हमेशा कुछ अच्छी बातें सोच कर ही उनके लिए काम करते हैं, और हेल्थ को लेकर आप काफी अवेयर हैं, और अध्यात्म से कैसे जुड़े हैं थोड़ा सा आपका अध्यात्म के बारे में भी बताइए, और अध्यात्म से कैसे जुड़े लोग इसके बारे में भी बताइए। जी
0: मैं अपना उदाहरण देता हूँ, बचपन से मैं पिताजी का माताजी का कह सकते हैं कि वो देख करके, या घर परिवार में हम लोग यहाँ थे, वो मंदिर है उस जगह पे, तो बचपन से मेरा इन चीजों पे ध्यान विशेष रहा। बचपन से ही कुछ मंत्र हैं दुर्गा सप्तशती के और महामृत्युंजय मंत्र, वो बचपन से ही मुझे याद हो गए थे। दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, मैं बचपन में ही ये मंत्र याद, वो पढ़ते पढ़ते याद हो गया था। 32 दुर्गा सती सप्तशती में 32 मंत्रों का एक है जो कहते हैं कि रक्षा करता है, टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आप कहेंगे तो मैं बोल के सुना सकता हूँ।
1: जी जी सुनाइए।
0: हाँ, अथ दुर्गा द्वात्रसन माला। तो दुर्गा दुर्गा समनी दुर्गा पद निवारणी दुर्ग मच्छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशनी दुर्ग तो धारणी दुर्ग निहंत्रणी दुर्गमा पहा दुर्ग ज्ञानदा दुर्ग दैत लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिनी दुर्गमा सुरसहंतरी दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्ग दारणी नाम निम्लाम स्तव दुर्गा मन मानव पठित सर्वमुक्तो भविष्यति न संशय। मतलब कि हे माँ दुर्गा, आप सारे संकटों से सारे भयों से हमें बचाइए। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक शायद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल सही जाप किया है मैंने। लेकिन एक दूसरा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये एक निवारण मंत्र है, ये बचपन से ही मैं जाप करता था और मुझे लगता है जो भी मैं कुछ अभी कर रहा हूँ ये सब उन परमात्मा का ब्लेसिंग है जिसके बिहाफ ये सब चीजों में मैं आगे बढ़ा। बचपन में मैंने वो समय भी देखा जब 9th और 8th 9th क्लास में कैसे नशा शुरू होता है, कैसे लोग नशा के प्रति जाते हैं, वो भी चीज देखा। तभी मैं कहता हूँ ये संगत के कारण है। उस संगति से बच्चों को अगर आप बचाएंगे, बच्चों को अध्यात्म से, बच्चों को किसी चीज से कनेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा उन चीजों से बचा रहेगा।
1: जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे मंत्रों से जुड़कर भी आप अध्यात्म शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और कितना टाइम करना चाहिए ये थोड़ा सा बताइए, समय को कैसे हम लोग दें?
0: प्राणायाम अभ्यास के लिए तो मैं कहता हूँ कि 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम भी अगर आप सुबह शाम दो बार देने लग जाएंगे तो धीरे धीरे अपने आप में आपका आत्मबल बढ़ने लग जाएगा। बेसिकली होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, डिफरेंट चक्राज हैं, 7 चक्र हैं शरीर में, उनकी हीलिंग होती है। तो वो एक दो दिन में, एक आध दो साल में नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका प्राणायाम का अभ्यास होगा। नॉर्मल अभी क्या है कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम जो है हम उसका 30% से ज्यादा इनहेल नहीं करते। ऑन एवरेज देखा गया है, ऑन एवरेज हमारा जो ब्रीदिंग होता है 16 काउंटिंग है एक मिनट में। लेकिन मैंने जो वॉच किया है, मैं लोगों से जब कनेक्ट करता हूं तो एक मिनट में 20 एंड 22 एंड 25 भी लोगों का मैंने एक मिनट में सांस की गिनती देखी है। ये कोशिश होनी चाहिए 10 से नीचे। आप जैसे ही अभ्यास आप करने लग जाएंगे, श्वास की गहराई ज्यादा होगी, काउंटिंग कम होने लगी। और श्वास की काउंटिंग कम हुई इसका मतलब श्वास गहरा आया, टॉक्सिन्स जो है भीतर ज्यादा निकलेगा, तो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटॉक्स होगा, सिस्टम ऑक्सीजन का इनटेक आपके सिस्टम को एनहांस करेगा। लेकिन श्वास और मन का आपस में कोरिलेशन है जो मैंने शुरू में बताया। तो जब आपका श्वास गहरा होगा तो मन अपने आप शांत होने लग जाएगा, मन मजबूत होने लग जाएगा, मन आपका स्ट्रांग होगा, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों से आप बचाव हो जाएगा, आपकी चीजें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो 10 से 15 मिनट का टाइम आप इसमें तीन चीजें हैं, मतलब सिंपल सरल श्वसन किया जाए, आराम से अपने श्वास को पेट तक आता हुआ श्वास को फील करें, पेट पूरा फूलेगा। लोग नॉर्मली श्वास लेके चेस्ट को फुलाते हैं, श्वास आप नेचुरल आप देखिए, समझिए छोटे बच्चे को आप देखिए सोते हुए, वो श्वास लेता है पेट फूलता है, श्वास निकालता है पेट पचकता है। मोर देन 50-70% लोगों का ऐसा है, लेकिन 20-30% लोगों का ब्लड बदल जाता है, मतलब श्वास लेते हैं छाती फूलती है, चेस्ट फूलता है, तो वो स्टमक डायफ्राम तक ब्रीदिंग जानी चाहिए नीचे लो एब्डोमेन तक, तो वहां का सिस्टम फिर एडवांस कह सकते हैं कि मजबूत होता है। ऑक्सीजन इज अ प्योर एनर्जी, ऑक्सीजन पेट तक आकर के पूरे सिस्टम को और जो टॉक्सिन से पूरा सिस्टम जो से बाहर निकलेगा, तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम की ताकत, सिस्टम की क्षमता आपकी बढ़ेगी।
1: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम और थोड़ा मंत्रों का उच्चार करने से हमारा जो है हेल्थ अच्छा रह सकता है। और मन को कैसे हम लोग शांत रखें, मन में ज्यादा जो है हलचल ना हो, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे?
0: इसमें मेन प्राणायाम, कोई मंत्र का जाप, लेकिन साथ में अभी गर्मियां जैसे हैं तो शीतली प्राणायाम का अभ्यास जब आप करते हैं।
1: जी
0: गहरा श्वास मुंह से खींचना है, पेट तक आपको कूलिंग फील होगा, पेट तक आपको महसूस होगा ठंडक। ये मन को शांत करने में भी हेल्प करता है, ये पेट की गर्मी आपकी कम करेगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से आपको मदद मिलेगी, बीपी के लिए हेल्प करेगा।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि होम्योपैथी का आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा मेडिसिन है जिसको लेकर लोग

0: अच्छे से मुक्त हो सकते हैं?
1: हैं, कुछ दवाइयां हैं जो कि हेल्प करती हैं, बट वो मैं चाहूंगा कि ऐसे बताने से अच्छा है कि लोग आकर के मिलें तो वो, या किसी हमें अच्छे होम्योपैथी कंसल्टेंट से जाकर के मिल के दवाई लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने एरिया में कहीं ना कहीं अच्छे होम्योपैथी कंसल्टेंट हैं, वहाँ जाके आप दवाई लें। लेकिन एक या दो सिंपल मेडिसिन मैं बता देता हूँ, वो अगर लेंगे तो आपका पूरा मन शांत होना, स्ट्रेस रिलीविंग करता है। एक नक्स वोमिका 200 पोटेंसियम मेडिसिन है, वो रात के फोकस में अगर ले लिया जाए तो आपका स्ट्रेस रिलीविंग होगा और एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है, मदद करता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन नशा उन्मूलन के लिए मैं चाहूंगा कि लोग मेरे से आकर के यहाँ मिल सकते हैं। मेरा क्लिनिक है रमेश नगर में, E353 नियर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास का एरिया है। अदरवाइज अपने जो जहाँ हैं अपने एरिया में अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं और वहां जाकर के आप बात करके मेडिसिन लेंगे तो वो ज्यादा अनुकूल रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन साथ में जो मैं ये कहता हूँ, चूंकि एजिंग पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ये सिटिंग भुजंगासन जो मैं कहता हूँ जादू है, ये अगर हैबिट में रहा तो पूरा जीवन आजीवन आप स्वस्थ रह सकते हैं। आराम से बहुत ही गहरा श्वास लंबा भरते हुए, बॉडी का आर्च होना चाहिए, बैकबोन का ऐसे। और नॉर्मल में हम लोग, मतलब एजिंग में कहता हूँ, एजिंग पे ही मैंने रिसर्च किया है, एजिंग को ही मैं कहता हूं कि अगर आप समझ लेंगे कैसे बढ़ रहा है बीमारी मुक्त अभियान में, मैं सिंपल दो चीज कहता हूं, पीठ का पोस्चर को ठीक रखिए और आहार को ठीक करने का प्रयास कीजिए, आप अगला जो भी जीवन है स्वस्थ बीतेगा। मन को शांत रखेंगे, बाहर की चीजें खाने पीने का अवॉइड करेंगे, मन आपका शांत होगा, क्योंकि बाहर के फूड के कारण, बाहर से जो रसोई बन के आती है उस, वो जिस भाव से बनाया जाता है वो भाव उसमें आता है, जिसके कारण मन आपका और अशांत होता है, बीमारियां और बढ़ती हैं, तो उसको त्यागा जाए। मन शांत रखने के लिए योग प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन इस अभ्यास को भी जब आप करते हैं धीरे धीरे, सिटिंग भुजंगासन फॉर एंटी एजिंग मैंने इसका नाम रखा है, या इसको स्टैंडिंग भुजंगासन भी कर सकते हैं, ये थायराइड लंग्स एंड हार्ट एंड बैकबोन, ये रिवर्स एजिंग की बात मैं कहता हूँ, 10 से 20 से 30 साल रिवर्स की बात मैं कहता हूँ। तो पीठ की जकड़न अगर आपने बढ़ने से रोक लिया और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर लेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम की ताकत इंक्रीज कर लेंगे, नर्व्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आप यंग रहेंगे और किसी भी उम्र में है आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वो जब आपका मन में भीतर से संकल्प होगा तब आप उसको अचीव कर पाएंगे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, एजिंग को लेकर आप काम कर रहे हैं और सिटिंग भुजंग आसन ये आपका अपना जो है क्रिएटिव आसन है जिसको आप प्रयोग करते हैं और लोगों को बताते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें और खुशी हुई। और होम्योपैथी कितना दिन लेना चाहिए या कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है उसमें, तो थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल बताइए ताकि
1: बेसिकली
0: वो
1: वो बिना अपने मन से, तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा अपने मन से बहुत लोग लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। एलोपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी या आयुर्वेद, उसकी आपकी प्रॉपर जो उसके एक्सपर्ट हैं उससे बात करके लेने पे आपको लाभ अधिक मिल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सालों तक कोई दवा लेते रहते हैं, बाद में उसका असर ही खत्म हो जाता है, फिर समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो अपने मन से कोई दवा शुरू नहीं करें, अपने मन से कोई दवा बंद भी नहीं करें। हाँ, होम्योपैथी की कोई दवा है उसका जैसे कि 1 महीने 2 महीने का उसका कोर्स है, किया उसके बाद फिर उसमें पोटेंसी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है या उसको दवा को चेंज करने का,
0: काम
1: उसका
0: करने, चेंज करने।
1: काम करने का, हाँ बेसिकली उसमें नहीं, उसमें पोटेंसी शुरू में बढ़ाने पड़ता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें वो व्यवस्थित होती है फिर ठीक हो जाती। लेकिन एलोपैथी का है कि वो दवाई फिर रेगुलर चलते हैं, होम्योपैथी कुछ दिन चलने का चीजें काबू में आके आप दवाई बंद कर सकते हैं, आयुर्वेद में भी यही है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी रूटीन को ठीक नहीं करेंगे, आपके फूड हैबिट, अपने मन को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे तो दवाइयां आपको लगातार खानी पड़ेगी, समस्याएं ठीक नहीं होंगी। हाँ, ग्रेजुअली
0: जी जी
1: थोड़ा थोड़ा जो फास्ट बढ़ रहा थोड़ा स्लो होगा, लेकिन मैं रिवर्स की बात कहता हूँ तो मेरी जो टेक्निक्स हैं उसको समझ लेंगे लोग, उसको फॉलो करेंगे तो मैं रिवर्सल एजिंग की बात कहता हूँ, बीमारी मुक्त भारत का अभियान जो मेरा ये संकल्प है इस पे लोग आगे बढ़ सकते हैं और इसमें सभी लोग मेरे इस संकल्प में जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं।
0: क्या बात, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा कि आप पिछले काफी लंबे समय से लोगों को नशा मुक्त भी करा रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट बताइए जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा एक्सट्रीम हो और उन लोगों ने आपकी कंसल्टेंसी में कुछ मेडिसिन और कुछ योग किया तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है और अब वो नशे से मुक्त हैं, ऐसे कुछ एक आध एक्सट्रीम वाला एग्जाम्पल सुनाइए।
1: कई सारे ऐसे लोग जैसे कि गुटखा खाने के और कुछ स्मोक वाले लोग धीरे धीरे करके, एक दिन में ऐसा हुआ नहीं हुआ मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ संपर्क में रहे हैं, उनको मैं मोटिवेट करते रहा, कोई मंत्र का दिया, ये मंत्र आप करेंगे धीरे धीरे, और 2-3 महीने में उनमें जो चेंज आया, कुछ एक ऐसे मित्र रहे मेरे, कुछ लोगों का एक चीज में मैंने और देखा, ये जब आपका समय विपरीत होता है कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके साथ कनेक्ट होती हैं, तो वो फिर अपने कुछ ऐसी चीजों के अपने हैबिट के कारण भी होता है। तो अगर आपकी आदत है कुछ ऐसी चीजें खान पान में जो कि प्रभु पे नहीं चढ़ाया जा सकता है, वो अगर आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव आपका विचार में फिर वो चीजें आएंगी, आपका वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके मुंह से अपशब्द निकलता है, आप बार बार हरेक मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिलते रहते हैं जो हरेक 2-3 सेंटेंस में उनकी कोई ना कोई गाली होती है, कुछ ना कुछ वो अपशब्द बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे नुकसान करता है, वो नेगेटिव एनर्जी कुछ ना कुछ आपके, पहले तो आपके और आपका आभा मंडल जो उस पर आकर के इफेक्ट करता है, फिर वो आपके कहीं ना कहीं अदर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो मेरा मन मतलब मेरा कहना है कि मन को जब स्ट्रांग कर लेंगे ऑटोमेटिकली किसी के प्रति मन में आपके गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो आपका उसके प्रति कोई अपशब्द नहीं निकलेगा। तो जब, और ये तब पॉसिबल है जब कि आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, आप गीता जी का श्रवण, गीता जी का पाठन करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके विचारों में आपके और वो योग ध्यान और ये तमाम चीजों के साथ कनेक्शन के साथ ही संभव, ऐसे किसी एक चीज से नहीं हो सकता।
0: जी जी जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपके संपर्क में आने से उनको थोड़ा टाइम लगता है। आपने कहा कि इसमें पेशेंस की बात होती है और धीरे धीरे पेशेंट में बदलाव आ जाता है, और जैसे बदलाव आ जाता है और उसको एक नई चीज मिल जाती, जीवन जीने का लक्ष्य मिल जाता है, तो व्यक्ति फिर से वापस उस जगह पे नहीं जाता, नशा से मुक्त हमेशा के लिए हो जाता है। तो के जा सर, मैं चाहूँगा कि कुछ आपके अनुभव में आज जैसे कि हम लोग अभियान वगैरह करते हैं तो इसका कितना असर होता है, कितने लोग इसमें जुड़ते हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिलता है?
1: है तो कठिन काम, क्योंकि यही अगर किसी दूसरी चीज की पार्टी हो जाए तो वहां पे आप देखिए ऐसे चीजें जहां दुकानें हैं उस तरह की चीजों का, वहां पे भीड़ ऐसा लगता है सड़क पूरा ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे अध्यात्म की चर्चा होती है, वहां पे मुश्किल से आपको 10-20 लोग 50-100 लोग दिखेंगे, और जहां पे अगर पार्टी हो कुछ ऐसी चीजों का तो वहां देखिए हजारों लोग ऐसे, वहां लगता है कि तो क्या। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसमें सोशल मीडिया का भी काफी योगदान है, आप भी इसमें काफी कुछ हेल्प करते ही हैं, आपके साथ भी काफी कई सारे कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ, तो
0: जी, जी।
1: मुझे अच्छा भी लगा आपके साथ कई स्कूल्स में कई जगह पे आपके साथ प्रोग्राम जो किया है मैंने, तो आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे, इसी कारण मैं कहूँ कि लोग धीरे धीरे इस अभियान को जब जोड़ेंगे और वो अपना नहीं सोचे, अगली पीढ़ी का सोचे, अपना भी अगर आपका है तो धीरे धीरे, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाह लेंगे तो वो हो जाएगा, जहां चाह वहां राह, तो आपके भीतर से चाहने से कि जैसे बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं कि ये सर मैं स्मोक नहीं बंद कर पा रहा हूं, तो उसका कुछ सिंपल रेमेडीज मैं देता हूं उनको, और लेकिन मैं वही कहता हूं कि जब आप मेडिटेशन ध्यान करेंगे तो धीरे, और चूंकि बहुत ऐसे लोग मुझे बताते हैं कि हाँ जब मैंने ये आप के बात करने से फिर जब ये अभ्यास किया तो मेरा ये चीज आदत धीरे धीरे अब बंद हो गया और एकदम अब मन भी नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन ये संगत गड़बड़ हुआ तो फिर से वो चांस बनता है, तो वही संगति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को जरूर कुछ न कुछ अध्यात्म धर्म के मार्ग से जोड़ें, प्लस योग एंड प्राणायाम के ध्यान से उनको कनेक्ट करें, उससे उनको पक्का इसमें लाभ दिखेगा।
0: जी जी जी, चलिए डॉक्टर के जा सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक और श्रोता बंधु जो आप एपिसोड को देखेंगे और देख रहे होंगे तो उन सभी के लिए तो एक मैसेज मिल ही गया कि कैसे हम जो है नशे से मुक्त रह सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, एक तो आप जैसे सवाल बड़ा अच्छा आया था कि सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है हानिकारक है फिर भी लोग पीते हैं, तो उसका कारण यही है कि आपके पास बहुत ज्यादा तनाव है, इसलिए आपको मैसेज समझ में नहीं आता, जो पढ़ रहे हैं जिस पे लिखा है उस चीज को आप समझ ही नहीं पाते क्योंकि आपके पास तनाव इतना ज्यादा है, फिर आप उसका उपयोग करते हैं और वो आपके मन और मस्तिष्क और शरीर में काम करना शुरू कर देता है और आपको थोड़ी देर के लिए अपने तनाव से दूर फील कराता है, तो आपको लगता है कि इससे मैं नशे से मुक्त हो, मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है या फील गुड हो रहा है, इसके वजह से आपने पिया और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है और फिर वो आदत आपके शरीर और चीज़ों को नुकसान कर देता है, जिससे आपको समाज से आप थोड़ा सा अट भी जाते हैं। तो वो चीज़ें हैबिचुअल नहीं हो, ये चीज़ें एक बार किया और छोड़ दिया अनुभव करके तो अलग बात है, लेकिन आप उसके अधीन हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। अब अधीनता को मुक्ति दिलाने के लिए फिर आपको बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है। एक सबसे पहला कंसल्टेशन है कि आप कंसल्ट करो। कंसल्टेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप नशा करते हो तो कोई ना कोई पीछे का दुख वाला कारण छुटा होगा, तो वो कारण को आपको समझाने या उसको समझने में आपको हेल्प करेगा जो ट्रेनर है, कोच है, जो डॉक्टर है। उसके बाद आपने उसको परख लिया, समझ लिया, तो फिर वो काउंसलर आपको समझा देगा कि भाई जीवन इस तरह से जिया जा सकता है और भी अल्टरनेटिव्स हैं, अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं, तो आपको वो अल्टरनेटिव्स दे देगा और आपको हेल्थ बेनिफिट बता देगा। तो फिर आपका मन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ जाएगा तो आप जीवन की ओर जाएंगे। इसलिए हमने आज का जो थीम रखा था वो ये है कि दुवे से दूर रहें, जीवन के नज़दीक। जीवन को ठीक से हमने समझा नहीं है इसलिए धुएं के पास चले जाते हैं, खुद जल जाते हैं, जीवन को पूरी तरह से खाक कर देते हैं। तो अब हमें धुएं से दूर जीवन के बिल्कुल नज़दीक जाना है, जीवन को सही ढंग से समझना है। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे गुरुज हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी लोग बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप बिल्कुल उनके साथ जाए, उनको उनसे मिलें और उनसे अपने जीवन की नई राह को चुने। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ मैं फिर से डॉक्टर के झा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मैं चाहूंगा कि आपके साथ और भी लोग जुड़े और आप इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहें, लोगों को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने के तरीके बताते रहें। ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी नशे से मुक्त रहें और अपने भाई बहनों को भी नशे से मुक्त रहने के लिए उन्हें हेल्प कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए। कहीं किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकें नशे से मुक्त रहने के लिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ पूरा भारत हमारा नशा मुक्त रहे, हेल्दी भारत रहे, वेल्दी भारत रहे, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: कारवां।
1: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम कार्यक्रम एक नारी शक्ति पर आधारित है। हर एक महिलाओं में कोई न कोई विशेषताएं होती है, लेकिन वो विशेषताएं बाहर तक नहीं आ पाती है। लेकिन रेडियो मधुबन का मंच ऐसा है जिसके द्वारा आप अपनी आवाज, आप अपने विचार, आप अपनी बात को सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति आज हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में विराजमान है, जिनका नाम है नीलम शर्मा। आप आबू तलेटी में रहते हैं। आपने पढ़ाई नहीं की है, आपकी उम्र 50 वर्ष की है। शिक्षा का अभाव है जो आज भी आपको खलता है। बाकी आप कढ़ाई बुनाई और मधुर व्यवहार आपका सभी के साथ है, और घर बार तो सभी संभालते हैं। और एक नारी शक्ति घर परिवार को कितनी बखूबी संभालती वो आप सभी जानते ही है। तो आइए मिलवाते हैं नीलम जी से। नमस्कार नीलम जी।
2: नमस्ते दीदी,
1: बहुत बहुत स्वागत आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
2: थैंक यू दीदी।
1: तो नीलम जी, चलिए हम आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़े समय के लिए। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता?
2: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है।
1: सोनीपत हरियाणा?
2: जी हरियाणा।
1: अच्छा जी।
2: उधर मेरा जन्म हुआ था और एक गरीब परिवार से जन्म हुआ था। हम 7 भाई बहन है
1: जी।
2: 3 भाई है, 4 बहने।
1: अच्छा, आपका नंबर कौन सा था?
2: मैं सबसे लास्ट हूँ।
1: क्या बात है, आप तो सबसे छोटे, तो आपके ऊपर इतना लोड नहीं रहा होगा?
2: नहीं, लोड तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे मास्टर मारते पीटते बहुत थे बच्चों को।
1: अच्छा।
2: तो मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन भाइयों ने मेरे को भेजा नहीं। कह रहे नहीं नहीं, बहुत मारते हैं, तू मार नहीं सहन कर पाएगी। तो इस कारण से मेरे को स्कूल में भेजा ही नहीं।
1: अच्छा, तो आप कोई भी बहन ने पढ़ाई नहीं की?
2: कोई बहन ने पढ़ाई नहीं।
1: भाइयों ने की?
2: हाँ, भाइयों ने किसी ने 8, किसी ने 10, किसी आगे नहीं।
1: अच्छा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपके पढ़ने की इच्छा थी?
2: जी।
1: तो आप कहते हैं ना कि भाई मैं गलती करूंगी तो मुझे मारेंगे, बिना गलती मुझे कैसे मारेंगे, मुझे पढ़ने दो।
2: लेकिन कोशिश तो करी थी, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिखवाया वहाँ पे।
1: अच्छा, पढ़ने की बड़ी इच्छा थी लेकिन नाम नहीं लिखाया और आप पढ़ाई से वंचित रहे।
2: जी।
1: तो आपकी सखी सहेलियां भी रही होगी, वो भी सभी अनपढ़ी थी या उन्होंने पढ़ाई की?
2: बस एक ही थी, वो भी कम ही पढ़ी हुई थी, बाकी खेती थी हमारी, तो खेत वगैरह का ही काम था।
1: अच्छा, खेती बाड़ी संभालते थे
2: जी।
1: और आपस में आप सभी भाई बहन कैसे रहते थे?
2: मैं सबसे छोटी थी तो बस एक भाई के साथ में मैं अच्छे से बोल लेती थी, बाकी के साथ में तो चुपी रहती थी।
1: अच्छा, उम्र का ज्यादा गैप था क्या?
2: जो बड़ी बहनें वे सब जब मैं 2 साल की थी इनके साथ हो चुकी थी।
1: अच्छा जी जी। तो एक भाई के साथ आपकी अच्छी बनती थी जो आपसे बड़े थे?
2: हाँ।
1: उनको आप दिल खोल करके बात करते थे?
2: हाँ, उनसे अच्छे से बात।
1: लड़ाई झगड़ा भी होता था कभी? चिटचैट
2: होते थी,
1: होते थे। और बाकी तो भाई बड़े हैं, बहनें बड़ी हैं, तो शादी हुई होगी तो आपके सामने भाभियां भी रही होगी, आपके जीजा जी भी आए होंगे, तो भाभियों के साथ किस तरह का तालमेल था?
2: बस जो छोटे वाले हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छा था, क्योंकि वो मेरे साथ सीखे थे, बाकी बड़ों के साथ में तो ऐसे ही जैसे माँ बाप के सामने रहते हैं।
1: जी जी, उस समय की बात कर रहे हैं जब मर्यादाएं हुआ करती थी, भाभियों को भी माँ के समान देखा जाता था।
2: जी।
1: तो ज्यादा ऐसे हंसी मजाक वगैरह नहीं होती थी?
2: नहीं।
1: फिर आपको कोई चीज चाहिए तो आप किसको कहते थे, अपने माताजी को या भाइयों को?
2: मम्मी को बोलती थी।
1: जी जी, चलिए अच्छी बात है। और खेती बाड़ी में आप क्या काम करते थे?
2: खेती बाड़ी में हर प्रकार की खेती होती थी, जैसे भुट्टे वाला मक्का होता और सगरगंदी वगैरह, गेहूं भी होते, धान भी होते, सभी खेती होती थी, सब्जी भी सभी होती है।
1: तो आप क्या करते थे, बोतने का काम करते थे या पानी या केयर करने का, पंछी पक्षी कहीं आपके दाने नहीं खा जाए ऐसे?
2: नहीं, जैसे भाई वगैरह जाते थे तो उनका खाना देने के लिए चले जाते थे, और थोड़ा अपने खेत को चारों तरफ से देखते थे, बाकी तो काम तो कोई और ही करते थे।
1: भाई लोग खेत पर जाते तो आप खाना लेके जाते, बना के आपके भाभियां देती, तो आप किचन में मदद करते थे?
2: जी।
1: अपनी भाभियों की मदद करते थे?
2: जी।
1: अच्छा, और आप सबसे छोटे हैं तो प्यार तो बहुत आपको मिला होगा सभी का?
2: हाँ
1: जी,
2: सभी का बहुत प्यार मिला है।
1: खेती बाड़ी में जाना आपको अच्छा लगता था, आप टिफिन लेके जाते थे, फिर वहाँ खेतों को निहारते थे, और आपको क्या अच्छा लगता है?
2: बस ऐसे जैसे सभी खेतों में होते थे, उनके साथ में ऐसे ही चिट चैट करना, थोड़ा पेड़ पौधे पे चढ़ जाना।
1: अच्छा।
2: ऐसे खेल कूद में
1: पेड़ पौधों पर क्या तोड़ने के लिए, कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए?
2: हाँ, जैसे कोई अमरूद तोड़ने के लिए, कभी जामुन तोड़ने के लिए, ऐसे कई बार पेड़ से गिर भी गई थी।
1: अच्छा, वो तो चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी है, लेकिन बचपना होता है ना, तो गिरने का भी डर नहीं रहता है कि गिरे तो फिर से संभलेंगे और फिर से चढ़ेंगे।
2: वही वही।
1: तो कभी कोई डांटते नहीं थे कि भाई गिर गई हो, लगी है, अब नहीं चढ़ना है?
2: नहीं, डांटते थे, लेकिन बचपना था, फिर कर देते थे वही।
1: जी जी जी, वो मजा ही अलग है। भले सब नीचे अपने को मिल जाता है, कि किसी को बोलते तो कोई आपको हाथ में लाके दे देते, हाँ। लेकिन एक चढ़ करके तोड़ के खाने का मजा ही अलग था।
2: वो अलग।
1: और आप क्या क्या काम करते हैं?
2: जैसे सिलाई वगैरह करते थे।
1: अच्छा, सिलाई आती थी?
2: हाँ,
1: सिलाई कहाँ से सीखी आपने?
2: सिलाई मैंने घर से ही सीखी थी।

0: अच्छा, तो कभी जैसे कोई घर पर नहीं है, कुछ बनाने का आपको बोल दिया
1: तो बनाते थे?
0: अच्छा, ऐसे ज्ञान था?
1: हाँ, ऐसे तो बना लेते, रोटी सब्जी सब कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी।
0: जी जी। और आप बता रहे कि आपके सखी एक ही है?
1: हाँ, वो एक ही है।
0: तो आपके मोहल्ले में एक ही?
1: नहीं, और भी थी, लेकिन ज्यादा कर उन्हीं के साथ मैं ज्यादा रहती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, और उससे पहले एक और भी थी जिसको थोड़ा सांप ने काट लिया था और उनकी डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो क्या सांप भी निकलते थे क्या आप जा रहते थे वहाँ?
1: पता नहीं, वो जैसे अपने ही घर में कोई पैसे उसने छुपा रखे थे वहाँ पे, तो उनकी मम्मी ने बोला कि कुछ सामान लेके आना है, तो वो वहाँ से पैसे निकालने लगी, कह लगी पता नहीं मेरे हाथ में कुछ लग गया, तो एक दो घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई।
0: अच्छा, तो फिर कैसे पता चला? वो सांप पकड़ में आया?
1: नहीं, सांप पकड़ में नहीं आया, बस फिर जैसे वो नीली हो गई, जहर चढ़ गया, तो यही लगा कि वहां से पैसे निकाली थी शायद, फिर वहीं पे इसको कुछ
0: काट दिया। ओहो, पता भी नहीं चला और सांप भी पकड़ में नहीं आया। कितने बड़ी होगी और उसकी डेथ हुई इस तरह?
1: नहीं, उसकी डेथ हुई जब वो होगी 16-17 साल तक की।
0: अच्छी बड़ी होकर गई।
1: काफी बड़ी थी।
0: आपको तो उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि जैसे मेरा कोई नहीं लगता है ना?
1: बिल्कुल।
0: सखियों के साथ जितना हम खुल करके बात कर सकते हैं, उतना किसी के सामने नहीं कर सकते।
1: किसी के सामने नहीं कर सकते।
0: जी
1: बिल्कुल।
0: थोड़े हंसी मजाक भी कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: हर प्रकार से हम जैसे चाहे सखियों के साथ रह सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप तीन सखियां थी? जी। फिर आप दो ही रह गए?
1: फिर हम दो।
0: तो खेती बाड़ी में आप दोनों साथ में जाते या फिर आप ही जाते?
1: नहीं, साथ साथ में भी चले जाते थे हम। कभी उन्होंने भी जाना होता था जब कह देते ठीक है चलो आज दोनों चलते हैं।
0: जी।
1: तो दोनों चले जाते थे। फिर ऐसे थोड़ा जैसे पापा के भाई थे, चाचा हमारे।
0: जी।
1: तो उनके साथ में ज्यादा हमारी टकराव ज्यादा रहते थे।
0: अच्छा, क्यों, कारण?
1: बस कुछ ऐसा होता था, जैसे मैं तो जब जन्म लिया था, मैंने एक दो साल की होंगी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: अच्छा, तो आपने तो पिताजी को देखा ही नहीं?
1: नहीं, मेरे कोई शक्ल भी याद नहीं है मेरे पापा की।
0: जी।
1: तो उसके बाद में फिर जैसे चाचा अम्मा को दबा के रखना चाहते थे।
0: जी।
1: एक बार चाचा ने काफी कुछ हमारे साथ में मारपीट की, भाभी का हाथ तोड़ दिया था।
0: भाभी के ऊपर भी हाथ उठा दिया?
1: हाँ, भैया का सिर फोड़ दिया था और हमारी भैंसों को जहर वगैरह भी दे दिया था।
0: रे। तो भैंसे भी मर गई?
1: सब मर गई थी।
0: फिर आपने पुलिस केस नहीं किया?
1: सब कुछ हुआ था, लेकिन मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल छोटी थी।
0: जी।
1: तो सब कुछ किया था, मेरी मम्मी के भी अंगूठे भी खा लिए थे।
0: अच्छा।
1: उनकी लड़की। हाँ, काफी कुछ हुआ था।
0: चलिए नीलम जी, और भी आपके अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चाहे गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं। नीलम जी के अनुभव और भी बाकी है जो हम बाद में सुनेंगे, पहले सुनेंगे गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: best writer award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
5: नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, नारी केवल रिश्तों की डोर नहीं, आधुनिक युग की मजबूत हकदार है। वो चलती है स्नेह भी लेकर, वो चलती है स्नेह भी लेकर, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है, और हर कदम पर प्रखर प्रहार है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी के काफी अनुभव हमने सुने हैं, और आइए इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आप साल डेढ़ साल के थे और आपके पिताजी का देहांत हो गया
6: जी।
5: फिर चाचा जी ने बहुत खराब व्यवहार किया, हाथ भी तोड़ दिया आपके भाभी के, आपके मम्मी के हाथ की उंगलियां खा गए, भाई का सिर फोड़ दिया, आपके जो भैंसे थी उनको जहर दे दिया
6: जी।
5: पहले तो ये बताइए कि आपका गांव कितना बड़ा था, शहर था या गांव था?
6: गांव था।
5: गांव था, तो आपके आसपास के लोगों ने या और भी रिश्तेदारों ने कुछ कहा? नहीं,
6: सभी आए थे, लेकिन जो हो गया तो उसको तो कोई बदल नहीं सकता था उस टाइम पे
5: जी।
6: लेकिन उसके बाद फिर पुलिस केस वगैरह हुए, काफी दिन तक केस चले
5: जी।
6: लेकिन हमारे चाचा का यही रहता था, थोड़ा सा चलते थे, एक केस खत्म हुआ दूसरे के साथ में फिर कर देते थे।
5: आपके साथ ही करते थे
6: और किसी के साथ में भी कर देते थे?
5: अच्छा।
6: लेकिन हमारे साथ में कुछ ज्यादा करते थे।
5: अच्छा, तो वो हर एक के साथ ऐसे झगड़ना करना?
6: हमारे साथ में तो इसी बात पे किया था कि उनका घर नीचे की साइड में था, हमारा ऊपर की साइड में, कह रहे यहाँ से ना पानी नहीं जाने देंगे आपका।
5: अच्छा।
6: जो ढलाव में पानी जाता था, क्योंकि पानी नहीं जाने देंगे, तो कह लगे भाई पानी तो यहीं से ही जाएगा
5: जी।
6: तो ऐसे करके उन्होंने हमारा पानी रोक रखा था
5: जी।
6: फिर पड़ोसियों ने आके भाइयों को बोल दिया तुम खोल लो, हम खड़े हैं
5: जी।
6: जैसे उन्होंने उस पानी को खोला तो बस उस टाइम पे फिर मारपीट उन्होंने शुरू कर दी।
5: तो आपके तो चार भाई है, वो तो अकेले चाचा जी थे?
6: नहीं, उनके भी चार पांच लड़के थे, और उसके पास में और भी कोई आते थे बाहर के भी।
5: बाहर के लोग भी सपोर्ट करते थे?
6: हाँ।
5: तो सबने मिल के मारा? तो उस समय गांव वालों ने कुछ नहीं किया जब उन्होंने कहा कि आप खोलो? तो
6: बस उस टाइम पे देखो, बीच में लड़ाई के बीच में जब मारपीट होती है तो तब कोई नहीं जाता है
5: जी।
6: लेकिन फिर भी कुछ इंसान आगे आके छुड़वाने के लिए आए थे
5: जी,
6: छुड़वाया था। उसके बाद फिर केस वगैरह आगे चले गया
5: जी। तो आपके एक ही चाचा जी है?
6: एक ही थे, वो भी चले गए अब तो
5: जी। लेकिन ऐसे वो बहुत उन्होंने,
6: हाँ बहुत कुछ उन्होंने
5: जी
6: किया।
5: तो
6: हाँ।
5: उनके बेटे भी ऐसा ही करते थे जैसे चाचा कहते वैसे ही करते थे उनके बेटे? हाँ। या वो थोड़े अक्कल वाले थे?
6: बस एक ही उनका अच्छा था, जो नहीं मानता था, वो अपनी पत्नी को लेके कहीं बाहर चला गया था, कैसे ना कैसे करके उन्होंने खत्म करवा दिया।
5: बेटे को ही खत्म करवा दिया?
6: उनको भी खत्म करवा दिया था।
5: अच्छा, ये तो बड़े खतरनाक बात है। तो आपके
6: फिर जैसे उनकी बहू को भी एक बेटा था, उन्होंने अपने घर पे जन्म दिया, वहीं पे पाला, कम से कम 10-12 साल का हो गया, वो वहीं पे बैठी थी कि भाई मेरे को ले जाएं, लेकिन कोई इसको लेने नहीं जा रहा था। तो फिर जैसे थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, बड़ा होने के बाद उसको खोस लिया, लड़के को भी
5: खुद ले गए, लड़के को ले गए?
6: लड़के को भी उन्होंने खोस लिया।
5: क्यों, लड़के को क्यों ले गए भाई? आपने तो माता पिता को चाहा ही नहीं, फिर लड़के को कैसे ले जा सकते? उन्होंने केस नहीं किया?
6: बस वो बहू भी थोड़ी गरीब घर की थी, तो ज्यादा कुछ नहीं उसने किया, बस इंतजार ही किया। लेकिन लास्ट में सुनाई में आई है कि वो आ गई थी वहीं पे, अपने बेटे के पास में ही आ गई थी।
5: अच्छा, बेटा तो छोटा था, फिर पालन पोषण कौन करता?
6: उस टाइम तो पे दादा दादी जिंदे थे तो उन्होंने ही किया।
5: फिर वो बहू को ले आए?
6: नहीं वो नहीं लेके आए, जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो थोड़ा सा हमारे चाचा जी चले गए, फिर उसके अंदर में थोड़ी हिम्मत आ गई कि मैं अब जाके अपने अपना हक लूं, मेरा बच्चा है मैं उससे मिलूं, तो ऐसे करके फिर वो लास्ट में उधर आ गई थी।
5: अच्छा, फिर तो बेटा ने भी माँ को
6: हाँ
5: रखा, तो उनके साथ तो फिर अच्छे रहे, वो उनके भी चाचा चाची हो गए ना।
6: हाँ उनके भी चाचा चाची थे, लेकिन उस टाइम पे थोड़े सही रहे, लेकिन हमारे साथ में बाकी कुल मिला के अच्छा नहीं रहा था।
5: तो ये कितने साल आपके चला था?
6: ये कम से कम चला होगा 15-20 साल।
5: 15-20 साल बहुत लंबे होते हैं। आपके पिताजी की डेथ के बाद ही वो झगड़ते या पहले से झगड़ते आए?
6: डेथ के बाद ही।
5: अच्छा, बाकी आपके पिताजी का रुतबा था?
6: हाँ, बाकी उस टाइम पे कुछ नहीं करते थे।
5: तो बाद में उनको क्या सूझा, क्यों वो आड़ाई पर आ गए?
6: पता नहीं उनका क्या दिमाग में आ जाती थी, जैसे खेत में अच्छा कुछ हो जाता था उनके जैसे, तो पैसा आने के बाद उनके अंदर में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती थी।
5: पैसा कहाँ से आता है उनका?
6: वो जो खेत में जाते थे ना
5: जी,
6: तो खेत से उनके पैसा आता था।
5: तो आपके शामिल तो नहीं था, अलग अलग था?
6: अलग अलग था।
5: अच्छा, तो वो पैसे को ऐसे बर्बाद करते थे?
6: बर्बाद कर देते थे।
5: तो बेटे कुछ नहीं कहते कि घर में पैसे नहीं है और आप झगड़ा?
6: बेटे भी उनके साथ में थे।
5: अच्छा, इसलिए वो सब ऐसा ही करते थे।
6: हाँ।
5: तो कभी पुलिस तक वो पहुंचे, जैसे आप बता रहे कि बहुत जनों के साथ झगड़ते थे, तो कभी उनको अरेस्ट भी किया नहीं?
6: हाँ, अरेस्ट भी किया था उनको, लेकिन वही बात है, फिर आगे भी क्या होता है, पैसा वगैरह भर देते हैं और छूट जाते हैं।
5: जी जी जी हाँ।
6: तो केस तो काफी साल चला भी था
5: जी,
6: लेकिन फिर हो कुछ नहीं पाया, पैसा भर दिया गया और वे छूट गए।
5: जी जी जी। अभी कैसा है? अभी जैसे चाचा जी तो नहीं आपके, उनके लड़के हैं, तो वो सब आते जाते परिवार में?
6: नहीं, आते जाते नहीं है।
5: पर अभी तो झगड़ा खत्म हो गया या अभी तक भी ऐसा ही है?
6: नहीं, झगड़ा तो खत्म हो गया है, लेकिन आते जाते नहीं है। किसी ने कभी बोलना हो तो बोल भी लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं है।
5: वो तो फिर रख के भी क्या करेंगे। हाँ। जब कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, इतना नुकसान पहुंचा चुके हैं। हाँ। कितनी भैंसे मरी होगी उस समय?
6: 5।
5: 5 भैंस। अब उनको मारने से उनको क्या मिला?
6: अब क्या बताएं, ये सोच रहे थे ना भाई अब ये कहीं कहीं से पैसा, इनका नुकसान हो जाएगा, कहाँ से लगाएंगे केस में, इस प्रकार से मतलब उन्होंने सोच के ऐसा।
5: जी जी जी। और झूठ भी बोल दिया होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मारेंगे नहीं।
6: हाँ नहीं, ऐसे देखो देखा नहीं कुछ वो करते हुए, लेकिन जैसे ऐसे कभी किसी के साथ में हुआ नहीं कि भाई सभी भैंस एकदम से ऐसे मर गई हैं और फट भी गई हैं जैसे।
5: अच्छा। हाँ। ओहो, वो जहर इतना खतरनाक था। चलिए, आपके बचपन की बातें चल रही है, आप तो 1.5 साल के थे तो आपको कुछ पता नहीं। जब आप संभले तो आपके पिताजी तो नहीं थे, आपके माता जी ने आपको शिक्षा संस्कार दी होगी
6: जी,
5: तो उस समय आपके माताजी के साथ सब अच्छे रहते थे, भाई भाभी आपके सभी?
6: हाँ, सभी अच्छे रहते थे
5: जी। तो आपको विशेष करके उस समय क्या आपको सीखने को मिलता, क्योंकि आप सबसे छोटे हैं तो काफी मर्यादाओं में आप रहे होंगे, बड़ों के सामने नहीं बोलना या विशेष डिमांड नहीं करना। पिताजी नहीं होने से भी बहुत सारी चीजें ऐसे लगता है ना कि माताजी दे नहीं पाएंगे, तो अपने मन को मारते थे या फिर आपको मिल जाता था जो चाहते थे वो?
6: नहीं, बस किसी बड़ी चीज की तैसी में डिमांड नहीं करती थी, क्योंकि हमने पता था अपने घर का हालात कैसे हैं
5: जी।
6: लेकिन कोई भी ऐसी छोटी मोटी कोई सूट है, कोई भी चीज है ऐसी मेरी, तो मम्मी को बोल देती थी, दिला देती थी।
5: अच्छा, मम्मी दिलाते?
6: भाई भी कोई ऐसे वो नहीं करते थे, सब अच्छे थे
5: जी जी। और आपके तो बड़ी बहनें भी थी?
6: हाँ, बड़ी बहनें।
5: तो बहनों से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा?
6: बस बहनें तकरीबन ससुराल में चली गई थी
5: जी,
6: तो कई बार बहनों के पास में जाना हुआ, जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे थे इस टाइम पे
5: जी,
6: तो कई बार चली जाती थी, काफी काफी दिन उधर रुकी आती थी। वहां का भी उनका सबका प्यार बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबका ही लगाव था मेरे साथ में।
5: जी जी जी। और जैसे आप बड़े हुए, आपने दुनिया देखना शुरू किया, तब आपके चाचा चाची आपको बुलाते थे या बिल्कुल बेटियों से भी बात नहीं करते थे?
6: नहीं, वो बात नहीं करते थे।
5: अच्छा, और उनके बेटों बेटियों से भी बात नहीं करना?
6: नहीं, कभी कभी कभार हो भी जाती थी, लेकिन वो बात नहीं थी कि उनके घर जाके बैठना।
5: हाँ, हाँ, वो कुछ नहीं था।
6: हाँ, ऐसा नहीं था।
5: जी जी जी,
6: बस निकलते राम रमी हो जाती थी।
5: जी जी,
6: बस इतना ही।
5: अच्छा, और आपको क्या शौक रहा?
6: सिलाई का भी शौक था मेरे को और पढ़ाई का भी शौक था। सिलाई का तो फिर भी कुछ हद तक मैंने पूरा किया, लेकिन पढ़ाई का नहीं हो पाया।
5: तो जैसे घर में बैठ के भी तो आप पढ़ सकते थे, कभी ये नहीं सोचा कि मैं घर पर बैठ कर भी अपना साइन करना है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना सीखूं?
6: नहीं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। भाभी भी मेरी कोई सी पढ़ी लिखी नहीं है, और बहन भी पढ़ी लिखी नहीं है।
5: अच्छा।
6: भाई पढ़े लिखे थे।
5: जी जी,
6: तो भाइयों ने भी कुछ फिर आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की।
5: जी जी, सभी उन्हीं उलझन में उलझे हुए थे।
6: जो मेरा छोटा वाला भाई था मास्टर, उसको इतना मार देते थे, वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता था।
5: टीचर इतना मारते थे?
6: इतना मारते थे, तो इसीलिए वो कहता था, देख मैं इतना, मेरे को मार देते तू तो इतना सहन भी नहीं कर पाएगी।
5: तो इतना क्यों मारते?
6: पता नहीं क्या पहले के क्यों करते थे ऐसा। अभी तक
5: भाई बच्चे गलती करे तो उनको भाई समझाओ मारो, लेकिन ऐसे मारते थे कि चक्कर भी आ जाए।
6: हाँ, चक्कर खा के बेहोश हो जाता था।
5: ओ, तो फिर सुन करके तो दूसरे तो घबराएंगे ना। तो फिर कभी कंप्लेन नहीं की कि आप क्यों इतना मारते हो?
6: बस ऐसे कंप्लेन वगैरह का नहीं था उस टाइम पे इतना कुछ।
5: अच्छा,
6: इतना कुछ नहीं था, बस काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ।
5: चलो, अब उसका तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि समय बीत चुका है। तो नीलम जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से समय हो चला है गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: दोस्तों ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान, माता पिता
2: जिस घर में बेटियां मुस्कुरा दे, जिस घर में बेटियां मुस्कुरा दे वो घर मंदिर हो जाता है। उसके आंचल की ठंडी छाया में हर दुख छोटा हो जाता है। उसके आंचल की ठंडी छाया में हर दुख छोटा हो जाता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलम जी, आपके काफी अनुभव हमने सुने हैं। अब इतना सा हम पूछना चाहेंगे कि आपके शादी कितने साल के थे और हुई, और शादी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया?
3: जब मैं होंगी 24 साल के करीब तब मेरी शादी हुई थी
2: जी।
3: तो अगले ससुराल में भी 6 भाई थे, 2 ननद थी
2: जी,
3: ससुर नहीं थे, सास थी
2: जी।
3: सभी परिवार अच्छा था, और लेकिन जैसे जैसे ससुराल में रहे सभी के साथ में अच्छे से रहे।
2: आपका ससुराल में कौन सा नंबर आता है?
3: ससुराल में मेरा 3रा नंबर आता है।
2: अच्छा अच्छा। गांव से कितना दूर था?
3: गांव से काफी दूर था, गांव से।
2: अच्छा, काफी दूर।
3: हाँ।
2: क्या नाम है आपके ससुराल के गांव का?
3: लेकिन है सोनीपत के उसमें मुरथल।
2: मतलब मुरथल में आपकी शादी हुई। तो ये एक गांव है, कस्बा है, कैसा है?
3: सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है।
2: मतलब गांव है या कस्बा है, शहर है?
3: शहर में लगता है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, बिल्कुल लगता ही है
2: जी। जी, तो यहाँ पर भी बड़ा परिवार, सभी साथ में रहते थे?
3: साथ में रहते थे। दो जो बड़े जेठ थे वे बाहर गए हुए थे।
2: अच्छा, वो बाहर रहते थे?
3: वो बाहर रहते थे।
2: अच्छा, और आप लोग गांव में रहते थे?
3: हम गांव में रहते थे।
2: तो आपके हस्बैंड क्या काम करते थे?
3: इनका अपना काम था, बस थोड़े दिन रहे थे गांव में, फिर इनका अपना काम था, हम दिल्ली आ गए थे। इनका फ्रूट का काम था, हिमाचल से फ्रूट लेके आते थे और आड़त की दुकान पे सप्लाई करते थे।
2: होलसेल का?
3: होलसेल का
2: जी। तो फिर आप कितने समय ससुराल रह करके हिमाचल चले गए?
3: बस दो साल के करीब रहे होंगे।
2: अच्छा, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ससुराल में आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिलता था?
3: हाँ, ठीक था, सब अच्छा था
2: जी। और ससुराल वाले भी, सास ससुर सभी अच्छे थे?
3: सभी अच्छे थे।
2: जेठ जेठानी देवर देवरानी
3: सभी अच्छे थे
2: जी। जी, तो दो साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला होगा
3: जी।
2: फिर उसके बाद आप हिमाचल चले गए, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अकेलापन लगा होगा, क्योंकि बड़े परिवार से आप निकले।
3: नहीं, हिमाचल ऐसे बीच बीच में जाते थे, बाकी दिल्ली आ गए थे हम।
2: अच्छा, फिर दिल्ली। तो दिल्ली आप अकेले रहते होंगे?
3: दिल्ली अकेले नहीं, साथ में रहते। हाँ, हस्बैंड के साथ में।
2: हाँ, वही आप। हाँ, और आपके हस्बैंड। हाँ, तो इधर तो इतना बड़ा परिवार, उधर आप दोनों जने, तो आपको बहुत ही ऐसे अकेलापन महसूस। हाँ, हुआ होगा।
3: ये तो है।
2: तो पूरे दिन आप क्या करते हैं? आपके हस्बैंड बिजनेस पर चले जाते फिर?
3: वो करीब 10 बजे सी बज जाते थे, उसके बाद घर का काम करना, कपड़े धुलाई, साफ सफाई, इसी में लगे रहते थे। और उसी टाइम पे था
2: बेटे का जन्म भी हुआ।
3: जन्म हुआ उसी टाइम पे, समय से सत्संग में जाने लग गई थी।
2: अच्छा, आप गर्भवती थे तब से आपको सत्संग मिल गया
3: जी?
2: तो आप सत्संग में जाते थे
3: जी,
2: दिल्ली में
3: जी।
2: तो आप एक छोटे से गांव से बड़े शहर में आए, आपको पहले तो बड़ा अजीब लगा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई। एक तो गांवों में तो मिलना जुलना चालू रहता है।
3: बिल्कुल,
2: अब शहरों में सब व्यस्त होते हैं।
3: हाँ,
2: तो कैसे आप समय व्यतीत करते थे? आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं किससे बात करूं?
3: जिसके हम किराए पर रहते थे वो दीदी बहुत अच्छे थे
2: जी,
3: बहुत प्यार से रहते थे, ऐसे रहते थे जैसे अपने घर की तरह से।
2: अच्छा।
3: खाना भी मेरे पास ही आके खाते थे और अच्छे मिलजुल के रहते थे बहुत अच्छी तरह से
2: जी। जी,
3: उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया।
2: अच्छा।
3: हाँ, अच्छे से रहते थे।
2: तो आप कितने साल
3: वहाँ? मैं 4 साल के करीब
2: दिल्ली में।
3: दिल्ली,
2: फिर 4 साल बाद?
3: फिर 4 साल बाद जैसे इधर भी आए थे एक बार आबू भी
2: जी।
3: तो पूरे परिवार के साथ में आए थे, बेटा भी और उनके पापा भी
2: जी।
3: तो उस टाइम पे इससे जुड़ चुके थे, इस सत्संग से
2: जी। जी,
3: तो फिर जैसे यहाँ आए उसके बाद, फिर वो जाने के बाद थोड़े से ऐसे सत्संग में जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था कि भाई कहते थे नहीं ये कुछ नहीं है, ढोंग होता है, ये होता है।
2: अच्छा हाँ। फिर आबो आने के बाद आप अपने ससुराल गए?
3: नहीं ससुराल नहीं गए, हाँ फिर एक बार यहाँ से आके फिर एक बार वापसी चले गए थे।
2: हाँ तो आप अपने गांव ही गए होंगे ना आपके
3: हाँ,
2: ससुराल।
3: हाँ
2: तो वहाँ पर फिर सभी ने कहा कि इस सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर क्या किया आपने?
3: तो फिर ऐसे करके इनकी तबीयत खराब हो गई, ये दौर चलते चलते तबीयत खराब होने के बाद ये एक दो साल बीमार रहे, और फिर इनको अचानक ही उल्टी दस्त वगैरह हो उनकी, उस टाइम पे फिर डेथ हो गई।
2: तो इलाज नहीं करवाया?
3: हाँ हॉस्पिटल में ही थे उस टाइम पे जिस टाइम पे डेथ हुई, तो इलाज ही अच्छा। चल रहा था लेकिन कुछ नहीं हो पाया।
2: अच्छा बेटा कितना बड़ा था उस समय?
3: 4 साल का।
2: 4 साल का ही था? आपके ससुराल में ही ये हादसा हुआ?
3: नहीं ये हादसा हुआ करनाल में।
2: करनाल आ गए थे रहने
3: जो हॉस्पिटल में?
2: नहीं वो तो है, लेकिन रहते थे आप अपने ही घर में, ससुराल में ही रहते थे?
3: नहीं करनाल में ही रहते थे।
2: अच्छा करनाल में क्या बिजनेस था आपका?
3: नहीं फिर उन्होंने दिल्ली से जब बीमार हो गए थे तो कहने लगे भाई मैं थोड़ा सा ऐसे एरिया में रहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे थोड़ा खुला खुला से उसमें।
2: अच्छा करनाल आ गए रहने और फिर यहीं पर यह तकलीफ शुरू हो गई?
3: जी।
2: और यहीं पर डेथ हो गई? तो फिर क्या किया आपने? आप अपने ससुराल जाकर रहे या फिर सीधे आबू आए रहने?
3: नहीं ससुराल तो नहीं गई, थोड़े ही जैसे उनकी डेथ के बाद जो जेठ थे उनके थोड़े से मेरे प्रति गलत संकल्प हो गए थे
2: जी,
3: तो थोड़ा जिठानी के दिल दिमाग में ऐसा हो गया भाई मेरा घर उजड़ जाएगा ये हो जाएगा
2: जी,
3: तो मैंने उसको बोला कि दीदी आप चिंता ना करें, मैं ऐसा कभी सुन नहीं सकती जो आप सोच रहे हैं
2: जी,
3: तो ऐसा कभी नहीं होएगा। तो फिर मैं बेटे को उधर से लेके और मैं कहीं बाहर आ गई, रेवाड़ी आ गई मैं।
2: रेवाड़ी क्या है?
3: बस ऐसे ही आ गई, रेवाड़ी की जान पहचान थी उधर, तो उनके उधर आके मैं किराए पर रहने लग गई।
2: 4 साल के बच्चे को लेके उस समय आपके सास ससुर नहीं थे?
3: नहीं ससुर तो पहले ही नहीं था, सास थी
2: जी। तो आपके सास ने कुछ नहीं कहा कि तू अकेली कहाँ जाएगी रहने, तू यही घर में रह?
3: नहीं उन्होंने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे।
2: तो फिर रेवाड़ी में आकर
3: उन्होंने और उल्टा इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दिया कि तेरे वजह से ये हो गया वो हो गया, तो फिर इसीलिए मैंने वहां पर रहना फिर अच्छा नहीं समझा
2: जी। तो रेवाड़ी तो कोई नहीं था, आप अपने पियर जा सकते थे?
3: देखो पियर में भी अब मैं सबसे छोटी थी और सबको ये हो जाता, मम्मी मेरी डेथ हो गई थी।
2: अच्छा जी जी जी हाँ, तो भाई भाभी है तो फिर अपना अधिकार इतना नहीं रहता।
3: हाँ फिर सभी को ये रहता उसके पास रहे उसके पास रहे, तो ये चीजें मैं फिर मैं उधर मैंने किसी को परेशान नहीं किया
2: जी। बहुत अच्छा किया। फिर रेवाड़ी में आपने क्या किया?
3: मैंने वहाँ पे आके सिलाई शुरू की।
2: अच्छा तो पहले सिलाई सीखी होगी आपने?
3: नहीं सिलाई मैं पहले से थोड़ी सीख रही थी ना, तो वहाँ पे मैं रेडीमेड जैसे साड़ी के नीचे वाले पेटीकोट होते हैं वो मैं रेडीमेड सिलती थी।
2: अच्छा।
3: और बच्चे को पढ़ाती थी।
2: तो गुजारा चल जाता था?
3: बस चल जाता था
2: जी जी। तो चलिए नीलम जी के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का, तो एक ब्रेक लेंगे उसके बाद पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। ममता की मूरत भी वही, शक्ति का स्वरूप भी वही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। नारी को कमजोर कहने वालों, हिम्मत करो, पहले उसे समझो तो सही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में नीलम जी हमारे साथ है। नीलम जी के काफी अनुभव सुने हैं, और आइए और भी हम सुनेंगे। नीलम जी, जैसे आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आप रेवाड़ी चले गए रहने के लिए, 4 साल के बच्चे को लेकर। उस समय आपके पास कोई काम धंधा नहीं था, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं था। फिर वहां आकर के आपने सिलाई शुरू की, फिर कैसे आप आगे बढ़े? और वहां पर किसी का सपोर्ट मिलता था?
2: नहीं, जैसे कुछ मेरे को इंश्योरेंस था इनका, तो वो पैसा मिला था, उधर ही मैंने घर ले लिया था।
1: अच्छा।
2: और बस ऐसे सिलाई वगैरह करती रही, थोड़ा किराए पे भी मैंने दे दिया था उधर।
1: अच्छा, घर रेवाड़ी में खरीदा आपने?
2: जी।
1: तो आपको घर में से तो कुछ नहीं मिला हिस्सा?
2: नहीं मिला, उधर से तो कुछ नहीं मिला था, इंश्योरेंस था, मैं वहां से कुछ नहीं लेके आई।
1: अच्छा अच्छा, हाँ वो इंश्योरेंस था जो उससे आपके बच्चे का भी गुजारा और आपका मतलब घर भी खरीद सके। तो ये अच्छा किया कि कम से कम अपना घर होगा तो कोई निकालने वाला तो नहीं मिलेगा। फिर आप आबू तलेटी कैसे आए?
2: जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी रही, तो मैंने बस ये ठान लिया, भगवान भी कहते हैं कि लास्ट में इधर ही आना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अभी से ही अपने जाने की तैयारी करूं। बीच बीच में इधर मैं माउंट आबू में आती रहती थी,
1: तो ये अच्छा लग गया आपको?
2: अच्छा लगता था जब अपने बहन भाइयों का इतना प्यार, इतना स्नेह से मिलन देखते थे, बाबा का प्यार, तो फिर मैंने ठान लिया कि अब मैं यहाँ से अब रोड चली जाऊंगी।
1: बच्चा कितना बड़ा था और आप इधर आए?
2: अब तो बड़ा हो गया था बच्चा, काफी 17-18 साल का हो गया।
1: और आपको इधर आए हुए कितना समय हो गया?
2: 5-6 साल हो गए।
1: 5-6 साल हो गए, तो अच्छा लग रहा है यहाँ आपको?
2: हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान के प्यार में, सभी भाई बहनों के स्नेह में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
1: जी, कहते हैं ना कि आपके 4 साल का बच्चा था और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहुत जने दूसरी शादी कर लेते हैं, आपने कभी सोचा नहीं?
2: नहीं, लेकिन देखो परिस्थितियों को देखते हुए देख रहे थे, और फिर थोड़ा सा सत्संग की तरफ भी थे
1: जी,
2: तो इसी कारण से फिर समझा के ठीक है, जो भी हमारी किस्मत में था वो मिल गया है, अब भगवान में जुड़ गए तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखा।
1: जी जी, बिल्कुल आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आप सत्संग में शुरू से जाते थे इसलिए।
2: जी,
1: चलिए बहुत अच्छा। और बच्चे को कहाँ तक पढ़ाया आपने?
2: बच्चे ने 10 की थी बस, उससे आ गया, इसका दिमाग नहीं चला, बाकी ये और काम हर काम कर लेता, इससे कोई काम भी नहीं छूटा। शायद ऐसा महसूस होता जैसे पिछले जन्मों का कोई इंजीनियर है।
1: अच्छा।
2: इससे कोई काम नहीं छूटा, हर काम को कर लेता ये।
1: चलिए बहुत बढ़िया। और आपके ससुराल जाते हैं आप?
2: नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना माई के जाती ना ससुराल जाती।
1: नहीं बुलाते वो, या फिर आपने अपने मन से?
2: मैं जाती ही नहीं हूँ।
1: और बच्चा अभी यहाँ पे खुश है?
2: हाँ खुश है
1: जी। सिलाई काम अभी भी करते हैं आप?
2: नहीं अभी नहीं करती।
1: तो अभी आप क्या काम करते हैं?
2: अभी बस थोड़ा सा ये SLPS कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसी में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करते हैं।
1: अच्छा, तो ये आपने कहीं से ट्रेनिंग ली?
2: हाँ, ये ट्रेनिंग चलती है हमारी ऑनलाइन।
1: अच्छा, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर के ऐसे आप जुड़े हैं?
2: जी।
1: तो आपका काम अच्छा चल रहा है?
2: जी अच्छा चल रहा है।
1: और फिर आपके रेवाड़ी में घर, उसका क्या किया?
2: नहीं, उसको बेच के हमने इधर ही ले लिया था।
1: अच्छा, इधर खरीद लिया?
2: हाँ।
1: चलिए बहुत अच्छा है। और नीलम जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो हमारी बहनें सुन रही है उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखो यही कहना चाहते कि अब खुद ही हम करेंगे तभी हमें सुख मिलेगा, दूसरों के ऊपर जिएंगे तो दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है।
1: जी जी जी, तो आपके कहने का मतलब यह है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए।
2: जी,
1: तो बहुत अच्छा संदेश दिया है नीलम जी ने कि आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो दुखी होंगे, और आत्मनिर्भर बन के रहेंगे तो सुखी होंगे। बहुत ही सही मैसेज आपने दिया है, क्योंकि आपने भी सिलाई के द्वारा अपने बच्चे की पालना की है, और स्वयं का भी किया है। तो नीलम जी के हिम्मत को दाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, जो आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए सभी के साथ इसके लिए।
2: थैंक यू दीदी, थैंक यू।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में नीलम जी शर्मा हमारे साथ बने हुए थे। आपकी उम्र 50 वर्ष की, आप हरियाणा से थे, लेकिन अभी 6-7 वर्षों से आप आबू तलेटी में रहते हैं और आपके जीवन के अनुभव हम सभी ने सुने हैं कितने गहरे हैं। कम उम्र में आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन सिलाई के द्वारा आपने 4 साल के बच्चे की परवरिश की, घर चलाया। उस समय आप किराए पर रहते थे, धीरे धीरे आपने घर भी खरीदा, बच्चे को भी काबिल बनाया और इस तरह आप अपने घर की गाड़ी को आज भी अच्छी तरह चला रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। भारतीय संगीत के मुख्य रूप से तीन भेद किए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। आज तक हमने संगीत के बारे में बहुत कुछ सुना भी, मगर आज संगीत में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए उत्सव के आधार पर भजन। भजन ये सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत हो सकता है, लेकिन मूल रूप में यह किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। भजन मंदिरों में भी गाए जाते हैं। कुछ विख्यात भजन रचनाकारों की नामावली में मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे अनेक रचनाकार होकर गए हैं। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम आगे श्यामली जी से भजन के बारे में सुनते हैं। श्यामली जी, रेडियो मधुबन में संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको प्रणाम करती हूँ।
0: गीत संगीत में भजन का ज्यादा प्रयोग होता है। हाँ, या कहो देवी माँ की आरती गाई जाती है।
1: हाँ जी,
0: तो आज हम भजन के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे।
1: भजन की जो मेन पॉइंट है यह है भक्ति।
0: अच्छा।
1: हाँ, भक्ति जैसे उसके ऊपर आधारित होता है। तो जैसे भजन आम जनता में हिंदी भाषा में ज्यादा होता है
0: जी,
1: जो सब जनता समझ सकते हैं। और ये जो भक्ति रस की जो गीत है ऑडियंस के सामने अगर प्रेजेंट करेंगे वो ज्यादा अपनाएंगे। इसमें मधुरता, उसका जो सौंदर्यता होता है, सुर की जो लय कड़ी होता है बहुत सुंदर, उसका ताल के ऊपर ये आधारित ज्यादा होता है। इसमें इसका अलग महत्व आ जाते हैं।
0: माना ज्यादातर भजन में तो देवी देवताओं की महिमा, उनकी उपासना ही
1: ना
0: होती है।
1: ऐसे कोई बात नहीं, भजन में ज्यादा होता है कृष्ण की जो गीत होता है, ज्यादा से ज्यादा गिरिधारी लाल या कृष्ण की हरी या भजन श्याम घनश्याम, इसके ऊपर ज्यादा आधारित होता है।
0: okay.
1: जैसे सूरदास की भजन में हम देखते हैं उसको आँख तो नहीं थे, सूरदास जी के आँख नहीं थे, लेकिन वो हरि बिना नहीं चलते थे। उसका हर जगह में हरि का नाम ज्यादा प्रयोग होता है। ब्रह्मानंद जी का भी घनश्याम ज्यादा होता है। मीरा भजन में गिरिधारी लाल ज्यादा होता है, मीरा के प्रभु गिरिधारी नागर, ऐसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो भजन की एक स्पेशल मैं कह सकती हूँ कि हर भजन के लास्ट में या प्रथम जो भजन रचयिता होता है उसका नाम प्रयोग होता है।
0: अच्छा,
1: तब जाके पता चलता है ये भजन किसका है।
0: पूरे भजन में उनका नाम
1: आ जाते हैं। तब हम जान सकते हैं कि मीरा की है या ब्रह्मानंद की है, कंवर जी का है या सूरदास जी का है।
0: अच्छा,
1: ये हम जान सकते हैं।
0: हर भजन उनकी पहचान देता है।
1: तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवता की ज्यादा नहीं है, ज्यादा कृष्ण जी का ज्यादा महत्व है। सबके पास ज्यादा प्यारा है ना, किशन जी तो सबको प्यारा है,
0: बाल गोपाल।
1: बाल गोपाल
0: जी। तो आज आप हमें भजन में और आगे क्या बताना चाहेंगे?
1: आज पहले हम एक मीरा की भजन, क्योंकि मीरा भजन में सबसे फेमस है मीरा बाई का जो भजन है, मीरा भजन जो है
0: जी।
1: तो मीरा भजन हम सुनाते हैं।
0: वो तो श्याम की दीवानी।
1: हाँ, श्याम की दीवानी। जैसे देखो उसको जो पहचान है ज्यादा,

0: एक ही लाइन में मैं बता सकती हूँ कि ये गिरिधारी जो लाल है उसको तो दीवानी थे
1: जी,
0: लास्ट तक वो गिरिधारी का ऊपर ही प्रेम ये किया
1: हमारा
0: है।
1: पूरा जीवन ही भले गृहस्थ में रही मगर फिर भी श्याम के नाम कर दिया।
0: हाँ, वही बात है। तो हर जगह में मीरा की नाम है, भजन लाए हैं मीरा की भजन। थोड़ा मैंने प्रेजेंट किया कैसे मीरा की भजन होते हैं, ठीक है तो हम शुरू करते हैं।

0: प्रेम से एकदम पागल जैसी
1: जी,
0: इसलिए तो मीरा की भजन इतना फेमस है, सबको मुंह में फिरते हैं।
1: भावना के आधार पर उस भजन की भाषा भी हो गई है ना। श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में भी हम सुनाएंगे अपने श्रोता मित्रों को ऐसा ही प्यारा सा भजन। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम भजन के बारे में और जानकारी देने के लिए जल्द पधारेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: पुनः सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक मीठा से भजन का आनंद लिया होगा। आज हम आगे भी आपको भजन के बारे में ही जानकारी देना चाहेंगे और उस जानकारी को लेकर आए हैं श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
1: हाँ जी, अभी एक भजन सुनाते अच्छा। ब्रह्मानंद जी की।
0: मगर उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
1: बताइए
0: कि मैंने कहीं सुना है कि ये जो भजन, ये जो रचना है संगीत में, खास मैंने बताया सुगम संगीत की, तो वो सुना है राग ताल नियमों से स्वतंत्र एक आकर्षित रचना जो भावानुकूल शब्दों द्वारा ये गाई जाती है।
1: हाँ जी, ये तो सही है कि वे एकदम अलग से ढंग से होता है ना, ज्यादा इंसान के मन छू लेते हैं
0: जी।
1: भजन है,
0: उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करते,
1: जादू करने की काम करते हैं एकदम। तुरंत कोई भजन करते हैं तो सब आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम सुनाते हैं ब्रह्मानंद की जो भजन है
0: जी।
1: आप सुनोगे तब पता चलेगा, ठीक है।
0: ओके।

0: श्यामली जी, ये भी बहुत सुंदर भजन, मगर उसके साथ मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, हमारे श्रोता मित्रों के मन में भी ये शायद प्रश्न उठता होगा कि ये जो भजन है उसमें कोई स्पेशल राग का ही भजन होता है या सभी रागों में भजन बन सकते हैं?
1: ना, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन तब भी कुछ कुछ राग होता है, जैसे भैरवी भैरव के ऊपर ज्यादा होता है, या आहिर भैरव, या शाम के जी इवन की राग के ऊपर भी बहुत सारे भजन है, या जैसे हमने पहले ही हमने किया है रामदासी मल्लार
0: जी,
1: ज्यादा से ज्यादा ऐसे राग के ऊपर बेस करके ये होता है, राग की
0: स्पेसिफिक उसके ऊपर कोई नहीं, सभी राग में ये भजन हो सकते हैं।
1: अच्छा। अगर कोई भी गा सकते हैं, अच्छा से सुर से गा सकते हैं तो।
0: और ताल कौन सा?
1: और ज्यादा से ज्यादा दादरा और कहरवा भी ऊपर।
0: अच्छा, दादरा और कहरवा ताल में ही ये ज्यादातर होते हैं। अच्छा, और आगे आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: आगे अभी सूरदास की भजन जो है बहुत सुंदर है, सब जानते हैं
0: जी,
1: वो भी एक सुनाती हूँ कैसे होता है।

0: सही कहा गया है कि भजन ये ईश्वर का गुणगान करने या प्रार्थना के लिए ही भजन की रचना की जाती है।
1: हाँ जी,
0: है ना।
1: हाँ, एकदम सही बोला है आपने।
0: तो श्यामली जी, आज हमारे श्रोता मित्रों को तो आपने भजन भजन और भजन करके भगवान को याद करने पर मजबूर कर दिया।
1: हाँ जी,
0: और जाते जाते भी मुझे लगता है आप फिर से कोई अच्छा सा भजन ही सुना देंगे।
1: हाँ, हम क्या करेंगे, तुलसीदास की भजन, इसमें रामचंद्र जी का भी उल्लेख है ना, रामनवमी मतलब रामचंद्र जी, इसलिए लता जी का एक फेमस भजन है, ठुमक अच्छा। के चले थे रामचंद्र।
0: वाह, बहुत बढ़िया,
1: मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है।

0: बहुत बढ़िया,
1: थैंक यू.
0: आज के तो सारे एपिसोड में ऐसे लगता है भजन संध्या हो गए.
1: क्योंकि देखिए हर भजन में शेष भाग में जो जो लास्ट में जो लिरिक्स बताया गीत किया है तो उसमें सबका जितना भजनकार जो रचयिता जो है
0: उसका नाम है. जी,
1: इसलिए
0: जी.
1: है कि हम जान सकते हैं कि इसका क्या भजन है, कौन सा भजन है.
0: जी जी. श्यामली जी, अब समय देता है हमको इजाजत, लेकिन जाते जाते आप और हम रेडियो मधुबन की ओर से सभी संगीत प्रेमी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे. सभी को नवरात्रि की एवं आने वाले त्योहार दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. और आप अगर हमसे संगीत के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए. हमारा नंबर है 9494151415. फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415. इसी के साथ फिर मिलेंगे. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं, मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: का। अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
1: अरे इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
2: आई मासा।
1: अरे चाय मुझे पिलानी है, मेरे साड़ी को नहीं राजकुमारी।
2: हाँ ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
3: अरे बेटा ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
4: दादी मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
5: हे राम।
2: चल शैतान स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
4: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
1: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
6: शांति शांति।
7: अरे शांति क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे राजकुमारी।
2: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
4: नहीं मम्मी थोड़ा और सोना है।
8: 10 मिनट और बस।
2: अरे चलो 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
4: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी 6 ही तो बजे है।
2: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
4: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
9: हे भगवान ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
7: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
10: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
11: इनको मैं बताती हूँ।
10: अरे दीदी आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
11: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
7: हाँ वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
12: अरे भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
13: लो जी खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
0: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं?
12: भाभी जी आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
7: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
14: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
12: हैं? क्या जी?
14: नहीं नहीं मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
11: हाँ कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
15: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी आप तो टैलेंटेड हो।
0: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
16: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ।
17: वाओ ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा।
15: ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
1: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
14: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
1: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
13: ला रही हूँ मासा।
14: अरे कुछ नहीं हुआ बस मुझे।
11: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
18: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
9: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
0: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
9: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
13: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
18: कुछ कहा राजकुमारी?
13: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
14: ओ ओ ओ ओ
18: अरे ये कह रहा है ऊपर।
19: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
3: अरे उसको बैठना है।
13: लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है, अरे कोई और फल चाहिए क्या?
19: पैर में दर्द है क्या?
13: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
20: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
13: अरे पिताजी कहाँ गए?
3: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
13: पापा गाने को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला।
3: पापा कहते हैं।
13: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है बताओ।
11: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
12: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
0: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनकी आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
11: घर ऑन एयर, पात्र परिचय, दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर, दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या, चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि, ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित, ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा, बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा, बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना, वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल, राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि, बच्चे रूहानी अमीक्षा, नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौर परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Best Writer Award goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: हम रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: दोस्तों ये तो अक्सर होता है कि जब हम कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या कोई गीत सुनते हैं हमारे पांव अपने आप ताल देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गीत नहीं सुन रहे हैं लेकिन मन खुश है और पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक खुशी में नाचता है। और ये जो कहावत है खुशी में मन नाच रहा है, नाचने की जब बात आती है, नृत्य की जब बात आती है, तो ये कोई कोई व्यक्ति ही कर सकता है ऐसी बात नहीं है, ये हर एक कर सकता है, हर एक करता भी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हम हर कोई अंदर ही अंदर कई बार नृत्य करते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो इस नृत्य को बाहर भी करते हैं और लोगों के अंदर खुशियों का एक ऐसा संचार करते हैं जिससे कि वो जो एक अनुभव है हमारे लिए एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव बन के रह जाता है। हम आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसे ही मेहमान को लेकर के आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में नृत्य के द्वारा कईयों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है, उनको जीवन के कई नए रसों से उनको अवगत कराया है, किसी के जीवन में उसे रोजगार के रूप में या व्यवसाय के रूप में अनुभव कराया है। तो नृत्य को केवल नृत्य ही ना बना करके उन्होंने एक शिक्षा के रूप में पूरे भारत में फैलाया है। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम और आज के हमारे मेहमान हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय मीनाक्षी चित्रंजन जी। मीनाक्षी चित्रंजन जी भरतनाट्यम कला की एक प्रख्यात गुरु है। वो नृत्यांगना तो है ही लेकिन साथ में गुरु है, क्योंकि वो स्वयं तो नृत्य करते हैं लेकिन सैकड़ों बच्चों को वो इस शैली से शिक्षित कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों आइए स्वागत करते हैं मीनाक्षी जी का हमारे स्टूडियो में। मीनाक्षी चित्रंजन जी आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की टीम की तरफ से आपको आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हम। आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षक का जीवन कितना व्यस्त होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी आपने हमारे लिए समय निकाला विच इज रियली वेरी वेरी ग्रेट फॉर अस। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड इसलिए आपका दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। मैं ये सोच रहा था श्रोता साथियों कि कभी भी जब कोई कलाकार आता है हमारे बीच में तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूं, कहां से शुरुआत करूं। सबसे पहले तो जब मैं उन्हें देखता हूं तब मुझे लगता है कि आई एम वेरी इल ड्रेस्ड बिकॉज मीनाक्षी जी यू लुक सो ब्यूटिफुल। आप इतने मतलब भारतीयता की एकदम एपिटोम है, एकदम शिखर पे है एंड मैं एक बहुत कैजुअल टी शर्ट में हूँ और मुझे लग रहा है मैंने आज गलत ड्रेस का चुनाव किया। लेकिन यहाँ से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप खुद को कैसे तैयार करते हैं इन द सेंस आप जब किसी से मिलने जा रहे हैं तो इंटरनली आप क्या बुद्धि में रखते, जैसे आज आप हमारे श्रोताओं से मिलना चाह रहे थे तो आपने क्या खुद को सेल्फ डायलॉग दिया या खुद से क्या बातें की कि आज आपने खुद को प्रिपेयर किया है?
2: पहले मेरे धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप लोगों से हमारे नृत्य की करियर के बारे में बताऊं। और जब कृष्णा जी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपकी इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछ रहे हैं कि कैसे मैंने तैयारी की, बस मेरे मन में यही सोच आई थी कि जब मैं कृष्णा जी और ब्रह्म कुमारी को देखती हूँ ना तो एक बहुत प्योर वेरी सिंपल और कितना नोबल कॉज में वो लोग अपना लाइफ बिता रहे हैं। तो मेरे मन में यही सोचा कि अगर मैं उनके साथ बात करने वाली हूँ तो जो कुछ भी मेरे अंदर जो उनके लिए इतना एडमिरेशन है और मैं भी उसी तरह बहुत सिंपल से, बहुत ऑनेस्टी से, बहुत प्योरिटी से जो मैं इतना बड़ा कला को सीखा है उसको मैं अच्छी तरह आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने किया कि आपने कहा कि हमारा देश का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वेल्थ संपत्ति है हमारा म्यूजिक और डांस, सो इसे हमें शेयर करने में मुझे बहुत खुशी है।
1: मीनाक्षी जी मैं आपको बिल्कुल गारंटी देना चाहूंगा कि ये केवल आप ही नहीं सोचते, हम भी सोचते हैं आपके प्रति ऐसे कि भारत की एक ऐसी बेटी जिसने भारत की कला सभ्यता को इतने शिखर तक पहुंचाया कि भारत ने उसे अपना एक यशस्वी रतन समझा, आपके प्रति भी हमारे दिल में इतना ही आदर है, इतना ही सम्मान है और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इसको अनुभव कर पा रहे होंगे।
2: जरूर जरूर।
1: तो मीनाक्षी जी, हम शुरुआत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की, पहले हम जानना चाहेंगे नन्ही मीनाक्षी की कहानी से, जो कि आज मीनाक्षी चित्रंजन एक बहुत ही विख्यात भरतनाट्यम की ना केवल नृत्यांगना है लेकिन शिक्षिका भी है। आप हमें बताइए आपकी जुबानी, आपकी कहानी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या क्या उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में और आज आप यहाँ पर हैं।
2: तो आपने मेरे अभी तक मेरे लाइफ की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी, मगर ये बात भी बताना है कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर सकती हूँ, मगर कई टाइम होगा कि मुझे अपने कुछ विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी मिल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हमें थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए कि
1: जी बिल्कुल, आप दोनों भाषा मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल
2: मिक्स करके बताएंगे। अच्छा ओके, तो मेरा शुरुआत इस बात से करना है कि हम लोग अर्ली 60s में पैदा हुए थे, हाँ, और उस टाइम की व्यवस्था ऐसी थी कि उसी टाइम हमारे कला जैसा नृत्य कला आप लोग जानते हैं तो ये ब्रिटिश रिजीम में वो सब दबाई गई थी। तो उस टाइम अच्छे घरों की लड़कियां नृत्य नहीं सीखते थे, बहुत गाने में सीखते थे, मगर नृत्य को ऐसा लग गया कि वो उतना उचित नहीं है कि लड़कियां नाचना, ऐसा टाइम था। इसीलिए मेरे माता जी जो जिसको डांस और म्यूजिक में बहुत शौक था वो उसे नहीं सीख सकती थी क्योंकि उसे वहां नहीं भेजते थे। वो थोड़ा वीणा सिखाया, थोड़ा गाना सिखाया, मगर नृत्य को नहीं सिखाया। तो उनको लगा कि अगर उसको एक लड़की की ब्लेसिंग मिल जाए तो जरूर वो लड़की को मैं नाचना सिखाऊंगी। तो इसीलिए मेरे माताजी के इंटरेस्ट के कारण मुझे 4 साल में एक बहुत बहुत महान गुरु, जो ट्रेडिशनल मास्टर हाँ, वो उनको बोलते हैं कि पंदनल्लूर अचोक्कलिंगम पिल्ले सुब्राय पिल्ले, ये सब वो पंतति से आए हैं, जेनरेशन से अपने दादाजी अपने पिताजी के साथ जो सीखे हैं वो गुरुजी के पास हमें ले गए थे। वो बहुत महान गुरु थे और मैंने सीखना शुरू किया। उस उम्र में ऐसा है जैसे हम स्कूल जाते हैं ना रेगुलर पढ़ाई की तरह, इसी तरह हफ्ते में 3 बार हमें डांस स्कूल भेजते थे और वहां मैं इन बड़े गुरुओं से सीखना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि ये नृत्य सीखना और उससे एक लेवल तक आने के लिए देर लगता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 years जरूर लग जाता है जब तक हमारा फाउंडेशन को अच्छी तरह सीखे और जितना चाहे एक प्रोग्राम करने के लिए जो आइटम्स चाहे वो सीखने के लिए डेफिनेटली 6 years हो जाता है। इसीलिए उस उम्र में चार साल में शुरू किया और 9 साल में मेरा वो बोलते हैं ना अरंगेट्रम का मतलब है जब हम पहले मंच पर चढ़ते हैं और अकेले करते हैं। हो सकता है पहले बच्चों के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज किया, मगर वो जब गुरुजी समझते हैं कि ये मिनिमम जिसके कारण उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उसे अरंगेट्रम कहते हैं, जो पहले बार हम मंच पे खड़ा होकर सभी को बुलाकर हम एटलीस्ट मिनिमम 1.5 hours तक हम डांस करके दिखा सकते हैं, वही तो अरंगेट्रम है। तो यही था हमारा शिक्षा डांस क्लास में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट सर्विस में थे वो एक IAS ऑफिसर थे, तो उनको बदली हुआ और वो दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था, तो मैं भी इसी कारण अरंगेट्रम के बाद दिल्ली जाना पड़ा। मगर मेरा माताजी को ऐसा था कि अगर दिल्ली में हो या कहीं भी हो वो नाचने को नहीं छोड़ना है, तो उन्होंने ढूंढा और अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी के कोई रिश्तेदार वो थे दिल्ली में, तो उनको पकड़ा और वो घर आते थे और हमें सिखाते थे। और इस तरफ मैंने शैली को बदलना नहीं किया, तो वही शैली पंदनल्लूर शैली से ही मैं थोड़ा और बहुत सीखने लगा। मगर हर साल 2 बार जब भी छुट्टी होता था समर में, मई जून को चेन्नई आते थे और खूब प्रैक्टिस होता था और जरूर 1-2 प्रोग्राम करते थे उसके बाद वापस पढ़ाई के लिए दिल्ली जाते थे, मगर अगर दिसंबर में भी हॉलीडेज होता है तो चेन्नई आ जाते थे इसी के कारण। तो जो हमने दिल्ली में रहा, पर वहाँ तब नैनीताल या शिमला या हिमाचल प्रदेश कहीं भी नहीं गए, बस यही था उनके मन में कि चेन्नई आए, वो छुट्टी के दिन यूज करे और सीखे। हाँ, तो ऐसा चल रहा था, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर बदली हुआ, दिल्ली से वे वापस चेन्नई आ गए। वो टाइम था जब मैं भी थोड़ा बड़ी हो गई, मुझे और भी समझ आ गई कि ये डांस क्या होता है, क्योंकि पहले ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, इसी तरह एक नाचना भी सीख लिया और वो बहुत खुशी से नाचते थे, मगर उसके नेक्स्ट लेवल को जाना पड़ता है, तो वो एज के साथ ही आता है ना, तो एज के साथ आया वो। जब हम वापस आए तब मेरा उम्र होगा 16 हो गया, तो हमारे मन में ये भी लग गया कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, तो मैं इसके बारे में और कुछ सीखना चाहती हूँ, उसके बारे में, उसका हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इसका थियोरी, इसका कितने हम्स है ना, वो सब सीखना चाहती हूँ। इसलिए उस टाइम मैं समझती हूँ कि बहुत सारा मैंने सीखा। हमारे गुरुजी के पास गए, वो भी देखा कि अभी ये लड़की को बहुत पसंद है, जो भी वो जानते थे वो हमें सिखाए थे। उन वो गुरुजी को बहुत मैं धन्यवाद और प्रणाम हर वक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना ही वो डांस सिखाए, मगर उसके बारे में कितना हमें श्रद्धा से करना है, कितना डिसिप्लिन से करना है, कितना मन लगा के करना है, कितना फोकस से करना है। ऐसा नहीं कि एक आइटम सीख लिया, थोड़ा नाच लिया और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बारे में उतना उन्होंने, वो पीरियड फ्रॉम 16 टू अबाउट 22, 6 साल हमने उनके साथ काम किया और जो भी वो सिखाए वो सब सीख लिया, और हमें पता लग गया कि बस डांस करना ही नहीं है, मगर वो अभिनय जो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन, मुख अभिनय, और उसके साथ जो भी जेस्चर है उनके साथ अच्छी तरह वो अभिनय प्रेजेंट करे, तभी वो दो दर्शकों को समझ आएगा कि क्या हम क्या करते हैं। बिना बोले, बिना एक शब्द बोले हमें करना है, पूरा रामायण दिखाना है, पूरा महाभारत दिखाना है, तो उसके लिए कितना उसकी वो क्या बोलते हैं कि कितना अंदर से इमोशन आना चाहिए, वो शार्पनेस से मुख में दिखाना चाहिए, हर मसल, मुंह का सर मसल, आई, आईब्रो, नाक, एवरीथिंग हैज टू बी मूविंग। तो ये सब इतना एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते हैं, फिर भी एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये ट्रेनिंग उस वक्त बहुत सख्त था, और हम भी वो उस उम्र में हैं जो हमें और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस पिताजी माताजी सब कुछ तैयार कर रहे हैं, हमें गाड़ी भेज रहे हैं, ड्राइवर देता है जाता है, हमें कोई वो सब की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम पूरा मन इसमें लगा सकते हैं। आज जब मैं शिक्षक हूँ, मैं वही बोलती हूँ लड़कियों से, अगर आप अभी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके लाइफ में वो दिन आएगा जब तुमको करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जब मुश्किल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए सब लोग कर रहे हैं, तुम बस फिजिकली यहाँ आकर थोड़ा दिमाग लगाकर सीखना है, अगर आप इस टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो उस टाइम हमने, और हमारा माता जी और पिताजी इसका बहुत सपोर्ट थे, क्योंकि उसमें उनके लिए ये उन्होंने ही मुझे चुना कि नाट्य सिखाने के सीखने के लिए, तो वो जो कर सकते हैं, लोगों से मिलना या परफॉर्मेंस अरेंज करना हमारे लिए, वो ऑर्केस्ट्रा को रेडीमेड बनाना, ये सब सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नाट्य के लिए, क्योंकि गाना भी ऐसा है कि हम जाकर बैठ कर गाना कहीं भी गा सकते हैं, डांस ऐसा नहीं है, बहुत सारी तैयारी है, उनका एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उनके साथ हम प्रैक्टिस रिहर्सल करना पड़ता है, उसके लिए इतना सा मेकअप और ज्वेलरी और डांस ड्रेस और कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, ऑडियो, ये सब अच्छी तरह से आता है, तब ये प्रोग्राम और भी जमता है। सो इसके लिए बहुत, अगर हमारे लिए वो फैमिली सपोर्ट हो तो जरूर वो लड़कियां और भी अच्छी कर सकती हैं। और आजकल ये भी है कि खर्चा भी बहुत करना पड़ता है वो भी एक बात है ना। सो इस तरह सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज अलोन, माय इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट इन डांस वाज गोइंग अहेड। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 1981 then 82 85 में दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। सो वो टाइम है जब हमारा प्रायोरिटी थोड़ा बदल जाता है, हम अपने बारे में ही नहीं सोच सकते हैं, थोड़ा सा सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वो नाट्य में उतना जितना फोकस पहले था उतना नहीं हो सका, तो मैंने थोड़ा बैक सीट लिया। मैंने सोच लिया कि अभी हमारा काम है कि बच्चों को पहले देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, सब कुछ। मगर क्लास जाती थी और उनके साथ मास्टर के साथ मैं सिखाती भी थी। ऐसा चल गया और 5 साल ऐसा हो गया जब तक बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं हुए ना, हो गया। तो मैं उस टाइम समझती हूँ कि डांस मुझे वापस चुन लिया। मुझे बहुत आश्चर्य है कि सब कुछ कैसा अच्छी तरह बन गया। हमारा घर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट घर के पास एक अच्छा मास्टर थे जो आकर क्लास कर सकते थे, और मैं एक एरिया मैलापुर में थी जहां और इजी है डांस सीखना और परफॉर्मेंस करना। तो उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर मेरा करियर शुरू किया, और फिर यही होता था कि परफॉर्मेंस करें। 1991 में मैंने सोचा कि क्या, उस टाइम हमारे गुरुजी सब बहुत बड़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए और अपना स्कूल सब बंद कर दिया, और उस शैली में बहुत लोग नहीं थे जो इतना प्योर और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस पंदनल्लूर स्टाइल, उनमें बहुत लोग नहीं सीखे थे। तो मैंने सोचा कि 1991 को मैं एक स्कूल शुरू करूं, और जो इतना ब्यूटीफुल डांस जिसने मैंने सीखा उसको कैसे बांटूं, कैसे नेक्स्ट जेनरेशन को देना है ना, तभी ये जाता रहेगा। इसीलिए मैंने 1991 को स्कूल भी शुरू किया। और मैं बहुत दृढ़ से कह सकती हूँ कि जब हम सिखाना शुरू करते हैं वो हमारे लिए एक दूसरा लर्निंग है। जो जो हमको दिमाग में अपने आप करने में नहीं समझ आई वो सब समझ जाते हैं जब हम देखते हैं और सिखाते हैं, तो वो सेकंड लर्निंग होता है। तो वो शुरू किया और 1991 मतलब अभी 35 इयर्स हो गया डांस स्कूल में। और बहुत बहुत सैटिस्फाइंग प्रोफेशन है मेरे लिए कि मैंने ना ही मैंने डांस किया ना ही मैंने इसकी आनंद पूरा लिया, अभी मैं वो आनंद को बहुत बच्चों से मैं बांट रही हूँ। और जब देखती हूँ जो बच्चे 5 साल में आते हैं और कैसे वो एक एक एक एक करके जब वो बड़ी होती हैं, ये डांस के वजह से वो कितना बदल देते हैं, कितना उनमें ग्रेस आ जाता है, उनमें एक पर्सनालिटी आता है, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ना ही डांस सीखते हैं मगर ये सब भी हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी हो जाता है, और वो हमारे ट्रेडिशंस को जान जाते हैं। आजकल कहाँ जानते हैं, कोई उनको बताते नहीं है और वो पढ़ते नहीं है या देखते नहीं है। अभी ऐसा डांस और म्यूजिक में उन्हें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कहानी आता है, और गणेशा ने कैसा वो आम को लिया, या महाभारता की स्टोरी, रामायणा की स्टोरी, हर वक्त यही उनको दिमाग में आता है कि अल्टीमेट है कि अच्छाई बुराई से विन कर जाएगी, अच्छा रहना इज द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा उनका कितना वेल बीइंग होता है ना, फिजिकली वेल बीइंग, उनको एक्सरसाइज हो जाता है, सर से पांव तक एक्सरसाइज है इसमें। आजकल अगर आप किसी के पास डॉक्टर के पास जाएंगे कि स्पॉन्डिलोसिस है, वो जो एक्सरसाइज बताते हैं जैसा वो सब करते हैं, ये सब करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, सब कुछ डांस में आ जाता है। और अगर आप आई डॉक्टर को जाते हैं वो कहते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये आंख के साथ हम कितना करते हैं, पूरा फेशियल मसल्स के साथ हंसना रोना सब कुछ करते हैं। तो इसमें से हमारा टोनिंग ऑफ द मसल्स हेड टू टो, हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है, और अल्टीमेट है स्पिरिचुअल। हमारा कला भक्ति से इतना जुड़ा है, भक्ति के बिना कला नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति, वो कोई भी देवता हो, वो जीसस हो, मोहम्मद हो, हमारा हिंदू हो, जो भी हो, कहते हैं एक ही है, सुप्रीम गॉड, वन ब्रह्मन, ब्रह्मन। सो ये सब शिक्षा कहाँ मिलेगी एक ही कला में? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, सब कुछ जुड़कर आता है। इसीलिए मैं कहीं जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है बात करने के लिए, मैं इसकी महत्वपूर्ण को बोलती।
1: मीनाक्षी जी, आपने अपने कला को आपने इस तरीके से इतना डिटेल में हमको समझाया, अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि अगर मैंने सीख लिया होता तो शायद मैं भी, जैसा आप कह रहे हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से एक सक्षम अनुभव करता। क्योंकि जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि ये केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं, इसमें आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति के बारे में भी सीखने को मिल रहा है, ये भक्ति से जुड़ा हुआ, आप ईश्वर के भी नजदीक रहते हैं, और चूंकि आप एक्टिव हैं, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई शिथिलता नहीं आएगी, यू विल बी ऑलवेज वेरी एक्टिव, आपको अच्छा फ्रेश महसूस होगा। और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा। लेकिन क्या भरतनाट्यम कभी भी कोई भी सीख सकता है, या इसका कोई एक पर्टिकुलर एज होता है जिसमें सीखना बेटर होता है?
2: देयर इज नो डाउट, वो जो बोलते हैं चाइल्डहुड एंड यूथ इज द बेस्ट टाइम टू लर्न, उसमें कोई क्या बोलते हैं, देयर इज नो डाउट, उसमें शंक कुछ नहीं है। ओके
1: जी,
2: अगर मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग मुझसे, जब मैं स्कूल सब कर रही थी ना, चले मेरे दोस्त या कई लोग लड़कियां आकर बोलते थे कि हमने बचपन से, मुझे ये बहुत शौक था मगर हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सीखने के लिए, क्या हमें सिखाएंगे? या वो लोग बोले कि हम बहुत अच्छा करते थे मगर उसके बाद कोई पढ़ाई के लिए, या मैं मैरिज के बाद हमारा घर में वो सपोर्ट नहीं था, हम नहीं कर पाए, मगर अभी बच्चे बड़े हो गए, हम अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट है, आप हमें सिखाएंगे, पूछेंगे? तो मैंने सोच लिया, मैंने बोला कि नहीं, जो एज भी आप लोग हो, आप आ सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आप सोच लीजिए कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है तो आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए, मगर एक बात मैं कहती कि आप लोग इसे ऐसा मत देखिए कि मैं सीख कर स्टेज में जाकर परफॉर्म करूंगी, नहीं चाहिए, वो एक बात है, कर सकते हैं, मगर वही है, वही गोल नहीं है,
1: गोल आंतरिक खुशी होना चाहिए कि मैं अपनी खुशी के लिए कर,
2: खुशी के लिए, तुम्हारे पास ये डिजायर होता है ना,
1: इच्छा,
2: इच्छा, वो इच्छा, एक ही लाइफ हम रहते हैं तो वो इच्छा को पूरी करनी चाहिए, थोड़ा देर, 3 महीने करिए, 1 साल करिए, 2 साल करिए, उसके बाद छोड़ जाइए, वो भी ठीक है, मगर आपका इच्छा पूरा हुआ। और वो लोग जब आए, और वो लोग आज भी आ रहे हैं, मैंने एक अभी रिसेंटली एक डॉक्टर, वो आई डॉक्टर थी, और उसके वो स्टार्ट किया 35 में, 41 में मैंने उसको स्टेज में डाला, वो अरंगेत्रम किया, उसके आंख में पानी थी, और उनके माता पिता के आंख में पानी थी, हमने नहीं सोचा कि हो सकता है, मगर अगर वो सेल्फ पावर, सेल्फ में कॉन्फिडेंस लेकर उसको मेहनत करने के लिए तैयार थी, हम कुछ भी कर सकते हैं, एज इज नो बार।
1: तो उम्र की कोई बाधा नहीं होती दोस्तों, जैसे कि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने हमें बताया, लेकिन बाधा होता है अपने खुद के मन का। अगर आपके मन ने ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपके मन को संभालना, उसको समझाना, उसको अपना साथी बनाना, ये बहुत बड़ी कला है, और इस कला को सीखने के लिए हमें अध्यात्म बहुत मदद करता है। कभी कभी हमारे आसपास जो हमारे लोग होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, या हमारे शिक्षक होते हैं, या हमारे दोस्त होते हैं, ये वो रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं। जैसे मीनाक्षी जी की कहानी में हमने सुना कि उनकी माता जी ने अपने 5 बच्चों में से जो इकलौती बेटी थी, उसको उन्होंने नृत्य में डाला, क्योंकि उनके दिल की ये तमन्ना थी कि जो मैं नहीं कर पाई, शायद मेरी बेटी कर सके। अभी हम चलते हैं वापस मीनाक्षी जी की कहानी में, जहाँ से हम कुछ कुछ सवाल चुनेंगे, और उम्मीद करते हैं मीनाक्षी जी उन सवालों के साथ हमें और भी कई बातों को सिखाएंगी।
2: मेरे पास एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है।
1: सो यू आर द मिडिल वन?
2: मिडिल वन।
1: अच्छा, तो मतलब एक बहन है आप, इकलौती बहन है, और एकमात्र बेटी के प्रति आपकी माँ ने एक विजन सोचा। जब छोटे होते हैं तब तो मम्मी पापा जो कहते हैं वो हम करते हैं इजीली, उसमें हमें कोई शंका नहीं होता, बोला है ये करो तो हम कर लेते हैं, लेकिन बचपन में ही खेलने कूदने का भी समय होता है, थोड़ा शैतानी शरारत करने का समय होता है। उस समय अगर कोई आपको एक ऐसी विधा में डाल दे जहाँ एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या कला हो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, बहुत अनुशासन है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कहाँ मम्मी भेज रही है रोज, जहाँ पर मेरे को टीचर रोज स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो करने कहता है, आपके मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाग जाओ इससे?
2: नहीं नहीं, वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारा वो उतना कठिन नहीं था, वो थोड़ा बैलेंस था, स्कूल जाते थे और हफ्ते मैंने बोला ना 3 बार क्लास जाते थे और वो ग्रुप क्लास थी और बच्चे वहाँ आते थे, और मैं सोचती हूँ कि मैं उसे पसंद करती थी कि जाकर वो 3 बार डांस करें, और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी खेलती थी, आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट, बास्केटबॉल खेलती थी, सब कुछ करते थे, क्योंकि हमें और कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था ना उस टाइम, कहाँ था उतना डिस्ट्रैक्शन
1: उस टाइम पे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ नहीं था,
2: कुछ भी वो नहीं था, और बस खेलने के लिए माता जी पिताजी, मैं कहती हूँ कि अच्छा बैलेंस करते थे, और उसने ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट करके सब कुछ बताते जो हमें पसंद नहीं है, वैसा नहीं है। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरे स्कूल में आजकल के बच्चे ना डिफरेंट होते हैं, हमें ये मानना जरूर है कि आज के बच्चे जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसका बहुत डिफरेंट है, उनको कई कई एक्सपोजर्स हैं, उनको कई कई इंटरेस्ट हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस सबको हम हर वक्त ऐसा नहीं बोल सकते हैं नहीं करो नहीं करो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये पेरेंट्स की रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जब वो बच्चे ग्रोथ की टाइम ना, कई माता जी हमसे आकर बोलते हैं पता नहीं आजकल वो रेगुलर नहीं आ रही है, हम उसे प्रेशर नहीं करना चाहते हैं, हम उसे फोर्स नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं कहती आप लोग क्यों समझते हैं कि ये प्रेशर है, ये आप ही लोग ऐसा बोल के प्रेशर है, थोड़ा सा उसको प्रेशर नहीं समझना नहीं है, उसको ऐसे कहना है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम, मैं ले जाऊंगी तुम्हें क्लास, मैं आपके साथ आऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी, और वापस जाने के टाइम कुछ ना ऑन द वे बैक उसको एक आइसक्रीम देकर ले जाएगी, स्मॉल स्मॉल थिंग। और जो लोग आज आप सोचिए, जो लोग कुछ ना कुछ पाए हैं, वेदर इट इज क्रिकेटर, वेदर इट इज चेस प्लेइंग, म्यूजिक, डांस, सभी बोलेंगे कि हमारा माता पिता जी का सैक्रिफाइस, उन्होंने क्या क्या किया हमें बढ़ाने के लिए, तो ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ऐसा नहीं सोचना के लिए ना मेरा टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है उसे ले आने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं,
1: और शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसमें, जरूर समय भी देना पड़ेगा और दिल से उस पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा
2: और उसको अभी आजकल हमारे स्कूल में बच्चे हफ्ते में 2 बार आते हैं, 1 घंटा के लिए रहते हैं, सो होल मंथ में 8 घंटा, वो बहुत आसानी है, मगर उनका वो फोकस होना चाहिए, और उसमें माता पिता की रोल बहुत जरूरी है।
1: ये चीज मैंने गौर किया आपकी कहानी में भी कि आपके मम्मी पापा ने एक चीज आपको बहुत मदद किया, और वो ये था कि उन्होंने इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत दिया, जैसे भी अभी आप चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट हो गए या कहीं दूर चले गए, लेकिन उन्होंने आपको इमोशनली ये चीज को फील करने दिया कि ये तो बड़ा आसान है, ये दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप बस इसमें लगे रहो। तो ये जो एक इमोशनल सपोर्ट है, जैसा कि आप अभी भी कह रहे थे, इससे क्या है बच्चे को ये फील हो जाता है कि अच्छा मुझे तो बस इतना ही करना, बाकी तो मम्मी पापा देख लेंगे, तो वो जो एक इत्मीनान आता है दिल में, एक जो सुकून आता है कि भाई मेरा इतना ही करना है, मैं उतने पे ही फोकस करूं, ये आगे बढ़ने में मदद करता है। जहां सामने वाले की बुद्धि इसमें फंस जाए कि इसको कैसे ट्रबल शूट करें, कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल के लाएं, वहां फिर धीरे धीरे सीखने से दिल हट जाता है, क्योंकि कोई चीज कठिन लग रही हो तो उसको सीखने में मन नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज अगर सरल लगती हो और मनोरंजन लगता हो तो उसको करने में दिल करेगा, और उसकी वजह से व्यक्ति और भी उसको सीखना चाहेगा।
2: जैसे मैं कहती हूँ ना, जब बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, मेरा फर्स्ट गोल यही है कि वो खुशी से मेरे क्लास को आना है, क्योंकि उसको टाइम है, अगर कुछ नहीं आया ये बात नहीं है कि उसको डंडा से मारो और बोलो करना ही है, क्यों, उसके पास टाइम है, वो सीखेगी। कई लोग जल्दी सीखेंगे, कई लोग लेट सीखेंगे, तो क्या हुआ। तो अगर हम वो बैलेंस, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए मगर वो बच्चों को एक कंफर्ट देना चाहिए कि वो क्लास में आएगी तो खुशी से आएगी। अगर वह खुशी से क्लास आएगी हम उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मगर अगर उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है चाइल्ड में प्रॉब्लम हो या टीचर में प्रॉब्लम हो या पेरेंट में प्रॉब्लम हो और वो रुक जाता है, तब मुश्किल होता है।
1: यहाँ पर मुझे एक और चीज, जैसे आपने बताया कि बच्चों को ये चीज समझना जरूरी है कि मेरा एक समय है जब मैं पक जाऊंगा, और दो फल आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते कि कौन पहले पकता है, हर एक का एक समय निर्धारित है। लेकिन आपने भी देखा है कई पिछले 10-15 वर्षों से हमारे समाज में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो किसी भी विधा में हो, लेकिन कला के विधा में ये कॉम्पिटिशन चमक दमक और ग्लैमर के साथ आता है। आपने जब सीखा तब आपके गुरु के कहने पे 5 साल 6 साल जब आपके गुरु ने बोला कि मुझे लगता है अब ये तैयार है, तो इनका डेब्यूट कराया गया, अरिंगटम कराया गया, राइट। लेकिन आज क्या है, पेरेंट्स आते ही हैं टीचर के पास ये सोच करके कि कब ये रेडी हो जाएंगे, कब हम फलाने टीवी शो में जाएंगे या फलाने टैलेंट शो में जाएंगे। तो ये जो एक दौड़ने की जो एक भावना है, किसी से आगे बढ़ने की जो भावना है, आपको लगता है ये सीखने में कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर देता है।
2: बहुत सही बात, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछा है, क्योंकि हम समझते हैं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, कॉम्पिटिशन अच्छा है, मगर ये जेलसी जो होता है ना, वो आ जाता है। तभी क्या हो जाता है कि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना,
1: ईर्ष्या,
2: ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन। उस टाइम हमारे जैसे हमारे बड़े लोग के वैल्यूज को बच्चों को सिखाना चाहिए छोटे में ही। आजकल प्रॉब्लम ये है, बच्चों को ये बात नो सुनना ही पसंद नहीं है उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, वो नहीं आया तो वो उसको दे नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। और पेरेंट्स भी बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत साल पहले मेरे लड़का ने कुछ, मेरे पिताजी के साथ कुछ खा रहे थे, तो कुछ लकार कुछ खाने में रखा था, और मैंने बोला अपा आदित्य, मैं सन्स नेम इज आदित्य, आदित्य को ये पसंद नहीं है, आदित्य डजंट लाइक इट समथिंग। तभी उन्होंने बताया, आप लोग अगर बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस करके आप ही बोलते हैं कि इसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, यही पसंद है, यही देना है उसको, उसमें एक एटीट्यूड आप ही बढ़ाते हैं। यहाँ रखा है, खाना रखा है, वो जो कुछ भी रखा है वो खाएगा, यानी थोड़ा खाएगा या नहीं खाएगा, ओके, मगर आप लोग उसको बिल्ड करेंगे और बोलेंगे मेरे लड़के को यही चाहिए, वो ही पसंद है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहां नहीं बैठेगा, उसी टाइम वो बच्चों को वो एक ईगो पैदा कर देते हैं। ये नहीं करना है, वो छोटे में सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और अच्छी तरह हर टाइम उनको बताना है कि आप यू बी द बेस्ट यू कैन बी, तुम हाउ डू से दैट,
1: आप अपना बेहतरीन बनने का प्रयास, हाँ, किसी और से नहीं, बिल्कुल।
2: आप में कुछ होगा जो उसके पास नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बढ़ाओ
1: जी।
2: कई बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं और मुझे मालूम है उनको डांस के बारे में उनका फिजिकलिटी या उनका मेथड ऑफ डूइंग वो ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है, मगर ये शैली इसकी सूटेबल नहीं है। पूछ लो कि अगर उसका इंटरेस्ट गाने में हो, पेंटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो, उसको बदली कर दो। वो भी हमारा एज अ गुरु आई मस्ट टेल देम द फैक्ट्स, क्योंकि आपने जो बोला था ना, इसमें बहुत सारा ग्लैमर है, इसमें स्टेज में चढ़ाकर सब लोगों को आकर्षण करना है। अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो उसको फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। तो तब हमें ही बताना चाहिए कि रूट को थोड़ा घुमा लो या कुछ कर लो
1: जी।
2: ये बहुत साइकोलॉजिकली आजकल बहुत बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली उनको डील करना पड़ता है
1: जी। मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स ने एक चीज पक्की कर ली थी कि जैसा आप चाहेंगे आपको वो मदद करेंगे, लेकिन आपके पीछे वो एज अ बैकबोन रहेंगे। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों का थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा देखते तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि जीवन में उतार चढ़ाव एक प्राकृतिक नियम है। उस उतार और उसके बाद जो चढ़ाव है, जहाँ मेहनत होती है वहाँ बच्चों को पीछे से सपोर्ट करना है, ना कि बच्चों का होकर के उनका कर देना। यू विल नेवर डू होमवर्क फॉर योर किड, यू विल लेट द किड डू इट, राइट?
2: पेरेंट्स एंग्शियसनेस इज नाउ टेकिंग ओवर।
1: जो घबराहट है पेरेंट्स के अंदर, जी,
2: दे कांट सी देयर चिल्ड्रन डिसअपॉइंटेड, दे कांट सी देयर चिल्ड्रन अपसेट, सो क्या कर जाते हैं, उसको बहुत शील्ड करते हैं, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाएगा क्या करेगा
1: जी, तब तो बहुत मुश्किल होगा। तो अभी मुझे एक और सवाल पूछना था। जैसे आपने बताया कि तरुणावस्था में आपको नृत्य के प्रति अंदर से एक आंतरिक रुचि आने लगी, आप उसकी और गहराई में जानना चाहते थे, क्या आप मुझे एक कोई ऐसा किस्सा या कोई एक ऐसी कहानी बता सकते हैं जिसको सुनते हुए, क्योंकि जैसे आपने बताया भरतनाट्यम या कोई भी जो शास्त्रीय कला है उस विधा में हम कहानियां ज्यादा सुनते हैं, कहानियों को ही हम नाट्य रूपांतरण करते हैं या उनको ही हम गाते हैं या उनको ही हम चित्रण करते हैं, कोई एक ऐसा प्रसंग जो आपको लगा कि इसने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया, वो कौन सा प्रसंग था?
2: एक याद आती है, मैंने एक ये बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नेहरू सेंटर कहते हैं, लंदन में है
1: जी,
2: और लंदन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला नेहरू सेंटर में, मैं जाकर वहाँ हमारा नृत्य किया और वहाँ के ऑडियंस बहुत सारे लोकल ब्रिटिश लोग थे और फॉरेनर्स थे, और उसके बाद हम सब मिलकर एक रिसेप्शन की तरह रखा, डिनर रखा। तब मैं कई लोग बोल रहे थे कि हमारा इंडियन डांस को कितना वो पसंद कर रहे हैं, तो मैंने बोला उनसे कि उसी एक दिन पहले मैंने जाकर वो प्ले लायन किंग
1: जी।
2: लायन किंग को मैंने लंदन में वो देखा और मैं टोटली आई वाज अमेज्ड, क्या क्या कोऑर्डिनेशन, क्या परफेक्शन, एक एक रोल, एक एक एनिमल को कैसा उन लोगों ने स्टेज में लेकर हमारे आंखें के आगे रखा, कैसा लाइटिंग, व्हाट इज कॉस्ट्यूम, कितना म्यूजिक, ये सब मुझे बहुत लेफ्ट मी टोटली अमेज्ड। सो मैं उसके बारे में उनसे बोल रही थी, तब मालूम है उन्होंने क्या कहा मुझे, हाँ हाँ यस यस वी आर वेरी गुड एट दैट, मगर यू नो व्हाट वाज फॉर अस वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, वी सॉ वन डांसर, शी वाज स्टैंडिंग ऑन द डांस एंड शी बिकेम सो मेनी कैरेक्टर्स, शी बिकेम कृष्णा, she became a mountain, she became the river, she became the deer, she became the hero, she became the nayika. One person is standing there and showing us so much. There is no technological brilliance, there is no lighting, there is no all this amazing things. So that is art. What you are doing is very beautiful, it is artistic. तभी मुझे भी याद आया कि हमारा कला कितना महत्व है, तो हम इसके वी मस्ट वर्क, वी मस्ट डू मोर एंड मोर परफेक्शन
1: जी,
2: क्योंकि ये और सिमिलरली नो एक कहीं पर मैंने किया वो ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसको कहते हैं जगदो धारण आदि शीतल यशोदा, व्हाट अ ग्रेट सोल यशोदा वुड हैव बीन, that the Supreme Lord was just a boy, baby in her hand. And she didn't know it. She scolded him, she begged him. He begged to her for forgiveness. What sort of a great lady that Yashoda must have been. And when I was doing it, that lady doesn't understand our word, only the action. And she said, I'm missing my child so much. The child was not there with her. So our music and dance has this power of moving people. It is moving their soul, it's moving their emotions. So these are all things which make you realize how lucky I have been, what a lot of grace of God I have got to be able to be like how you are saying, you are feeling so bad that you were not having this opportunity. I am feeling so blessed that I was given this opportunity.
1: जी.
2: एक बात है, हमारे गुरु जी बोलते थे, बहुत बड़े गुरु होंगे उनको अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा करने वाला शिक्षक होगा उसको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा. तो अच्छा गुरु और अच्छा शिक्षक कनेक्शन होता है तो वो भगवान की कृपा है.
1: जी, जहाँ आपने अपना अनुभव शेयर किया कि जब आप लंदन आए और आपने यहाँ का जो शो होता है वो देखा और आपको लगा कि भाई इतना अच्छा तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन जब आपने किया और तब लोगों ने बोला कि भाई वो तो लाइट टेक्निक तकनीक की जो भी चीजें हैं, इनोवेशन, और इतने सारे लोग मिलकर के एक प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ एक

0: मीडिया की वजह से उसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और हम उसको पहले सीखने के लिए या उसके पीछे हम पहले भागते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा खुद का है वो पीछे रह जाता है, अकेला पड़ जाता है और उसे आगे बढ़ाने वाला कोई होता नहीं। ऐसे में जब आपके पास नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए या पुराने भी आते हैं जब सीखने के लिए, आप उनको क्या वैक्सीनेशन देते हैं ताकि वो चकाचौंध में फंस ना जाए और जिस चीज के लिए वो आए हैं उस चीज को और गहराई से समझे? किस तरीके से आप उनको एक अंदरूनी गुरु की तरह परामर्श, एक दोस्त की तरह सलाह देते हैं जिससे उनको समझ में आए कि ठीक है वेस्टर्न चीजें भी मुझे सीखना है लेकिन पहले मैं अपने देश के परंपरा को, उसकी सभ्यता को आत्मसात करूं फिर मैं आगे बढ़ूं। तो आप क्या वैक्सीनेशन या इम्यून सिस्टम उनका कैसे तैयार करते हैं?
1: करेक्ट करेक्ट, ये एक बहुत इट्स अ चैलेंज, क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि आज की टाइम इज चेंजिंग और ये बच्चे डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। मैंने क्या देखा कि इनिशियली जैसे मैं बोला बच्चे खुशी से डांस क्लास आना चाहिए और उसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट भी होते हैं मगर जोकिंग भी करते हैं और उनको सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये नहीं है कि इसका समाप्त दो दो दो वर्ष लिए सीख लिया तो मालूम है या 10 वर्ष सीख लिया मालूम है, 50 वर्ष के बाद भी मुझे कितना मालूम नहीं है। हाँ, तो ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा टाइम टेस्टिंग के लिए नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब वो 3-4 साल हो गया और थोड़ा आइटम्स को शुरू कर दिया ना, तो मैं क्या करती हूँ उन लोगों को कुछ ना कुछ एटलीस्ट 2 टाइम्स इन द ईयर, यार 1 टाइम डेफिनेटली उनको मिला के उन्हें स्टेज में प्रेजेंट करती हूँ। तो क्या होता है जब वो बोलती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम कर दिया है आप लोगों यू विल टेक पार्ट, उसी दिन नेक्स्ट क्लास में ही उनका चेंज हो जाता है। जब वो मालूम होता है कि हाँ मैं भी डांस जाऊंगी, मैं मेकअप करूंगी, ड्रेस पहनूंगी और मैं डांस करने वाली हूँ, उनका और पेरेंट्स का सबका थोड़ा, आपने बोला ना वो इंजेक्शन विटामिन विटामिन अंदर जाएगा और वो 1 साल तक रहेगा। अगले साल जो और भी उन्होंने सीख लिया उसको भी एक इकट्ठा करके उसे थोड़ा सा यू नो मेक इट लिटिल फन एंड उसको प्रेजेंट करते जाते हैं, ताकि जब उनका टाइम आता है, जब मैं समझती हूँ कि वो अपना सोलो अपने आप डेब्यू परफॉर्मेंस 1 आवर 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा से तैयार हो गए हैं। और जब वो दिन आता है, वो दिन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए इतना खुशी का दिन है और जो याद वो कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर कर कर अच्छी तरह जब वो करती है। उसके बाद उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, वो एक बार ही होती है, ऐसा नहीं कि हम आरंगेट्रम करते रहेंगे उनके लिए, उसके बाद उनको सस्टेन करने के लिए ही हमें बहुत बहुत बैलेंस
0: करना, बैलेंस
1: मेहनत बैलेंस कभी कभी थोड़ा सा प्रोग्राम दे सकते हैं, मगर एक टाइम आ जाता है, हो सकता है ये 15-16 टीनेज में एक दो बच्चे छोड़ जाएंगे, बस 10th हो गया, 12th हो गया, बिजी हो गया और उसी तरह थोड़ा सा वो डांस अब फिजल हो जाएगा। कई बच्चे में अपने आप इट इज देयर इंटरेस्ट, नो लॉन्गर पेरेंट्स इंटरेस्ट, माता जी ने कहा पिताजी ने कहा की बात नहीं है, उसको आता है कि मैं इसको पसंद कर रही हूँ, आई लाइक इट, तो
0: और
1: मैं
0: मुझे
1: चलती
0: लगता है
1: हूँ।
0: जब वो अपनी पसंद से होता है तभी वो एक ऐसे शिखर पे पहुंचता है जब देश उसको मान्यता देने लगता है, जब विदेश देश हर तरह उस चीज की मतलब सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। अगर वो किसी के दबाव में किया जा रहा है तो वो किसी परफॉर्मेंस स्टेज तक ही रहता है, वो एक ऐसा कला नहीं बनता जिसको लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे भारत के श्रेष्ठ सम्मान में से सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने अपने कला को अपनी रीति से अपनाया, किसी के कहने से नहीं, शुरुआत भले माता पिता ने किया, गुरु के आदेश और निर्देश में उन्होंने शुरू किया, लेकिन जब उनके दिल के कोने ने देख लिया कि इस पूरे जगह में केवल नृत्य का ही वास है, तब उन्होंने उस नृत्य को इतने आगे परचम तक पहुंचाया जहां पर उनका नाम और भरतनाट्यम का नाम एक होने लगा और भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जब ये सम्मान आपको मिल रहा था तब आपको वो छोटी बच्ची मीनाक्षी जो

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज पहली जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। तो बाबा कहते हैं, अंधेरा किस चीज का है? अज्ञानता का। और उस अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए ही कहा गया है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा सतगुरु बनकर के इस संसार में आकर के हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, और इस तीसरे नेत्र खुलने से ज्ञान की धारणा होने लगती है, जिससे अज्ञान अंधेरे का विनाश होता है। बाबा कहते हैं, जितना जितना ज्ञान की धारणा होती जाती है, दैवी मैनर्स आने लगते हैं। और उसमें सबसे अच्छा दैवी मैनर्स है पवित्रता का। पवित्रता का दैवी मैनर्स आने से सब दैवी मैनर्स भी अपने आप आने लगते हैं। और बाबा कहते, ये असंभव कार्य सिर्फ परमात्मा ही संभव कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य आत्मा या दुनिया का कोई भी दैहिक गुरु किसी को भी ये नहीं कह सकते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस पवित्रता के दैवी मैनर्स को धारण करो। परमात्मा बाप ही आकर के ये असंभव को संभव करते हैं, ये पवित्रता की धारणा कराते हैं। चाहे घर गृहस्थ में रहने वालों को भी बाबा कहते, बच्चे पवित्र बनो, और उससे ही पावन दुनिया की स्थापना होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना। यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। बाबा कहते, तुम बच्चों का इस समय बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, दुनिया के बच्चे भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। भक्ति करते करते अव्यभिचारी, एक शिव बाबा की भक्ति करते करते फिर धीरे धीरे व्यभिचारी भक्ति हो जाती है अनेकों की, और अंत में अंधश्रद्धा में आ जाते, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी है, हम अंधियारे में है, सतगुरु के बिगर घोर अंधियारा, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहां बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है?
साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। फिर भी कहते हैं भगवान जब आए तब हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पति पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, धीरे धीरे हम रोशनी में आ रहे, सोजरे में आ रहे हैं। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तभी तो कहा जाता, क्या कहते हैं, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है, ज्ञान अंजन माना कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है, कनेक्शन रहता है बुद्धि का, अर्थात उसकी याद रहती है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है इससे निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। एक तो बाबा से योग लगाना है और मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है, परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर, सदाकाल के लिए। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो नहीं सकता है। सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, फॉर एवर, सदाकाल के लिए, ये अविनाशी पद और किसी को मिल नहीं सकता है। बल अभी तुम ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, थोड़े समय के लिए बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूं, अर्थात सदाकाल के लिए। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। बाबा ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर बनाते हैं, लेकिन लिमिटेड, थोड़े समय के लिए। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले। अगर बच्चों को भी सदाकाल के लिए बना दे तो फिर ये खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूं, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉरएवर बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। बाबा कहे तुम सदाकाल के लिए बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूं परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परमधाम से आया हूं, अब मुझे याद करो, ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकते। ये महावाक्य की कॉपी कोई
कर नहीं सकते। बाबा कहते मैं आता ही हूं तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं। कितने बच्चे पवित्र बनते हैं और कितने बच्चे अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है, बाबा को ही आकर के मैले कपड़ों को साफ करना पड़ता है। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा, तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए, आत्मा का मैलापन साफ करने के लिए बाबा ने कौन सा सोप दिया है, लक्ष्य सोप देता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं, तुमको हमने स्वर्ग

तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, इतना प्यार से बाबा कहते अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी ही है। सारी दुनिया में भले कुछ नया बनाते भी है तो भी दुनिया तो पुरानी ही है। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है, अपने को आत्मनिश्चय करना पड़े। बाप कहते मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई नहीं जानते, ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। बाबा कहते ये नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है, ये रसम रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है कि हर एक को एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करना है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की महिमा है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते श्री कृष्ण पूरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। बाबा कहते वैकुंठ कहते भी है सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, द्वापर में पुनः कोई वैकुंठ आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को श्री कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी, ये दुनिया है कंसपुरी, ये सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं, वह बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई सृष्टि रचेंगे, बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ, पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं, यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे मुझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, मोस्ट बिलवेड सुखधाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को भी पता नहीं।

यह तो अब है अति दुख धाम, अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा, बाप तो लिबरेटर है, तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए, हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और बाकी दुनिया की आत्माओं को इन जनरल सुखधाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है, ये पढ़ाई कोई कम नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहां दैवी गुण धारण करने हैं, यहां तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहां बाप कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है, घर बार खाली नहीं छोड़ना है, पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। छोड़ना यानी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं, साधु सन्यासी साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते, राय देते हैं आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बिगर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो, बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं, कोई फिजिकल चरणों में गिरने की बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा जो बाबा कहे उनको भी ये नॉलेज मिलेगी। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है, बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तो तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूं, इतना बाबा बच्चों को नशा चढ़ा देते कि बाबा आकर हम बच्चों को खुद से भी ऊंचा बनाते हैं, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, साकार बाबा के पास एक खिलौना था जिसमें एक तरफ राम एक तरफ रावण और सीता बीच में घूमती थी, तो राम के तरफ आती थी तो मुख राम के तरफ कर देती थी और जब रावण आता था तो अपनी पीठ दिखा देती थी। तो बाबा कहते राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले, यहां बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना या ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो, बाप बैठे हैं ना। ये अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े, वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है,
यहां तो तुम सबको मिलना है क्योंकि तुम सब आत्मय हो ना। बाप कहते तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहां है बाप और बच्चों का नाता, परमधाम में है सिर्फ बाप और बच्चों का नाता, निर्वाण धाम में। इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। परमधाम में, निर्वाण धाम में हमारा नाता है खाली बाप और बच्चों का, तभी कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहे तो फिर फादरहुड हो जाता है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, अब तुम बच्चों के पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है, ऐसे भी नहीं तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, यहां तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है, मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। सारा ज्ञान का सार कहो तो पावन बनना पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं। एक तन में है दोनों, तो दोनों ही बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। शिव बाबा की गारंटी है कि वापस तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। ऐसी कोई गारंटी कर न सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। बाप को ही नहीं जानते तो उसकी प्रॉपर्टी को कहां से जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं और पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, मोस्ट बिलवेड बाप को और अपने सुखधाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूरत भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदाकाल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप
भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। आज का व्यक्त इशारा है, पहली तारीख है, तो बाबा कहते सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो, जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति।

ओम शांति। भगवान के बच्चों को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टता संपूर्णता की पहचान है। बाबा।